0: 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा बैंक चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा

0: गले की रस्सी लगी ना छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा ना हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।
4: सुनो सुनो एक जरूरी बात, आया मिशन

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
2: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
0: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ

0: 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा छेद की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखे और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करे।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। आज के समय में मिट्टी की जरूरत और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है हमारी कि हम जैविक खेती को अपनाएं। और बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती को अपना भी रहे हैं, और ऐसे में उनके मन में सवाल आता है कि जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा। आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैविक खेती क्या होता है।
1: देखिए, आज की जरूरत है। जैविक खेती को विषमुक्त खेती भी कहते हैं, यानी जो बिना जहर वाली जो खेती है, जिसमें ऐसे उत्पाद पैदा हो जिसमें कोई जहरीला चीज ना हो, उसको हम जैविक खेती कहते हैं। हाँ, परिभाषा के रूप में यदि जानना चाहे तो यह है कि कृषि की वह विधि जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कृत्रिम कीटनाशकों

0: या अनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जैविक पदार्थ है उसका ही हम प्रयोग करते हैं और उससे जो खेती होती है उसको हम जैविक खेती कहते हैं।
1: जी, तो सर जैविक खेती के फायदे क्या क्या है?
0: बहुत समचीन प्रश्न है। जैविक खेती आज की नीड है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है, आने वाली जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है तो मिट्टी को ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम 140 करोड़ के आसपास हैं, उम्मीद करता हूं कि 2050 तक हम बढ़ करके लगभग 170 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। और इस 170 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करवाना, वह भी ऐसी मिट्टी से जिस मिट्टी में कि लगभग 6 पोषक तत्व तो हमारी मिट्टी में कम हो गया है, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वह तो हर एक किसान लगभग प्रयोग कर रहा है। यूरिया, डीएपी, पोटास तो प्रयोग ही कर रहा है। बहुत सारे किसान जिंक भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं बोरन भी प्रयोग करते हैं बोरेक्स के रूप में, साथ ही साथ यदि आप देखें तो कहीं कहीं सल्फर का प्रयोग करते हैं। यानी 6 तत्व तो किसान भी जान रहा है कि वो लिमिटिंग फैक्टर है। साथ ही साथ जो शोध हुआ है, जो मिट्टी की जांच हुई है, उसे यह भी पता चला है कि हमारा जो लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, मॉलिब्डिनम है, यह भी जल्दी ही कम होने वाला है। और उस सारी चीजों के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि कार्बन हमारी मिट्टी में कम हो गया हुआ है। आज से 70 साल पहले लगभग हमारी मिट्टी में 1% के आसपास कार्बन था, जो घट करके अब बामुश्किल 0.3-0.4% रह गया है। और यह इतना जल्दी कार्बन बढ़ता नहीं, 4-5 साल तक यदि हम ढांचा पलटते हैं तो बामुश्किल 0.1-0.2% कार्बन हमारी मिट्टी में बढ़ता है। हम चाहते हैं वायुमंडल में कार्बन कम रहे, मैं चाहता हूं कि मिट्टी में कार्बन बढ़े, लेकिन हो गया है उल्टा। हमारे वायुमंडल में कार्बन बढ़ता चला जा रहा है, हमारी मिट्टी में कार्बन कम हो रहा है। और यह तभी दूर होगा जबकि हम ऐसी चीजों को अपनी मिट्टी में डालें जिसमें कार्बन हो, चाहे वह हरी कोई चीज, यानी कि कहने का मतलब हरी खाद पलटे, या चाहे जो हमारे जैविक खाद हैं, चाहे वो कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे नाडेप कंपोस्ट हो, इन सारी तरह की चीजों को हम अपने मिट्टी में डालें जिससे कार्बन बढ़े, यह निहायत ही जरूरी है। और आने वाली जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा यदि हम चाहते हैं कि उसका सुनिश्चित हो सके, तो इसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें करें।
1: जी सर, सर अगर हम मिट्टी की उर्वरता के बारे में बात करें तो जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: अब यह पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ये है कि जैसे आपने एक चीज पूछा था कि जैविक खेती के क्या फायदे, तो एक तो पहली बात कि हानि रहित शुद्ध और पौष्टिक भोजन हमें मिल सकता है तो जैविक खेती से मिल सकता है। पर्यावरण का यदि संरक्षण होना है, वह भी जो हमने अभी पद बताया भी, वह भी हो सकता है तो जैविक खेती से हो सकता है। और लंबी अवधि तक यदि उपजाऊ जमीन चाहते हैं तो वह भी हमें मिलेगा तो जैविक खेती से मिलेगा। अब यह है कि जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे होता है, तो एक तो पहली चीज कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पूरी तरह बंद होता है इसमें। हालांकि कुछ रसायन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, ये सारी चीजें अलाउड हैं, कुछ केमिकल्स अलाउड हैं, लेकिन जिसका कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं है वही सिर्फ केमिकल्स हमारे लिए अलाउड हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें पूरी तरह बंद होता है। इससे क्या होगा कि रासायनिक उर्वरकों के चलते जो हमारी मिट्टी में कोई विषाक्त चीजें आ रही हैं वो विषाक्त चीजें नहीं आएंगी। दूसरी बात, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इन सब का प्रयोग उसमें होता है, जिससे क्या होता है कि ये लंबे समय तक हमारी जो है उर्वरता बनी रहती है। साथ ही साथ जो एक चीज है, जो लाभदायक जीव जीवाणु हमारे मिट्टी से कम हो गए हुए हैं उनकी संख्या बढ़ती है। एक चीज मैं बताऊं कि जितने लाभदायक जीवाणु हैं उनको एनर्जी सोर्स के रूप में कार्बन चाहिए, और कार्बन मिलेगा तभी जब कोई कार्बनिक पदार्थ उसमें हम डालेंगे। तो वह कार्बनिक पदार्थ जब उसमें आ जाता है तो उससे वह लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। आपको जान के ताज्जुब होगा यदि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पिताजी या दादाजी हैं, उनसे पूछिए कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया था, कभी एजोटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग किया था, कभी पीएसबी कल्चर का प्रयोग किया था, तो कहेंगे नहीं, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि ये लाभदायक जीव जीवाणु हमारी मिट्टी में थे। और क्यों थे? क्योंकि इसमें कार्बन था, कार्बन ज्यादा होने से उसकी जल धारण क्षमता भी ठीक ठाक होती है। साथ ही साथ उसमें जो दूसरा फायदा होता है वह यह है कि उसको जो खाने के लिए चाहिए एनर्जी सोर्स जो चाहिए, वह एनर्जी सोर्स भी वहां से मिल जाता था, इसीलिए लाभदायक जीव जीवाणु।

0: वहां पर थे। यहां केचुआ, केचुआ आपके मिट्टी में खूब थे, किसानों के मित्र कहे जाते हैं, लेकिन आज या तो तालाब तक सिमट के रह गए हैं या बगीचा तक सिमट करके रह गए हुए हैं। तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उनकी संख्या भी कम हो गई है। और तीसरी बात, जो फसल चक्र हम अपनाते हैं जैविक खेती में, उसमें बीच में कहीं ना कहीं दलहनी फसल को जरूर रखते हैं, और यह दलहनी फसल बड़ी अच्छी चीज है। ये समझिए अपने आप में यूरिया बनाने की फैक्ट्री है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ला करके हमारी मिट्टी में डालता है। भाई हम क्या करते हैं, बूस एंड हैबर प्रोसेस से जो हम यूरिया वगैरह वगैरह बनाते हैं, वहां पर भी तो यही करते हैं। और यहां पर यदि हम इस चीज को देखें तो यहां पर भी यह काम जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है और उसके शरीर में जो एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, उसके कारण यह सामान्य तापक्रम में हो जाता है। जबकि यूरिया के फैक्ट्री में देखिएगा तो 300-400 डिग्री टेम्परेचर वहां पैदा किया जाता है और उससे बनता है, लेकिन यहां पर सामान्य तापक्रम पर ही बन जाता है। तो ये सारे फायदे हमारे हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जैविक खेत में मिट्टी की उर्वरता, तो इनसे उर्वरता हमारी काफी बढ़ती है।
1: जी सर। सर अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात करें, तो जैविक खेती जब हमारे किसान भाई बहन अपनाते हैं तो उस क्रम में क्या क्या कृषि कार्य करने चाहिए जिससे पोषक तत्व का प्रबंधन हो सके?
0: तो एक चीज तो अभी हमने बताया कि फसल चक्र का चयन बहुत ही बढ़िया करना चाहिए। क्या बढ़िया होगा, जब बीच में हम कोई दलहनी फसल लेते हैं तो फसल चक्र हमारा ठीक ठाक है। तो इसीलिए एक तो पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। अब आप लोग ढैंचा वगैरह वगैरह का प्रयोग करते हैं, आप जान के ताजुब होगा कि ये जो है कम से कम 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल देता है, मोटा मोटी 100 किलोग्राम डाल देता है, यानी कि 220 किलोग्राम के आसपास यूरिया हमारी मिट्टी में डाल देता है जी। तो सोचिए कि कितना फायदा का काम कर रहा है। तो पहली तो बात हमने कहा कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। दूसरी बात, खेती में हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, निश्चित रूप में करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम छोटे थे उस समय हल से खेती होती थी, बैल से खेती होती थी, तो उस समय जो बैल का गोबर था वो हमारी खेती में जाता था, लेकिन अब बैल से तो खेती हो नहीं रही है। तो अब क्या है कि हर एक किसान के पास गोबर नहीं है जो गोबर का खाद बनाने की बात करेंगे, तो इसीलिए उनको चाहिए कि कम से कम हरी खाद का प्रयोग करें। तो हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा कि बायोमास, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधा कार्बन को अपने शरीर में रखा और उसको जब हमने मिट्टी में पलट दिया तो वो कार्बन हमारी मिट्टी में आ गया, तो यह भी हमको फायदा हो गया कि कार्बन मिल गया। और साथ ही साथ यदि वो दलहनी फसल है, वह जो हरी खाद वाला फसल है वह भी यदि दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी किया, साथ ही साथ उसकी जड़ नीचे स्तर तक जाती है तो जो नीचे स्तर में हमारे पोषक तत्व हैं उसको भी खींच करके ऊपरी सतह में ला देता है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी है फसल सामान्यतया उसी से पोषक तत्व तो लेकर के अपना काम चलाता है और आगे बढ़वार करता है।
1: जी सर। सर अभी आपने हरी खाद के बारे में बात की, तो हरी खाद में कौन कौन से फसल हमारे किसान भाई बहनों को लगाने चाहिए और कब लगाने चाहिए, साथ ही उसके फायदे के बारे में आप हमें विस्तार से बता दीजिए।
0: देखिए ऐसा है कि जो हरी खाद के रूप में है सनई का प्रयोग होता है, ढेंचा का भी प्रयोग करते हैं, उर्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, मूंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लोबिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं ग्वार का प्रयोग किया जाता है, ज्वार का भी प्रयोग किया जाता है, बाजरा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सामान्य रूप से है जो अच्छी बात होगी वह ढेंचा का प्रयोग होगा। ढेंचा का प्रयोग सामान्यतः अप्रैल से जुलाई के महीने में इसकी बुआई की जाती है और इसका बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर आपको बायोमास दे देगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि अभी हमने पहले भी जिक्र किया था कि 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यह स्थिरीकृत करता है। आप वायुमंडल में देखिए तो लगभग 78-79% हमारा नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन फसल के लिए किसी काम का नहीं है। तो अब उस फसल को उसके उपलब्ध रूप में जब तक हम परिवर्तित नहीं कर देते हैं, जैसे हम धान नहीं खाते हैं, धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात पकाते हैं तब खाते हैं, इसी तरह से यह नाइट्रोजन जो वायुमंडल में गैस के रूप में है वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसको जब हम नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में परिवर्तित करते हैं तभी वह पौधे को उपलब्ध हो पाता है। तो यह उपलब्ध करवाने का काम भी करता है, इसलिए ढैंचा सबसे बढ़िया होगा। वैसे तो हमने बताया कि ये कई चीज हैं, सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, लोबिया, ग्वार, ये सब के सब प्रयोग किए जाते हैं।
1: जी सर। सर जो जैविक खेती अपनाते हैं वो कई तरह के जैविक खादों का भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में, हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि उसमें कितना

0: एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है।
1: देखिए एक चीज बात बताऊं कि वास्तव में कहीं बाहर से नहीं लाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट ही बनाया तो वह केचुआ कहीं बाहर से नाइट्रोजन को लाएगा ऐसा तो है नहीं। तो जो कुछ भी आप जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं उस सबस्ट्रेट में कितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है इसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितना नाइट्रोजन फास्फोरस होगा पोटास होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, यदि सामान्य जो कंपोस्ट प्रयोग किया जाता है उसमें 0.4 से लेकर 2% तक नाइट्रोजन होता है, 0.4 से 1% के बीच में लगभग फास्फोरस होता है और 0.5% से लगभग 3% तक लेकर के पोटास होता है। इसी तरह से जो नाडेप कंपोस्ट है इसमें आपको 0.75% यानी 0.25% से लेकर के 0.25% तक नाइट्रोजन होगा, 0.7 से लेकर 0.9% तक फास्फोरस होता है, 1.2 से लेकर 1.4% तक पोटास होगा। खली भी प्रयोग में लाया जाता है तो खली को यदि देखिए तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, 2.5% से 8% तक नाइट्रोजन होगा, 1 से लेकर 3% तक फास्फोरस होगा, पोटास भी 1.2 से लेकर 2.2% के बीच में होगा। कहीं कहीं जो हड्डी का चूड़ा है उसका भी प्रयोग किया जाता है तो जो हड्डी का चूड़ा है उसमें 3 से लेकर 4% तक नाइट्रोजन होता है, 20 से 25% तक फास्फोरस होता है। जो मछली का खाद बनाते हैं उसमें यदि देखिएगा तो 4 से लेकर 10% तक नाइट्रोजन होता है और 3 से लेकर 9% तक फास्फोरस होता है और 0.3 से लेकर 1.5% तक पोटेशियम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग चीजों में अलग अलग है, लेकिन जो हमारा विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है सामान्य वर्मी कंपोस्ट में तो उतना नहीं होता है। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वह भी कहता है कि यदि इसमें 1% नाइट्रोजन है तो ठीक है जी 1% या उससे ज्यादा होना चाहिए, फास्फोरस 0.8% या उससे ज्यादा होना चाहिए, पोटास 0.8% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारा जो विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो बनाता है वह समृद्ध केचुआ खाद बनाता है और समृद्ध केचुआ खाद में आपको खुशी होगी जान करके कि 2% के ऊपर ही रहता है, 0.25% या उससे ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन होता है, साथ ही साथ इसे फॉस्फोरस भी 2.5% से लेकर 3.5% तक होता है, साथ ही साथ इसे पोटास भी 1% के ऊपर होता है। तो यह जो बर्मी कंपोस्ट है वह चूंकि समृद्ध केचुआ खाद है इसीलिए इसमें ज्यादा होता है और किसानों को इसका निर्माण भी करना चाहिए और इसका प्रयोग भी करना चाहिए।
0: जी सर, सर अब हम गोबर की सड़ी खाद की बात करते हैं और साथ ही इसकी तुलना में अगर हम वर्मी कंपोस्ट, हमारे किसान भाई बहन वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें और उसका प्रयोग करें तो उसके क्या फायदे होते हैं?
1: देखिए जो गोबर की खाद है, गोबर का खाद कौन बनाता है? जो भी सूक्ष्म जीवाणु है वही बनाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एक्नोमाइसिट्स हो, यही सब बनाते हैं। तो वह बनाया कौन? सूक्ष्म जीवाणु। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है उसको सूक्ष्म जीवाणु भी बना रहा है साथ ही साथ केचुआ भी बनाता है। तो एक मोटी सी बात समझिए, जो केचुआ के शरीर से जो कुछ भी निकल रहा है जैसे पेट ट्रॉफिक झिल्ली निकला तो वह क्या है कि जलवाष्पन को रोकने का काम करता है। तो वह जो आपने बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया तो वह ज्यादा पानी को ऊपर नहीं जाने दिया, वह मिट्टी में ही रखा। इसी तरह से जो उसमें एंजाइम्स या हार्मोन्स इस सब चीज का जो सिक्रीशन करता है उसका जो श्रावण करता है वह भी हमारे वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो गोबर के खाद की तुलना में हमारा वर्मी कंपोस्ट ज्यादा बढ़िया होता है। अब यदि हम पोषक मान के आधार पर आते हैं तो गोबर के खाद में देखिएगा तो उसमें लगभग 0.5% नाइट्रोजन होता है और अभी ही हमने बताया कि वर्मी कंपोस्ट में 2.25% समृद्ध केचुआ खाद में नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस ही उसमें 0.2% यानी 0.75% के आसपास है, जबकि हमारा जो समृद्ध केचुआ खाद है उसमें 2.5 से लेकर 3% है, पोटास भी वहां सिर्फ 0.5% है, यहां पर लगभग 1% के आसपास है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां पर यदि 0.5% है तो 4 क्विंटल मुझे गोबर का खाद का प्रयोग करना पड़ता था, उसके स्थान पर यहां पर मुझे सिर्फ 1 क्विंटल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान को जब कम मात्रा में प्रयोग करना होगा तो वह उसका प्रयोग कर पाएगा और यदि ज्यादा मात्रा में हम उसको कह दें तो उतना उसके पास उपलब्ध ही नहीं है तो प्रयोग नहीं हो कर पाता है और इसीलिए इसका प्रयोग घटता जा रहा है। तो यह सबसे बड़ा फायदा है।
0: जी सर, सर अब हम बात करते हैं जैव उर्वरक के बारे में, तो जैविक खेती में जैव उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और किस किस जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं?
1: देखिए जैव उर्वरक ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाए, उर्वरक किसके लिए करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करने के लिए करते हैं। तो ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग हो उसको जैव उर्वरक कहते हैं। तो अब इसमें देखिए कि जैव उर्वरक के रूप में जो नाइट्रोजन कौन कौन देगा, तो दलहनी फसल में देता है राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम, राइजोबियम ही समझिए, किसान भाई हमारे

0: ये राइजोबियम के नाम से ही ज्यादा जानते हैं, तो राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसमें दलहनी नहीं है, जिसकी जड़ में गांठ नहीं बन रहा है, उसमें अजोटोबैक्टर या एजोस्पर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी में है। एक है सिम्बियोटिक यानी सहजीवी। तो सिम्बियोटिक में जड़ में गांठ होता है, तो उसका फायदा क्या होता है कि वह जो रहने का मकान है और खाना है, उसने दलहनी फसल ने दे दिया, इसके एवज में इसने नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, तो ये ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स करता है, यानी 36 किलो से लेकर के 600 केजी पर हेक्टेयर या वो कर सकता है, उसका फिक्सेशन कर सकता है, स्थिरीकरण कर सकता है। इसी तरह से दूसरा हो गया आपको जो अजोटोबैक्टर या पीएस इसकी एजोस्पर्म की बात किया, तो उसके जड़ से जो रस निकलते हैं उससे करता है। तीसरी बात कि जहां पर मान लीजिए वह भी बात नहीं है, तो वहां फ्री लिविंग होता है, यानी जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो उसको खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना। यदि खाने की व्यवस्था खुद कर लिया, जैसे नीलहरी शैवाल हरा होता है तो अपना खाना खुद बना लेता है, तो जो खाने की व्यवस्था खुद कर ले रहा है वो नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा फिक्स करेगा, 25 केजी से लेकर के 40 केजी तक वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा। लेकिन जो जैसे ड्रग्सिया है, बजरंगिया है, ये सब खाना नहीं बना सकता है, तो ये बहुत कम मात्रा में करता है। इसी तरह से अजोला है। अजोला जो है यह आपको एक फर्न होता है अजोला नाम का, उसी के बीच में नीलहरी शैवाल रहता है, तो ये काफी नाइट्रोजन आपको फिक्स करता है। तो ये कई तरह के आपके ये हैं। तो ये तो मैंने नाइट्रोजन की बात कहा। इसके अतिरिक्त यदि देखिए तो जो फास्फोरस हमारी मिट्टी में है वो काफी है, लेकिन पौधे उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो फास्फोरस उसका प्रयोग यदि नहीं ये नहीं कर पाते हैं वो जो हमारी मिट्टी में, तो कुछ फास्फोरस घुलनकर जीवाणु आते हैं, पीएसवी या पीएसएम के नाम से लोग कहते हैं, तो ये फास्फोरस घुलनकर जीवाणु जो है वो फास्फोरस को घुलाने का काम करते हैं। इसी तरह से पोटास मोबिलाइजर है, पोटास को घुलाने का काम करेंगे। इसी तरह से जिंक मोबिलाइजर भी आ गया हम मार्केट में, तो जिंक को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखिए तो जैव उर्वरक कई तरह के हैं, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम भी करते हैं, फास्फोरस को घुलाने का भी काम करते हैं, पोटास की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं, जिंक को भी की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं। अब लेकिन सबके प्रयोग का मोटा मोटी तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तरीका क्या अलग है? एक तो बीज उपचार आप करते हैं, तो जब बीज उपचार आप करते हैं, अब मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए राइजोबियम का कोई प्रयोग करता है, तो 50 से 100 ग्राम उसने गुड़ को लेकर के आधा लीटर पानी में उसको घोल लिया, गरम कर लिया, गरम करके फिर ठंडा कर दिया। अब जब ठंडा हो गया तो उसमें 200 ग्राम कल्चर आपने प्रयोग कर दिया, अब प्रयोग करके उसको 10 किलो बीज पर आपने डाल दिया, अब उसको हल्के हाथ आपने मिला दिया जिससे कि वह कल्चर का उसके ऊपर लेप लग जाए, बस यही काम करना है। और लेप लग गया तो छाया में ही उसकी बुआई कर लिया। ये काम आप एजोटोबैक्टर में भी कर सकते हैं, ये काम आप एजोस्पर्म का थोड़ा तरीका अलग होगा, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, एजोटोबैक्टर में भी कर सकते हैं, इवन पीएसवी का भी प्रयोग इस ढंग से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मिट्टी में सीधा प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, कम से कम 3.5 से 4 केजी पर एकड़ की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। हाँ, कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि वह बिचड़ा का प्रयोग उपचार करते हैं, तो बिचड़ा का यदि उपचार करना है तो आप 4 लीटर पानी में 1 केजी कल्चर डाल करके उसी में जो बिचड़ा है उसकी जड़ को भिगा करके 15 मिनट आपने रख दिया, और उसको रख करके उसके बाद आप बाहर निकाल करके तब उसको आप रोपाई कर दिए। लेकिन यदि कोई कंद का प्रयोग करता है, जैसे कंद है, आलू ही है, उसको यदि उपचारित करना चाहता है, तो वहां 15 लीटर पानी में आप 1 केजी कल्चर डालिए, और उसको डाल करके 15 मिनट के लिए उसको डुबा करके छोड़ दिया, फिर छाया में निकाल करके रख दिया, उसके बाद उसकी आपने रोपाई कर दी। तो ये सब तरीके हैं, जो तरीके का प्रयोग करते हैं तो काफी हमारा नाइट्रोजन भी बच जाता है, और हमारी मिट्टी में जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या भी बढ़ती है। और विशेष विस्तार में जानने के लिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय उनके बगल में है, उनके लिए हर समय तैयार है, वो यहाँ आए और जो संबंधित वैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में आकर के उसको विधिवत प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली सीखें, तब जा करके वो ज़्यादा विधिवत उसको कर सकते हैं।
1: जी सर। सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: हमने तो संदेश दे दिया कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। भैया मेरे, अब यह बताओ कि यहाँ बीकानेर से एक ट्रेन चल रही है, यहाँ से पंजाब से बीकानेर के लिए, उसमें इतने कैंसर पेशेंट्स रहते हैं कि उसमें उसका नाम ही लोग कैंसर ट्रेन रख दिया है। तो यदि आप खेती करते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपनी पत्नी को यदि बिना जहर की खेती नई फसल दे सकते हैं, ऐसा अनाज नहीं दे सकते हैं जो बिना जहर वाला है, तो खेती करने से क्या फायदा मेरे भाई? कम से कम

0: मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए बिना जहर की खेती करो। यही मेरा संदेश है कि कम से कम यदि अपने लिए भी बिना जहर का यदि नहीं कर सकते हैं तो खेती में फायदा नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं खेती छोड़ दो, लेकिन हां यह चीज जरूर है कि यदि टाटा बिरला को भी कोई कहता होगा तो विश्वास पर खाता होगा कि यह बिना जहर वाला है, यह जैविक है। लेकिन आपने खुद खेती किया है, आपको मालूम है यह बिना जहर वाला है या नहीं है। यह सौभाग्य टाटा बिरला अंबानी को भी नहीं होगा, जो सौभाग्य आपको है। इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत जरूर करें। कितना खाते होंगे भाई मेरे, छोटा सा परिवार चलता है, पहले की तरह 25-30 आदमी का तो परिवार होता नहीं है, मियां बीवी दो चार बच्चे रहते। यदि आप 10 कट्ठा उपजाऊ जमीन अपने लिए चिन्हित कर लीजिए कि हम अपने लिए बिना जहर का पैदा करेंगे, तो आराम से कितना खाते होंगे, 2-3 क्विंटल चावल खाते होंगे, 3-4 क्विंटल गेहूं खाते होंगे, कुछ क्विंटल 1.5 क्विंटल दलहन तिलहन खाते होंगे, वो 10 कट्ठा जमीन में बहुत अच्छी तरह से उपज हो जाएगा। इसलिए उपजाऊ जमीन अपने लिए 10 कट्ठा चिन्हित करें और जरूर से जरूर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बिना जहर का पैदा कीजिए और उनको खिलाइए। यही मेरा संदेश
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने जैविक खेती के बारे में बताया, उसके फायदों के बारे में बताया, साथ ही पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी आज हमने चर्चा की, तो हमारे किसान भाई बहनों को आज के इस चर्चा से काफी कुछ जानने के लिए, समझने के लिए मिला होगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखिए विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किस प्रकार से परवल की खेती की जाती है और क्या समस्याएं आती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,

0: अन्य सब्जियां सब खत्म जब हो जाती हैं तो उस समय भी मार्केट में आपको जो है परवल मिलता है, और परवल की उपयोगिता ही बहुत ही जबरदस्त है। परवल एक ऐसा फ्रूट है, समझ लीजिए फ्रूट इस वेजिटेबल में आता है ये, कि इसमें जो है एक तो सबसे पहले कि इसमें विटामिन ए बी और सी पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एनर्जी इसमें बहुत कम होती है, जिससे आप शुगर फ्री के शुगर वाले पेशेंट को भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें फैट की मात्रा बिल्कुल कम 0.3% के आसपास होती है, इसलिए जो मोटापा जो है उसको भी कम करता है। ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी जो होती है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं, लो एनर्जी के कारण जो है। तो ये लो एनर्जी कारण जो बहुत सारे रोगों में कभी कभी आप देखते हैं जॉइंटिस सब हो जाता है, तो उसमें भी हम परवल का चोखा या परवल की जो है सब्जी हम रिकमेंड करते हैं कि आप परवल की सब्जी लीजिए, तो ये हल्की होती है। इसके तमाम इसके एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी वेट को आपको रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। तो परवल की आप देखते हैं स्वीट्स भी बनते हैं आजकल, जो परवल की मिठाई बनती है, तो परवल की ये तमाम सारी उपयोगिताएँ हैं। और ऐसी फसल भी है जो आपको 7 से 8 महीने तक फल भी देती है, तो इन सब सारी उपयोगिताओं को देखते हुए परवल का स्कोप ज्यादा बढ़ जाता है, और परवल की खेती हमारे ख्याल से किसान भाइयों के लिए ज्यादा लाभदायक है। इसकी खेती सफलतापूर्वक आप करें, इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं।
1: जी सर, लाभदायक होती है लेकिन कई बार कुछ समस्याएं भी आती है, तो परवल की खेती में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं?
0: हाँ देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। परवल की खेती में देखिए, एक तो होता है सेक्स की प्रॉब्लम उसमें, कि उसमें जो है नर और मादा दोनों जो अलग अलग होते हैं। ये डायोसियस प्लांट होता है, डायोसियस प्लांट मतलब जिसमें एक पौधे पर होगा तो केवल नर ही होगा और दूसरे पर होगा तो केवल मादा ही होगा, और हमेशा फल जो होता है वो मादा पुष्प पे ही आता है, नर पुष्प पे नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसान भाई के खेत में ऐसा भी पौधा दिखाई पड़ता है कि जिसमें केवल फूल तो आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है, तो किसान भाई क्या करते हैं उसको खेत से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, जब नर पौधा नहीं रहेगा तो पोलिनेशन की समस्या हो जाती है, और पोलिनेशन नहीं होगा तो पता चला आपके पौधे में फूल तो आ रहा है लेकिन वो फूल जो है पीला होकर के फिर से सूख जा रहा है। इसका कारण यही है कि वहाँ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये डायोसियस पौधा है, और जब भी लगाना है इसको तो नर और मादा दोनों ले जाके लगाना है, और दोनों को लगाने का एक जो अनुपात होता है वो 9:1 का अनुपात होता है, यानी 9 पौधे अगर मादा आप ले जाते हैं तो 1 पौधे नर आप ज़रूर ले जाइए, इससे उसका रेशियो मेंटेन रहता है और परागण के लिए पौधे को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि इसका जो है बहुत दूर 1.5 किलोमीटर दूर तक इसका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, बट उतना दूर से परागण आएगा और परागित करने में उसको समय लगेगा, फिर जो है नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वहाँ आपकी जो प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि 9:1 का रेशियो आप उसमें रखें। 9:1 रेशियो रखेंगे तो उसका जो है पोलिनेशन अच्छा होगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी और आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरी बड़ी समस्या इसमें ये होती है, एक तो ये आ गई प्लांटिंग रेशियो कि 9:1 में आप प्लांटिंग करिए, इससे आपको नर और मादा का जो है 9 मादा और 1 जो है नर, तो इससे आपके ऊपर। दूसरा ये होता है इसमें कि देखिए, इसमें सीड प्रोपोगेशन हम नहीं करते हैं। कभी कभी ये किसान भाई कहते हैं कि हम बीज से ही कर लें, तो बीज से करने में समस्या ये होती है कि जो आप एक तो पहले बीज इसका ऐसा होता है कि आप जैसे पकने के बाद इसको निकालिएगा 2 मिनट के लिए हवा में छोड़िएगा तो फिर जमेगा ही नहीं, तो उसमें ये होता है कि तुरंत उसका फल पका हुआ निकालिए, तुरंत उसको जमीन में लगाना होता है, एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि इसके बीज को अगर लगाते हैं तो उसमें 50% नर आ जाता है और 50% मादा आ जाती है, और ये नर और मादा का अनुपात जो 50-50% जो हो जाता है लगभग जो है, यह आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि उसमें फ्लावर या फूल नहीं आ जाता है। तो फूल आने के लिए आप साल भर इंतजार करिएगा, साल भर आप खेत को फंसा के रखिएगा, तब जब फूल आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो नर है और ये मादा है, तो आपके खेत की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा चीज ये कि ये लंबा समय लेता है, क्योंकि एक साल भर की बताया हमने कि इसको ये पूरा साल भर चलता रहता है, ये बायनियल मतलब ये जो है पेरेनियल पौधा है, एक बार लगाइएगा तो 3 साल तक इससे काटिएगा, कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो है लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी जो हमको बीज से इसका जो है प्रोपेगेशन नहीं करना है, इसका प्रोपेगेशन हमेशा कटिंग से करना है जो अच्छी फलत देने वाली हो। जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो उपयुक्त मतलब

0: प्रजाति हो उसी को लेना है, अन्यथा आपकी जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और पैदावार घट सकती है।
1: तो सर हमें विस्तार से बताइए कि प्रवर्धन कैसे करें।
0: हाँ, इसके प्रवर्धन के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमने बता दिया कि एक जो है 9:1 रेशियो में आपको नर और मादा लेना है। अब नर और मादा में अब क्या लेना है, एक तो इससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, सीड से प्रोपगेशन नहीं करते हैं। तो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो इसमें हम उसकी वाइन लेते हैं, और वाइन कैसी होगी, एकदम मेच्योर वाइन हो जो साल भर पुरानी हो गई हो। ऐसा नहीं कि टेंडर वाइन लीजिएगा, टेंडर वाइन लीजिएगा तो वो जो है सूख जाएगा। तो हमेशा आपको मेच्योर, जो मेच्योर वाइन होती है उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा जब मेच्योर वाइन हो जाती है जनरली जो जड़ से निकलती है, देखिए जब खूब मेच्योर हो जाती है तो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, हल्की सी व्हाइटिश हो जाती है, जो ग्रीनिश रहती है उसका रूप बदल के हल्का सा लाइट व्हाइटिश कलर में आ जाता है, तो समझिए कि वाइन पूरी तरह से मेच्योर हो गई है। तो सबसे तो पहले कि आपको 1 ईयर ओल्ड मेच्योर वाइन सेलेक्ट करना है। दूसरी बात, उस वाइन को अगर काट लीजिए, काटने के बाद उसको कितना लंबा रखेंगे, तो कम से कम जो है उसको 50 टू 60 सेंटीमीटर उसको लंबा रखिए। और उसको क्या करिएगा, उसको अंग्रेजी का 8 जो होता है उसके आकार में आप उसको मोल्ड कर लीजिए, 8 के आकार का बना लीजिए, और दोनों सिराओं को फिर मोड़ दीजिए, 8 के आकार के जो दोनों लास्ट की सिराएं हैं उसको आपस में मोड़ दीजिए, और बीच में उसे मिट्टी डाल करके जो है बीच में मिट्टी से उसको एक गड्ढा खोद करके, गड्ढा खोदने के लिए एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप इसका कल्टीवेशन करें तो सॉयल आपकी एकदम सैंडी लोम सॉयल हो, जिसमें बालू की मात्रा बढ़िया हो, उसमें इसकी उपज जो है ज्यादा अच्छी होगी। कड़ी मिट्टी लेंगे तो उसमें इसकी उपज थोड़ी कम हो जाएगी, और उसमें अगर बालू कड़ी मिट्टी है या लोमी मिट्टी है तो इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि आपको जो उस मिट्टी में जो है बालू, गंगा बालू अगर मिलता है तो गंगा बालू और आपका जो है बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, थोड़ा सा फ्यूराडान मिला करके उसको बढ़िया से उसका पिट बना लें, फिर उस पिट में लगाएंगे, तो वो जो है आप जो है 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा जो वाइन लिए थे उसको 8 के आकार में बना लिया, और उसके दोनों को वाइन्स को आप ऊपर ले लेते हैं छोर को जो है, और साइड से जो है मिट्टी में दबा करके उसको पूरी तरह से उसको दबा देते हैं, हल्का हल्का सा वो दिखाई पड़ता है जो सूर्य की रोशनी उसको मिलते रहे, हल्का सा ऊपर से दिखाई पड़ता है, उसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दें। लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिट्टी में लगाते हैं तो उसके साथ कोई मरोवत मत करिए, अगर उसमें मान लीजिए आपने प्रेस नहीं किया है, बढ़िया से दबाया नहीं है, तो होता क्या है कभी कभी जब आप पानी देते हैं तो उसमें होल बन जाता है, तो जब होल बन जाएगा तो वहां से हवा चला जाएगा, और हवा जाएगा तो उसके सूखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, पौधा लगेगा। आप कहेंगे कि हमने पौधा लाया था स्वस्थ लगाया लेकिन चला नहीं, तो इससे देखना है लगाते समय उसकी वाइन्स को खूब बढ़िया मिट्टी से दबा दिए, ताकि मिट्टी का संपर्क उससे खूब अच्छी तरह से हो जाए और उसका जो नमी बराबर मिलती रहे। तो ये करना, लगाने के बाद आप उस पर मल्च डाल दीजिए, मल्च डालने के बाद उसको जो हल्की सी सुबह शाम सिंचाई करते रहिए। तो ये तो इससे हम प्रोपेगेशन करते हैं वाइन से, सीड से हम नहीं करते, ये सब पहले बता दिया था। तो इसका प्रोपेगेशन हम वाइन से ही करते हैं, वाइन 1 ईयर ओल्ड वाइन्स लेते हैं, मेच्योर वाइन लेते हैं, 50 से 60 सेंटीमीटर लगते हैं, जिसमें 7 से 8 कम से कम नोड हो, इसको ध्यान में रखना है, कि इसलिए कि नोड से ही जो है जड़ें निकलती हैं, तो जब नोट्स नहीं रहेगा तो जड़ें नहीं निकलेंगी। अगर एक नोट्स लगाइएगा तो एक नोट्स मान लीजिए वीक हो गए या खत्म हो गए तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए 6 से 7 उसमें नोट रखिए, जिससे कोई भी नोट्स उसमें चलेगी, रूट्स निकल जाएगी तो पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दूसरी चीज़ ये थी कि हमने बताई, तो ये बता दिया वाइन से आपको लगाना है तो आप अक्टूबर में लगाइए, अक्टूबर वो भी 15 अक्टूबर के आसपास लगाए जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर स्प्राउट नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने डारमेंट रहती है, अक्टूबर लास्ट अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने डारमेंट रहती है, इसमें आप लगाएंगे तो नहीं चलेगा। दूसरा इसका तरीका एक और है, मान लीजिए आपके पास जो है सैपलिंग, दूसरा तरीका है सैपलिंग तैयार करना, आप कुछ नहीं है मान लीजिए आपकी वाइन खत्म हो रही है तो आप क्या करिएगा, आप अक्टूबर या सितंबर या जनवरी सितंबर या अगस्त कभी भी जो है आप उसकी सैपलिंग तैयार कर लीजिए। सैपलिंग तैयार करने के लिए 2 तरीके हुए, एक तो आप पोली बैग ले लीजिए, पोली बैग में 2 से 3 नोड लेकर के उसको जो है अंदर जो है पोली बैग मिट्टी भरे रहते हैं उसमें आप उसको दबा दीजिए, तो उससे वो स्प्राउट कर जाएगा, स्प्राउट कर जाएगा तो वो चलेगा। उस आप जो है सैपलिंग को आप रखे रहिए, उसके देख रेख करते रहिए। जैसे मान लीजिए आप नहीं लगा पाए, आपका खेत खाली नहीं है, तो आप फरवरी में आपका खेत खाली हो तो आप उसको फरवरी में सीधे उस सैपलिंग को खेत में ले जाइए और उसमें लगा दीजिए, वो बहुत बढ़िया चलेगा। उसमें स्प्राउटिंग

0: बहुत फास्ट होगी और बहुत फास्ट ग्रोथ कवर करेगा, आपका फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप जो है सैपलिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें 2 से 3 नोट जरूर रखिए, एक नोट पे मत लगाइए उसको, और 2 से 3 नोट रहेगा तो उसमें रूटिंग ज्यादा अच्छी होगी। तो सैपलिंग से आप जो है फरवरी में भी आप इसको लगा सकते हैं और फ्रूटिंग ले सकते हैं।
1: जी सर, तो अब आप हमें ये बताइए कि प्रबंधन का सही समय क्या है।
0: हाँ देखिए, इसका जो है जब ये हम इसको जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो बहुत अच्छा महीना है, इसमें स्प्राउटिंग बहुत जबरदस्त होती है। अगर काट करके बाइन वैसे भी लगा दीजिएगा, उसको दबा दीजिएगा तो चल जाएगी, लेकिन इस समय चूंकि परवल जो है एकदम अपने पीक फ्रूटिंग स्टेज पे होता है, इसलिए कोई भी किसान अपने खेत से वाइन आपको नहीं देगा। लेकिन ये आपका मार्च से स्टार्ट होकर के और अक्टूबर तक फ्रूटिंग देता है, देखिए 7 से 8 महीने फल देता है। तो जब सितंबर के लास्ट तक जो है समझिए इसकी फ्रूटिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वीक हो जाती है, इकोनॉमिक नहीं रहती है। अक्टूबर में इसको लगाने का समय जो है सबसे बढ़िया क्या होता है कि अक्टूबर में आप जो है जो वाइन्स जैसे हमने बताया, लगाने की विधि जैसे हमने बताई है, आप जो इसको खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार करके इसमें 2 तरीके से, एक तो आप पंडाल विधि से भी आप लगा सकते हैं, मचान विधि जिसको कहते हैं, पंडाल बना लीजिए, और या तो एक ऐसे पोल गाड़ करके सीधा 2-2 मीटर की दूरी पे आप पोल गाड़ करके उस पर रस्सी तान करके वैसे भी लगा सकते हैं, या ओपन फील्ड कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं। अब ये लगाने के लिए मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2-2 मीटर दूरी पर लगाइएगा, तो 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइएगा। अगर फील्ड में लगाना है तो आप 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइए बेहिचक, इसलिए कि इसकी वाइन जब फैलती है तो जगह जगह पे अपनी रूट्स को जमीन में पकड़ती जाती है, तो जो एरिया खाली रहता है उसको आसानी से वो कवर कर लेता है। लेकिन जब आप जो है पोल पे लगाइएगा तो पोल पे हमेशा जो है 2 मीटर पोल से पोल की दूरी होगी और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होगी। तो इन दोनों केसेस में अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं तो कम से कम आपको जो है 5,000 कटिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पोल पे लगाते हैं तो 5,000 कटिंग जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं, इसे ओपन में 2x2 पे लगाते हैं तो लगभग 2,500 आपके कटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये देख लेना हमको कि किस विधि से आप लगा रहे हैं उसमें कितनी हमको कटिंग मिल रही है, कितनी अगर नहीं भी मिली है, कम भी मिली है जो है, तो आप फील्ड में लगा दीजिए, आप उससे अगले साल उसको प्रोपगेट कर लीजिए, उससे आप वाइन बना लीजिए अगर अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है तो।
1: जी सर, अब बात करते हैं खाद और सिंचाई की। तो
0: हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है जितनी भी कुकुरबिटेसी सब्जी होती है, लतेर वाली सब्जियां होती है, एक जनरल फंडामेंटल बता दें कि इन सब्जियों में जो है नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में नहीं देते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा देंगे, और लेकिन इसके देने से पहले हम 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद भी इसमें देंगे। उसके अतिरिक्त ये होगा आपका 100-60-60 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा होगी। इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन, इसलिए हम जनरली कुकुरबिट्स में 80 के आसपास चलती है, लेकिन इसमें हमने 100 इसलिए कहा कि ये चूंकि ये लंबे अवधि की क्रॉप है, हमने बताया कि एक बार आप मार्च में लगाते हैं या अक्टूबर में लगाते हैं तो चलती है, फिर अक्टूबर तक चलती है, तो ये लंबी अवधि की क्रॉप है, इसलिए मैं थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो 100 किलोग्राम है। इससे ज़्यादा जहाँ भी नाइट्रोजन की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो समझिए उसमें नर पुष्प की संख्या ज़्यादा आती है। हालांकि नर इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि नर अलग ही होता है और मादा अलग होता है, लेकिन जनरल कुकुरबिट्स में प्रॉब्लम आती है। तो आप खाद जो है 20 से 25 टन FYM, 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस या 60 kg पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें देंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास संभव है तो इसमें आप जो है नीम की खली ये थोड़ा सा जो है नहीं ज़्यादा मिलता है तो 50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास जो है प्रति प्लांट नीम की खली से मिला दें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। खास करके जो है परवल में निमेटोड की एक समस्या आती है जो लगातार 2-3 दिन तक आप छोड़ दें, 2-3 साल तक छोड़ देते हैं तो वो सब समस्याओं से समाधान इसका होता रहेगा।
1: सर अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं?
0: अब देखिए इसमें वैसे तो बिहार में जो है इसकी, बिहार वेस्ट बंगाल ये सब तमाम तरह की जो है प्रजातियां हम उगाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है उपजाऊ प्रजातियां हैं, जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, उसमें जैसे राजेंद्र परवल 1 अपने यहाँ बहुत ज़्यादा, राजेंद्र परवल है,

0: प्रवल टू है, अभी नई वैरायटी अभी गवर्नमेंट से रिलीज हुई अपने यहाँ की, जो है सबौर प्रवलन है, जो सफ़ेद रंग की होती है, उसमें धारी नहीं होता है, उसमें सीड्स कम होते हैं, मिठाई के लिए भी अच्छी है और जो है सब्जी के लिए भी अच्छी है। तो एक सबौर प्रवल वन है, दूसरा स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण रेखा है। तो ये सब जो है प्रजातियां, जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, इन सब उन्नतशील प्रजातियों को लेकर के आप इसका कटिंग प्राप्त कर लें और इनको लगा करके इसकी आप खेती करें। ये ज्यादा उपजाऊ हैं और ज्यादा आपको उपज देंगी, आपके लिए लाभदायक होंगे।
1: सर, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कीट और व्याधि कौन कौन से होते हैं परवल में और कैसे बचें?
0: देखिए, जनरल जो है एक जो है शुरू शुरू में जो सबसे कीट लगता है, जिसको हम बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल। ये रेड, ये तो सारे कुकुरबिट्स का एक पेस्ट हम इसको बोलते हैं। तो ये रेड पम्पकिन बीटल होता है, ये जो जैसे, हालांकि इसमें तो कॉटिलीडर नहीं निकलता है, इससे निकलता है स्प्राउटिंग होती है, तने से स्प्राउटिंग होती है इसके, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुकुरबिट्स में एक प्रॉब्लम होती है, रेड पम्पकिन बीटल आता है जो कॉटिलीडर निकलती है, उसी को खा जाता है, पौधा मर जाता है। लेकिन इस खेत में चूंकि हमारा चलता है स्टेम से निकलता है, इसलिए इसमें उसकी इनिशियल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम इसकी नहीं रहती। इसकी प्रॉब्लम फ्रूटिंग स्टेज में आकर के, ये फ्रूट फ्लाई की समस्या सबसे जबरदस्त रहती है। ये फ्रूट फ्लाई क्या करती है, कभी कभी किसान भाई के प्रश्न आते हैं कि भाई हमारे फल तो लग रहा है लेकिन वो सड़ जा रहा है, पक जा रहा है। तो उसकी समस्या में हमने बताया कि जो फ्रूट फ्लाई है, ये भी एक कारण है। एक तो कारण ये है कि हमने बताया कि आपने जो प्लांटिंग रेशियो अगर मेंटेन नहीं किया है, नर और मादा का अनुपात अगर मेंटेन नहीं किया है, तो एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं रहा, वो भी एक समस्या है। और दूसरी समस्या, जैसे ये फ्लावर आपका फ्रूट जब लगता है उसमें, ये जो है फ्रूट फ्लाई है उसमें डंक मार देता है और फिर उसमें जो है सड़न पैदा होने लगती है, पीला पड़ जाता है। तो ये दोनों समस्या है। इसके निदान के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है फिरामोन ट्रैप, एक फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप ले लीजिए, 5-6 ट्रैप ले लीजिए, 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। और उसको जो है चारों कोने पे बीच में लगा दीजिए। वो क्या करता है कि जितने भी जो है ये जो है मेल जितने भी आपका जो है फ्रूट फ्लाइज है, उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है और उस फिरामोन ट्रैप में ल्यूर जो होता है वो जो है पॉइजनस होता है, ये जैसे उसमें मेल जाता है उसी में वो मर जाता है। तो इससे होता क्या, उसकी प्रजनन जो है रुक जाती है और फिर बाद में वो फैल नहीं पाता है। तो एक तो फ्रूट फ्लाई की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या उसमें फ्रूट फ्लाई की आती है, दूसरा कभी कभी ये स्टेम ब्लाइट की भी समस्या आती है, स्टेम ब्लाइट कर स्टेम रॉट की जो है, कभी कभी उसका तना भी सड़ने लगता है। रोग के बारे में अगर कहें तो कभी कभी उसके गमोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तने निकल जब पुराने हो जाते हैं तो वहां से गम जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में किसान भाई जो है कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लें, कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% यानी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उस पर 2-3 छिड़काव कर दें, उसका जो है कंट्रोल हो जाएगा, वो पौधा आपका अच्छी तरह से चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तीसरी इसमें जो है निमेटोड की है, ये हमने बताया कि ये पेरेनियल क्रॉप है, तो पेरेनियल क्रॉप है तो चूंकि 1 साल लगाते हैं और ये ऐसी फसल है कि 1 साल लगाते हैं और इसको 3 साल तक काटते हैं। देखिए बड़ी अच्छी चीज है कि 1 साल लगाइए 3 साल काटिए, लेकिन 3 साल का और पहले साल की तुलना में दूसरे और तीसरे साल फलत ज्यादा अच्छी आती है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि जो है अगर पहले साल हम इसको लगाते हैं तो दूसरी साल उसका मेंटेनेंस करें, और दूसरी साल से जनरली जब 2 साल से ज्यादा होता है तो निमेटोड की समस्या शुरू हो जाती है। निमेटोड क्या होता है, उसके अंदर गांठ बना लेता है, उसके जड़ों में गांठ बना लेता है और पौधे का जो सिस्टम होता है जो उस पर जिससे पानी ऊपर जाता है वो पूरा ब्लॉक कर देता है, जिससे खनिज लौड़ ऊपर जाता है सब उसको ब्लॉक कर देगा तो पौधे को मिलेगा नहीं। तो अंत में क्या होता है, पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो इस तरह की समस्या जब आती है तो ये निमेट, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो नीम वाला जो है, हमने बताया कि नीम की खली उसका आप प्रयोग करते रहें, फ्यूराडान भी समय समय पे जो है पर पौधे आप 10 से 15 ग्राम या 2 से 3 ग्राम आप जो है देते रहिए समय समय पे, ताकि उसमें इस तरह की समस्या ना आए। और उसके मिट्टी को हमेशा उसके थोड़ा सा कभी जाँच करते भी रहिए कि इसमें निमेटोज की समस्या ना ही आ रही है। तीसरा है उसको रोटेशन भी करते रहे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए तो 3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक वहीं छोड़े रह रहे हैं, आप 3 साल के बाद फील्ड को बदल दीजिए, क्रॉप रोटेशन कर लीजिए। इसे करने से क्या होता है कि वो निमेटोड अपना घर नहीं बना पाता है और उसमें जो निमेटोड की समस्या नहीं रहती है, तो क्रॉप रोटेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी।

0: ये भी हमको देख लेना है। तो ये सब थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो इसमें जो आती हैं, बाकी तो ये जो है पेरेनियल क्रॉप है, चलती रहती है।
1: सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो परवल की खेती करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए परवल की खेती के लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा, पहली चीज तो ये है कि ये पेरेनियल क्रॉप है और एक बार जब लगाते हैं तो 8 से 9 महीने तक ये फसल देती है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहूंगा कि जब भी आप इसको लगाइए तो इसमें सेक्स रेशियो, इसके प्लांटिंग रेशियो जो है जरूर मेंटेन रखिए, जो 9:1 में होगा। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जब भी आप जो है इसको लगाते हैं तो 3 साल के बाद एक खेत से दूसरे खेत में इसको ट्रांसफर जरूर कर दें, और संभव है तो 100 ग्राम जो है नीम की खली उसमें जरूर दिया करें। इस तरह से अगर आप तकनीकी अपनाते हैं तो आपको जो है इससे लगभग जो है 250-300 के आसपास आपको उपज पैदावार मिल जाएगी, जो आपको 8 महीने तक देती है और इमरजेंसी क्रॉप के रूप में भी आपको ये फ्रूट देती है, फल देती है, सब्जी देती है, तो इससे आप जो ज्यादा से ज्यादा आय कमा सकते हैं।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, अगर आप परवल की खेती करते हैं तो जिस तरीके से सर ने बताया उस तरीके से खेती कीजिए और कुछ बातों का ध्यान रखिए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
9: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
11: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
12: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
13: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
12: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?

0: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अर्का निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
5: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: and imagination. There is a table given with 5 columns and 3 rows. The first column is CG. The second column is C, meaning competency. Third column is learning outcomes. Fourth column is teacher. And fifth column is self. Column number 1, CG, 2. Column number 2, C, competency, 2.2. Learning outcomes. Ability to use music to tell a personal story. Next row, CG 3, competency 3.2. Learning outcomes. Reflects on a musical performance or a visit to a musical institution. Next row, CG 4, competency 4.1. Engages with music in contemporary genres and by contemporary artists. Column number 4, teacher, and column number 5, self, are blank and to be filled up by yourself. Teacher's comments and students' observations, fill in the blanks. Chapter number 8 ends here.
1: Kriti, you were just listening to this audiobook, Textbook of Arts for Grade 8. Narration, Richa Jain. Sound recordist, Muhammad Faizan Khan. Assistance in production, Mukul Singh. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIETNCERT, New Delhi.
2: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बज गई भैया देश की बीन टीबी के कारण को जानो खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो टीबी रोग हवा में फैले रखो अपना औरों का ध्यान घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे रोग मुक्त हम हो जाएंगे खांसी खोखो खांसी बलगम में है भरे कीटाणु रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो रहे न टीबी नाम मिटा दो खांसी खोखो खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए
3: खुद भी बचे देश भी बचाए
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
6: So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
8: सुनिए क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है
8: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है माने बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं तो बैठे क्यों हो अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर
10: हर घर सूर्य घर
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें
12: आपकी सेहत की बातें
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें
12: युवाओं के रोजगार करियर की बातें
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर
12: वो कहाँ पर
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर
12: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक
11: उन्नत कृषि नमस्कार आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और ये है आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन जी हाँ आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन और साथ ही हर रोज़ की तरह हम एक और खास विषय लेकर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हाजिर हैं वो है हमारा धान में समेकित कीट प्रबंधन और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच है डॉक्टर किरण कुमारी मैम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सपोर्ट से। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि धान जो है

0: अगर खाद्यान्न की बात करें उसमें प्रमुख फसल है। हमारे बिहार की बात करें तो लोग जो हैं चावल बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। तो जहाँ तक बात होती है खेती की, धान की खेती उसी अनुसार करना होता है जहाँ पर मांग कितना है, जितना मांग हो उतना ही खेती हो। तो हमारे बिहार में इसका मांग ज़्यादा है, इसलिए इसकी खेती भी बहुत मात्रा में की जाती है। और जब खेती करते हैं हमारे किसान भाई तो ज़रूरी होता है कि हम अपने फसल को कीट पतंगों से दूर रखें, क्योंकि ये हमारे फसलों को हानि पहुँचाते हैं जिससे कि हमारी मेहनत बर्बाद होती है और हमें जितना आय जितना मुनाफा मिलना चाहिए बाज़ार में से ले जाकर वो नहीं मिल पाता है। तो आज इसी के प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो जिस प्रकार हमारा विषय है तो आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैम से कि धान में लगने वाले हानिकारक कीट कौन कौन से हैं।
1: जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि जो कीड़े हैं वो सभी फसलों पर को हानि पहुंचाते हैं और सभी फसलों की तरह धान फसल पर भी कीड़ों का प्रकोप होता है। और जो जलवायु धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है वही कीड़ों के बढ़ने में भी सहायक होता है। और कीड़ों की संख्या जुलाई महीने के बाद से ही बढ़ना शुरू हो जाती है और सितंबर अक्टूबर महीने में इनकी संख्या बहुत चरम पर पहुंच जाती है और फिर नवंबर महीने के बाद से धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगती है। धान के प्रमुख जो कीड़े हैं जो धान फसल को हानि पहुंचाते हैं वे हैं तना छेदक, केसवर्म, गंधी कीट, पत्ती लपेटक, हरा एवं भूरा मधुआ, सैनिक कीट एवं ग्रास हॉपर।
0: जी, तो मैम तना छेदक कीट की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये किस प्रकार हानि पहुंचाता है धान की फसल को और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं?
1: जी, तना छेदक कीट का पिल्लू गंदापन लिए हुए उजला रंग का होता है और या पीला हरा भी होता है। तितली जो इसकी वयस्क होती है वो तितली होती है और उसका अगला पंख नारंगी पीला रंग का होता है। उन पंखों पर एक एक काला धब्बा होता है। इस कीट के पिल्लू धान के पौधों में छेद कर उसकी गाभा को अंदर से काट देते हैं जिसे पौधे का गाभा सूख जाता है एवं खींचने से आसानी से खींचा जाता है जिसे डेड हर्ट कहते हैं या मृत केंद्र भी कहते हैं। बालियां निकलने के समय भी तना छेदक कीट का प्रकोप होता है और जब बालियों की अवस्था में इस कीट का प्रकोप होता है तो बालियां केवल सफ़ेद नज़र आती हैं और दाने खखड़ी हो जाती हैं। इस कीट से बचाव हेतु सबसे पहले तो बीजोपचार करना चाहिए और बीजोपचार के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 FS का 5 ग्राम या क्लोरपाइरीफॉस 20 EC का 4 ml प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। साथ ही खेत की सफाई, खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए। जड़ की सफाई करने से भी कीट की संख्या में कमी हो जाती है। फेरोमोन ट्रैप 10 या 12 ट्रैप प्रति हेक्टर की दर से लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप जिसे प्रकाश प्रपंच भी कहते हैं इसका भी प्रयोग करना चाहिए। इन ट्रैपों पर यानी फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप पर वयस्क मौत जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, इसमें फंसकर वो मर जाते हैं।
0: जी,
1: रोपनी के पहले पत्तियों के ऊपरी छोर को काटकर खेतों में रोपनी करना चाहिए जिससे तना छेदक के कीट के जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
0: जी,
1: ट्राइकोग्रामा के 50,000 अंडे प्रति हेक्टर की दर से 3 से 4 बार धान के पत्तियों पर प्रयोग करना चाहिए। कीटों का अधिक प्रकोप होने पर कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G या फिप्रोनिल 0.3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए।
0: तो ये बातें हो गई हैं श्रोताओं हमारे किसान भाइयों तना छेदक कीट की कि आप कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप की बात की मैम ने और इसके साथ ही कैसे आपको इसको पहचानना है, कैसे ये हानि पहुंचाता है इसके बारे में भी बात की मैम ने। मैम अब आते हैं केशवर्म, जो कि आपने बताया कि मुख्य ये कीट हैं जो धान की फसल में लगते हैं, तो केशवर्म कीट कैसे हानि पहुँचाता है और इसको हम कैसे पहचान पाएंगे ये भी बता दें और साथ ही साथ इसका प्रबंधन हम कैसे करें।
1: जी केसवर्म

0: कीट, इसे बुढ़िया कीट भी कहा जाता है, बहुत से लोग इसे बुढ़िया कीट भी कहते हैं और भनभनिया कीट के भी नाम से जाना जाता है। ये पानी लगे खेतों में ज़्यादा लगते हैं और पत्तियों की हरियाली को खा जाते हैं। कभी कभी पत्तियों को लपेट कर नली जैसा बना लेते हैं, उसी के अंदर उसकी जो क्लोरोफिल हरियाली होती है उसको खाते रहते हैं और ज़्यादा प्रकोप होने पर खेत बिल्कुल उजला दिखने लगता है, चूँकि ये हरियाली खा जाते हैं इसलिए उजलापन जैसा हो जाता है। इस कीट से बचाव के लिए एक बड़ी रस्सी लेकर उसे किरासन तेल में डुबा देना चाहिए, फिर उसे दोनों तरफ से पकड़कर धान के खेत में एक तरफ से दूसरे तरफ तक पौधे से सटाकर चलाना चाहिए, जिससे केसवर्म कीट खेत के पानी में गिर जाते हैं, और फिर पानी को खोल कर बहा देना चाहिए जिससे कीट वो खेत से बाहर आ जाते हैं।
1: जी, तो केशवर्म कीट के बारे में आपने जाना, और अब बात करते हैं मधुआ कीट और पत्र लपेटक कीटों के बारे में मैम, कि ये कैसे हानि पहुंचाते हैं और साथ ही इसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
0: जी, मधुआ कीट दो तरह का होता है, एक तो हरा मधुआ और दूसरा भूरा मधुआ। हरा मधुआ पौधों का रस चूसते हैं जिससे पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, और जब इनका अधिक आक्रमण हो जाता है तो इनके पौधों से रस चूसने के कारण पौधे सूख जाते हैं। भूरा मधुआ पौधों के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं, ये पौधों की धड़ से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां झुलसी नजर आती हैं और दूर से जला जैसा दिखता है, और जिसके कारण इसे हॉपर बर्न भी कहते हैं। मधुआ कीट के प्रबंधन हेतु, यानी दोनों हरा मधुआ एवं भूरा मधुआ दोनों के प्रबंधन हेतु लाइट ट्रैप लगाना चाहिए, और रासायनिक कीटनाशी में इमीडा क्लोप्रिट 17.8 SL दवा का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में, या कोई भी नीम आधारित दवा का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पत्र लपेटक कीट पिल्लू, इसके पीले हरे रंग के होते हैं, ये कीड़े पत्तियों के किनारे को रेशम जैसे धागों से लपेट कर अंदर ही खाते रहते हैं, और जब इनकी अधिक प्रकोप होता है तो पौधे ठूंठ और बीमार जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि सभी पौधों को ये खा जाते हैं। इस कीट से प्रभावित खेत के फसल की ऊपरी पत्तियों की कटाई कर देना चाहिए ताकि इसका प्रभाव फसलों पर कम हो जाता है, क्योंकि ऊपरी छोर पर ही ये ज़्यादा खाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट कीटनाशी का 1.5 ml प्रति लीटर या प्रोफेनोफॉस 50 cc का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी, तो मधुआ कीट के बारे में आपने जाना, साथ ही पत्र लपेटक कीट के बारे में, और अंत में कुछ और कीट बाकी हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं मैम। जैसे कि गंदी बग के बारे में आपने कहा था, सैनिक कीट के बारे में आपने कहा था, और ग्रास हॉपर, ये भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं धान की फसल को। तो सबसे पहले ये बताइए कि हम अपने किसान भाई को ये बताना चाहते हैं कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, और साथ ही हानि और प्रबंधन के बारे में जानकारी।
0: जी, अभी तक तो जो भी कीट मैंने बताया, तना छेदक, केशवर्म, मधुआ कीट, पत्र लपेटक, ये सब ज़्यादातर पौधों के पत्तियों को खाते हैं। और अगला है गंधी कीट। गंधी कीट ये जो है, जब बाली लग जाती है तो दुग्धावस्था में ही ये बालियों से उसमें जो दूध बनते हैं उस दूध को चूसते हैं, जिससे दाने खकड़ी हो जाते हैं। और गंधी कीट जो है वो हरे एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं, और जहाँ पर ये दानों में रस चूसते हैं वहाँ पर भूरा दाग दिखाई पड़ता है। इसे हम वो पहचानते हैं कि गंधी कीट का आक्रमण हो गया है, और इससे जो है विशेष प्रकार का दुर्गंध तो निकलता ही है, वो भी इसका यह पहचान है। और इस कीट से प्रबंधन हेतु नीम बीज चूर्ण का जो है उसको छिड़काव करना चाहिए, जिससे गंधी कीट या का उसका जो है प्रबंधन हो जाता है, और बहुत प्रकोप की बहुत अधिकता में इमीडा क्लोपेट 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी।
0: और

सैनिक कीट है। सैनिक कीट भी जब पौधे बड़े हो जाते हैं, बाली लग जाते हैं, तब ये जो बालियों पे ऊपर चढ़कर इनको काट गिराते हैं। और सैनिक कीट जो है इनको आर्मी वर्म भी कहा जाता है। इस कीट के जो पिल्लू होते हैं वो गहरे रंग के होते हैं, और वयस्क पतंगा जो होता है मौत, जिसे मौत भी कहते हैं, वो भूरे रंग के होते हैं।

0: कीटनाशी है उसका 2 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ग्रास हॉपर जो है वो हरे पीले रंग के होते हैं, 40 से 50 मिलीमीटर लंबा होता है। इसका प्रकोप अगस्त से अक्टूबर महीने में देखा जाता है। ये पत्तियों को किनारे से काट कर खाते हैं। ग्रास हॉपर के प्रबंधन हेतु खेत में पानी भर देने से इसके अंडे खत्म हो जाते हैं। मेढ़ की खुदाई कर देने से भी इसके अंडे जो है नष्ट हो जाते हैं। और जो नीम बीज चूर्ण है उसका 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना चाहिए। टीन पर कोल्टार लगाकर भी खेतों में चलने से ग्रास होपर टीन पर वो जो कोल्टार लगा रहता है उस पर आकर सड़ जाते हैं, जिससे वो कुछ तो मतलब सटकर मर भी जाते हैं और जिससे कि इनकी संख्या भी कम हो जाती है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने जो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं जो धान की फसल में लगते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की कि आप कैसे उन्हें पहचान सकते हैं, साथ ही आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ध्यान रखिए कि आप फसलों से अधिक मुनाफा चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी फसलों की देखभाल करें और उस समय जो कीट लग रहे हैं आप उन्हें पहचानें और उसका तुरंत से तुरंत प्रबंधन करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
4: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
5: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
5: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
7: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
10: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा

0: अजोला की खेती आप कैसे करें।
1: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त।
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर।
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की,
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
5: आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें।
6: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो

0: क्लिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू

0: करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और चीज जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
2: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
0: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
2: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में।
1: आज हम लोग एक ऐसे पाठ पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है ध्वनि, और इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बच्चों, पता नहीं आपने सुना जरूर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। आज मेरे साथ एक बच्ची बैठी है जिसका नाम है रेणुका। रेणुका, आपने सुना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में?
2: हाँ जी, सुना है।
1: सुना है, और क्या सुना है? उनका कुछ और भी पढ़ा है, इसके पहले भी कुछ पढ़ा है?
2: हाँ जी, उन्होंने सरस्वती वंदना लिखी है।
1: कौन सी सरस्वती वंदना?
2: वीणा
1: बरदे, वीणा वादिनी बरदे। अच्छा, ये स्कूल में आज भी गाया जाता है?
2: हाँ जी, गाया जाता है,
1: खूब गाया जाता है। तो वरदे वीणा वादिनी बरदे आप लोग सुनते रहे होंगे सरस्वती पूजा के दिन, सरस्वती वंदना के रूप में इसको बाकायदा आप गाते भी रहे होंगे। लेकिन नहीं याद होगा कि ये निराला जी की लिखी हुई है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बस इतना ही जान लो कि एक छायावाद इसको काल का नाम बोला जाता है, युग है जिसमें चार बड़े मशहूर कवि हुए हैं, उस युग के कवि हैं। उनमें पहला नाम अगर मैं लूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चार महत्वपूर्ण कवि उसमें गिने जाते हैं। और भी लोग हैं लेकिन इन चार को स्तंभ कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ऋतुएं बहुत प्रिय थी, बहुत से ऋतुओं पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उन्होंने वसंत पर भी लिखी है, उन्होंने वर्षा ऋतु पर भी बहुत सी लिखी है। वर्षा पर तो वो नाम ही लेते हैं, बादल राग। बादल राग इंटरनेट से खोज के पढ़ लीजिएगा, बादल राग। वर्षा पर उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, एक नहीं बहुत सी, और उन बहुत सी कविताओं में जिक्र आता है बादल राग का ज्यादा, लेकिन वसंत ऋतु भी उन्हें उतना ही प्रिय है। ध्वनि कविता वसंत ऋतु से संबंधित है, तो ऋतुओं को बहुत पसंद करते थे और ऋतुओं पर कविताएं लिखते थे, तो इसको ऋतु वंदना भी कह सकते हो, जैसे सरस्वती वंदना वैसे ऋतु वंदना। NCERT ने इस पर एक कार्यक्रम पहले बनाया हुआ है जिसका नाम है ध्वनि और काव्य मंजरी नाम से, तो उसका एक अंश जो गाया है वह भी आप सुन लीजिएगा।

और उसको सुनने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं थोड़ी सी कविता को पढ़ने के ढंग पर चर्चा करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि कविता जब तक हम लोग ठीक से पढ़े नहीं तब तक हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। तो उसको पढ़ करके देखते हैं, और जब मैं पढ़ूं तो रेणुका यह मत सोचना कि यही सबसे आदर्श है, इससे अलग भी तरीके हो सकते हैं, और वह भी उतना ही अच्छे ढंग से कन्वे हो रहा होगा, उतनी अच्छे ढंग से अर्थ हम शायद संप्रेषित कर पा रहे होंगे। जैसे मैं एक बार कोशिश करती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल

0: ऐसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का, अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता को पढ़ते ही आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है?
1: कि कबीर जी ने ऐसा क्यों कहा कि अभी ना होगा उनका अंत,
0: अभी नहीं अंत अंत होगा, क्यों कहा है? आपको क्या लगता है, आप अपने बारे में सोचते हो तो क्या लगता है कि आपका जो अभी अंत नहीं होगा तो क्यों नहीं अंत होगा?
1: क्योंकि जिस इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा हो, नया जोश या उमंग हो, उसका अंत अभी नहीं हो सकता, उसका अंत कभी नहीं होता, क्योंकि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता।
0: वाह, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तुम्हें भी लगता है कि मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, कोई कितना भी रुकावटें आए, कितनी भी बाधाएं आए, है ना?
1: जी।
0: तो बाधाएं रिकॉर्डिंग तो आती रहती होंगी, तो तुम्हारा उस वक्त मन कहता है नहीं, निराला को याद करती होगी, इस कविता को याद करती होगी, नहीं?
1: हाँ जी।
0: तो लगता है कि अरे अभी तो मेरा अंत नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं थोड़ा सा बता दूं कि निराला जिस समय कविता लिखना उन्होंने शुरू किया था, एक शुरुआती दौर था, तो उस शुरुआती दौर में निराला के कवित्व को या कवि रूप को सब लोगों ने सहर्ष नहीं स्वीकारा था, आसानी से नहीं स्वीकारा था। कोई भी बहुत ही संघर्ष के बाद कुछ बनता है, चाहे कवि हो या कोई और रूप हो, तो हर रूप बड़े ही संघर्ष के बाद बनता है। निराला भी उतने ही संघर्षशील थे उस समय, और वो संघर्ष के समय की कविता है जब शुरुआती दौर में आलोचकों ने आसानी से उनके कवित्व को नहीं स्वीकारा था। तो कहीं ना कहीं इसमें भाव जो आ रहा है, वसंत ऋतु का तो है ही, उसमें यह भाव भी आ रहा है कि जो मैं है, मेरा है, ये जो मेरा शब्द आ रहा है, ये जो कवि का मेरा है, कवि का जो मैं है, वो बार बार कहीं ना कहीं उस ओर इशारा कर रहा है कि वह जो लिखता पढ़ता रहा है, वह जो कवि है, वो अपने आप में विश्वास है उसको, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई निराश नहीं कर सकता, उसको कोई उसका अंत नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आलोचक हो, चाहे कोई और हो, कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता है, वह जो ठान चुका है वह करेगा। और इस कविता को पढ़ करके आपके मन में भी यही बात आ रही है कि हम जो ठान लेते हैं वह करके दिखाते हैं, ठान लिया कि करना है तो कर लेंगे। तो अब इस कविता को थोड़ा सा शुरुआत से पढ़ो कि जैसे शुरुआत ही कवि कह रहा है कि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अब मेरे वन क्यों कहा होगा भाई, उसका कोई जंगल है क्या, यानी कवि ने कोई जंगल खरीद रखा है? नहीं ना, तो फिर क्या हो सकता है?
1: मेरे वन, वन मतलब जीवन।
0: हाँ, यानी यहाँ कोई अलंकार है, कौन सा अलंकार है? वन रूपी मेरा जो मन है, है ना, जो वन रूपी मन है, मेरा जीवन है, मेरे वन में, मेरे जीवन में, मेरे वन रूपी जो जीवन है उसमें अभी तो वसंत आया है, यानी अभी तो कलियां खिल रही हैं, अभी तो खुशबू बिखेर रही हैं, तो अभी नया नया नए नए पत्ते आ रहे हैं, लाल लाल कोंपले आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, पूरा सुगंधित वातावरण है, तो ये खिला हुआ खिलने का मौसम है, तो इस खिलने के मौसम में अंत की बात हम कैसे सोच सकते हैं? तो अंत तो अभी नहीं आएगा। तो कहीं वो मन में ये महसूस कर रहा, वो उत्साह है उसके मन में, उसको विश्वास है, और वो लोगों को कहीं एक चुनौती भरा कह सकते हो संकेत भी कर रहा है, चुनौती भरा निर्देश भी दे रहा है कि नहीं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उसका अंत नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो टक्कर ले रहा है, जमाने से टक्कर ले रहा है, और जमाने से टक्कर लेते हुए कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कोई अंत कर सके। तो अभी इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कवि ने मेरा अंत क्यों कहा होगा, और कह रहे हैं वसंत की बात, लेकिन फिर भी मेरा कह रहा है, यानी कहीं ना कहीं उस वसंत में वह अपने जीवन को देख रहा है, एक पूरा रूपक चल रहा है। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात। अब सारा कह रहा है कि कैसा है ये जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये जो कलियां दिखाई दे रही हैं, ये पत्ते जो दिखाई पड़े, ये क्या है? यही तो उसके शरीर है, ये जो वसंत है उसका शरीर ये है, यानी ये जो हरापन है, ये जीवन में जो आर्द्रता है, ये जो ताजगी है, अभी तो उस महसूस कर रहा है उस ताजगी को, तो इस ताजगी का अंत वह भी अपने सामने नहीं देख सकता। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रति, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही है कवि ने कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अब प्रत्यूष का मतलब क्या होता है?
1: खुशनुमा।
0: नहीं, ये सिर्फ नहीं खुशनुमा सुबह हो सकती है, उषा, उषा इसमें जुड़ा हुआ है ना, प्रत्यूष का मतलब होता है भोर की सुबह, सुबह जो होती है ना, जो भोर, यानी बहुत सुबह होने से पहले पहले का समय, सूर्योदय से पहले पहले का समय। तो अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ है, यानी अभी तो उसने लिखना शुरू किया है, अभी

0: तो उसके जीवन में तरह तरह के सपने आने शुरू हुए हैं, और उन सपनों को वह कैसे छोड़ देगा? कह रहा है कि निद्रित कलियों पर, जो सोए हुए कलियां अभी दिखाई पड़ रही है ना, उनको वह प्रत्यूष मनोहर, उनको सुबह दिखा देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है लेखक। ज्यादा खूबसूरत बात ये है कि सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आसपास के पूरे वातावरण में एक बदलाव की बात कर रहा है, कि पूरे वातावरण में वो बदलाव लाने में सक्षम होगा। वो चाहता है कि ये बदलाव, ये ताजगी, ये जो ऊर्जा उसके भीतर दिखाई पड़ रही है, ये ऊर्जा, ये ताजगी, ये बदलाव उसके आसपास के माहौल में भी हो। तो सारी कलियों को खिलने की बात कर रहा है, सिर्फ अपने खिलने की बात नहीं कर रहा है। तो वसंत में जैसे पूरा का पूरा जंगल, ऐसा नहीं है कि एक फूल खिल जाएगा और पूरा का पूरा नहीं खिलेगा, पूरा का पूरा बागीचा खिल उठता है। तो उसी तरह से ये पूरे के पूरे बदलाव की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि देश में बदलाव की बात कर रहा है, केवल एक की बात नहीं कर रहा है, ये एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, जन जन में बदलाव, पूरे देश में ये ऊर्जा हो, पूरे देश में ये ताजगी हो, ये माधुर्य हो, ये खिलापन हो, ये खिलने का मौसम जिसको मैं कह रही हूँ, तो ये खिलने का मौसम पूरे देश में दिखाई पड़े, कोई एक नहीं, हर चेहरा उतना ही ताजगी भरा हुआ दिखाई पड़े। ठीक है, फिर वो कहता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। चाहे अगर कहीं भी कोई आलस्य होगा, किसी भी फूल में खिलने में कहीं आलस्य होगा, तो उस फूल की, उस तंद्रा को, उसकी निद्रा को वो खींच लेगा, उसमें कहीं कोई लालस दिखाई पड़ेगा। किसी व्यक्ति में अगर कोई लालसा होगी, कोई ऐसी बुरी इच्छा होगी जो नहीं पूरी हो, वो ऐसी उन सबको वो कहीं खींच लेगा। वो कहने का मतलब कि उसमें वो ताकत है, उसमें वो क्षमता है कि हर कह सकते हो संघर्ष के समय को एक ऊर्जावान, ताकतवर, चुनौती भरे समय में बदल सकता है, एक ताजगी भरे समय में बदल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, बगीचे में तुम लोगों ने फूलों की सेवा की है, कभी देखा है?
1: हाँ जी।
0: तो कुछ फूल जब नहीं खिलते हैं तो क्या करते हो तुम लोग?
1: उसमें हम लोग पानी डालते हैं।
0: पानी डालते हो और क्या करते हो? खाद डालते हो। खाद डालते हो, सड़े गले पत्तों को हटाते हो, यानी उसकी निद्रा को तुम दूर करते हो। यही है उसकी निद्रा को दूर करना, मतलब उसमें ताजगी लाना, मतलब कि अगर वह नहीं, किन्हीं कारणों से वह रोग युक्त हो गया है, तो उसको रोग मुक्त करने के लिए हमें तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे समय में, हमारे जमाने में, हमारे देश में, हमारे लोगों में कहीं किसी तरह की कमी दिखाई पड़ रही है, कोई ऊर्जा किन्हीं कारणों से नहीं दिखाई पड़ रही है, वो ऊर्जा किसी भी तरह की हो सकती है, तो किसी भी कारण से अगर उनमें आलस्य दिखाई पड़ रहा है और वो थोड़ी निराशा भरे समय में जी रहे हैं, तो उस निराशा को आशा में बदलने की क्षमता कवि में है। वो खुद कहता है कि मैं बदल सकता हूँ और उसको एक आशावान, ऊर्जावान, एक खिलने के समय में बदल सकता हूँ। सभी लोगों के चेहरों में वो ताकत और ऊर्जा होगी, ऐसा विश्वास। ये बहुत बड़ी चीज है कि जब हमारे भीतर विश्वास होगा तब हम दूसरों को विश्वास दे पाएंगे। किसी दिन तुम उदास होती होगी तो तुम्हें क्या लगता है, दूसरे लोग भी
1: उदास,
0: तुम्हें देखकर उदास ही हो जाएंगे, कोई खुश नहीं होगा। तो तुम अगर निराश रहोगे तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही होता है ना। या तुम्हारी मम्मी किसी दिन निराश होगी तो तुम भी थोड़ी उदास हो जाती हो, होता है ना। तुम्हारी कोई मित्र ऐसी होती होगी तभी तुम्हें ऐसा लगता होगा। यानी एक व्यक्ति की उदासी या निराशा दूसरों पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ लेखक बहुत ही कह सकते हो बहुत ही सशक्त तरीके से, बहुत ही ऊर्जावान तरीके से कह रहा है कि नहीं, जब तक वह अपनी तंद्रा नहीं दूर करेगा, अपने आलस्य को नहीं दूर करेगा और अपने अंदर एक विश्वास, एक आत्मविश्वास उसके नहीं आएगा, तब तक वह दूसरों में विश्वास नहीं भर सकता है, विश्वास नहीं उनको जगा सकता है। और इसको उसने रूपक किस चीज़ का लिया है? वसंत का रूपक। तो बगीचे के रूपक से, वसंत के रूपक से उसने यह बताने की कोशिश की है। ये छायावाद जिसका मैंने नाम लिया था, छायावाद के समय में जितने भी कवियों ने लिखा है ना साथियों, चाहे प्रसाद जी की कविता पढ़ना, चाहे पंत जी, उन लोगों ने प्रकृति का ऐसा ही उपयोग किया है। उन्होंने अपनी बात, मैं की बात, मैं मतलब अपनी बात, जो अपनी बात कहनी है, अपने ढंग से जो सोचता है व्यक्ति, अपना जो सपना देखता है, वो सब कई बार हम प्रकृति के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं। ये भी एक शैली है, एक तरीका है। तो जैसे तुम किसी और के बहाने से अपनी बात को कह दो, तो उसी तरह से यहाँ भी सीधे सीधे ना कह करके कई बार हम किसी के बहाने से कहते रहे, ये एक शैली है। तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी कविताओं को पढ़िएगा तो देखिएगा कि कवि कौन सी शैली का प्रयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या

0: वह किसी के बहाने से कह रहा है, क्या वह सीधे सीधे कह रहा है, तो किस समय की कौन सी विशेषता रही है, यह भी आपको समझ आती चली जाएगी धीरे धीरे, और जब पढ़ेंगे तो और भी जानकारी आपकी हासिल होती चली जाएगी। तो इस पूरी कविता में द्वार, अब अंतिम पंक्तियों पर आ जाते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अब और एक ध्यान देने की जरूरत है, मेरे वे जहां अनंत, अब मेरे कौन भाई, कौन है उसका अनंत, सवाल उठता है ना मन में, है वह मेरे जहां अनंत। तो द्वार दिखा दूंगा उनको, अनंत अनंत इच्छाएं, यानी बहुत सारी इच्छाएं जो उसकी है, जहां पर कहां है, जिस द्वार के से खुल करके जाएगा। तो मैं सारी तंद्रा को, निद्रा को, जहाँ कहीं निराशा है, जहाँ कहीं तंद्रा है, उन सब को, निद्रा को हम किस में बदल देंगे, एक ऐसा दरवाजा दिखा देंगे जहाँ से सिर्फ क्या दिखाई पड़ता है, वो सपने दिखाई पड़ते हैं, वो सपने जो पूरे हो रहे हैं, वो सपने जो हम पूरे कर सकते हैं, वो सपने जो हम अपने कोशिश करें तो पूरे हो सकते हैं। हम थोड़ा सा अपने को सचेत रखें, सजग रखें, तो सजगता सचेतता कैसे हमें अपने उस मंजिल तक पहुंचाती है, उस जिस लक्ष्य तक हम जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य और जिस मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं, उस लक्ष्य और मंजिल को कैसे पाने में मदद करती है, ये कवि ने इस कविता में कहने की कोशिश की है। सजगता और सचेतता और एक तंद्रा को छोड़ भूलना और सपने को देखना, ये बहुत ज़रूरी। सपनों के देखने की बात तो और लोगों ने भी बहुत से की है, किसने की है बताओ?
1: महात्मा गांधी ने।
0: सपने की, सब लोग कहते हैं कि सपने देखो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, खुली आंखों से, है ना? और किसने, एक बहुत नाम लिया जाता है, वैज्ञानिक है हमारे देश के,
1: अब्दुल कलाम।
0: हाँ, अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी सपनों के बात कही है। बहुत से लोग आजकल कह रहे हैं, शिक्षा की दुनिया में हम अक्सर ये चर्चा करते हैं, तो सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखना, यानी कुछ लक्ष्य लेके चलना, कुछ मंजिल तय करके चलना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम लक्ष्य विहीन होंगे, अगर हम मंजिल विहीन होंगे, हाँ, तो हमारे रास्ते पर चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुमको पता है कि किसी दिन रास्ते पर या तो यूं ही घूमते हुए चलो, वो भी मज़ा आएगा, उसमें तुम्हारा लक्ष्य होता है कि तफरी करना, घूमना, रास्ते के पेड़ों को देखना, रास्तों को जानना, लेकिन जब मंजिल तय होती है तो तुम्हारे चरण जो है थोड़े तेज हो जाते हैं, तुम्हारे पांव जो है और तेज चलने लगते हैं और आगे आगे चलने पड़ते हैं। तो ये इस कविता की बहुत बड़ी विशेषता है। चलो थोड़ी सी बात करते हैं, कविता पढ़ते हुए कुछ चीज हमारे, कुछ बातें हमारे ध्यान में आई होंगी, जैसे अभी न होगा मेरा अंत। अब इसकी दूसरी पंक्ति कोई बनाओ तो जरा, कविता के साथ खेलो, शब्दों की के साथ खेलो, कोशिश करो। अभी अभी इसने तो दूसरी पंक्ति जोड़ी है, लेकिन आप अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपनी बहनों भाइयों के साथ इस खेल को करो और अगली पंक्ति जोड़ने की कोशिश करो। अंत के साथ कितने तुक हो सकते हैं, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, सबसे पहले क्या करो कि अंत के साथ कौन कौन से तुक हो सकते हैं, कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, उन शब्दों की एक लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ, और उन शब्दों को फिर अपने सपनों के साथ पिरो दो, कोशिश करो, है ना? कंत हो सकता है, संत हो सकता है, है ना, बहुत कुछ हो सकता है, अनंत हो सकता है, अनंत तो कवि ने भी प्रयोग किया है, है ना, मंत हो सकता है, बहुत मंत्र हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो कोशिश करो कि तुक वाले जो शब्द हैं, उन तुक वाले शब्दों को पहले एक सूची बनाओ और उन तुक वाले शब्दों को फिर अपनी इस लाइन में, अपनी पंक्ति में डालने की कोशिश करो। ये खेल करके देखो, बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे शब्द तुम सीख पाओगे, इससे शब्दों की लयात्मकता को समझ पाओगे, शब्दों के अर्थ को भी समझ पाओगे, यानी शब्द भंडार भी बढ़ेगा, अर्थ भी समझ में आएगा और भाव भी समझ में आएगा, बहुत सी चीजों पर आप बात करो। साथ ही एक और कोशिश करो कि अगर मान लो गांधी कहते कि अभी न होगा मेरा अंत, तो क्या करते, क्या निराला की तरह ही बात करते गांधी, या कुछ और कहते, क्या कहते?
1: वे कहते अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो मुझे है जो मेरी इच्छाएं अनंत।
0: हाँ,
1: अभी तो मुझे बढ़ना है।
0: कहाँ बढ़ना है, क्या करना है? देश को आजाद कराना,
1: देश को आजाद करना।
0: तो इसको जरा कविता में बांध करके कोशिश करो, करना है ना, कविता बनाने की कोशिश करना। इसी तरह से एक जैसे कोरोना समय है, अभी कोरोना के काल में हम लोग अगर उत्साह से भर करके और बहुत ही मेहनत से, बहुत सचेतता से, संघर्ष से, जो लगे हुए हमारे वॉरियर जिसको हम लोग कह रहे हैं, डॉक्टर हैं या और भी, केवल डॉक्टर नहीं है, नर्स हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो सारे लोग सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो सारे लोग क्या कहते होंगे, अभी हम किसी भी तरह से

0: थकेंगे नहीं। तुम चाहे लाख कोशिश करो करो ना, तो उनके लिए कविता बना के कोशिश करो, उनके लिए एक पैराग्राफ लिख के कोशिश करो, अनुच्छेद बनाओ, और तुम देखो वो कहेंगे तो क्या क्या कहेंगे, है ना।
1: अभी तो मुझे कोरोना से लड़ना है। घर पे बैठ के हमें कोरोना को हराना है।
0: तो हराने के लिए क्या करना होगा? अभी तो हम सबको बिल्कुल उत्साह से परिपूर्ण रखेंगे, किसी का उत्साह खत्म नहीं होने देंगे, किसी को हारने नहीं देंगे, किसी को हारने, जो मन से हार जाता है ना, वो शरीर से भी हार जाता है। तो मन से नहीं हारने देने की कोशिश करनी है इस समय में, तो अलग अलग क्षेत्रों में। अब यही बात अगर मान लो पर्वतारोही है, पर्वत पे चढ़ रहा है ना, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहा है, तो वो पर्वतारोही क्या करेगा? अरे आओ, कोई असंभव शब्द नहीं है इस तुम्हारी डिक्शनरी में, तुम्हारे शब्दकोश में। अपने साथियों को क्या कहेगा? असंभव नहीं है, एकदम चलते चलो आगे, अब बस जरा सा रह गया है, अब जरा सा रास्ता रह गया, यही कहेगा ना। वो नहीं कहेगा कि एक बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई है, यानी थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी मंजिल हमारे साथ होगी और हम जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। तो हर क्षेत्र में झांकने की कोशिश करो, चाहे वो पर्वतारोही का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टर्स का देख लो, चाहे वैज्ञानिक की दुनिया देखो, चाहे संगीतकार की दुनिया देखो। तो संगीत की दुनिया भी और हमारे मजदूर और किसानों की दुनिया भी देखो। जो मजदूर किसान कैसे कहेंगे, चाहे कितनी भी वर्षा क्यों ना हो, वो हारते नहीं है। एक बार फसल खराब हुई, दूसरी बार फिर लगाते हैं और फिर फसल लगाते हैं और फिर से फसलों का इंतजार करते हैं, फसलों के पकने का इंतजार करते हैं, फिर से काटते हैं। तो वो किसी भी हाल में हारते नहीं है, चाहे स्थितियाँ कितनी भी खराब हो। तो इन सारी चीजों पर हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें देखो, हरे हरे ये पात शब्द आया है, ये हरे हरे शब्द क्यों आया है भाई? दो बार क्यों कहा होगा कवि ने, सोचा है कभी आपने? पुष्प पुष्प आया है, पुष्प पुष्प से तंद्र खींच लूंगा तंद्रा लस, पुष्प पुष्प से वाला जो आया है क्यों आया है? हरे हरे ये पात क्यों आया है?
1: हरे हरे एक तो हमारा ये अलंकार होता है।
0: क्या अलंकार होता है?
1: यामक अलंकार।
0: यामक तो तब होता है जब एक शब्द का दूसरा अर्थ हो और दूसरे शब्द का दूसरा। ये पुनरुक्ति है, ये पुनरुक्ति अलंकार है। लेकिन पुनरुक्ति तब होता है जब दो बार आए हैं वही शब्द, लेकिन उसका अर्थ अलग नहीं होगा। दोनों हरे का शब्द, हरे का मीनिंग एक ही है, लेकिन जब एक हरे का अर्थ दूसरा होता तो यमक हो जाता। ठीक है, यहाँ पर वह बात नहीं कही है। अब कोमल गात शब्द आया है। कोमल क्या है यहाँ पर? गात क्या है? गात मतलब
1: गात यानी शरीर।
0: शरीर और कोमल,
1: कोमल जो है वो उसकी विशेषता।
0: अगर मान लो तुम्हें ये कविता लिखनी होती तो कोमल की जगह कौन सा शब्द लिखती, कौन सा विशेषण लिखती?
1: सुंदर शरीर।
0: सुंदर और भी और कुछ लिखती? बहुत सी चीजें। निर्मल शरीर होता, वाह बहुत सुंदर है निर्मल शरीर। तो ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। अब एक और काम करना, अभी तो बहुत से समय है रेणुका, आप भी करो, अपने साथियों को भी बताओ, और आप लोग भी साथियों ये जरूर करना कि वसंत पर और भी बहुत सी कविताएं आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, और आपको इंटरनेट पर भी मिल सकती हैं। कुछ पुरानी कविताएं उठा लीजिए, किताबें उठा लीजिएगा, पत्रिकाएं उठा लीजिएगा, उन पत्रिकाओं से वसंत संबंधी कविताओं का एक संचयन तैयार करिए, खुद वसंत संबंधी संचयन उन कविताओं को चुनिए जो आपको पसंद हो। और एक और काम करिएगा कि उन कविताओं को जब संचयन करिए तो आप ये भी करिएगा कि उसकी भूमिका भी लिखिएगा, छोटी सी भूमिका। अब उसमें क्या लिखोगे? ये लिखो कि ये कविताएं क्यों पसंद है, पहली बात तो ये आ जानी चाहिए। फिर इन कविताओं में 10 कविताएं या 20 कविताएं आपने चुनी तो उन 10 और 20 कविताओं में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, क्या अलग दिखाई पड़ रहा है, उसको एक पैराग्राफ में लिख दो। फिर ये भी लिख सकते हो कि कौन से नए शब्द आपको जानने को मिले, कौन से नए क्षेत्रों के बारे में जानने के मिले और कौन से नए शब्द आपको जानने को मिले, यह भी लिखना। तो कोशिश करो और आप पाओगे कि एक बड़ी सुंदर सी किताब आपने खुद बना दी है, खुद एक चयन तैयार कर दिया है, और ये चयन आप अपने साथियों को भी सुनाइए, अपने अध्यापकों को सुनाइए और अपने आस पड़ोस वालों को भी सुनाइए। मैं समझती हूँ कि आप वसंत को सुनाते सुनाते आप वसंत से परिपूर्ण हो जाएंगे और ताजगी, उत्साह और ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आज ध्वनि पर हम इतनी ही चर्चा करेंगे, लेकिन इस कविता के संदर्भ में और भी बातें हम आपसे करते रहेंगे, लेकिन आज की चर्चा यही खत्म होती है।
2: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता।

0: हाँ हाँ हाँ,
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
0: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
0: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
0: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना,
4: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। धान में पोषक तत्वों की कब कब जरूरत होती है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर SS आचार्य से। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है जो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि धान हमारे बिहार की सबसे प्रमुख फसल है और सही उर्वरक प्रबंधन हम करेंगे तो हमको अधिक उपज और क्वालिटी जो यील्ड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो आजकल क्या करते हैं किसान भाइयों कि आप लोग नाइट्रोजन जो नेत्रजन या यूरिया के हिसाब में आप लोग देते हैं उसका तो प्रयोग भरपूर करते हैं, लेकिन फॉस्फोरस, पोटास या सल्फर की मात्रा में कम डालता है।

जिसके कारण आपका क्या होता है, मिट्टी में बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी भी कमजोर होता है और आपका पौधा भी कमजोर होता है। आप और आप जो उपज का उपज आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, उपज में गिरावट आ जाती है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि धान में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए, संतुलित पोषक तत्व मतलब धान के लिए जैसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, उसको सही मात्रा में और सही समय में हम अगर धान में, धान के खेत में डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे संतुलित पोषक तत्व। इसको इसको करने से पहले हम एक मिट्टी को जांच करना या मिट्टी को परीक्षण करने का बारे में हम आपको सलाह देंगे। अगर देखा जाएगा तो मिट्टी में पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना मात्रा में है। और ये सुविधा हमारा किसी भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र या जिला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ पर इसका सुविधा उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको मिट्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। मिट्टी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व तो कम है और कौन सा पोषक तत्व तो उसमें ज्यादा है आपका मिट्टी में। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप जो खाद डालते हैं, आप जो पोषक तत्व तो देते हैं मिट्टी में, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, आप लोग ज्यादा डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है आपको जितना जरूरत है उससे कम डालते हैं। तो इसीलिए पहले मिट्टी को परीक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हो गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डाले तो कितना डाले, तो देखा जाएगा कि इसको अगर जो कि नॉर्मल वैरायटी है, जो कि सामान्य किस्म है धान का, उसमें हम लोगों का बिहार के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की जाती है। तो अगर और अगर संकर किस्म या हाइब्रिड राइस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो सटीक मात्रा में हम लोग अगर मिट्टी जांच करके, मिट्टी को परीक्षण करके उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा मिट्टी का प्रकार और धान का जो प्रोडक्शन वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो पहला है कि नाइट्रोजन सबसे अगर धान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या किसी भी फसल में ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधा का जो पत्ता में जो क्लोरोफिल है और जो आपका उसी क्लोरोफिल का एक पार्ट है नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा उपज कम होगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस जो पोषक तत्व, उसके बारे में अगर देखें तो पहले जब हम रोपाई कर रहे हैं, धान के रोपाई कर रहे हैं तो उसी समय पहली मात्रा दे देना चाहिए, तो उसका 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए। और जिस समय के हम लोगों का जो बोलते हैं टीलरिंग होता है, टीलर निकलता है, उसी समय भी पौधा को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए दूसरा मात्रा 3 से 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए। और तीसरी मात्रा जो कि बाली निकलने के समय या गम्भोट के समय, उसी समय हम लोगों को देना चाहिए। तो इसे अगर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो बेहतर हो पाएगा, बर्बादी कम होगा और अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हो गया फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस मिट्टी में नष्ट नहीं होता है लेकिन मिट्टी में फिक्सेशन हो जाता है। तो देखा जाएगा तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे कि कब देंगे, तो फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट या डीएपी से हमको मिलता है, ये हम लोग जब पहली मात्रा जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय दे देना चाहिए। और पोटास अगर देखेंगे, पोटास के आधा मात्रा हम लोग देंगे जो रोपाई के समय और आधा हम लोग जो जब हम लोगों का नाइट्रोजन का तीसरे मात्रा है या बाली निकलने के समय, उसके पहले, बाली निकलने से पहले हम लोगों को दे देना चाहिए। इस ये तो हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके बाद हम लोगों का जो जिंक है, सबसे जितना सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है जिंक। जिंक की कमी अगर देखा जाएगा तो बिहार के धान के खेतों में सबसे बड़ा समस्या है। और इसकी कमी में पत्तियों के बीच के नसों में सफ़ेदी या कांसे जैसा रंग

दिखाई देता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, माने पौधे बढ़ता नहीं है, पौधे स्टंटिंग हो जाता है, ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको के लिए, इसको अगर हम लोग इसका निदान करें तो इसके लिए हम लोगों को 1 हेक्टेयर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है और उसमें कुछ सिम्टम आ रहा है जिंक का, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गया जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक पोषक तत्व है इसके बारे में। इसको छोड़ के हम लोग सिर्फ रासायनिक अगर देंगे तो हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है, वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर, जो हम लोग बोलते हैं जैविक खाद, इसके इसको देना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आता है आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, ये सब का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। केवल या सिर्फ यूरिया के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, फॉस्फोरस पोटास दे देना चाहिए। और उसके साथ भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इसको भी देना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आज अगर देखेंगे तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई जो फसलें हैं उनके मांग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी लगातार रासायनिक और उर्वरकों के प्रयोग से हमारे मिट्टी को जैविक सक्रियता कम हो जाती है और इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद देना बहुत ज़रूरी है। जैविक खाद को अगर देखेंगे तो इसमें इसके बहुत टाइप का जैविक खाद है। जैसे हुआ आपका कंपोस्ट या कंपोस्ट और गोबर की खाद। अगर कंपोस्ट देखेंगे, कंपोस्ट अगर हम लोग कितना चाहिए अगर देखेंगे, 10 से 12 टन कंपोस्ट हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद, इसको लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीना पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अगर वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद देखेंगे तो 2 से 2.5 टन वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो जाना चाहिए, वो भी 15 से 20 दिन पहले। और अगर ग्रीन मैन्योर या हरी खाद, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस एक ये एक फसल है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जो नाइट्रोजन हमारा जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको ये फिक्सेशन कर पाते हैं। इसके अंदर में एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, 45 से 50 दिन पहले एक फसल लगाएंगे जो होगा हरी खाद, जैसे कि हुआ जिसमें धैंचा है या सनहेम्प है, इसको अगर लगाएंगे और 45 दिन के बाद फूल आने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसी हरी खाद को पूरा मिट्टी में, जो जब हम धान के रोपाई करेंगे, रोपाई से पहले जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे उस समय ट्रैक्टर में इसको मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, 60 से 80 किलो नाइट्रोजन हम लोगों को 1 हेक्टेयर में मिल जाएगा। तो ये भी एक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसका एक सोर्स है, जो कि हरी खाद में। और एक हुआ, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, और कुछ भी जैविक स्रोत है जिससे हम लोगों को फास्फोरस और पोटास भी मिल सकता है। जैसे हुआ रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट है, और एक है फॉस्फेट सल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है फॉस्फोरस का सोर्स। इसको अगर हम लोग हमारा धान के खेत में इसका यूज करेंगे तो हमारा फॉस्फोरस जो फिक्सेशन हुआ है मिट्टी में उसको भी कुछ हम लोग उसमें फिक्सेशन को कम कर सकते हैं और हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर देखें या जैव उर्वरक देखें तो उसमें हम लोग एजोस्पिरिलम, जो कि मिट्टी में वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, और हुआ कि आपका माइकोराइजा जो जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक है धान का खेत में अजोला। अजोला एक जलीय फर्न है और यह नील हरित शैवाल के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इसीलिए अगर अजोला हम धान के खेत में उसका उपयोग करेंगे, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे अगर हम
किसी भी धान फसल में शुरू में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कि हम लोग कंपोस्ट भर्मी कंपोस्ट इसका उपयोग करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जैसे हुआ कि

0: नाइट्रोजन बोले हैं कि तीन बार हमें हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ पानी के साथ मिट्टी के नीचे चला जाता है, कुछ वोलेटाइलाइज हो जाता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन को अगर हम तीन बार में अप्लाई करेंगे, पहला बार हुआ कि जब हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसी समय, दूसरा बार है जब हम उसका तीन हफ्ता या चार हफ्ते के बाद जब हम लोगों का टिलरिंग होता है उसी समय, और एक है जो कि हम लोग बोलते हैं पैनिक इनिशिएशन, उसका पहले एक बार, तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये उपज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फॉस्फोरस और पोटास, फॉस्फोरस अगर देखेंगे पूर्ण मात्रा फॉस्फोरस का हम लोग जमीन जब तैयार करेंगे तो उसी समय दे देना चाहिए, लेकिन पोटास को अगर हम दो बार में अप्लाई करेंगे, एक हुआ शुरू में बेसल फर्टिलाइजेशन और एक हुआ पीआई या पेनिकल इनिशिएशन से पहले या बाली निकलने से पहले अगर हम दे देंगे तो हमारा जो उपज है हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसको छोड़ के हम जो अभी जो चर्चा किए, जिंक की कमी बहुत सारा जहाँ पर धान के बाद व्हीट, धान के बाद गेहूँ, धान के बाद गेहूँ करते हैं वहाँ पर जिंक की कमी महसूस होता है, तो जहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अगर जिंक सल्फेट वहाँ पर उसी फील्ड में यूज़ करेंगे तो हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो पोषक तत्व प्रबंधन उसको सही समय में सही डोज में और मिट्टी जांच करके अगर देंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने एचपीवी का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। एचपीवी का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल है, तो आज हम

बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
13: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
14: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
13: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है।

है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले, और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ಕೃಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं हरा चारा के बारे में. दोस्तों जैसे ही बारिश का मौसम आता है हरे चारे की बहुत परेशानी होती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वैज्ञानिक तरीके से हरा चारा का प्रबंधन बहुत पहले से करें. किस प्रकार से हरा चारा का प्रबंधन किया जा सकता है आइए जानते हैं डॉक्टर एस के चौधरी सर से. सर आप सस्य विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम. मैडम जैसे कि वर्षा ऋतु में किसान के द्वारा हरा चारा प्रबंधन जो कि अपने पशुओं के लिए करना बहुत ही जरूरी और बहुत ध्यान देने की बात है. जैसा कि त्याग और तपस्या का दूसरा नाम किसान है और कृषि ही उसकी भक्ति और पशुपालन ही उसकी शक्ति है. हमारे भारत में पशुपालन कृषि का एक अभिन्न हिस्सा है और कृषि एवं पशुपालन एक दूसरे का पूरक है. पशुपालन में पोषण व आहार पर प्रमुख रूप से लगभग में 50-60% तक का खर्च होता है और पोषण और आहार प्रमुखतः खेती अथवा कृषि से ही आता है. पशुधन उत्पादकता में सुधार के लिए पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा और चारे की उपलब्धता आवश्यक है. देश में चारे की मांग और उपलब्धता के बीच विशेष रूप से कम उत्पादन अवधि के दौरान और सूखे अथवा बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के समय काफ़ी अंतर मौजूद है. पशुधन उत्पादन को बनाए रखने के लिए चारे की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं. जैसा कि देखते हैं जो भूमि संसाधनों का सबसे अच्छे तरीके से उपयोग में लाना. पशुधन की संख्या तेजी से बढ़ रहे हैं. एक आंकड़े के अनुसार भारतवर्ष में लगभग में 531 मिलियन जो पशु है वो भारतवर्ष में है और उसके लिए लेकिन कृषि एवं गैर कृषि उपयोग के लिए भूमि के बढ़ते दबाव के कारण चारागाह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. चारे की खेती के क्षेत्रफल कुल फसल के क्षेत्रफल लगभग 4% तक ही सीमित है और ये लगभग 8.4 मिलियन हेक्टेयर जो भारतवर्ष में इतनी ही भूमि में चारे के रूप में प्रयोग करते हैं और पिछले 4 दशक से स्थिर बना हुआ है. खाद्यान्न और अन्य नगदी फसलों को महत्व को देखते हुए ये बहुत कम संभावना है कि चारे की खेती के क्षेत्रफल पर्याप्त रूप से बढ़ेगा. और अपने बिहार में ये पशुओं की संख्या लगभग में जो भारत की तुलना में कम है लेकिन उसके लिए जो चारा के उपयोग के लिए क्षेत्रफल 1% से भी कम क्षेत्रफल में चारा का उत्पादन करता है तथा साथ ही साथ बिहार राज्य जो है चारों तरफ से सुखाड़ एवं बाढ़ से घिरा होने के कारण ये जो चारा के लिए जो पर्याप्त भूमि नहीं उपलब्ध है. ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि देखेंगे जो बिहार में जो नॉर्थ बिहार है उत्तरी बिहार जिसमें कि गंगा कोसी कमला गंडक इत्यादि जो हर साल बाढ़ का प्रकोप बना रहता है और बाढ़ आती भी है और लगभग में 9.4 लाख हेक्टेयर जो भूमि है प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण जो प्रभावित होता है जिसमें कि चारा लगाया गया है. इसी तरह पशु पोषण और आहार पशुपालन का एक ऐसा पहलू है जिसमें संतुलित रखने से पशुओं का रखरखाव एवं उत्पादन सीधे तौर पर प्रभावित होता है. मौसम के अनुसार पशुओं मवेशियों की आहार उसकी जरूरत और मौसमी प्रभावों एवं बीमारियों के अनुसार संतुलित और सुपाच्य चारा होना चाहिए जिससे कि दूध उसकी मांस कम उत्पादन के क्वालिटी से दुष्प्रभाव से बचा जा सके. गाय भैंस भेड़ बकरी के आहार नाल उनके कई हिस्सों में बटा होता है जिसमें कि पेट के प्रमुख 4 हिस्से होते हैं जो कि क्रमशः रूमन रेटिकुलम ओवेमेजम होता है जिसमें व्यस्त पशुओं के रूमेन का आकार 2/3 70% तक बड़ा होता है जहां मुक्त हरे चारा का पाचन होता है जिससे वहां कुछ जो VFA बनते हैं जो दूध की वसा मात्रा को प्रभावित करते हैं. इसीलिए हरे चारे जैसे बरसीम हुआ ज्वार हुआ कसानी हुआ बजरी हुआ जो उसके अलावा जो

कॉपी जो जिसको कहते हैं वो का प्रभाव उन बीएफए उत्पादन में अलग अलग होते हैं, जिससे चारे की मौसम के अनुसार उपज व उत्पादन पशुओं की आहार एवं आवश्यकता के सीधे तौर पर प्रभावित करती है। हमारे देश में पशुपालन में किसान मुख्यतः आहार व सूखा हरा चारा ही देते हैं, जो कि मौसम व ऋतु के अनुसार एवं उपलब्धता के अनुसार मुख्यतः बदलता है। बदलते मौसम के साथ पशुओं के आहार में बदलाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आहार व पोषण हमें मौसम के अनुसार सुपाच्य उपलब्धता पोषक तत्व एवं और पर्याप्त उत्पादन देता है, जिससे कि हम पोषण व आहार की कीमत और लागत को घटा सकते हैं, ताकि हम पशुओं के पालन में अधिक लाभ हो सके। जैसे वर्षा ऋतु में हरे चारे की बहुयाता होती है, जिससे किसान पशुओं को हरा चारा खिलाता है, परंतु बारिश ऋतु में वर्षा ऋतु में के अंत के साथ आती हुई शरद ऋतु किसान के लिए एक अवसर है, जहां वह अपने मवेशियों के खान पान पर ध्यान देकर उससे शरद ऋतु में भी अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में पशुओं को अधिक चारा अचानक से देने से उसमें दस्त की शिकायत होने लगती है, क्योंकि आहार में अचानक परिवर्तन पशु के पेट एवं सूक्ष्म जीवों की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जिससे कुछ पशुओं में दस्त व अपच की समस्या नजर आती है। इसलिए हमेशा चारा बदलने से पहले उसमें थोड़ा थोड़ा पुराने चारे के साथ ही मिलाकर एवं धीरे धीरे मात्रा में वृद्धि करके पशुओं को खिलाएं, तथा वर्षा ऋतु में जीव जंतु कीड़े मकोड़े बेहद बहुत तेजी से बढ़ते हैं और फफूंद का प्रकोप चरम पर रहता है। इसलिए हरा चारा भी गंदा बदबूदार कीचड़ वाला न हो, क्योंकि यह पशुओं के पेट में बीमारियों का प्रमुख कारण है। वर्षा ऋतु में बहुयात हरे चारे को हम भंडारण करके रखना चाहिए, ताकि उसे अगले ऋतु गर्मी के काम में ला सके। इसके लिए हमें उसे हे या साइलेज बनाकर भंडारण कर सकते हैं, जो कि पशुओं के लिए अभाव के समय में अच्छा जो चारा का स्रोत होता है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु में ज़्यादातर पशु वयस्क बछड़ा अपनी पाली के लिए तैयार होने लगता है। यह ऋतु उनके हीट प्रजनन की दृष्टि से भी बेहद अहम है। इस मौसम में उनके खान पान से अधिक दूध उत्पादन क्षमता प्रजनन और प्रसव के लिए उपयुक्त होता है। सर्दियों में वयस्क बछड़ों को अच्छी देखभाल से जल्दी प्रजनन होता है तथा वह अच्छा उत्पादन करता है। भैंस भैंस भेड़ बकरी भेड़ बकरी सीजनल पॉलीस्टेयर्स पशु है, जो तो वह ज़्यादातर सर्दियों में ही गर्भ धारण करती है और दूध उत्पादन करती है। शरद ऋतु के आगमन के साथ वयस्क और गभियान पशुओं के आहार जरूरत से बढ़ जाती है और हरा चारा एवं घास कुछ कम होने लगती है। इसलिए हमें कुछ बहुवर्षीय चारा जैसे सहजन आंवला नीम जामुन नेपियर घास त्रिशंकर घास काटे रहित नागफनी का उत्पादन करना चाहिए, जो कि हमें अचानक से हरे चारे की कमी को चारा उपलब्ध कराने में मदद कर सके। वर्षा ऋतु व शरद ऋतु के पशुओं की प्यास कम हो जाती है, इसीलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं को साफ पानी हर वक्त उपलब्ध हो। पशुओं के पानी हमेशा स्वच्छ साफ ताज़ा पिलाएं तथा पानी का ताप ज़्यादा ठंडा गर्म ना हो। पशुओं के पीने वाले जल स्रोत को समय समय पर चूने से पुताई करनी चाहिए, जिससे कि पानी के साथ कैल्शियम की उपलब्धता भी पशुओं के लिए बढ़ जाती तथा ये हानिकारक सूक्ष्म जीव को भी पनपने से रोकता है। पशुओं के राशन में 60% गीला हरा चारा तथा 40% सूखा चारा होना चाहिए और दाना मिश्रण दुधारू पशु जैसे भैंस को 400 ग्राम प्रति लीटर दूध तथा गाय को 300 ग्राम प्रति लीटर दूध के साथ देना चाहिए। दाना मिश्रण में बाजरा मक्का तथा खल का समावेश होना चाहिए। सर्दियों में शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए पशुओं में ऊर्जा प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है। सामान्यतः देसी पशु को 8 से 10 किलो आहार की रोजाना जरूरत होती है। हरा चारा में जई सरसों चरी लोबिया रजका बरसीम इत्यादि देना चाहिए। प्रोटीन के लिए कपास मूंगफली तिल या सरसों की खल एवं मूंग मोठ या गवार की चूड़ी देना जरूरी रहता है। दाना मिश्रण में मोटे तौर पर दाने में 40%, खल 32%, चापर 25%, खनिज लवण 2% और नमक 1% अवश्य शामिल करना चाहिए। दाना मिश्रण जैसे गेहूं का दलिया खल चना ग्वार

0: और बिनोला आदि को रात को पानी में भिगो कर रखे और सुबह इन्हें पानी में उबाले और ताजा ही पशुओं को खिलाएं। सर्दियों में उच्च कैलोरी के आहार के विटामिन और खनिज लवण मिलाना चाहिए और नई गायों भैंसों के आहार को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इस मौसम में गुड़ तेल अजवाइन एवं सौंठ का आहार के रूप में शामिल करना लाभदायक होता है। इस मौसम में जो नई पशुओं के नवजात पशुओं को उचित देखभाल करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नवजात पशुओं में निमोनिया, हाइपोथर्मिया, अतिसार एवं दस्त होने की प्रबल संभावना रहती है, जिससे कि नवजात मृत्यु दर बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में पशुओं के खान पान एवं दूध निकालने के समय निश्चित तौर पर एक ही रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त सर्दियों में पशुओं को कॉमन कोल्ड, कैल्शियम की कमी होना, गला घोंटू, खुरपका मुंहपका, पीपीआर, आंत विषाक्त एवं भेड़ माता जैसी बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए समय समय पर टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। सर्दियों में रखरखाव का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पशुधर को मोटे स्तर पर बिछावन अवश्य बिछाना चाहिए तथा खिड़कियों और दरवाजे पर बोरी या टाट के पर्दे अवश्य लगवाएं, जिससे कि बाहर की सर्द हवाएं अंदर न आ सके और मौसम पर को बचा जा सके। पशुओं को हरा चारा विशेषकर बरसीम और रिजिका के साथ सूखा चारा मिलाकर ही खिलाना चाहिए, क्योंकि केवल हरा चारा खिलाने से अफरा तथा अपच होने का डर बना रहता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चारा बैंक का विकास किस तरह से अपने आसपास कर सकते हैं। इस संकट के समय उपयोग हेतु अतिरिक्त चारा रखने के लिए दुग्ध सहकारी समिति एवं पंचायतों के सहायता प्रदान की जा सकती है। गौशाला को उच्च उपज देने वाले चारे और चारा फसल को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जा सकता है और साइलेज हे या अथवा चारा ब्लॉक तथा फसल अवशेष का संवर्धन आदि के माध्यम से चारा बैंक बनाने में सहायता प्रदान की जा सकती है। जिन राज्यों के पास अतिरिक्त सूखा चारा है, वो अपने पास उपलब्ध चारे की मात्रा और प्रकार बता सकते हैं, ताकि कमी वाले क्षेत्र में आपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके। वर्षा ऋतु के अंत में हमेशा कृमि नियंत्रण के पशुओं को समय समय पर कृमि नाशक दे, एल्बेंडाजोन या पेनाक्यूरी आदि उचित मात्रा में खिलाएं। पेट में कीड़ा कृमि पशुओं के स्वास्थ्य एवं गर्भधारण अवरोध पैदा करते हैं, क्योंकि कृमि पेट के सही पोषक आवश्यक तत्व को खा जाते हैं, जिससे कि शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस कमी को देखते हुए रिपीट ब्रीडिंग की समस्या पशुओं में होती है। अब जो अंत में है, जो खरीफ जो वर्षा ऋतु में जो किसान भाइयों जो कौन कौन से चारा लगाएं, जिससे कि हमारे जो उसका बढ़ावार भी तेजी से हो और साथ साथ जो हमारे पशुओं को आसानी से उपलब्ध हो, उसमें से सबसे ज़्यादा है हाइब्रिड नेपियर, लोबिया, बरसीम, मक्का, उसके अलावा जो है हाइब्रिड नेपियर, त्रिशंकर ग्रास, जो रटून लोबिया, बरसीम इत्यादि, जो लहसुन मक्का भी है, जो कि खरीफ मौसम में जो किसान भाई अपने खेत में जो चारा के रूप में लगा सकते हैं। ये सब जो वर्षा ऋतु में जो किस तरह से जो हम लोग किसान भाई हरा चारा का प्रबंधन करें। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन पहले से हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं और वर्षा ऋतु में अपने पशुओं का ध्यान रख सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप और आपके पशु दोनों ही स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो। रहे

0: टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे, देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
6: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करेंगे रबी दलहनी तिलहनी फसलों में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर किरण कुमारी मैडम, जो कि वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। मैडम सबसे पहले आपका स्वागत है।
12: धन्यवाद अनु।
11: सबसे पहले तो मैडम हम रबी दलहनी फसलों की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, इनका पहचान कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे, इसकी जानकारी दें।
12: हाँ, दलहनी फसलों में जो अभी का मौसम है रबी सीजन, तो इसमें चना, मसूर और इवन मटर भी लगाते हैं। और जहाँ तक कि अरहर की बात है तो अरहर की फसल लगाई जाती है खरीफ के मौसम में, परंतु इसकी कटाई रबी में होती है, इसलिए अभी जो रबी का मौसम है तो अरहर पर भी इस कीट का प्रकोप होता है। तो अरहर के बारे में भी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से इसके कीट लगते हैं। और तिलहनी फसलों में सरसों, राई, जिसमें कि इसका जो मुख्य कीट है वो है लाही, और पेंटेड बग भी है, सॉफ्लाई है, इन कीटों का प्रकोप तिलहनी फसलों पर होता है। और दलहनी फसलों पर चना फली छेदक का कीट प्रकोप होता है, कजरा कीट का होता है, और जो अरहर है उस पर पॉड फ्लाई, पॉड बग, प्लूम मॉथ इत्यादि कीट का प्रकोप होता है
11: जी। और नियंत्रण कैसे हम करेंगे इनका?
12: जी, कि दलहनी फसल जो है उनके उसका जो प्रमुख कीट है वो चना का फली छेदक कीट है, क्योंकि यह चना को खाकर हानि पहुंचाता है, इसलिए इस कीट का नाम चना

फली छेदक कीट पड़ गया है और यह जो कीट है वो बहुभक्षी कीट है और लगभग सभी दलहनी फसलों को खाकर हानि पहुंचाता है। इस कीट का पिल्लू का रंग शुरू में हरा होता है और बाद में हल्का भूरा हो जाता है। इसके शरीर पर किनारे में भूरे रंग की धारी होती है। शुरू में पिल्लू पत्तियों को खाते हैं और बाद में जब फलियाँ एवं दाने बनने लगते हैं तो ये फलियों में एक बड़ा छेद बनाकर अपना मुंह अंदर घुसा लेते हैं तथा शरीर का शेष भाग बाहर लटका रहता है और इस तरह से वो दानों को खाते हैं। चूंकि ये चना को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं इसलिए इसे चना फली छेदक के नाम से जाना जाता है। और इस कीट के नियंत्रण के लिए फूल आने के पहले फेरोमोन ट्रैप 10 ट्रैप प्रति हेक्टर की दर से लगाना चाहिए। 3 सप्ताह के अंतराल पर ल्योर बदलना चाहिए। कीटनाशियों में स्पिनोसैड 45 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी की दर से या प्रोफेनोफॉस 50 CC दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से प्रथम छिड़काव 50% फूल निकल आने पर और दूसरा छिड़काव लगभग 50% फलियां लग जाने पर करना चाहिए। नीम बीज चूर्ण अर्क 5% का भी छिड़काव करना चाहिए। साथ ही जो एक बायोपेस्टिसाइड है वो है HNPV, उसका भी 250 LE प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव किया जा सकता है। दूसरा कीट है कजरा कीट। कजरा कीट जिसे कटुआ पिल्लू भी कहते हैं, यह पिल्लू काले भूरे रंग का होता है एवं शरीर चिकना एवं मुलायम होता है और यह दलहनी फसलों यानी चना मसूर मटर इत्यादि के अलावा मक्का गेहूं गोभी के पौधों को भी जमीन में या जमीन की सतह से काट कर गिरा देते हैं। और ये पिल्लू दिन के समय मिट्टी के ढेलों और दरारों में छिपे रहते हैं और रात के समय में पौधों को भूमि की सतह से काटकर मिट्टी के अंदर खींच कर ले जाते हैं और दिन के समय उन कटे हुए भागों को खाते रहते हैं। ये कीट खाते कम हैं और पौधों को काटकर गिराते अधिक हैं। इस कीट के प्रबंधन हेतु खेत की सिंचाई करने के बाद इसके पिल्लू मर जाते हैं जिससे प्रकोप कम हो जाता है। खेतों में लाइट ट्रैप लगाकर भी इस कीट को आकर्षित कर नष्ट किया जा सकता है। इस कीट से बचाव हेतु क्लोरपाइरीफॉस कीटनाशी का 3 ml प्रति किलो बीज के दर से बीजोपचार कर बुआई करनी चाहिए या खड़ी फसल में प्रकोप होने पर क्लोरपाइरीफॉस 20 CC कीटनाशी का 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जो अरहर दलहनी फसल है उस पर प्लूम मौत का अटैक होता है तो प्लूम मौत का जो पिल्लू है वो हरे कत्थई रंग का होता है। इसके शरीर पर रोएं होते हैं। इसका प्रकोप दिसंबर जनवरी से शुरू हो जाता है। शुरू में यह कलियां और फूलों में छेद कर नुकसान कर पहुंचाता है। इससे फूल और फलियां झड़ जाते हैं। फली बनने में उसमें छेद कर यह कीट हरे दानों को खा जाते हैं। अधखाए हुए दानों पर सफ़ेद या काली फफूंद आ जाती है और इस कीट से बचाव के लिए नीम आधारित दवा नीम गोल्ड वेनुगार्ड या निम्बिसिडीन दवा का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 छिड़काव या रासायनिक कीटनाशी में प्रोफेनोफॉस 50 CC दवा का 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रथम छिड़काव 50% फूल आने पर और दूसरा छिड़काव लगभग 50% फलियां आने पर करना चाहिए। दूसरा कीट है ब्लू बटरफ्लाई। यह जो तितली है वो नीले रंग की होती है। इस कीट का प्रकोप भी जनवरी फरवरी माह में बहुत की संख्या में होता है। इस कीट का वयस्क तितली नीले रंग की होती है और दिन में फूलों पर उड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये तितलियाँ पीलों फूलों पर अंडे दे देती हैं। इन अंडों से हरे रंग के पिल्लू निकलते हैं जो फूलों एवं फलियों को खाती हैं और इस कीट के बचाव के लिए नीम आधारित दवा निम्बिसिडीन या नीम गोल्ड का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर
तीन छिड़काव 15 दिनों के अंत

अंतराल पर करना चाहिए। पॉड फ्लाई जिसे फली मक्खी भी कहते हैं, यह मक्खी छोटे आकार एवं काले रंग के चमकीले पंखों वाली होती है। यह फली मक्खियां फलियों के अंदर अंडे दे देती हैं। अंडों से सफ़ेद रंग का छोटा पिल्लू फली के अंदर निकलता है और हरे दानों को खाकर नष्ट कर देता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार

0: और स्किड्स के बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव 15 दिन के बाद आवश्यकता पड़ने पर करना चाहिए। काला भृंग, जिसे एपियन भी कहते हैं, काला भृंग बहुत छोटे आकार का होता है, जिसके आगे का मुंह नुकीला होता है। इसका जो है प्रकोप खरीफ मौसम से ही शुरू हो जाता है, और जब उड़द और मूंग की फसल रहती है उस समय दिखाई देते हैं, और अरहर में जब फूल एवं फली लगते हैं तब ये फलियां फूलों को छेद कर खाते हैं, जिससे फूल सूखने लगते हैं। शिशु कीट बहुत ही छोटा एवं गंदे उजले रंग का होता है एवं उसके मुंह का रंग गहरा भूरा होता है। इसका शरीर मुरा हुआ होता है। यह फलियों में प्रवेश करके दानों को खाता है। एक फली के अंदर 2 या 3 शिशु मिलते हैं। आक्रांत पत्तियों में बहुत बारीक छेद कर देते हैं एवं उनके अंदर सुरंग बना देते हैं। इस कीट के प्रकोप के लिए प्रोफेनोफॉस, प्रकोप से बचने के लिए प्रोफेनोफॉस 50 EC दवा का 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर, या इंडोक्साकार्ब कीटनाशी का 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: इसके अलावा अब बात करते हैं तिलहनी फसलों की, रबी तिलहनी फसलों की, तो इनमें कौन कौन से कीट लग सकते हैं, इनका नियंत्रण कैसे करेंगे किसान भाई?
0: तिलहनी फसलों में सरसों तथा सरसों जाति के फसलों को क्षति पहुंचाने वाले जो कीट हैं वो हैं लाही, आरा मक्खी जिसे सॉफ्टफ्लाई भी कहते हैं एवं पेंटेड बग। ये मुख्यतः जो कीट हैं वो सरसों एवं सरसों जाति के पौधों को हानि पहुंचाते हैं। लाही जिसे माहू के नाम से भी जाना जाता है, इसे मीचा भी कहते हैं। तो यह जो कीट है इसका प्रकोप जो है लगभग सभी रबी फसलों पर होता है, और इस कीट के जो शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों की मुलायम शाखाओं, पत्तियों, फूलों एवं फलियों का रस चूसकर फसल को क्षति पहुंचाते हैं। क्षतिग्रस्त पत्तियां और फूल नीचे की ओर झुक जाते हैं। अधिक क्षतिग्रस्त पौधों की छिमियों में दाने नहीं बनते हैं, या बनते भी हैं तो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। इन दानों में तेल की मात्रा भी घट जाती है। आकार में लाही जू के समान होता है। ये कीट प्रायः गहरे हरे एवं काले रंग के होते हैं। इसके उदर पर पीछे की ओर एक जोड़ी नलिकाएं होती हैं जिसे मधुस्राव कर निकालता है। लाही इस मधुरस को पत्तियों एवं अन्य भागों पर छोड़ता है, जिससे काली फफूंद की वृद्धि हो जाती है जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बुरी तरह से प्रभावित करता है। चूँकि इसका प्रजनन अभिषेक जनन द्वारा होता है, अतः थोड़े ही समय में इसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। जाड़े में बदली वाला मौसम इनकी वृद्धि के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। वैसे तो लाही सितंबर से फरवरी तक सक्रिय रहता है, लेकिन इस कीट का आक्रमण का जो नाजुक समय है वो 10 से 20 जनवरी होता है। लाही कीट की रोकथाम में स्वच्छ कृषि का अनुपालन बहुत ही प्रभावकारी होता है। शुरू में जिन पत्तियों पर लाही दिखाई पड़े उन्हें तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। अगात बुआई, जैसे अक्टूबर माह के 2 सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक बुआई करने से इस कीट से क्षति को बहुत कम किया जा सकता है। इस कीट का प्रकोप जनवरी फरवरी में सर्वाधिक होता है, और इसके बचाव के लिए नीम बीज चूर्ण अर्का 5% का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। यह छिड़काव कम से कम 7 दिनों के अंतराल पर 3 छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशियों में, रासायनिक कीटनाशियों में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा छिड़काव आवश्यकता पड़ने पर 20-21 दिनों बाद करना चाहिए। सरसों के पौधों पर आरा मक्खी के शिशु जो हैं वो भोजन जो है वो अपना जो फली है और

0: ये पत्तियों पर भी करते हैं। जैसे मादा वयस्क मक्खी जो है पत्तियों पर अंडे दे देती हैं और अंडों से शिशु निकलकर पत्तियों को खाते हैं। फसल को शिशु ही अधिक क्षति पहुंचाते हैं। शिशु कीट पौधों के पत्तियों को खाते भी हैं और साथ साथ छेद भी बनाते हैं। मादा वयस्क पत्तियों के किनारों में छेद कर उनमें अंडे देती हैं। इस कीट का शिशु जो पिल्लू की तरह काले रंग का हरे काले रंग का होता है। इसका आक्रमण नवंबर से मार्च तक होता है। फसल पर इस कीट का प्रकोप शुरू की अवस्था में कम होता है। उसी समय हाथ से चुनकर इन पिल्लुओं को इकट्ठा कर नष्ट कर देना चाहिए। इस पर भी जब प्रकोप नहीं रुके यानी अधिक संख्या में पिल्लू दिखाई पड़े तो जो है इसका इंडोक्साकार्ब का 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पेंटेड बग के शिशु एवं वयस्क एक ही आकार के होते हैं परंतु शिशु कीट के पंख नहीं होते हैं जबकि वयस्क कीट के पंख होते हैं। शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों से रस चूसते हैं जिसके कारण पौधे कमजोर हो जाते हैं। इसके आक्रमण के फलस्वरूप पौधे छोटे होकर हो जाते हैं और सूखकर मर भी जाते हैं। बड़े पौधों पर यह कीड़ा झुंड में पत्तियों एवं छिमियों पर रहकर रस चूसते हैं। इसका आक्रमण दिसंबर से फसल कटने तक रहता है। यह कटे हुए फसल के साथ खलिहान तक भी चला जाता है। इस कीट से बचाव हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 ml कीटनाशी का 1 ml प्रति लीटर पानी में या थायमेथोक्सैम का 1 g प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस जानकारी के लिए। और किसान भाइयों, रबी दलहनी और तिलहनी फसलों में कीट प्रबंधन आप कैसे करेंगे, इसकी जानकारी आज आपने प्राप्त की। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
3: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें।
4: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे, मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हुई उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन

0: तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगें तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पर ऊँचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर वो नहीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है।

0: ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर

0: छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, अंग उमंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम अंग की बात करते हैं, अंगिका की बात करते हैं, अंग प्रदेश की बात करते हैं, तब हमारे दिमाग

में, या फिर आप जो भागलपुर से नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने कभी ना कभी भागलपुर का नाम सुना है, तो वो सिल्क सिटी की बात ज़रूर करेंगे। सिल्क जो हमारे भागलपुर का बहुत मशहूर सिल्क है, तसर सिल्क, जो अपने देश में तो अलग अलग हिस्सों में जाता ही है, विदेशों में भी तसर सिल्क की बहुत मांग होती है। तो किस तरीके से हमारा भागलपुर, हमारा प्यारा भागलपुर सिल्क सिटी बन गया और क्या इसका इतिहास रहा है? क्या ये मुगलों के काल में शुरू हुआ या अंग्रेज़ों के समय पे शुरू हुआ, या फिर इसका इतिहास काफ़ी पुराना है? आज इस बारे में हम जानेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे। बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। और अगर हम बात करें ना कि भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जो जाना जाने लग गया है और इतनी प्रसिद्धि मिली है भागलपुर के सिल्क को, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? माना जाता है कि प्राचीन काल से भागलपुर का नाता सिल्क से रहा है। और अगर हम भागलपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो उनमें से एक नाम था चंपा, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। और चूंकि हमारा भागलपुर गंगा नदी के किनारे है, और आपको ये पता है कि आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो शहर या जो भी राज्य नदी के किनारे बसा होता है, वहाँ पर जो व्यवसाय होता है वो काफ़ी फलता फूलता है। अपने इतिहास में ये सारी बातें पढ़ी होंगी। तो क्या हुआ कि गंगा नदी एक व्यापारिक मार्ग था और गंगा नदी के किनारे हमारा अंग महाजनपद, तो माना जाता है कि यहाँ रेशम और वस्त्र व्यापार की परंपरा काफी पुरानी है। और क्योंकि गंगा मार्ग से वस्त्रों का आदान प्रदान होता था, तो उनमें एक सिल्क भी था। अगर बात करें तो खास तौर से पूर्वी भारत यानी कि मगध या बंगाल से यहाँ पर वस्त्रों का आवागमन होता था। अगर हम उस वक्त की मतलब प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में प्रत्यक्ष रूप से जो कारखाना के स्तर हैं उसके प्रमाण काफ़ी कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि उस वक्त वस्त्र की यहाँ पर बुनाई होती थी और रेशमी कपड़ों के व्यापार के भी संकेत कई सारे मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा भागलपुर है, यहाँ पर काफ़ी वन हुआ करता था, जंगल हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो वन आधारित तसर है यानी कि रेशम है, इसका उत्पाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता था और स्थानीय स्तर पर भी इसे काटा जाता था, बुना जाता था। इसी वजह से माना जाता है कि जो परंपरा रही होगी काफी प्राचीन रही होगी। और अंग जनपद को हम चंपा के नाम से इसलिए भी जानते थे क्योंकि यहाँ पर चंपा के पेड़ काफी ज्यादा थे। और वहीं अगर हम पाल काल की बात करें ना, मतलब कि 8वीं से 12वीं सदी के बीच में, तो उस वक्त पे इस क्षेत्र में पाल शासकों का काफी प्रभाव था। और उस वक्त का जो प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसके कारण यहाँ पर काफी बौद्ध भिक्षु भी आते थे, उनका भी आवागमन बढ़ा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यात्रा काफी बढ़ी। और जब लोग बाहर से आते हैं ना, तो व्यापार भी फलता फूलता है। तो ऐसे में जब उनसे संपर्क हो रहा था तो उनके वस्त्रों को देखा गया, जिसमें रेशमी कपड़े भी शामिल थे, तो इन कपड़ों का भी आदान प्रदान बढ़ा। और वहीं अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में रेशम उत्पादन की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिसे ये संकेत मिलता है कि भागलपुर क्षेत्र भी इस कारीगरी से जुड़ा हुआ था। और अब तक तो हमने बात की कि प्राचीन काल और मध्य काल में क्या हुआ, लेकिन मुगल काल में देखा जाता है कि सिल्क का जो व्यवसाय था इसे काफी विस्तार मिला। मुगलों ने क्या किया, वो कर प्रणाली लेकर आए, बाजार और संरक्षण भी उन्होंने दिया बहुत सारे मामलों में। तो इस माध्यम से क्या हुआ कि जो कारीगर थे, जो इधर उधर फैले हुए थे, अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे, तो अब कारीगरों को संगठित मुगलों ने किया था। और इसके साथ ही शाही दरबार में रेशमी वस्त्रों की मांग काफी अधिक थी, तो इसकी वजह से भी रेशम का उत्पादन बढ़ा और इसकी जो पहचान है वो भी काफी मजबूत हुई। शाही दरबार में मांग थी तो पहचान तो मजबूत होनी ही थी। और प्राचीन काल में जो उल्लेख है रेशमी वस्त्रों के, वो बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में इसके दस्तावेजी प्रमाण काफी प्रबल रूप से मिलते हैं और बड़े पैमाने पर इसका उल्लेख मुगल काल में दिखता है और बहुत स्पष्ट दिखता है। मध्य काल में रेशम उद्योग का काफी विकास हुआ। मुगल काल में माना जाता है कि भागलपुर रेशम बुनाई का प्रमुख केंद्र बन गया था और यहाँ पर स्थानीय कारीगर हथकरघा यानी कि जो अभी भी आप देखेंगे चंपानगर में हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता है, तो हैंडलूम से रेशमी कपड़े तैयार करते थे। और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो तसर रेशम के लिए बहुत अनुकूल था, तो इस वजह से भी यहाँ पर तसर रेशम का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। और तसर रेशम के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाही दरबारों में इसकी मांग काफी ज्यादा थी, तो ये एक विशेष परिधान में उस वक्त पे शामिल हो चुका था। वहीं अगर हम बात करें अब ब्रिटिश काल की,
तो माना जाता है कि जो भी सिल्क के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए ये स्वर्णिम दौर था, क्योंकि 18वीं से 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भागलपुर के रेशम को अंतर

अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया, क्योंकि वो देश से बाहर भी जा रहे थे और उनका मुख्य कारण तो यही था ना भारत में आने का, कि वो व्यापार कर सके। और यहाँ भागलपुर का जो तसर सिल्क था इतना कमाल का था कि उन्हें इसमें भी अवसर दिखा, तो उन्होंने यहाँ पर के जो तसर सिल्क थे उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया। और फिर यहाँ से रेशमी कपड़े यूरोप तक निर्यात होने लग गए थे ब्रिटिश काल में। तब भागलपुरी सिल्क की एक पहचान बन गई थी और ये एक ब्रांड बन गया था कि ये भागलपुरी सिल्क है। और इस समय में बहुत बड़ी संख्या में बुनकर परिवार इस उद्योग से जुड़ गए थे, पहले से जुड़े हुए थे लेकिन जब ये एक ब्रांड बन गया और भागलपुरी सिल्क को एक बहुत ही मजबूत पहचान मिली, तब बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए थे, तसर सिल्क के व्यवसाय से। अगर हम भागलपुरी तसर सिल्क की विशेषताओं की बात करें तो इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा होता है थोड़ा, और ये काफी खूबसूरत दिखता है। ये हल्का होता है पर मजबूत होता है और काफी टिकाऊ भी होता है। और कहते हैं तसर सिल्क को कुछ लोग एसी, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप तसर सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं या फिर चादर ओढ़ रहे हैं तो फिर ये गर्मियों में आपको ठंडे का एहसास कराते हैं, और वहीं सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखने की क्षमता भी होती है तसर सिल्क में। और ख़ास तौर से अभी भी बहुत जो जिन्हें सिल्क की अच्छी पहचान है, जो सिल्क के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद करते हैं, वो ये भी पसंद करते हैं कि उनके पास जो सिल्क के उत्पाद पहुँच रहे हैं, जो कपड़े पहुँच रहे हैं, वो हाथ से बुने हों और पारंपरिक डिज़ाइन में हो। उसकी बात ही अलग होती है, उसका एहसास ही अलग होता है। और भागलपुर में अभी भी कुछ जगहों पर हाथ से बिल्कुल पारंपरिक तरीके से सिल्क के जो चादर हैं वो बनाए जाते हैं, सिल्क की साड़ियां बनाई जाती है। और लेकिन अब हम बात करें तो आज भी हजारों परिवार रेशम के उद्योग से जुड़े हुए हैं, पावर लूम है और आधुनिक डिज़ाइन का भी प्रयोग किया जा रहा है, और ये प्रयोग बढ़ा भी है क्योंकि वो सस्ते होते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं, तो वैसी भी डिमांड आज के वक्त पे बन रही है जिसकी वजह से आधुनिक डिज़ाइन का प्रयोग बढ़ा है। वहीं सरकार द्वारा भी कई सारे सिल्क क्लस्टर योजनाएं भी चलाई जाती है, लेकिन उद्योग को कच्चे माल की कमी होती है और मशीनों की जो लागत आती है, और बाजार में भी एक प्रतिस्पर्धा आ गई है, एक कॉम्पिटिशन आ गया है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग सस्ता चाहते हैं, सुंदर चाहते हैं, फिर चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। तो इस वजह से अब बाजार में आधुनिक डिजाइन आ गए हैं और जो हाथ से बनाया करते थे उनकी मांग थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी जिन्हें सिल्क की पहचान है, जिन्हें सिल्क के कपड़े काफी अच्छे लगते हैं, वो आज भी हाथ से बने हुए सिल्क की डिमांड करते हैं और ओरिजिनल सिल्क की डिमांड करते हैं। दोस्तों हमारे भागलपुर में तो तसर सिल्क काफी फेमस है, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग तरह के जो प्राकृतिक रेशम है वो पाए जाते हैं, और जिनमें से कि चार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो मलबरी रेशम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा उत्पादित रेशम है तो वो मलबरी रेशम ही है, और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है तो शहतूत, जिसे कि हम अंग्रेजी में मलबरी कहते हैं, उसके पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उसी से मलबरी सिल्क का उत्पादन होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। और मलबरी सिल्क की ये विशेषता होती है कि ये काफ़ी चिकना होता है, चमकदार होता है और मुलायम भी होता है। ये खास तौर से कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। वहीं हम तसर सिल्क के बारे में तो अब तक बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि ये वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कीड़ों से बनाया जाता है, और क्योंकि हमारा भागलपुर, हमारा जो अंग जनपद था, एक वक्त पे यहाँ पर काफी घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ पर जो कीड़े होते थे उनसे तसर सिल्क बहुत ही आसानी से बनाया जाता था। और ये हल्का सुनहरा रंग का होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, और अभी मैंने बताया कि इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये एसी जैसा फील देता है, गर्मी में आपको ठंडे का एहसास कराएगा, ठंड में आपको गर्मी का एहसास कराएगा। और इसका जो उत्पादन होता है तसर रेशम का, वो खास तौर से बिहार में होता है, बिहार में विशेषकर भागलपुर में होता है, इसके अलावा झारखंड में होता है, और छत्तीसगढ़ में भी तसर रेशम काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा एरी सिल्क भी है, ये अरंडी के पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उससे ये प्राप्त किया जाता है। ये मुलायम काफी होता है, गर्म होता है, और इसे कहते हैं कि ये अहिंसा सिल्क भी है, क्योंकि इसमें ना कीड़े को बिना मारे ही धागे से निकाल दिया जाता है। अगर आपको सिल्क बनाने के प्रोसेस के बारे में बताएं तो जो कीड़े होते हैं उन्हें पहले पानी में खौलाया जाता है, उससे क्या होता है कि कीड़े मर जाते हैं और उनके चारों तरफ जो रेशे होते हैं फिर उसे निकाला जाता है। लेकिन एरी रेशम इनसे थोड़ा अलग होता है, इसमें कीड़े को मारने की प्रक्रिया नहीं होती है, बिना कीड़े को मारे ही इसे सिल्क निकाल लिया जाता है, और ये खासतौर से असम और उत्तर पूर्व भारत में काफ़ी प्रचलित होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें की हिंसा नहीं पसंद है और वो नहीं चाहते हैं कि किसी को भी नुकसान पहुंचे, तो वो एरी रेशम का उपयोग ज्यादा करते हैं। वहीं एक और सिल्क है मूंगा रेशम, ये केवल असम में पाया जाता है। इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा पीला होता है, और ये काफी टिकाऊ होता है और ये काफी

महंगा भी होता है। तो ये जो कुछ प्रकार के रेशम है वो अपने भारत में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भागलपुर में खास तौर से तसर सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं, और तसर सिल्क आज भी भागलपुर से देश के अलग अलग हिस्सों में और साथ ही विदेशों में भी इसकी मांग की जाती है तसर सिल्क की। तो आपके पास भी शायद कोई तसर सिल्क के कपड़े होंगे, कोई शॉल होगा और उस पे मंजूषा या फिर मधुबनी का काम करवा लीजिए, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको बाजार में भी ऐसे कपड़े मिल जाएंगे, जहां पर आप सिल्क के कपड़े लेने जाएंगे वो आपको ऐसे कपड़े दिखाएंगे जो कि हाथ से बुने हुए हैं, उसके ऊपर हाथ से उस पे कलाकारी की हुई है, तो वो अलग फील देता है, ऐसा महसूस कराता है जैसे आप अपने जमीन से अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और अंग उमंग कार्यक्रम में हम यही तो करते हैं, अपनी मिट्टी के बारे में बताते हैं, अपने अंग प्रदेश की मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए आज अंग उमंग कार्यक्रम में। इतना ही, बस जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि ध्यान रखें कि जहां भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो इससे सिर्फ आप खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाएंगे, और इससे हमारे शहर की तस्वीर भी बदलेगी। तो थोड़ा भी जहां भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई का ख्याल जरूर रखें। इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए।

0: Coco Cassie.
1: Cassie. Coco Cassie.
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
6: So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
8: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
11: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान।

0: इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम एक बड़ी जीत।
1: बच्चों की छुट्टियां हैं। तनु अपने नाना जी के पास आई हुई है। नाना जी के साथ रोज सैर

0: सपाटा मौज मस्ती का दौर चलता है। नाना जी शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, अब रिटायर हो चुके हैं और घर पर ही सुबह शाम मरीज देखते हैं। इस समय तनु जीवन काका और नाना जी के साथ बाजार जा रही है।
1: नाना जी।
2: हाँ बेटा।
1: हम सैर करने जा रहे हैं या सामान लेने?
2: क्यों जीवन?
3: भाई मैं तो सब्जी लेकर वापस चला जाऊंगा।
1: सब्जी लेकर?
2: बेटा तुम्हारी नानी ने सब्जी लाने को कहा है। उनका कहना है उनकी नक चढ़ी नातिन के लिए एकदम हरी हरी ताजी सब्जियां लाई जाए।
1: तो मैं नचड़ी हूँ?
2: बेटा ये मैंने नहीं कहा, तुम्हारी नानी ने कहा है।
1: झूठ, नानी मेरे बारे में ऐसा कह ही नहीं सकती। आपने उनकी बात में जरूर नमक मिर्च लगाया है।
3: अरे बेटा सब्जी में मसाले तो डालने ही पड़ते हैं।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीवन।
1: अच्छा तो फिर सीधे चलते हैं खेत में, वहीं से लेकर आएंगे ताजी सब्जियाँ।
2: चलो। लेकिन बेटा जरा ठहरो तो।
4: अरे अरे इधर देखो, इस बूढ़े आदमी के पैर में तो चोट है।
2: अरे जीवन तुम जरा घर से मेरा सामान का बैग लेकर के आओ। तनु बेटा जरा इधर आओ, तुम मेरी मदद करो।
4: अच्छा बाबूजी, मैं अभी लेकर आया।
2: ठहर ठहर इधर करो, आगे करो पैर। हाँ दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है।
0: सामने फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पैर पर एक घाव था और उस पर पट्टी नहीं बंधी थी। तभी थोड़ी ही देर में जीवन काका नाना जी का दवा पट्टी का बैग लेकर आया।
4: ये लीजिए।
2: लाओ लाओ मुझे दो। हाँ हाँ हाँ। तनु जरा इसमें से रुई निकालो। ये हाँ ये ठीक है। अरे जरा पैर आगे को करो। हाँ नहीं नहीं देखो देखो अभी दो दिन में ठीक हो जाएगा। चलो साफ कर लें तो मुझे। हाँ तनु पकड़ना जरा इधर से। अब दो एक दिन में ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं।
5: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: अरे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं है।
4: उधर चलो।
0: डॉक्टर साहब ने उस बूढ़े आदमी का घाव साफ किया, फिर दवा लगाकर पट्टी बांध दी और कहा अगले दिन घर पर आकर पट्टी बदलवा लें। फिर सैर के बाद जब तनु और नाना जी दोनों घर पहुंचे तो तनु ने कहा,
1: नाना जी
2: बेटा
1: आपने बहुत अच्छा किया कि उस आदमी के पट्टी बांधी, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता था।
2: हाँ बेटा इन्फेक्शन यानी संक्रमण तो हो ही सकता है
1: जी,
2: इसलिए बेटा घाव को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। बेटा इससे बैक्टीरिया जैसे रोगाणु शरीर में जाकर बीमारी को बढ़ा सकते हैं। और हाँ इससे मुझे याद आ रही है एक कहानी।
1: अरे वाह एक और मजेदार कहानी।
2: हाँ आज तुम्हें एक खास कहानी सुनाएंगे हम।
1: मेरे दोनों कान खुले हुए हैं तो शुरू कीजिए नाना जी।
2: तो सुनो। बात अगस्त सन 1865 की है
1: जी,
2: और देश पता है कौन सा था? स्कॉटलैंड। हाँ स्कॉटलैंड में ग्लासगो विश्वविद्यालय
1: जी,
2: ठीक है
1: जी,
2: शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लिस्टर कमरे में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में सर्जरी के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन देखे थे डॉक्टर लिस्टर ने।
1: अच्छा।
2: लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद भी कई बार रोगी की स्थिति बिगड़ जाती थी। घाव सूज कर लाल हो जाता था,
1: फिर
2: उसमें मवाद पड़ जाता।
1: अच्छा।
2: और इन्फेक्शन फैलने से कई रोगियों की मृत्यु तक हो जाती थी। डॉक्टर लिस्टर इस स्थिति से परेशान थे
1: अच्छा,
2: वो जानना चाहते थे कि रोगी के घाव में मवाद क्यों पड़ जाता है।

0: अच्छा
1: हाँ, इतना वो जान गए थे कि घाव में मवाद पड़ने और रोगी के शरीर में इन्फेक्शन का जहर फैलने के बीच एक गहरा संबंध है।
0: अच्छा
1: हाँ बेटा, और इन्हीं दिनों उन्होंने लुई पाश्चर का एक लेख पढ़ा।
0: क्या लेख था वो नाना जी?
1: उसमें था वो फ्रांस में ना अंगूर के रस से शराब बनाई जाती थी।
0: अच्छा।
1: और कभी कभी अंगूर के रस में सड़न पैदा हो जाती थी। लुई पाश्चर ने खोज से पता लगाया कि सड़न के कारण थे बैक्टीरिया जो हवा के द्वारा अंगूर के रस में पहुंच जाती थी। तो ये लेख पढ़कर डॉक्टर लिस्टर चौंक पड़े। हाँ, उन्हें लगा अगर जीवाणु अंगूर के रस में जाकर सड़न पैदा कर सकते हैं तो ये ऐसा खुले घाव के अंदर जाकर भी कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि मवाद पड़ने या इन्फेक्शन के पीछे यही कारण था।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ बेटा,
0: फिर उन्होंने क्या किया?
1: तो फिर डॉक्टर लिस्टर ने सुना कि गंदी नालियों की दुर्गंध मिटाने के लिए फिनाइल का छिड़काव किया जाता है।
0: ओ।
1: किया जाता है ना, अब भी किया जाता है
0: जी।
1: हाँ, तो बस उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में फिनाइल का छिड़काव शुरू करा दिया, साथ ही मरीज के घाव की सफाई और पट्टियां उबालने पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा।
0: तो उस समय क्या सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था?
1: हाँ बेटा, पुराने समय में सर्जन यानी शल्य चिकित्सक कपड़ों तथा हाथों को साफ किए बिना ही ऑपरेशन करते रहते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, साथ ही घाव पर पट्टियां बांधने के लिए पुराने फटे कपड़ों का उपयोग किया करते थे।
0: छी, पुराने कपड़े?
1: हाँ, और तो और ऑपरेशन के औजार भी यूं ही खुले पड़े रहते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, दरअसल तब गंदगी से इन्फेक्शन फैलने की बात लोगों को पता ही नहीं थी।
0: अच्छा, तो ये बात थी।
1: हाँ बेटा, और जब से डॉक्टर लिस्टर ने ऑपरेशन थिएटर में सफाई के नए व कड़े नियम लागू किए, तब से सर्जन साफ कपड़ों में और हाथ साफ करके ऑपरेशन करने लगे। हाँ, इसी तरह मरीज के पास लोगों के बार बार आने जाने पर भी रोक लगा दी गई।
0: अरे वाह।
1: हाँ,
0: तब तो डॉक्टर लिस्टर का नाम मशहूर हो गया होगा ना।
1: हाँ बेटा, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने उनका विरोध भी किया। लेकिन डॉक्टर लिस्टर के अस्पताल में जब इन्फेक्शन से होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आ गई, तब सब जगह डॉक्टर लिस्टर की इस बात को मान्यता मिल गई।
0: किस बात को?
1: इस बात को कि खुले घाव पर हमला करके रोगाणु ही इन्फेक्शन फैलाते हैं।
0: ओ।
1: हाँ, जो कि गंदगी के कारण पैदा होते हैं बेटा।
0: अच्छा।
1: तब लोगों ने सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। हाँ?
0: ओ, तभी अस्पतालों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
1: हाँ हाँ बेटा हाँ, वैसे स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता गया। बैक्टीरिया से लड़ने के लिए नई नई दवाइयों की खोज भी होती रही।
0: तो इस परिवर्तन का श्रेय डॉक्टर लिस्टर को जाता है।
1: हाँ भाई, पहला कदम तो उन्होंने ही उठाया था।
0: ओ, तभी आपने उस घाव को साफ करके उस पर पट्टी बांधी थी।
1: तन्नू बिटिया जी, मुझे लगता है कि आप मुझसे भी बड़ी डॉक्टर बनेगी। हाँ,
0: आपसे भी बड़ी। सफेद बाल, चश्मा लगाए।
1: अच्छा बाबा, तुम बच्चा डॉक्टर बन जाना।
0: ये ठीक है।
2: हाँ तो बच्चों, बातों ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितनी ही नई नई बातें। क्यों, तुमने भी सीखी ना? तो भाई, इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना। बच्चों

0: आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है।
1: एक बड़ी जीत।

विनी कुमार, सतीश कक्कड़ और मिताली, ध्वनिंकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
9: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
11: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और दोस्तों, आज के टाइम पे ना हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, फिर चाहे हम हो या हमारा फ़ोन हो या फिर हमारे आसपास की लगभग सारी ही चीज़ें, तो ऐसे में हमारी कृषि क्यों पीछे रहे, उसे भी स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट फार्मिंग आज के टाइम पे कहें तो ज़रूरत बन गई है। और इस विषय में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
14: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए।
12: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है।
14: तो स्मार्ट फार्मिंग ऐसी फार्मिंग को कहते हैं जिसमें कि हम डेटा का यूज़ करें। जैसे कि नॉर्मल कृषि होती है, उसमें हम लोग डेटा पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। डेटा मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसको

0: जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कृषि में। डेटा आजकल हर चीज़ में डेटा है, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप अपना कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो भी एक डेटा है। कैसे हम डेटा को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं कृषि में, तो हम ऐसे चीज़ों को स्मार्ट कृषि कह सकते हैं। तो आप देखते होंगे अभी नया नया तकनीक, बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं कृषि में, जो भी तकनीक जो डेटा को यूज़ करके आपको अच्छा डिसीजन लेने में मदद करे, ऐसी कृषि को हम स्मार्ट खेती कह सकते हैं।
1: तो सर, भारत में स्मार्ट फार्मिंग क्यों ज़रूरी है?
0: क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में हमारे छोटे जोत के किसान सबसे ज़्यादा भारत में ही हैं, इसीलिए। और उनको आप देख रहे होंगे कि आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा बात है, कभी वर्षा आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाता है। तो अगर हम अब हमारे किसान स्मार्ट कृषि का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्मार्ट कृषि करेंगे तो वो अपने संसाधन का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि अभी कितना लेबर भी मिलना कितना मुश्किल हो गया है, अभी हर इनपुट का भी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे युवा हैं हमारे, वो कृषि से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए अगर वो स्मार्ट कृषि करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को इससे डर लगता है कि हम कैसे यूज़ करें, बहुत आसान है ये समझना। अगर वो एक छोटा सा ट्रेनिंग कर लें इसके ऊपर कि कैसे हम मोबाइल या उपकरण को कैसे यूज़ करें, तो आराम से उसको सम्मिलित कर सकते हैं अपने कृषि में और अपना पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, अपना दाम भी उनको कम लगेगा और ज़्यादा अच्छा पैदावार भी होगा, और जो अभी जो करेंट टाइम्स है उसको भी वो अच्छे से डील कर पाएंगे।
1: सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ये बहुत मुश्किल है,
0: बिल्कुल,
1: और उनके मन में ये भी बात आती है कि ये बड़े किसानों के लिए है, जो छोटे लेवल पर खेती गृहस्थी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि ये उनके लिए है नहीं, क्या ये सच है?
0: बिल्कुल ये सच नहीं है। एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई भी किसान जो एक स्मार्टफोन यूज़ करता है, आप जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन में आजकल 15 से 18 सेंसर लगे रहते हैं, तो वो सेंसर भी जो है एक तरह से वो स्मार्ट डिवाइस ही है, जो आपका स्मार्टफोन है उसको स्मार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे कि आप बहुत तेज चलते हैं तो आपका स्टेप्स वो काउंट कर लेता है, मान लीजिए आप उसको बहुत गर्म जगह में मोबाइल फ़ोन को ले जाते हैं तो फिर वो अपने आप बोलता है कि आप इसको किसी ठंडे जगह में ले जाइए। तो ये सब सेंसर का है जो प्रयोग है जो मोबाइल फ़ोन में होता है। ऐसे ही सेंसर हम अपने ज़मीन में भी लगा सकते हैं। आप जानते होंगे बहुत अमेजोन जैसी वेबसाइट पे बहुत कम दाम में सेंसर मिलता है, 1500 रुपये में सॉयल मॉइस्चर सेंसर आप खरीद सकते हैं। तो वो सेंसर अगर आप ज़मीन में लगा देंगे, अपने मिट्टी में लगा देंगे, तो वो बता देगा कि आपकी मिट्टी को कब सिंचाई चाहिए, ऐसे हम कितना पानी जो है वो वेस्ट होता है सिंचाई के चक्कर में। अगर वो आप डिवाइस लगा देंगे 1500 रुपये का, तो आपको बता देगा कि आपको कब आपकी ज़मीन को सिंचाई चाहिए, तो आप इसमें अपना कितना कम पानी लागत आपको कितना कम हो जाएगा अगर आपको कम सिंचाई करनी पड़े तो। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे शोध में ये पता चला है कि 30-40% जो है आप सिंचाई का पानी बचा सकते हैं। तो मान लीजिए इतना पानी आप बचा लिए तो आपको कितनी लागत कम हो जाएगी कृषि में। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, इसलिए बहुत आसान है यूज़ करना, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है किसान को कि हम थोड़ा सा छोटा मोटा चीज़ करके ट्राई करें। एक बार वो ट्राई करेंगे तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो उसको बड़े वृहद स्तर पे कर पाएंगे।
1: ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें कौन कौन सी है?
0: तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें तो जैसा अभी मैं बता रहा था कि सेंसर जो है, इसको हम IoT भी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म है। तो सेंसर के माध्यम से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं कृषि में, जैसे कि आपका टेम्परेचर, मान लीजिए कि कब आपका टेम्परेचर कब रहेगा, क्या रहेगा, ये भी आप देख सकते हैं। आपके सॉइल के मिट्टी जो है उसमें नमी कितनी हद तक है, ये सभी आप सेंसर के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक तो कैटेगरी हो गया इसका जिसको हम IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा कैटेगरी जो है वो ड्रोन्स हो गया आपका, ड्रोन के माध्यम से भी हम बहुत सारा सिंचाई कर सकते हैं, उसमें स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं हम, और भी उससे हम डेटा निकाल के ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा चेंज आ रहा है ओवर द ईयर्स, कैसे चेंज आ रहा है। इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल ऐप में आप देखते होंगे कितने सारे आजकल मोबाइल एप्लीकेशन है। एक बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है मौसम, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि आपके स्पेसिफिक लोकेशन में, मतलब आपके जगह पे क्या मौसम का हाल रहेगा, अगले 7 दिन में क्या रहेगा, इस महीने क्या रहेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे तकनीक हैं मोबाइल फ़ोन का, बहुत सारा ऐप एप्लीकेशंस भी हैं। अभी हाल ही में कृषि मंडपम में एक बहुत अच्छा ऐप लॉन्च हुआ है जो कहते हैं भारत विस्तार। उस ऐप के माध्यम से भी आप अपने लोकेशन के हिसाब से अनेक भारतीय भाषा में देख सकते हैं, कुछ भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं कृषि के आधारित, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं जो कि हमारे स्मार्ट कृषि के तहत हो सकता है।
1: तो सर, क्या बिहार में स्मार्ट फार्मिंग के कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण हैं?
0: हाँ बिल्कुल, अभी बिहार में जो है बहुत सारे ऐसे मॉडल चल रहे हैं जिसमें स्मार्ट कृषि का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप मंडी का रेट्स जो है, जो बिहार में डिफरेंट डिफरेंट

0: मंडी है, उसका रेट्स भी आप कितना उसमें क्या भाव चल रहा है ये भी आप मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। ये भी एक तरह से स्मार्ट कृषि का ही जरिया है। आप ये भी जानते होंगे एक बहुत अच्छा योजना है जिसको कहते हैं हम नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इस योजना के माध्यम से भी आप ड्रोन का किसान अपने खेत पे उस पर स्प्रे करवा सकते हैं, लागत उससे कम कर सकते हैं। और भी सिंचाई के लिए सेंसर बहुत अच्छे वृहद तरीके पे यूज़ हो रहा है। सैटेलाइट के से भी बहुत सारा डेटा अभी अर्जित हो रहा है सैटेलाइट के माध्यम से, जिससे कि हम बहुत सारा डिसीजन लेने में हमें आसानी पड़ता है। अभी तो और भी ऐसे ऐसे मॉडल आ गए हैं जैसे कि पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, जिसमें कि अपने घर बैठे बैठे आप अपना पूरा फार्म को चला सकते हैं। अभी हाइड्रोपोनिक्स बहुत सारे लोग जो आप दिल्ली में देखेंगे या फिर बड़े बड़े शहरों महानगरों में देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स मैक्सिमम स्मार्ट कृषि के तहत हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम जो काम है वो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल डिवाइस से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अपने पूरे सेटअप को। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो कि बिहार में भी अभी हो रहा है।
1: तो अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे किसान भाई बहनों को इससे क्या फ़ायदा होगा?
0: सबसे बड़ा फ़ायदा तो इससे ये होगा कि लागत में बहुत कमी आएगी, क्योंकि अभी लेबर भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी खेत गांव में भी आप जाएंगे तो आपको लेबर का में कठिनाई होती है मिलने में। इसके अलावा आप देखेंगे कि मौसम पे हमें बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। अभी ये नहीं कह सकते हैं आपकी मानसून के समय आपको बारिश होगा ही, कभी गर्मी के समय में बारिश नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा सुखाड़ पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। ये सब चीज़ से आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका कृषि को आप उसी माहौल में ढला सकते हैं और इस हिसाब से आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हर किसान को ये कहना चाहेंगे कि आप छोटे चीज़ से उसको यूज़ करें, कोई बहुत बड़ा सेटअप मत लगा लें क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करें अपने खेत पे, कोई सेंसर ले लें, कोई मोबाइल डिवाइस का यूज़ करें, देखिए कि बहुत सारा चीज़ आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारा चीज़ आपको मतलब आपको मिल जाएगा पॉसिबिलिटी उससे।
1: सर, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि मोबाइल में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे स्टेप्स को भी काउंट करते हैं, तो क्या ऐसे कोई सेंसर होते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में किसान भाई बहन इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल फोन में?
0: मोबाइल फोन में डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सेंसर जो है वो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट पे जाके, सबसे सिंपल सेंसर जो है जो यूज़ कर सकते हैं वो है सॉयल मॉइस्चर सेंसर। उसको आप आराम से खरीद सकते हैं और अपने मोबाइल डिवाइस में ही उसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं कि हमारे सॉयल का जो है, हमारे मिट्टी का जो है, उसमें क्या नमी का मात्रा है। अगर वो नमी का मात्रा कम हो जाएगा तो अपने आप आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या फिर एक अलार्म बजने लगेगा कि अब आपको सिंचाई की ज़रूरत है। तो इससे एक शुरू करने के लिए अच्छा जरिया हो सकता है। डायरेक्ट मोबाइल का तो एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मोबाइल का ही सेंसर जो है वो यूज़ हो सकता है स्मार्ट कृषि में भी।
1: अभी AI के बारे में बहुत बातें हो रही है, AI काफ़ी चर्चा में है, तो क्या AI स्मार्ट फार्मिंग में किसी तरीके से मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, स्मार्ट कृषि में AI का बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी आपको डिसीजन जो आप लेते हैं, जो भी किसान को मान लीजिए डिसीजन तो फाइनल जो डिसीजन लेना है वो किसान को ही लेना है, AI आपको बहुत सारा बता सकता है ऑप्शन। जैसे कि आपको क्या कहते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको चार मिलते हैं ऑप्शंस, तो आपको AI चार पांच ऑप्शन बता सकता है, उसमें जो सही है वो आपको ही चूज़ करना है। तो अभी AI का मॉडल जो है बहुत सारा डेवलप हो रहा है, अभी बहुत सटीक नहीं है ये जानकारी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसपे कि आप रिलाई कर सकते हैं। जो भारत विस्तार है वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हर लोग यूज़ कर सकते हैं। और AI से क्या होगा कि फ्यूचर में जितना ये मॉडल डेवलप होते जाएंगे, अभी तो ये हर दिन मॉडल अपने आप डेवलप हो रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में देखेंगे कि इतना अच्छा ये मॉडल डेवलप हो जाएगा कि वो अपने से वो भी वो डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से को यूज़ करेंगे अगर आप, तो बहुत अच्छा कृषि कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मोबाइल पे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में आप अपना खेत को मैप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक हेक्टेयर का खेत है, उसको आप मैप कर सकते हैं, उसके लोकेशन को आपको बार बार उसमें जानकारी आती रहेगी कि कब वर्षा हुआ आपके खेत में, आपको खेत में सबसे अच्छा क्या लगाना चाहिए, इस सीज़न में आपको क्या लगाना चाहिए, किसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। तो इस तरह ये सब ऐप का यूज़ करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और भी अच्छा खेती कर सकते हैं और भी अच्छी कमाई कर सकते हैं।
1: मतलब इतनी सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन कैसे शुरू कैसे करें स्मार्ट फार्मिंग?
0: हाँ बिल्कुल, तो शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तो रहेगा कि अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ ऐप जो है, कुछ ऐप जो है वो आप जरूर यूज़ कीजिए। जैसे भारत विस्तार के बारे में मैं बता रहा था, वो जरूर यूज़ कीजिए। एक मौसम नाम का ऐप है, वो भी जरूर यूज़ कीजिए, उससे आपको मौसम आधारित जानकारी मिलेगी। ई नैम का ऐप है जिसमें कि आपको मंडी का रेट्स मिलता है कि किस किस मंडी में क्या क्या रेट चल रहा है हमारे कृषि के प्रोडक्ट का। तो ये सब अगर

0: आप इससे शुरुआत करेंगे तो आपको एक अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी जानकारी उसी ऐप के माध्यम से मिलेगी कि हम और इसको कैसे आगे बड़े स्तर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एक माध्यम हो सकता है शुरुआत करने के लिए। उसके बाद फिर आप छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप सेंसर ले लिए, उस सेंसर को लगा के आप देखिए कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, ये हमको हेल्प कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपको एक गमला, आपके घर में आप गार्डनिंग करते हैं अपने घर में ही, और आपके घर में मान लीजिए आप 5 दिन के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, तो आप वो सेंसर खरीद लीजिए और उस सेंसर को लगा लीजिए अपने गमले में लगा लीजिए। तो हो सकता है जब आपको मोबाइल पे अलार्म आने लगेगा कि अब आपके गमले को पानी की आवश्यकता है, तो आप किसी को घर पे बोल दीजिए या फिर पड़ोस में कि आपके गमले में पानी दे दें। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपको भरोसा बने कि ये सच में हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है।
1: मतलब बहुत छोटे लेवल पर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो आप बड़े स्तर पर जा सकते हैं।
0: बिल्कुल हाँ, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिए और आप नहीं अच्छे से समझ पाए सारा चीज़ को, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आप सीखिए। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ट्रेनिंग होती है हर साल, यहाँ पर डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर एक ट्रेनिंग होती है, 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, जिसमें कि हम लोग हर चीज़ बताते हैं कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप ऐसी ट्रेनिंग को आप अगर अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे यूज़ करें।
1: सर अभी आप ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे, तो किस तरीके से किसान भाई बहन इस ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं और ये कब होता है?
0: तो ये ट्रेनिंग जो है, इसके आप अपने नियरेस्ट जो आपका आत्मा है, हर जिले में बिहार में एक आत्मा होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, वहाँ पर जाके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप अगर कहेंगे कि हम डिजिटल कृषि के ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो साल में एक बार करवाती है, लेकिन और सब भी जो है यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारा बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है पटना में, वो लोग भी करवाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम कहाँ पर करना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो वो आपको रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर हम वो ट्रेनिंग करवाते हैं। हर साल एक बार तो ये ट्रेनिंग जरूर हमारे विश्वविद्यालय में होती है। अभी जनवरी के महीने में यहाँ पर वो ट्रेनिंग आयोजित की गई थी।
1: तो मतलब अपने पास के आत्मा केंद्र पे जाकर आप इनरोल करा सकते हैं खुद को।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो सर आप लगातार सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, आईओटी के बारे में भी आपने बताया, तो ये कैसे काम करते हैं?
0: तो आईओटी जो है, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये काम करता है, ये आपके मोबाइल से इंटीग्रेटेड रहता है। तो मान लीजिए कि कुछ भी मेज़र करना हो, मान लीजिए ह्यूमिडिटी मेज़र करना हो, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता जिसको बोलते हैं, और मान लीजिए तापमान मेज़र करना हो, ये सब चीज़ को हम आईओटी से कर सकते हैं। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे सेंसर हैं, कितने सारे गैरेज आप देखेंगे, गैरेज आजकल ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि आप एक बटन दबाएंगे तो, या फिर कोई भी आसपास गाड़ी आ रही है तो वो गैरेज अपने आप खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि कोई ऑनर उसका आ रहा है, या वो गैरेज छोड़िए मान लीजिए बल्ब भी आजकल आने वाला है, सेंसर वाला बल्ब आने लगा है, कोई भी आदमी पास करेगा उस बल्ब के रास्ते तो वो बल्ब अपने आप जलने लगेगा। तो ये सब सेंसर है। आईओटी जनरली ऐसे ही काम करता है कि वो डिसीजन लेता है आपके मूवमेंट को देख के, या फिर आपके टेम्परेचर को देख के, या फिर आपका ह्यूमिडिटी को देख के। तो ये सब चीज़ आईओटी के अंदर आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर।
1: और स्मार्ट सिंचाई कैसे काम करता है?
0: तो स्मार्ट सिंचाई में भी आईओटी का ही एक माध्यम है। स्मार्ट सिंचाई में आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने डिफरेंट डिफरेंट सेंसर, बहुत सारे सेंसर लगा दिए अपने पूरे खेत में, तो वो एक सारे सेंसर मिलके एक डिसीजन ले लेंगे कि आपके खेत को सिंचाई की ज़रूरत है, और फिर वो आपको अलार्म आ जाएगा मोबाइल पे, आपको मैसेज आ जाएगा कि अब आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह आप क्या करेंगे, जब ज़रूरत है खेत को सिंचाई की तभी आप सिंचाई देंगे, ये नहीं कि कभी भी सिंचाई दे दिए, उससे बहुत वेस्टेज होता है पानी का भी, संसाधन का भी। आप जानते होंगे डीजल का भी यूज़ होता है जनसेट चलाने में, पंप चलाने में, तो ये सब आपका 30-40% आपका जो है बचत हो सकता है अगर आप ये का यूज़ करें तो।
1: तो सर AI और डेटा एनालिटिक्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो AI और डेटा एनालिटिक्स का अगर आपको बेसिक यूज़ करना है तो आप बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने भी ऐसा ऐप बनाया हुआ है, जैसे कि आप देहात नाम की एक कंपनी है, उसने भी एक ऐप बनाया है, एक डिजिटल नाम ग्रीन नाम की एक कंपनी है, उसने भी एक ऐप बनाया है। तो ये सब ऐप जो है, अभी ये सब ऐप उतने उन्नत नहीं हुए हैं, अभी बेसिक ही हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि ये सब ऐप से आप कुछ सीखें और बड़ा करें। जैसे भारत विस्तार ऐप जो है, ज़रूर आप यूज़ करना चाहें। एक और ऐप है किसान.ai, ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है, जिसमें कि आप सिर्फ कुछ भी आप बोलिए और वो आपको उसका जवाब देगा, आपको सिर्फ किसी भी भारतीय भाषा में आपको वो बोलना है और आपको जवाब आएगा। तो ये सब यूज़ करके किसान भाई जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, और एक अच्छा शुरुआत रहेगा तो फिर वो आगे इसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं।
1: तो AI का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है कि

0: फोटो आपने भेजी और आपको उसके रोग के बारे में पता करना हो तो ये भी हो सकता है कि AI
1: बिल्कुल हाँ, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी, जैसे कि आप जानते होंगे एक प्लांटिक्स ऐप है, एक हमारी यूनिवर्सिटी ने भी एक ऐप बनाया है ई निरोग ऐप, ये सब ऐप का भी आप यूज़ करके मान लीजिए कोई भी फसल में आपको प्रॉब्लम है तो उसका फोटो अगर आप अपलोड कर दीजिए तो AI वो एनालाइज कर लेगा कि कौन सा रोग है उसमें और फिर आपको जवाब देगा, ऐसे भी आप AI का यूज़ कर सकते हैं।
0: तो सर अभी बहुत सारे लोग स्मार्ट खेती कर रहे होंगे, तो क्या भारत में कोई सफल उदाहरण है जिन्होंने स्मार्ट खेती की है या ऐसा कुछ?
1: हाँ, बहुत सारे सफल उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीन हाउस अभी ऐसे लग रहे हैं भारत में जो कि पूरा पूरा AI से कंट्रोल्ड है, पूरा IoT से कंट्रोल्ड है। तो ज़्यादातर आप अगर देखेंगे कि दक्षिण भारत में और ख़ासकर आप देखेंगे ऐसे स्टेट जो हैं महाराष्ट्र गुजरात, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे ग्रीन हाउस में ये सब काम कर रहे हैं और अच्छा सफल हो रहे हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं स्विगी का इंस्टामार्ट आप देखे होंगे या फिर जो भी ग्रॉसरी का डिलीवरी ऐप होता है जैसे कि आप किराना का सामान मंगा सकते हैं, उसमें देखे होंगे अलग सेक्शन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिसमें कि आपको आप लेट्यूस या जो कैबेज है ब्रोकोली है ये सब खरीद सकते हैं जो पूरा ऑर्गेनिक माध्यम से बना है और उसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट प्राइस से। और आप देखेंगे कि 12 बजते बजते हर दिन के 12 दोपहर के 12 बजते बजते वो बिक जाता है, इतना डिमांड है उसका क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये सारी फसलें जो है ज़्यादातर हाइड्रोपोनिक सिस्टम से होती है और AI मेथड से, इसमें AI यूज़ किया जाता है इसके लिए, आपको ग्रीन हाउस में होता है, ये पॉली हाउस में होता है जिसमें कि AI का यूज़ किया जाता है, IoT का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं लेकिन इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो छोटे छोटे अगर आप हम छोटा शुरुआत करें तो बाद में आप ऐसा उद्यम लगाने का सोच सकते हैं।
0: तो अभी शुरुआत धीरे धीरे करने की ज़रूरत है, लेकिन सर जब हम कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती है, तो स्मार्ट फार्मिंग अपनाने में क्या क्या चुनौतियां आ सकती है?
1: चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती तो ये आ सकती है कि अभी भी हमारे किसान बंधु जो हैं वो सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो उतना सेफ़ नहीं है यूज़ करने में, आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो जनरली लोगों को एक डर रहता है स्मार्टफोन यूज़ करने में। तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, कैसे मैसेज करते हैं, कैसे हम व्हाट्सअप पे चैट करते हैं या फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं। छोटा छोटा चीज़ का से शुरुआत कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा आप मोबाइल के अलावा और भी चीज़ से आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आप जब भी जाएं किसी ट्रेनिंग में तो वहाँ पे लोगों से पूछें कि अभी क्या कौन सी नई ऐप है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, या फिर अगर मान लीजिए ये रेडियो का जो प्रसारण है, ये मान लीजिए मेरे पास रेडियो नहीं है तो हम कैसे इसको और सुन सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से सुन सकते हैं क्या? तो ये अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग वैसा रखेंगे कि जानने का जागरूकता रहेगा तो आप जरूर सीख जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब वृद्ध हैं लेकिन तब भी वो बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, और बहुत सारे ट्रेनिंग में हम ऐसे लोगों को, ऐसे किसान को देखते हैं जो कि बिल्कुल मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करते हैं, स्मार्टफोन सब फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं जो छोटा वाला फ़ोन आता है। तो थोड़ा सा ये तकनीक सीखिए क्योंकि नई तकनीक सीखेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, तो अभी ज़रूरत है कि आप तकनीक को अपना दोस्त बनाइए तभी आप सफल हो पाएंगे।
0: ये बात तो बहुत सही कही आपने कि नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए और तकनीक को अपना दोस्त बनाने की ज़रूरत है, ना कि उसे अपना दुश्मन समझना चाहिए। तो सर अंत में किसानों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: तो मेरा संदेश यही होगा किसानों को कि आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते रहिए, मतलब आप छोटा छोटा शोध करते रहिए अपने जगह पर। ये देखिए कि हम कैसे मोबाइल फ़ोन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं जैसे भारत विस्तार का मैंने बताया, आप उसको यूज़ करके देखिए कि सच में वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत खास फ़ायदा ना दिखे उसमें, तो कम से कम यूज़ कीजिए तो आपको खुद पता चलेगा कि वो सच में कारगर है या नहीं। या मान लीजिए वो सेंसर है, IoT वाला सेंसर है, वो आप देखिए कि सच में वो काम कर रहा है कि नहीं, कारगर है कि नहीं। तो घबराइए मत, मतलब आपको हमेशा तकनीक का इस्तेमाल जो है वो करते रहना है और ये देखना है कि सच में आपके ज़िंदगी में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं उस तकनीक को यूज़ करने के बाद। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि आप हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए और नई तकनीक को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहिए।
0: तो बिल्कुल नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहिए और अगर संभव हो सके, संभव या फिर ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग लीजिए और छोटे छोटे ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए। सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद उमा जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि खाती, खो खो खाती।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
4: So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
7: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से

पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा छेद की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उन्नत कृषि। श्रोताओं, आप सभी को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ खास बातें आप सभी के लिए उन्नत कृषि में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा हर रोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट, और आज फिर से हमारे एक खास विषय के लिए हमारे पास है एक खास एक्सपर्ट, और उनका नाम है डॉक्टर गिरीश चंद, और ये है एसोसिएट प्रोफेसर पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और जैसा कि हम अपने लिसनर्स को बता दें, हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है केला के प्रमुख रोग एवं उपचार। वैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में केले बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहीं मेट्रो सिटीज़ की बात करें, महानगरों की बात करें, आप जाएंगे तब आपको केले का जो महत्व है वो समझ में आएगा कि वहाँ पर केले कितने महंगे मिलते हैं। क्योंकि केला अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फल है। हमारा सौभाग्य है कि हम बिहारी हैं और बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी इसके लिए उपयुक्त जलवायु मिलती है, और

0: यहाँ उपजता है और हमारे किसान भाई इसे उपजाते हैं हमारे लिए, लेकिन जब हम इसकी खेती करते हैं, जब हम इसे अपने बागानों में लगाते हैं, तब ज़रूरी होता है कि हम इसका रख रखाव करें। जो कई जो कीट पतंगे होते हैं वो इस पर नज़र टिकाए बैठे रहते हैं, और अगर हम इस समय में इनकी सुरक्षा का खास ख्याल ना रखें तो इन्हें कई रोगों से गुजरना पड़ता है, और इस वजह से हमारे जो केले के जो कई जो गाछ हैं, वृक्ष हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को घाटा भी पड़ जाता है। तो आइए, सबसे पहले ज़रूरत होता है कि आप सभी को रोगों का पहचान होना। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ इसीलिए यहाँ पर हैं, आप सभी को बताएंगे केले के प्रमुख रोगों के बारे में और साथ ही उसके इलाज के बारे में भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे रोग हैं जैसे कि पनामा मिल्ट, सिगाटोका, एंथ्रेक्नोज, बांची टॉक और भी बहुत सारे जो रोग हैं वो केले के वृक्षों में लगते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर पनामा मिल्ट की बात करें तो ये कैसा रोग है और इसे कैसे उपचार हो सकता है, हमारे किसान भाई कैसे उपचार कर सकते हैं इसका?
1: किसान भाइयों, केला अपने बिहार का एक प्रमुख फल वाला पौधा होता है। इसके उत्पादन में हमारे बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारा जो बिहार का एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्थिक कृषि की आर्थिक स्थिति है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। और उत्पादन के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होगा, जब हम बाग को लगाते हैं, बाग लगाने से या केले के पौधे लगाने से लेकर कटाई तक इसमें बहुत ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, और ये लगभग 12 से लेकर 13 महीने तक का इसमें टाइम लग जाता है, तब जाकर इसमें कहीं हम फल को काट पाते हैं। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग एक साल पूरा लग जाता है। तो एक साल का ये पौधा होता है, और इसमें अगर समय समय पर हम ध्यान नहीं देते हैं और लगातार एक ही खेत में अगर हम किसी फसल को लेते हैं तो इसमें कई तरह से मिट्टी का, मृदा का क्षरण होता है, ह्रास होता है, और धीरे धीरे इसमें कुछ ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो नुकसान हमारी फसलों को पहुंचाते हैं। तो इसमें ये पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारा जो केला का फसल है इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग हैं और इनका क्या पहचान है, इनका क्या लक्षण है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। जब तक हम लक्षण को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसका निदान या सही दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो केला है, केला में कितने प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो प्रमुख रूप से जो इसमें रोग लगता है उसमें उठा रोग लगता है, और उसके बाद दूसरा रोग लगता है वो सिगाटोका रोग लगता है या पत्रलांछन रोग कह सकते हैं। केला का एक तीसरा रोग है, उसे हम कह सकते हैं कि श्याम बर्ण रोग या एंथ्रेक्नोज रोग लग जाता है, और एक चौथा रोग होता है जिसे हम बंची टाप या पौधा छोटा हो जाता है, ये विषाणुओं द्वारा होता है। तो इस तरह से जो हमने चार प्रमुख रूप के रोग बता रहे हैं इसको जान लेना है। पांचवा एक और रोग लगता है, वो होता है सूत्रकृमि या जड़ ग्रंथि रोग होता है, जो जड़ों में गांठें बन जाती हैं, पौधा खुराक लेना बंद कर देता है, या खुराक ले भी लेता है तो जड़ में जो सूत्रकृमि होता है वो उसमें गांठ में जमा करते रहता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उत्पादक क्षमता घट जाता है। तो आइए सबसे पहले जो केला में प्रमुख रोग है वो है उकठा रोग, और उकठा रोग का पहचान करना बहुत आवश्यकता है। ऐसे भी आप यदि खेत में देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा समय है ये, जब रोग का लक्षण अपने कह सकते हैं कि एकदम चरम पे होता है, जो हमारा अक्टूबर का महीना होता है वो बहुत ही चरम पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा फसल ख़त्म हो जाता है और अगला फिर हम फसल लेने की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। तो उकठा में दो तरह का उठा होता है, और एक तो होता है पनामा बिल्ट, जिसे हम फ्यूजेरियल बिल्ट कहते हैं, ये फफूंद जनित रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा आजकल हमारे बिहार में देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है, लगभग हमारे पूरे उत्पादन का 30 से लेकर 40% तक नुकसान पहुँचा रहा है, और बाकी सब और दूसरे रोग हैं वो भी नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरा इसमें जो उकठा का ही रूप होता है वो जीवाणु उकठा होता है या बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। अब इसमें देखना है कि लक्षण क्या है। यदि फफूंद जनित लक्षण आते हैं तो फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे। यदि बैक्टीरिया जनित रोग दिखाई देता है लक्षण, तो आप

0: बैक्टीरिया नाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे तभी केले के जो रोग लगते हैं उससे आप निदान पा सकते हैं। तो फफूंद जनित रोग में जो लक्षण होता है, शुरुआत इसका जब पहला बारिश होता है जून के प्रथम सप्ताह में या जून के मध्य में, उसी समय इसका जो फफूंद होता है उसके जो बीजाणु होते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं उसके जो अंडे होते हैं, उसी समय इसका जमाव शुरू हो जाता है। और ये इतना खतरनाक कह सकते हैं रोग होता है, इतना भयंकर रोग होता है कि इसके जो अंडे होते हैं यदि मिट्टी में रहता है तो वो 25 से लेकर 30 साल तक इसके अंडे जीवित रहते हैं। और यदि हम फसल का मतलब लेने के बाद खेती का उत्पादन करना केले का बंद कर देते हैं, दूसरी फसलों को अगर हम समावेश कर लेते हैं, फिर अगर हम 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी यदि केले की खेती करेंगे फिर पुनः ये रोग जागृत हो जाता है, उग्र रूप में आ जाता है। तो ये फफूंद जनित रोग का लक्षण कैसा होगा? लक्षण इसका जैसे ही पहला बारिश होता है फफूंद इसका जागृत हो जाता है, बीजाणु जमने शुरू हो जाते हैं, इसका जो जड़ तंत्र होता है जड़ तंत्र में प्रवेश करता है और जड़ तंत्र प्रवेश करने में उसमें अपना संख्या बढ़ा लेता है और इसमें जो ऊंस बनता है घाव बनाता है और जड़ को खुराक लेने से रोकता है, इसका जो जाइलम होता है वो चोक कर जाता है, यानी जिससे हमारा पौधा खुराक लेता है, पानी लेता है, तत्व लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है और पौधे में ले जाता, पत्ती तक पहुंचाता, फिर फोटोसिंथेसिस करके नीचे तक इस तरह से हमारी जो क्रिया होता है पौधे का वो पूरा ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है। और जैसे ही चोक करता है उसके तुरंत बाद इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसमें जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ओल्डर लीव्स होते हैं, उस पर पीले पीले कलर के धब्बे दिखाई देते पत्तियों के किनारे से शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला हो जाता है। और जब ये रोग उग रूप में आता है तो इसका जो तना होता है, इसके तने तो हम कह सकते हैं कि ये आभासी तना होता है, सीडो स्टेम होता है, और खानी सहित यानी पुष्पावस्था में है तो पुष्पावस्था में, या फल वाली अवस्था में तो फल अवस्था में, या ये नहीं भी हुआ है तब भी ये जैसे ही रोग लक्षण दिखाई देता है तो एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर ये जाकर गिर जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पूरा पूरा हमारा जो उत्पादन होता है कह लीजिए खत्म हो जाता है, जिस पौधे में ये रोग लग गया उसका उत्पादन जीरो शून्य हो जाता है। तो इस तरह से इसका लक्षण होता है। इसका लक्षण पहचान करने के बाद आप कैसे इसका उपचार करेंगे, तो उपचार करने के लिए ये है कि आप इसमें जो फफूंद नाशक दवाएं हैं उसका आप शुरुआती अवस्था में जरूर ध्यान दें। जब इसका गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढे में कार्बेंडाजिम या बविस्टीन कम से कम 10 ग्राम पर गड्ढा इस तरह से हम दे देंगे तो इसमें जो दूसरे हानिकारक फफूंद होते हैं खासतौर से फ्यूजेरियम, वो उसका संख्या खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो इस तरह से पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। यदि किसान भाई ऐसा नहीं कर पाते हैं और शुरुआत में नहीं ध्यान देते हैं तो ये जो सकर्स ले आते हैं, इसका जो बच्चा ले आते हैं केले का, वो ध्यान देंगे कि वो किसी टिशू कल्चर प्रयोगशाला से ले आएं या जो हमारा सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल्स होता है, नर्सरी होता है, वहाँ से ले आएं, या दूसरे खेत से या अपने खेत से दूसरा नया इसका सकर्स लगाना चाहते हैं, नए खेत में या बगान नया तैयार करना चाहते हैं तो इसका सकर्स जो होता है उसको उपचार करके लगाएं। उपचार करने के लिए जो मैंने अभी पूर्व में दवा बताया कार्बेंडाजिम या बेविस्टीन, उसे आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लीजिए, या ट्राइकोडर्मा आप ले सकते हैं, बायोएजेंट होता है, जैव जीवनाशी होता है जो फफूंद नाशक के तौर पर काम करता है, दूसरे फफूंद को खा जाता है, खासतौर से फ्यूजेरियम को खूब खाता है। तो इस तरह से हम बायोजेंट में टाइकोडर्मा लेंगे तो टाइकोडर्मा का अगर लेते हैं तो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे। इस तरह से आप चाहे फफूंद नाशक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं कार्बेंडाजिम बविस्टीन का या टाइकोडर्मा का, घोल जब बनाएंगे तो आधे घंटे तक सकर्स को यानी केले के बच्चे को उसमें रखेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद छायेदार जगह में रखेंगे, घोल में रखकर फिर उसके बाद घोल से निकालेंगे और छायेदार जगह में रख देंगे ताकि इसमें जितना मतलब पानी है एक्सेस ज़्यादा वो निथर जाए, निकल जाए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए पानी निकल गया है तब जाकर रोपड़ी करने के लिए तैयार रहता है, तो गड्ढे में आप रोपाई करेंगे। तो इस तरह से पूरे जीवन भर ट्राइकोडर्मा इसके साथ रहता है और कभी इस तरह से जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है या फफूंद होता है या सूत्रकृमि होता है इसको कभी आने नहीं देता है, तो हमारा

0: स्वस्थ रहता है। अब अगर ये भी क्रिया नहीं कर पाए हैं और खरीफ फसल में आपको जुलाई में इसका लक्षण पूरा पौधे दिखाई देता है, पौधा पीला पीला हो जाता है, अगस्त में खानी सहित गिर जाता है, सितंबर में और भयंकर रूप हो जाता है, अक्टूबर में जाते जाते पूरा बागान खत्म कर देता है। तो आप शुरुआत में जब बारिश होता है जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के शुरुआत में, तो उसी समय बारिश के ठीक बाद आप एक बार कार्बेंडाजिम या बबिस्टिन का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसका खूब अच्छी तरह से भिगो दें, और ऐसा अगर नहीं है तो आप टाइकोडर्मा को भी आप ले लीजिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसको भिगो दें। तो इस तरह से भिगोने की जो प्रक्रिया होता है वो 15 दिन के अंतर पर कम से कम 2 बार करते हैं। तो इस तरह से खड़ी फसल में भी हम जो रोग लग जाता है उसे रोक सकते हैं, और पनामा रोग या इस तरह से कह सकते हैं कि जो पीलिया रोग है यहाँ अपने क्षेत्र में जो लोकल क्षेत्र बिहार आजकल बहुत जोरों पे है कि हमारे केला के फसल में पीलिया रोग लग गया है, तो पीलिया रोग हो या अंगूठा रोग हो या पनामा रोग हो सब एक ही तरह के हैं। तो ये फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजियरी मार्क्सिसफोरम फार्मास्पिसिस क्यूबेंस नामक फफूंद से होता है। तो इसके रोकथाम के लिए भी मैंने आपको बताया वो इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो आप रोकथाम इस तरह से करेंगे। दूसरा एक और इसी तरह का रोग होता है वो जीवाणु से होता है, उसे हम बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। तो बैक्टीरियल बिल्ट रोग के रोकथाम के पहले आप ये देख लीजिए कि इसका लक्षण किस तरह का है, बैक्टीरियल की तरह से है या फफूंद की तरह से। तो फफूंद को मैंने बताया, बैक्टीरियल का इसका थोड़ा अंतर है, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो किनारे वाला ना सूख कर बीच वाला सूखता है। इसका जो लक्षण ये भी बारिश होने पर जब ज़्यादा गर्मी होता है और ज़्यादा उमस होता है और ज़्यादा नमी होता है वातावरण में, इस समय ये भी जो जीवाणु होता है वो भी उग्र फार्म में आ जाता है। तो जीवाणु आएगा तो ये भी साथ साथ में लक्षण दिखाई देता है पौधे के ऊपर। तो जैसे बताया आपको इसका लक्षण इस तरह दिखाई देता है, तो आप इसमें पुरानी पत्तियों पर ना ध्यान देकर नई पत्तियां जो आती है उस पर देखिए, सबसे पहले वही पीला होना शुरू हो जाता है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि उसमें बहुत पौधे पर अंतर हम नहीं कर पाते हैं, तो उसको जहाँ से पौधा प्रभावित होता है, एक दो पौधे में अगर इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो जहाँ से जड़ और तने का लगाव होता है उसे हम कॉलर रीजन कहते हैं, उसे ले लीजिए और काट दीजिए। काटने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा गोल आकार छल्ला होता है, तो ये जो गोल आकार छल्ला होता है इसमें से बहुत बैक्टीरियल ऊजिंग होता है, जिसे हम कह सकते हैं हल्का पीले रंग का, पहले शुरुआत में तो सफ़ेद सफ़ेद रंग का ये दूध की तरह से पदार्थ लसलसा दिखाई देगा, फिर ये 2-3 घंटे के बाद काटने के बाद ये हल्का पीले पीले रंग में हो जाता है। ये सबसे अच्छा पहचान करने का तरीका है जो बैक्टीरियल विल्ट होता है। अगर ऐसा काट देते हैं, ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है, यदि उसमें जो जहाँ से काटे हैं बीच वाला पोर्शन में इसलिए लसलसा पदार्थ या दूध की तरह पदार्थ नहीं निकल रहा है और वो सूखा है और इसका जो बीच वाला पोर्शन हल्का भूरे रंग का है, तो ये समझ जाइए कि ये फफूंद वाला रोग है जिसे हम पनामा बिल्ट कह रहे हैं। और यदि इसमें लसलसा पदार्थ निकलता है तो समझ जाइए कि जीवाणु है। और दूसरा एक और लक्षण हम जीवाणु का बता देते हैं कि जब काट देंगे तो वहाँ से बहुत तेज सड़ा हुआ जिसे मछली होता है या अंडा होता है, इस तरह बदबू तीक्ष्ण गंध आता है, ये बैक्टीरियल बिल्ट जो होता है केला में, ये सबसे बड़ा दूसरा लक्षण होता है। तो इस तरह से लक्षण का अगर पहचान हो जाता है तो आप बैक्टीरियल नाशक दवाओं में आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लीजिए, इसके साथ थोड़ा कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके एक साथ 15 दिन के अंतर में 2 बार प्रयोग करते हैं, तो निश्चित है कि ये जो बैक्टीरियल बिल्ट की समस्या है वो नहीं होगा। एक और आपसे रोग की चर्चा हम करना चाहेंगे, वो है सीगाटोका। सीगाटोका ये किसी भी समय आ सकता है, लेकिन जो बिल्ट का समस्या दिखाई दे रहा है अपने इस बिहार क्षेत्र में वो जून के आखिरी सप्ताह से शुरू होता है और अक्टूबर तक पूरा खूब रहता है खेत में। इस समय आप जाएंगे तो खूब आपको उगठा रोग का लक्षण दिखाई देगा और इस समय आपको दूसरे रोग भी दिखाई देंगे।
1: यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में जो रोग हैं वो केले के पेड़ में या फिर वृक्ष में लगते
0: जी, हैं। जी जी जी वृक्ष में लगते हैं। और एक और आपको अलग से रोग बताना हम चाहेंगे जो सीगाटोका है, वो सीगाटोका इस समय तो लगता है और ज्यादातर इसका जो आक्रमण होता है वो देखते हैं कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में खूब होता है।
1: अच्छा।
0: इस समय भी होता है लेकिन इसका उग्र रूप उसमें ज्यादा दिखाई देता है। तो ये किसी भी अवस्था में और किसी भी समय आ सकता है सीगाटों का। तो इसके जो लक्षण होते हैं

0: पत्तियों के ऊपर गोल गोल आकार के पीले पीले शुरुआत में धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे भूरे और काले काले रंग के हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर लक्षण बनते हैं तो पत्तियों के चारों तरफ भूरे भूरे काले काले रंग के धब्बे बनते हैं तो पत्र लांछन केला का रोग होता है, जिसे हम सिगाटो का रोग कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए डाइथेमियम 45 नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतर पे कम से कम 3 बार छिड़काव करेंगे, और छिड़काव करते समय ये ध्यान देंगे कि जो केला का पत्ता होता है वो बहुत चिकना होता है, इसमें हम किसी स्टिकर का या जो डिटर्जेंट्स पाउडर होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो दवाएँ जो हमारी हैं केले के पत्ते के ऊपर चिपकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधे में जो रोग लगे हुए हैं सिगाटो का उससे बचाएंगे। लक्षण इसका हमने आपको बताया, और किसान भाइयों एक मैं पुनः एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि इसके जो पत्ती होता है, पत्ती के एकदम किनारे नहीं, किनारे से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए तो एकदम एक तार एक लाइन से कभी कभी इधर उधर मतलब छिटफुट इधर उधर आपको पत्तियों के ऊपर धब्बे शुरुआत में पीले रंग के रहेंगे, बाद में वो काले भूरे और काले रंग बदल जाते हैं।
1: तो ये लक्षण थे
0: जी, इस तरह से लक्षण होता है।
1: तो ये जो सारे रोग हैं आपने उपचार के बारे में बताया, तो सारे रोग जून से लेकर के अक्टूबर माह तक लगते हैं या फिर कोई
0: उकठा रोग है? उकठा रोग तो जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है, लेकिन ये जो आपको हम अभी बताए हैं ये सिगाटो का, ये पौधे के छोटे अवस्था में वो जनवरी फरवरी में भी लग जाएगा, वो इस समय भी अक्टूबर नवंबर में भी लग जाएगा।
1: तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कार्बेंडाजिम आप अगर गड्ढे खोद कर लगा रहे हैं उसके पौधों को तो पहले कार्बेंडाजिम डाल दें और उसके बाद लगाएं। तो कुछ बातों का आप खास ध्यान रखेंगे तो आप इन अपने केले के वृक्षों को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो बस इसका खास ख्याल रखें। वैसे डॉक्टर साहब ने आपको बड़े विस्तार में बताया और उपचार के बारे में भी बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा जो एक वक्ता है वो कह सकता है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: इसमें अभी चर्चा जो इस तरह 2-3 रोग का हो गया, एक और है श्याम बर्ड रोग जो एंथ्रेक्नोज कहते हैं। हाँ। ज्यादातर वर्षा ऋतु में आता है, वर्षा ऋतु में जैसे आता है तो इसका जो बीजाणु होता है ज़्यादा फैलने लगता है, तो इसका जो लक्षण होता है पत्तियों के ऊपर फलों के ऊपर तने के ऊपर इस तरह से जो ऊपर भाग होता है ये जो एरियल भाग होता है उसके ऊपर काले काले रंग का धब्बा बनाता है, तो इससे जो हमारा फल का गुणवत्ता खराब होता है, बाजार भाव कम हो जाता है या खराब कर देता है, और धीरे धीरे फल को या तने को सड़ा भी देता है। अच्छा। और पत्तियों के ऊपर इसका जितना काला काला धब्बा हो जाता है कि खुराक लेना बंद कर देती हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है और उत्पादन घट जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए आप कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्टीकर मिलाकर इस तरह से 10 से 12 दिन के अंतर पर कम से कम छिड़काव करेंगे तो जो श्याम बर्ड रोग है इससे भी केला की फसल को बचाया जा सकता है।
1: कापर ऑक्सीक्लोराइड
0: जी। एक और इसमें रोग लग जाता है वह है बंची टॉप। ये तो पहले बहुत लगता था लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने और किसान भाइयों के थोड़ा खेती करने का तरीके में नए तरीके से खेती कर रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं फसलों का, तो इसमें ये रोग अब आता है लेकिन कम आता है। लेकिन फिर भी अगर ये रोग आ जाता है तो ध्यान देंगे, शुरुआती अवस्था में ही इसका लक्षण दिखाई देता है। जैसे पौधा आप ले आए 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है लगाते हैं, जब पौधा पकड़ लेता है तो इसका लक्षण शुरुआत में ही 3-4 महीने का सकर्ष होता है, उसी के ऊपर ही इसका लक्षण दिखाई देता है। पौधा छोटा रह जाएगा और उसमें जो पत्तियां ढेर सारी निकलेंगे लेकिन छोटी छोटी रहेंगी और पौधे का विकास रुक जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं बंची टॉप रोग है केला का। अच्छा। ये विषाणु वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है, और एक पौधे से दूसरे पौधे या एक खेत से दूसरे खेत में जो फैलाने का काम करता है, इसमें कुछ हमारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होता है, वेक्टर होता है, जिससे हम कहते हैं पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा होता है, ये कीड़ा एक खेत से दूसरे खेत एक पौधे से दूसरे खेत में फैलाने काम करता है। तो यहाँ आवश्यकता है कि विषाणु नाशक दवाओं के जगह पे आप कीटनाशक दवाओं में इमिडाक्लोरोपीड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इस तरह से एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर छिड़काव 2 बार कर देंगे तो इस तरह से जो कीड़ा लगता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो जो बंची टॉप रोग है अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
1: तो किसान भाइयों आपने सुना केले के प्रमुख रोगों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर गिरीश चंद जी और इनसे विशेष बातें हो रही थी इस विषय पर, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है डॉक्टर साहब ने, और ज़रूरत है कि

0: आप इनकी बातों को समझें, इसे अपनाएं और जो भी अगर रोग हैं उनको पहचान कर उन्हें जो भी कीटनाशक दवा या फिर और भी जो दवाएं डॉक्टर साहब ने आप सभी को यहाँ पर आप सभी के सामने कहा प्रिस्क्राइब किया, तो आप उसे लेकर छिड़काव कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आपसे और मुलाकातें होंगी और हमारे किसान भाइयों से भी मेरी मुलाकातें होती रहेंगी उन्नत कृषि में। तो सुनते रहें 90.8 FM ग्रीन हमेशा और सुनते रहें उन्नत कृषि।
1: उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी।

0: दोनों पे प्रभाव पड़ता है।
1: हाँ
0: जिस खेत में बहुत से खरपतवार रहता है उसमें उपज तो कम होता ही है, लेकिन उस जो उपज का जो चमक जो होता है धान की वो भी कम हो जाती है, इसका मार्केट वैल्यू या उसका प्राइस
1: कम
0: दूसरे से
1: हो,
0: हाँ कम हो जाएंगे।
1: और हमारे किसान भाइयों का मेहनत भी बेकार चला जाता है, जितना वो मेहनत करते हैं उतना फसल उन्हें प्राप्त भी नहीं हो पाता है।
0: तो हमारे बिहार में मुख्यतः दो प्रकार के धान लगाते हैं, एक तो जिसमें समय की कमी हो तो सीधी बुआई करते हैं, दूसरा नर्सरी लगा के उसको कदवा करके फिर से ट्रांसप्लांटिंग करके लगाते हैं। तो दोनों विधि से खरपतवार नियंत्रण अलग अलग तरीके से होता है। जैसा कि देखेंगे, पहला हम बता देते हैं धान का जो खरपतवार है सीधी बुआई से लगाने वाले धान में किस तरह से करें, तो मैं एक करके बताता हूँ जो कि आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ध्यान में रखना चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। धान को बीज को खेत में डालने के बाद तथा उसको अंकुरण होने के पहले एक बहुत ही कारगर दवा है, नाम है पेंडीमिथलिन, जो कि
1: पेंडीमिथलिन।
0: ये प्री इमर्जेंस है। प्री इमर्जेंस कहने का मतलब है जो उसमें मतलब वो खरपतवार निकलने से पहले आप
1: डाल
0: उसमें
1: सकते
0: डाल
1: हैं।
0: दीजिए, स्प्रे करिए, जो कि मार्केट में स्टॉम्प 35 30 इसी के नाम से मिलता है।
1: अच्छा
0: इसको आप 1333 मिलीलीटर प्रति एकड़ या 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से

गया, धान खेत में लग गया, उसके बाद भी अगर आप ठीक से खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो एक भी नहीं आएगा। धान अंकुरण के बाद निम्नलिखित खरपतवार नाशी है जो कि हम लोग रिकमेंड करते हैं या चाहे बोलते हैं, ये किसान आप लोग खेत में स्प्रे निश्चित रूप से करें। धान में वैसे तो बहुत तरह से खरपतवार निकलते हैं, और तो और खरीफ मौसम में खरपतवार निकलना एक नेचुरल या चाहे प्राकृतिक ये है जो उसमें सारे क्लाइमेटिक कंडीशन फुलफिल करता है। तो इस विधि से भी खरीफ में ज़्यादा घास निकलता है अपेक्षाकृत रबी मौसम में। तो धान अंकुरण के बाद चार पांच खरपतवार नाशी है जो कि मैं बता रहा हूँ। पहला है बिस पैरीबैग सोडियम, जिसको मार्केट में नॉमनी गोल्ड के नाम से मिलता है। ये 10% ईसी से मार्केट में है उपलब्ध। आप इसको 80 से 100 ml प्रति एकड़ या नहीं तो 250 ml प्रति हेक्टेयर को आप स्प्रे करिए, जो कि 15 से 20 दिन बाद आप इसको खेत में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है फिनोक्सोप्रॉप, जो कि 9.3 ईसी के मात्रा में मार्केट में मिलता है, जो 400 ml प्रति एकड़ या चाहे 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में स्प्रे करें, ये धान को अंकुरण के 25 दिन के बाद। उसके बाद तीसरा दवा है इथॉक्सी सल्फिरान, जो कि मार्केट में सनराइज के नाम से मार्केट में मिलता है, जो कि 40 का दर जो है 40 ml प्रति एकड़ या नहीं तो 100 ml प्रति हेक्टेयर। ये चौड़ी पत्ती या मोथा कुल के लिए है, जो कि 15 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथा दवा है एजीम सल्फिरान, जो कि मार्केट में 50 WDG के नाम से उपलब्ध है। ये 1820 ml प्रति एकड़

0: कैसे करें।
1: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त।
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर।
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की,
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भरा

0: रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उन

0: के लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
1: तो सबकी समझ

0: आ गया ना
1: खसरा रुबेला बीमारी है घातक,
0: आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
2: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
3: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
8: So, see you at the vaccination center soon.
9: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है।

0: नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है, करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा, करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़

आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है। आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं, या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं, या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे। लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं, और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं, या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है, या फिर कोई बात है ही नहीं, फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज़्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है, या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं, या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है, या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं, और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है, और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज़्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी, या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है, और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है, तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं।
कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीजें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूलते हैं, किसी चीज पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो जरूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम

अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं। और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं। और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए। और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए, खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दें, उसी समय पर करें। और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें। जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय जरूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फायदा होता है। और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं। और इस वक्त ये ना करें कि आप फोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं। और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी। और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ, या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें। और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं। और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है। और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं। तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है। तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए। क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आए, रोज़मर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे, तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है, या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें, और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त RJ अनु। एक बार फिर आप सभी के बीच एक बहुत ही उपयोगी विषय लेकर हम आ चुके हैं। दोस्तों, हमारे भारत में और हमारे बिहार में बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है,

0: लेकिन एक जो सबसे खास, जो देखने में तो सुंदर लगता ही है और उसकी विशेषताएं भी बहुत हैं, वो है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही हम उसकी खेती के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करूँ तो बहुत ही कम जगह ख़ासतौर पर मैंने देखा है इसकी खेती, और इसीलिए लोग इसकी खेती को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इसकी एक विशेषता इस स्ट्रॉबेरी से है, वो है पोषण सुरक्षा। यानी स्ट्रॉबेरी की खेती से पोषण सुरक्षा कैसे हो सकती है और ये एक लाभदायक व्यवसाय हमारे लिए कैसे बन सकता है, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए है डॉक्टर रूबी रानी जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु। मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में क्यों की जानी चाहिए और पोषण सुरक्षा में उसका क्या अनुदान है, योग उपयोग है, कि स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का हमारा क्या उपयोग है, पोषण सुरक्षा इससे कैसे की जा सकती है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
0: तो मैम, सबसे पहले जब इसकी खेती की बात आती है तो हम ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे इतनी मेहनत करके लोग उगाते हैं, क्योंकि इस खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रॉबेरी को उगाई जानी चाहिए, लोगों ने सोचा?
1: यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है और किसानों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमारे स्ट्रॉबेरी जो है उसमें बहुत ही पोषण से भरपूर, या पोषण का कैप्सूल, न्यूट्रिटिव कैप्सूल आप इसको कह सकते हैं। अच्छा। हर तरह का न्यूट्रिशन है और जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटास, फोलेट, पोटाशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फैट का ये अनुपात कम है और इसमें कैलोरी कम मिलती है।
0: अच्छा।
1: लेकिन ये फाइबर रिच फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स में बहुत ज़्यादा है। अब एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स का क्या मतलब है? ये जो तत्व होते हैं ये शरीर में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं।
0: अच्छा।
1: इसलिए स्ट्रॉबेरी के खाने से लोगों में रोग रोधी क्षमता बढ़ती है और बहुत से रोगों से आप इससे बच सकते हैं अगर इसका नियमित सेवन करें।
0: अच्छा।
1: इसमें जो कैलोरी है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो भी फैट कंटेंट थोड़ा फैट कंटेंट है, मिनरल्स विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, फैट कंटेंट काफ़ी कम है और वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसलिए ये लो कैलोरी फूड है। आज सभी जो हमारे किसान भाई हैं, आम नागरिक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: होना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हमें ऐसा फल मिले जिसमें कि वसा की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य फलों की तुलना में कम हो,
0: एंटीऑक्सीडेंट्स
1: ज़्यादा हो, विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा हो, तो इस तरह का फल उन्हें चाहिए या इस तरह का खाद्य पदार्थ उन्हें चाहिए। तो इस स्ट्रॉबेरी में ये सारे गुण मौजूद हैं।
0: जी,
1: तो इसलिए इसका पोषण का कैप्सूल बोला गया है इसे।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मतलब इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से लो कैलोरी फूड है, फाइबर रिच फूड है, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल बहुत ज़्यादा है, सोडियम फ्री है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी फूड है। लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैगनीज, मैग्नीशियम ये सफिशियंट मात्रा में है, इसलिए इस फल की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और ये फल जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत दूर से इसको लाया नहीं जा सकता है।
0: अच्छा।
1: जैसे कि हमारे पोषण तो बहुत है, जैसे कैसू नट है उसमें प्रोटीन बहुत है, अखरोट है, बादाम है, इसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इन फलों को, इन नट्स को हम बहुत दूर से प्रोक्योर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में रहते हैं।
0: अच्छा।
1: स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही कोमल फल है, इसका तुड़ाई के उपरांत इसकी अवधि जो इसको जो अच्छे कंडीशन में जब इसको बहुत कम दिन होता है, 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इसलिए ये आवश्यक है कि ये हमारे आसपास उगाए जाए।
0: जी,
1: तभी हमें ये मिल पाएगा, वरना हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें।
0: तो दोस्तों, मैम ने बताया कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैट कम है, और बस हमें यही तो चाहिए। आजकल लोग डाइटिंग भी करते हैं तो फल को ज़रूर शामिल करते हैं, और अगर आप उसमें स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अभी फ़िलहाल हम कोरोना काल में जी रहे हैं। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के साथ कोरोना

0: शामिल हो चुकी है ये महामारी। और इस समय कहा जा रहा है कि हमें ऐसे फल और सब्जियां लेनी चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाते हैं, तो आप स्ट्रॉबेरी को ज़रूर शामिल करें। और आपको हम स्ट्रॉबेरी से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। तो मैम ने जैसे कहा कि इसे बहुत दूर से नहीं लाया जा सकता, ये बहुत कोमल फल है, तो मैम बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है क्या?
1: बेशक बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है। हमने पिछले 10 साल में पर इस पर शोध किया। जब हमने शुरू किया था तो हमें भी विश्वास नहीं था कि यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमने इसका शोध किया तो मैंने पाया कि बिहार में इसका खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हालांकि ये फल जो है वो ठंडे जगहों का फल है, जैसे कि पहले ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में, सिक्किम में, आदि जगहों में उगाया जा सकता था, लेकिन अभी कुछ किस्में आई हैं और कुछ विशेष तकनीक की मदद से इसे हमारे प्रदेश जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जगहों में भी काफ़ी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए हमने शोध के उपरांत मैंने देखा कि बिहार में ये अच्छी तरह से उगाई जा सकती है और इसकी हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं।
0: मतलब पहले लोग ये घबराते थे कि गर्म वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये पहले जम्मू और कश्मीर में ही उगाया जाता था, तो यहाँ पर शोध के बाद पता चला है दोस्तों कि बिहार में इसका उत्पादन किया जा सकता है। मैम साथ ही आप इसके लगाने की विधि भी बता दें और समय क्या है इसे लगाने की वो भी बता दें।
1: तो सब इसमें एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें पोषण तो भरपूर है ही है, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, जैसे कि इसका उपयोग सौंदर्य सामग्री बनाने में होता है, आइसक्रीम, कैंडी, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मांगते हैं तो उन सब चीज़ों में बनाता है, सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है, केक, आइसक्रीम, बहुत तरह से सॉफ्ट ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी का यूज होता है। और इस तरह से इसमें पोषण के साथ साथ इसके उपयोग
0: व्यावसायिक रूप
1: भी बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही सुवासित सुगंधित फल है, इसका अलग ही एक एरोमा है और जो कि इसका आकर्षित रंग के साथ साथ इसका एरोमा भी लोगों को अट्रैक्टिव करता है। साथ ही पोषण और बहुआयामी इसके उपयोग हैं, इसके कारण इसकी खेती बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि किसान इसके प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं इसको उगाने के लिए, क्योंकि ये 7 से 8 महीने में पूरा फसल तैयार हो जाता है और इसका डिमांड ज़्यादा होने के कारण इसके प्राइस ज़्यादा हैं और किसानों को ज़्यादा मुनाफा 7 से 8 महीने में प्राप्त हो जाता है
0: जी।
1: और अब आती है कि इसको लगाने की विधि
0: जी
1: और इसका समय क्या है। तो हमने शोध के उपरांत पाया कि बिहार में इसको लगाने का समय अक्टूबर माह जो है इसको लगाने का सबसे उत्तम समय है। प्रथम सप्ताह, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अंत तक आप लगा सकते हैं, हालांकि इसको 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप अक्टूबर तक लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 15 नवंबर के बाद आप लगाएंगे तो इसके उत्पादन में तेजी से वृद्धि कमी आ जाती है। अच्छा। क्योंकि उसको सही समय नहीं मिल पाता है उसको समुचित ग्रोथ का, और फूल खिलने लगते हैं इसके कारण कि छोटे पौधे में फूल खिलने से उत्पादन में कमी हो जाती है, गुणवत्ता भी सही नहीं रहती है। तो लगाने का उचित समय इसका अक्टूबर है,
0: अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से।
1: प्रथम सप्ताह से आप 15 नवंबर तक लगा सकें, नवंबर तक बिल्कुल लगा दें, और 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी उत्पादकता में आपको कमी
0: मिलेगी जी।
1: अब मैं इसको पूछा जैसे कि अपने लगाने की विधि क्या है, तो इसको लगाते हम लोग रनर से, पौध से हम इसे लगाते हैं
0: जी जी।
1: इसके लिए जो है छोटे छोटे पौध आते हैं और इसके हम बीज से नहीं लगाते हैं, और ये पौध जो है हमारे रनर से एक पौधे से कई कई पौधे निकलते हैं उससे तैयार होते हैं। परंतु हमारे राज्य में अप्रैल महीने के बाद से इतनी गर्मी होती है कि ये पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें पौधों के लिए दूसरे राज्यों जहाँ ठंड प्रदेश हैं वहाँ से हमको उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये पौधे 4 से 6 पत्तियाँ हों उस पौध में, उसको हमको लगाना चाहिए। और लगाने के पहले पौधे को हम कार्बनडाजिम के 0.2% के घोल में 5 मिनट तक डुबाते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके पौधे को लगाते हैं। तो ये भी लगाने की विधि और इसका लगाने का समय।
0: तो मैम इसके बाद उत्पादन तकनीक को भी हम जानना चाहेंगे, जब विधि की बात हो गई है और इसके बाद उत्पादन तकनीक को ना जाने तो थोड़ा अधूरापन रहता है।

0: तो इसके उत्पादन तकनीक के बारे में भी बताएं थोड़ा।
1: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी इसका भूमि की तैयारी कैसे करें, इसका बेड कैसे बनाएं, इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालें और इसमें सिंचाई कैसे करें और इसमें कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इनके बारे में मैं एक एक करके सबको आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी करने के लिए आप जैसे अक्टूबर में लगाना चाहते हैं तो उसके 10 से 15 दिन पहले एक गहरी जुताई कर दें खेत की। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी वैसे भूमि का चुनाव करें जहाँ जल जमाव नहीं होता हो।
0: अच्छा।
1: और मिट्टी जो है वो बलवाही दोमट मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो और वो क्षारीय मिट्टी ना हो, जैसे कि उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का चुनाव करें।

0: कटाई के समय उसमें आप कुछ खाद डालें, तो खाद की मात्रा जो है प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट, 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 25 से 30 किलो पोटास प्रति एकड़ आप हल्की जुताई के समय में डाल करके इसको जुताई कर दें। उसके बाद इसकी खेती, व्यावसायिक खेती जो होती है वो उठी हुई क्यारियों पे होती है।
1: अच्छा,
0: तो उस क्यारी को बनाने के लिए आप उसकी ऊंचाई जो है 30 से 35 सेंटीमीटर रखें और उसकी चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर तक आप रख सकते हैं और लंबाई आप अपने सुविधा अनुसार जितना चाहे रख सकते हैं
1: जी।
0: दो क्यारी के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से आपकी उठी हुई क्यारी तैयार हो जाएगी जो कि 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 1 से 1.25 मीटर चौड़ा हो और दो क्यारियों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर हो। एक क्यारी पे अगर आप 1 मीटर रखे हैं या 90 सेंटीमीटर तक चौड़ा रखे हैं तो आप 2 पंक्तियां लगाएं, अगर उससे ज़्यादा रखे हैं तो 3 और 4 पंक्तियां भी आप लगा सकते हैं। 4 पंक्तियां में थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए 3 पंक्तियां आप एक क्यारी पे लगा सकते हैं। पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखें
1: जी।
0: तो इस तरह से आप बेड पे 2 से 3 क्यारी
1: तैयार
0: कर सकते हैं और प्रति एकड़ लगभग 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी।
1: अच्छा,
0: उसके बाद आता है कि हम इसको लगाने की विधि मैंने पहले बता दी, लेकिन अगर आप इसमें सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था कर सकें तो ये आपके लिए वरदान होगा
1: जी।
0: और ड्रिप सिंचाई पे आज जो है सरकार 90% तक अनुदान भी दे रही है, तो आप सरकारी सहायता प्राप्त कर आप ड्रिप सिंचाई का अपने खेत में लगा सकते हैं और ये जो कि काफ़ी वरदान होता है इसके लिए, बड़ी अच्छी खेती, उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है फलों की। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि किसान भाइयों आप ड्रिप सिंचाई का इसमें उपयोग जरूर करें
1: जी।
0: इसके अलावा पौधे लगाने के बाद इसकी जो खेती होती है, इसके जो फल होते हैं वो मूलतः जमीन पे सटे हुए होते हैं। जब निकलते हैं तो जैसे ही फल बड़ा होता है तो अपने भार से वो जमीन सतह पे सट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप, इसलिए मल्च या पलवार का उपयोग बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी और फल का संपर्क ना बने। ये फल चूंकि बहुत ही कोमल मुलायम होता है, लगातार अगर मिट्टी के संसर्ग में रहेगा तो ये खराब हो जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते हैं, बाजार में ले जाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मल्च बहुत ही आवश्यक है। मल्च आप पुआल का भी दे सकते हैं और प्लास्टिक का भी दे सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो प्लास्टिक का मल्च बहुत ही अच्छा देखा गया है इसमें, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की मल्च नहीं है तो आप धान या गेहूं के का जो भूसा होता है या पुआल होता है उसका भी उपयोग मल्च के रूप में कर सकते हैं। वो 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंचा मल्च होना चाहिए ताकि फल का संपर्क डायरेक्ट मिट्टी से ना हो और आपकी फल जो है परिपक्वता तक अच्छे कंडीशन में रहे और बाजार में ले जाने लग रहे। तो इस तरह से दो तकनीक, जो मल्च और सूक्ष्म सिंचाई, ये दोनों इसके लिए वरदान है। और जब आप बेड तैयार करते हैं तब उसमें जो है आप सूक्ष्म सिंचाई पहले बिछा दें, पौधे लगा दें, उसमें सूक्ष्म सिंचाई कर दें। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं आपने वहाँ वहाँ उतनी दूरी पर आप मल्च में छेद करके उस तरह से पौधे को व्यवस्थित कर दें
1: जी।
0: आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले बेड तैयार करके मल्च को फिक्स कर दें, फिर जितनी दूरी पर आपको बेड को तैयार करके पहले ड्रिप इरिगेशन लगा दें, फिर आपको मल्च डाल दें, मल्च फिक्स कर दें और जितनी दूरी पर आपको पौधे लगाने हैं वहाँ पर छेद करके थोड़ा सा होल करके वहाँ पर पौधे को आप फिक्स कर दें और ड्रिप से आपका पानी और पोषण सारा चीज़ ड्रिप के माध्यम से पौधे को मिलता रहेगा। तो ये हुई विशेष तकनीक।
1: अच्छा,
0: कि इसके उत्पादन में विशेष तकनीक है। इसके अलावा हमारे राज्य में दिसंबर के अंत में और जनवरी तक पाले का प्रकोप रहता है।

0: उसमें बहुत धुंध रहती है, पाले का प्रकोप रहता है, और पाले से बचाने के लिए आप छोटा पॉलीटनेल का भी उपयोग कर सकते हैं, ताकि पौधे जो है पाले से बच सकें, और पॉलीटनेल जो है उसकी ऊंचाई 65 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये पॉलीटनेल क्या है, एक छोटा पॉलीहाउस है, मिनिएचर है पॉलीहाउस का, इसकी ऊंचाई 60 से सेंटीमीटर है, इसको बेड कवर या रो कवर भी बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है 60 से 70 सेंटीमीटर तक, 65 से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये अगर आपको टनल बनाने के लिए जीआई पाइप का ना मिले, तो आप बांस की करची पे भी पतली पॉलीथीन की सीट बिछा करके पॉली टनल बना सकते हैं, और जो कि आपके पास बहुत आयत में बांस तो हर गांव में उपलब्ध रहता है, तो उस कमाची का उपयोग करके, बांस का उपयोग करके आप पॉलीटनल बना लें, और पॉलीटनल पर पतली सी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उजले कलर की पॉलीथीन आप डाल दें, और ये जो है जब आपका पाला पड़ना शुरू हो जाए तब और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसको डाले रहें। इससे क्या होता है कि पौधा जो है पाले से बचा रहेगा, और धूप उसके अंदर आती रही, ग्रोथ बढ़वार बढ़िया रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा पॉलीहाउस का इफेक्ट रहता है, पॉली जैसा पॉलीहाउस में उसका इफेक्ट रहता है पौधों का, उसी तरह से पॉलीटनेल का भी उपयोग है, साथ साथ ये पाले से भी बचाता है, और ढके रहने के कारण कीट व्याधि का भी प्रकोप कम रहता है, इसी कारण की फल की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये विशेष तीन तकनीक जो है स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सूक्ष्म सिंचाई, पॉलीटनेल और मल्च। किसान भाइयों, अगर आप सूक्ष्म सिंचाई नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन मल्च तो मस्ट है, चाहे आप पुआल का मल्च दें, चाहे आप प्लास्टिक का मल्च दें, मल्च के लिए हमेशा काले पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन आती है, मल्च सीटू कहलाता है, और वो 1 मीटर और 1.25 मीटर के चौड़ाई में आता है, और लंबा आप जितना चाहें एक रोल ले सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी जाती है, खासकर ये स्ट्रॉबेरी सब्जियों आदि के लिए ही बनाया जाता है। तो इस तरह से मल्च आप का उपयोग करें, सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, अगर अरेंज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बिना उसकी भी खेती कर सकते हैं। टनल का भी उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, करना करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको मल्च का उपयोग तो करना ही होगा। तो ये है उत्पादन तकनीक, और लगाने के बाद जो है आप जो भी उसमें पोषण देंगे वो फर्टिकेशन के थ्रू देंगे, क्योंकि आप ड्रिप सिंचाई लगा चुके हैं और पौधा जो है मल्च के नीचे है, तो आपको बाहर से आप नहीं दे सकते हैं, आप जो है इसको फर्टिकेशन के थ्रू दे सकते हैं। और फर्टिकेशन के लिए भी हमने शोध किया है, पौधे लगाने के 30 से 45 दिन बाद जो घुलनशील हमारा एनपीके है 20-20-20 का, उसका 25 ग्राम की मात्रा को 4 भागों में बांट दें, और प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम 4 भागों में बांट करके, और 15 दिन के अंतराल पे उसको 4 बार दें, तो इस तरह से आपका जो है वो फलों की गुणवत्ता बनी रहेगी और आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा।
1: जी श्रोताओं, मैम ने आपको बताया कि उत्पादन की 3 विशेष तकनीक हैं, वो है मल्च, पॉलीटनल, और साथ ही मैम ने बताया सूक्ष्म सिंचाई। मल्च जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये अपनाएं, और सूक्ष्म सिंचाई आप चाहे तो अपना सकते हैं, नहीं तो नहीं, और पॉलीटनल भी आप चाहे तो अपना सकते हैं, नहीं तो आपकी जो सुविधा है आप उसके अनुसार उत्पादन तकनीक को अपना सकते हैं। मैम, उत्पादन तकनीक के दौरान भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और अगर किसान भाइयों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं तो पहले से सावधान हो जाएंगे, उन सावधानियों के साथ वो उत्पादन तकनीक को अपनाएंगे ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए उन समस्याओं को ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारे किसान, हमारे राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत लोग किसान लोग कर रहे हैं, और हमारे पास उनकी समस्याओं के बारे में भी फ़ोन आते हैं और बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के दौरान किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कुछ इसमें फफूंद जनित रोग ज़्यादा लगते हैं, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा है उकठा रोग। कभी कभी देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो बीच बीच में पौधे गलने शुरू हो गए, पौधे अचानक सूखने शुरू हो जाते हैं, और उसको चाह करके भी आप नहीं बचा सकते हैं, तो इसके लिए ये

0: समस्या फरवरी मार्च के बाद आनी शुरू होती है, जब पौधे जो थोड़ी सी गर्मी आती है उसके बाद ये आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अच्छी गुणवत्ता की आपको पौध होनी चाहिए, उस पौधे में कहीं किसी तरह का स्पॉट या कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप पौधे को लगाएं तो मैंने बताया कि कार्बन डाइजीम में उसको 0.2% के घोल में, आप कार्बन डाइजीम के घोल में उसको 5 मिनट तक दुबाएं, उसके बाद लगाएं। और जब आप बेड तैयार करते हैं, ऊँची उठी हुई बेड आप तैयार करते हैं, तो 0.01% का मेटल एक्सिल का घोल से एक बार उस पर स्प्रे कर दें
1: जी।
0: तो ये आपको उकठा रोग से बहुत बचाव करेगा। साथ ही साथ मैंने देखा है कि अगर आप ट्राइकोडर्मा को जो कंपोस्ट डालते इसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, ट्राइको कंपोस्ट को डालने के पूर्व ट्राइकोडर्मा आधा केजी लेकर के ट्राइकोडर्मा उसको 15 से 20 केजी कंपोस्ट में मिक्स कर दें, उसको एक सप्ताह के लिए छोड़ दें, मॉइस्ट रखें, और उस कंपोस्ट को अगर यूज़ करते हैं तो इसका प्रकोप कम होता है। तो इस तरह से जो मैंने बताया कि आप कार्बन डाइजीम का उपयोग करें, ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, और मेटल एक्सिल के 0.01% के घोल से आप बेड को जो नर्सरी का अपनी जो उठी हुई क्यारी तैयार की उसको उपचारित करें। इस तरह से करने से आपको जो है फफूंद जनित रोग जो है वो आप से आप इसको बचा सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा और इसका रोग है लीप स्पॉट आता है, पर्णचित्ती आता है। कभी कभी देखेंगे कि गोल गोल गोल गोल स्पॉट आ गया है लीप पे, जैसे ही आप स्पॉट देखें उसको आप कैंची से हटा दें, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1% का घोल से उसका छिड़काव करें। इससे आप जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये कभी कभी आप देखेंगे कि फल में फल जो है उस पर फफूंद रोग गया है, तो वैसे फल जो मिट्टी के संसर्ग में आएंगे या ज़्यादा पानी भी आप अगर आपने दे दिया है तो ग्रे मोल्ड का, जो ग्रे मोल्ड होता है, ग्रे मोल्ड का प्रकोप हो जाता है, और ग्रे मोल्ड का प्रकोप होने से आपका फल खराब हो जाएंगे। इसलिए आप मल्च का उपयोग करें, बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं दें, जड़ों को आप नमी बरकरार रखें जड़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी वातावरण में नहीं रहने दें। और अगर सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करते हैं तो आपको जड़ में पानी जाएगा, पत्तियों पे बाकी वातावरण में पानी कम रहेगा और वहाँ पर ग्रे मोल्ड की समस्या कम होगी। इसलिए ग्रे मोल्ड से बचाने के लिए आप मल्च का उपयोग करें। अगर ये कुछ आ गया है तो तुड़ाई के उपरांत डायथन M45 का 2 ग्राम का प्रति लीटर का घोल बना करके आप एक बार स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आप ग्रे मोल्ड से, उकठा रोग से यानी कि विल्ट से, और लिप स्पॉट से इसका निजात पा सकते हैं
1: जी। तो श्रोताओं, आपने जाना कि जो भी परेशानियां हैं उनके समाधान के बारे में भी आपने जाना, और मैम इसके बाद उत्पादन से लाभ तो मिलेंगे ही, क्योंकि पहले ही भी हम जान चुके हैं इसमें पोषण बहुत ज़्यादा है। तो व्यावसायिक तौर पर, आम तौर पर क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं इसके उत्पादन से?
0: इसके पहले हम बताना चाहेंगे इसकी तुड़ाई कैसे की जानी चाहिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो अगर आप इसको अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो दिसंबर माह में इसका फल टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ये लगातार मार्च तक या कभी कभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फल देगा। जैसे ही गर्मी आएगी इसमें फूल आना बंद हो जाता है, और फूल आना बंद हो जाएगा तो फल आपको नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अगर अक्टूबर में लगाते हैं तो आपको मार्च तक आपको अच्छा फलन देगा। और इसका तोड़ने के लिए जब ये फलना शुरू हो जाता है तो कुछ कुछ अंतराल पे ये फल आपको तोड़ने होंगे, और फल की तुड़ाई आप सुबह में करें। तुड़ाई के बाद आप फल को जो है आप ठंडे जगह में रखें और जितनी जल्दी हो सके इसको मार्केट में भेज दें, क्योंकि तुड़ाई के उपरांत इसकी जो है संधारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट फ्रूट है और बहुत जल्दी खराब होता है
1: जी।
0: तो जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें। अगर दूर के मार्केट में आपको भेजना है तो फल को पूरा लाल होने के पूर्व यानी 75% जब पक जाए तभी आप इसको हार्वेस्ट करें, थोड़ा उसमें टफ रहता है, और 1-2 दिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये थोड़ा सा और पकता है, फिर जा करके आप उसको मार्केट में भेजें। तो नज़दीक के लिए मार्केट के लिए पूरा फल पकने के बाद इसको तोड़ें, और अगर दूर का मार्केट में भेजना है तो आप 75% पकने पर ही उसको तोड़ दें। इसकी पैकिंग के लिए पुनेट आता है, पुनेट का उपयोग करें और सही ढंग से इसकी पैकिंग करें। एक फल दूसरे फल पे बहुत ज़्यादा कसा हुआ ना हो, एक फल पर दूसरा फल ना हो,

0: इस तरह से इसकी पैकिंग करें और तभी आपका ये ज़्यादा दिन तक थोड़ा मार्केट में रह सकता है
1: जी।
0: और जहाँ तक इसके लाभ की बात है, कितने लाभ हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि इसकी लागत जो है, आपको अगर ड्रिप सिंचाई क्या लगाएंगे, मल चला लेंगे, पॉलिटिनेल डालेंगे, तो पहले साल इसकी लागत कुछ ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर लगातार इसकी खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इसकी व्यवस्था ज़रूर करें। और 3 साल के बाद उपरांत पाएंगे कि आपने अगर 1 रुपया लगाया है तो कम से कम 4 रुपया आपको मिलेंगे।
1: अच्छा,
0: तो पौधों का कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो पौधे आपको 10 से 12 रुपये के बीच में मिलेंगे या 15 रुपये तक भी मिल सकते हैं। तो अगर आप 20,000 पौधे लेते हैं तो आपको लगभग 3.5 लाख रुपये आपको पौधे में लग जाएंगे, लेकिन उसमें उत्पादकता जो है, अगर अच्छे से आप मैनेज करें तो प्रति एकड़ उत्पादकता आपको 15 टन से कम नहीं होगी। तो इस तरह से अगर उसको 200 रुपये के जी भी बेचेंगे तब भी आपको 3 से 4 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा 1 एकड़ में। इसलिए 8 से 9 महीने के बीच में इतना शुद्ध मुनाफा किसी भी क्रॉप में नहीं है, इसका डिमांड भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभकारी व्यवसाय है, पोषण से भरपूर फल है, कम अवधि में इसके उगाए जा सकते हैं। और अगर आपके शहर के किनारे छोटा सा भी ज़मीन है तो आप छोटी सी भूभाग में इसकी खेती करके आप इसको बहुत मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की खेती करें और अच्छी आमदनी पाएं, अच्छा लाभ पाएं। व्यावसायिक तौर पे पोषण सुरक्षा की दृष्टि से ये इसका स्ट्रॉबेरी का फल उत्पादन काफी अच्छा है। और मैं अपनी वार्ता के दौरान एक चीज बताना भूल गई कि हमारे राज्य में किस्में कौन कौन सी अच्छी उत्पादकता के साथ कर रही है। तो मैं बता दूं कि इसके लिए आप स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, कामारोजा, विंटर डाउन, नबीला, सेंसेशन, ये 6-7 किस्में जो हैं वो अच्छा उत्पादन कर रही हैं, अच्छी उत्पादकता और गुणवत्ता के साथ हमारे राज्य में इसका उत्पादन हो रहा है। तो ये हमने शोध के उपरांत पाया, हमने लगभग 21 किस्में शोध किया है, किस किस्मों का उत्पादन किया अपने रिसर्च प्लॉट पे, और हमने पाया कि ये 6-7 किस्में जो हैं हमारे राज्य में बहुत अच्छा उत्पादन कर रही है, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादकता के साथ। तो मेरा ये, मैंने अपने बताया आपको कि स्ट्रॉबेरी की खेती के कैसे उत्पादन करें और कैसे इससे लाभ कमाएं और क्या इसके लाभ हैं, ये हमारी बात। धन्यवाद किसान भाई, उम्मीद है कि आपको उचित जानकारी मिली होगी, जो जानना चाहेंगे, जानना चाह रहे होंगे आपकी वो जानकारी आपको मैं दे पाई होंगी इतने कम समय में। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना स्ट्रॉबेरी एक लाभदायक व्यवसाय कैसे बन सकता है, पोषण सुरक्षा हेतु स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जा सकती है, हर एक छोटी से बड़ी बात मैम ने आपको बताया यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको इन जानकारियों से बहुत लाभ होगा। अगर आप अभी भी इसे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, समय है। और साथ ही जो भी समस्याओं की बात यहाँ पर हुई है, मैम ने उसके समाधान के बारे में भी बताया, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही लगाएं। और उत्पादन तकनीक के बारे में भी मैम ने बताया कि आप उस तकनीक को ज़रूर अपनाएं, और मल्च जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसे तो आपको अपनाना ही चाहिए, जो कि आपकी जो फल हैं वो मिट्टी से संपर्क में ना आए। तो इस तरीके से बहुत लाभ होगा आपको अगर आप इन जानकारियों को ध्यान से सुनते हैं। तो आज के लिए श्रोताओं इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही कुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।

0: हारेगा देश जीतेगा।
1: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेली पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें, भाग 5।
8: साथियों, क्यों ना एक पहेली हो जाए।
9: महल में 32 राजा, फल मिठाई को कहते आजा। एक महल में 32 राजा, फल मिठाई को कहते आजा। जो भी महल के अंदर जाए, राजा मिलकर उसको खाए। बोलो क्या, बोलो क्या?
10: दांत।
9: शाबाश, दांत। मुंह महल और दांत है राजा, फल मिठाई को कहते आजा। मुंह महल और दांत है राजा, फल मिठाई को कहते आजा। जो भी मुंह के अंदर जाए, दांत चबाकर उसको खाए। समझे?
8: मजा आया ना? तो साथियों अब हम चलते हैं। नमस्ते।
7: क्विज करें। आज की पहेली दांत पर आधारित थी। संगीतकार नरेंद्र टोनी, गायन स्वर इमरान खान और बच्चे, ध्वनिंकन बटीलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
11: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदू पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक हैं। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी,

पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा, और आप सबसे हमारा निवेदन है उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से, और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियाँ। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस, इसे हम लगभग रोज देखते हैं। डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। यह जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे, और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना, याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हो और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए, और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी, कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो, और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओ, 19वीं शताब्दी में फास्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी, और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं, उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं, जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया, और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना। खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ,

तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा, उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT Books PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं, इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
2: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
3: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
2: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
4: जवानों,
5: जी सर,
4: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
5: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
4: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
6: जी सर।
4: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
6: जी जनाब।
4: हाथ गोला हाथ में लो।
6: ले लिया जनाब।
4: अब पिन रिलीज करो।
7: फेंको।
6: फेंका जनाब।
7: अरे, अरे ये क्या हुआ?
6: अरे बचो, बचो।

0: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
2: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
4: सही में
2: बहादुर सैनिक हो तुम।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
5: May I come in, sir?
3: Yes, come in.
5: Sir.
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
5: सर।
3: Well done, Adi. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
5: Thank you, sir. Sir, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
5: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: गो अहेड यंग मैन।
5: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
6: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे और इस बीच

0: बाष्प प्रेमला। अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। Go and send them to hell! Fire! Yes, sir!
1: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
2: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
11: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
10: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
12: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
10: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?

और नटखुशी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 cm की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक

0: साल शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें।
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों, तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंगा

0: प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें, इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई

0: जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए

0: जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है, अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो AI है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है, एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
0: मतलब उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
1: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो AI जब कदम रख रहा था, तो या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पर ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका

0: एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
1: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना ले, उसे दुश्मन ना समझे, तो चीजें आसान हो जाएगी।
0: बिल्कुल, ये जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी बल्कि वो चीजें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें AI से हम पूछें, तो AI के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो AI की जो अपनी जो AI भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में AI से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो AI पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, AI आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही AI आपको बता देगा। और हम लोग भी AI आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AI आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए, जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है, वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज को AI बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप AI के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ के क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सबके डेटा अगर आपके AI के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में AI आपको मदद करता है।
1: अच्छा, AI क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है, और कैसे दे सकता है AI हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो AI आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं, और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो

0: मिजाज है ना उसका, आप जैसे लोगों का मिजाज भाप के आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ या 10% ही मुनाफा हुआ या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो एआई है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो एआई सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है ये जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल

0: से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या एआई की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है। हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें। लेकिन एआई जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं, वो एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि एआई को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है, और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है, और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
0: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है, और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें, ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
1: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है, और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो एआई कंट्रोल कर लेगा, और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा, और सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा, और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है, और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में, और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
0: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई

0: किसान की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुंचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
1: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं, जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पे ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है, चूँकि बाजार में मांग आने वाली है। एआई चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पे होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहां पर भी इसकी जानकारियां आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
0: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
1: देखिए एआई एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पे लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न है,

तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए, एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहां पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा जी। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहां 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा। यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया। यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया। तो क्या हुआ, वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेजी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आप

0: अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
1: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
0: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने AI से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से AI की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो,

0: में हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
0: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। किसान भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रमुख दलहनी फसल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं राजमा के बारे में। राजमा की खेती कैसे की जाती है, इसकी विधि क्या है, सब कुछ जानेंगे हम। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए हैं डॉक्टर दिव्या महतो। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: थैंक यू उमा।
5: मैम, सबसे पहला सवाल और बहुत ही बेसिक सा सवाल कि राजमा क्या है और इसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल क्यों माना जाता है?
6: जी, राजमा देखिए एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जिसकी उपज क्षमता चना और मटर से अधिक होती है। यह पोषण और समृद्ध स्रोत होता है और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर ये विशेष रूप से लोकप्रिय दलहनी फसल है। इसके सूखे दाने दाल के रूप में तथा हरी फलियां सब्जियों के रूप में बहुत उपयोगी होती हैं और आजकल तो मतलब ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है।
5: तो मैम, राजमा के कुछ पोषण मूल्य भी हैं और इनकी उपयोगिता के बारे में भी बता दीजिए।
6: राजमा केवल स्वादिष्ट भोजन ही नहीं बल्कि पोषण से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक फसल है। इसमें लगभग 23% प्रोटीन और 60% कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन का स्रोत होता है। और अगर बात करें इसके 100 ग्राम दानों की तो इसके 100 ग्राम दानों में लगभग आपको 260 मिलीग्राम कैल्शियम, 410 मिलीग्राम फॉस्फोरस और लगभग 6 मिलीग्राम आयरन भी प्राप्त होता है जो शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में बड़ा उपयोग।

0: योगी है। और स्वास्थ्य की दृष्टि में जैसे राजमा हृदय रोग, कब्ज, ब्लड शुगर, एनीमिया जैसी समस्याओं में बहुत लाभकारी है। और भारतीय खान पान में तो खासकर उत्तर भारत में राजमा चावल बड़ा लोकप्रिय व्यंजन माना जाता है, और साथ ही साथ इसे दालों, सब्जियों और अन्य जो है अनाजों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है।
1: मैम, राजमा के कृषि और आर्थिक महत्व के बारे में भी कुछ बता दीजिए।
0: जी, अब कृषि की महत्ता की बात करें तो राजमा कम लागत में अच्छी कीमत देने वाला एक लाभकारी फसल है। इसे फसल चक्र में शामिल करने में भूमि की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और इसे पहाड़ी, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इसे मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसे मक्का के साथ जो है अंतर फसल के रूप में लगाया जाता है, जिसमें कि एक पंक्ति मक्का और दो पंक्ति राजमा की तरह बुआई की जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में इसे आलू और सरसों की कटाई के बाद वसंत ऋतु में बोया जाता है। और अगर आर्थिक महत्ता की बात करें तो राजमा किसानों को कम निवेश में अधिक लाभ देती है, और पोषण, कृषि तथा सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा भी है राजमा। और अगेती आलू के साथ इसे 2:2 या 2:3 के रूप में अंतर फसल के रूप में ये लगाया जाता है।
1: तो अब ये भी हम जानना चाहेंगे कि राजमा की खेती कैसे होती है और उसके लिए कौन कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, कौन कौन सी मृदा उपयुक्त होती है।
0: जी, राजमा ठंडे और शुष्क मौसम में अच्छी तरह उगती है। इसके लिए आदर्श जो तापमान होना चाहिए वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि इसके अंकुरण के लिए जो तापमान होना चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये इसके लिए जो है फसल पाला या जल जमाव या अत्यधिक गर्मी में जो ये फसल है बहुत संवेदनशील है, तो इसका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी की बात करें तो राजमा बलुई, दोमट से लेकर के चिकनी मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली अगर दोमट मिट्टी है तो इसका जो है बहुत अच्छी इसकी खेती होती है उस तरह की मिट्टी में।
1: मैम, हमने जलवायु के बारे में जान लिया, मिट्टी के बारे में जान लिया, अब ये जानना चाहेंगे कि बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है और इसके लिए बीज दर कितना रखना चाहिए।
0: देखिए, राजमा को जैसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि राजमा को मोस्टली इसको पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में इसे खरीफ के मौसम में लगाते हैं, और उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे रबी के मौसम में लगाया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई जो करते हैं वो जून के अंत से जुलाई के पहले सप्ताह तक होती है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी जो बुआई का समय है वो है अक्टूबर के अंत से नवंबर के पहले सप्ताह तक इसका जो सही समय है। और बुआई के लिए आदर्श जो तापमान है वो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो बीज दर है वो लगभग 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। और बुआई से पहले जैसे हम जानते हैं बीजोपचार ज़रूर करें, और बीजोपचार के लिए हम कार्बेंडाजिम, थीरम जैसे फफूंदनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अंकुरण बहुत बेहतर होता है, और बीज की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता भी है वो बढ़ जाती है। और बीज को, मतलब राजमा के बीज को हल्की नमी देकर ही बोने से उपज बहुत अच्छी मिलती है, तो हल्की नमी होनी चाहिए बीज में।
1: तो मैम, राजमा की बुआई किस विधि से की जाती है।
0: जी, राजमा के बीज देखिए कठोर होते हैं, इसलिए खेत की जो है अच्छी जो तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और खरीफ की फसल की कटाई के बाद खेत की जुताई 2 से 3 बार कर पाटा चलाकर भूमि को समतल करें, और रबी में जो है इसमें जो पंक्ति से पंक्ति दूरी होती है वो होना चाहिए 40 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी रबी मौसम में वो होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जैसे मैंने पहले ही कहा, इसकी जो खेती है हमारे यहाँ रबी में होती है, या उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसकी खेती रबी में होती है।

0: है तो वहाँ पे आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें और बीज की जो गहराई होनी चाहिए वो 6 से 8 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं।
1: मैम, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजमा में उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: राजमा एक दलहनी फसल है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं उमा कि दलहनी फसल में एक प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, लेकिन राजमा उस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें उसमें उर्वरक देने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो प्रति हेक्टेयर उसके लिए हम 15 से 20 टन सड़ी गोबर की खाद डालें जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता बढ़ती है और इसके साथ साथ 100 से 125 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश दें और नाइट्रोजन को जो है वो आधी मात्रा उसको बुआई के समय दें और बाकी जो है उसकी मात्रा सिंचाई के बाद देनी चाहिए। और अगर मिट्टी में जो है जिंक की कमी है तो फिर जिंक या सल्फर की कमी है तो बुआई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम सल्फर डालना बहुत लाभकारी होता है।
1: मैम, अब सिंचाई की बात करते हैं तो मैम राजमा में सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: जी, राजमा अर्ध शुष्क फसल है इसलिए अधिक पानी की ज़रूरत तो नहीं होती है इसमें। अच्छी उपज के लिए 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त है और पहली सिंचाई बुआई से पहले करें ताकि कठोर जो बीज है वो अंकुरण उनका अच्छा हो सके और इसके बाद इसकी जो सिंचाई है यानी बुआई से 25वें दिन पे करें, फिर दूसरी जो इसकी सिंचाई है वो बुआई के 50वें दिन पे और आखिर में बुआई के 60वें दिन पर इसकी सिंचाई करें। और ये ध्यान ज़रूर रखें कि अधिक सिंचाई से जड़ सड़ भी सकती है तो उसके लिए जो पानी का जमाव है वो ना होने दें, खेत जो है समतल रखें और पानी का जमाव जो है ना होने दें।
1: मैम, राजमा में निकाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है?
0: जी, राजमा में जो है खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। इसमें जो प्रमुखतः जो खरपतवार जो होते हैं वो होते हैं मोथा, बथुआ, दूब घास और कनकवा होता है मोस्टली। और इसके लिए जो है रासायनिक प्रबंधन हम रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए जो है बुआई के बाद और अंकुरण से पहले आप पेंडीमेथिलिन का छिड़काव कर सकते हैं और कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली जो निराई गुड़ाई होती है वो होती है 25 से 30 दिन पर और दूसरी जो निराई गुड़ाई होती है वो 45 से 50वें दिन पे होती है। और इसमें जो है जो पौधा है उसको जो है हल्की मिट्टी से चढ़ा दे ताकि फलियों को सहारा मिल सके।
1: मैम, अब एक और ज़रूरी बात जो किसान भाई बहनों के मन में आ रही होगी कि राजमा की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं?
0: जी, राजमा की जो उन्नत किस्में जो भारत में जो प्रचलित हैं वो हैं PDR-14 जिसे हम उदय के नाम से भी जानते हैं, मालवीय 137 या VL-63 या VL राजमा 125, अंबर, उत्कर्ष, वरुण, मालवीय 15 और स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल आदि के नाम से। लेकिन राजमा में जो प्रचलित किस्में हैं वो जैसे हैं अंबर जिसकी जो बुआई है वो 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होती है और इसकी जो पकने की अवधि होती है वो 120 से 125 दिन तक और औसत जो इसमें उपज मिलती है अंबर में वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसके जो दाने होते हैं वो लाल चित्तीदार होते हैं। और इसके बाद जो प्रभेद आता है वो है प्रचलित प्रभेद आता है वो है उत्कर्ष, उसकी जो बुआई का समय है वो है 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, और पकने की जो इसकी अवधि होती है वो है 130 से 135 दिन तक, और इसकी जो उपज क्षमता है वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और दाने इसके

0: गहरे चित्तीदार होते हैं। और इसी क्रम में जो है तीसरी जो प्रभेद आता है वो है PDR-14, उदय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो बुआई का सही समय है वो 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक और पकने की अवधि इसकी 115 से 125 दिन और तक होती है। और इसकी जो उपज क्षमता है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इसके भी दाने जो है लाल चित्तीदार होते हैं। और आखिर में जो सबसे प्रचलित किस्म है वो है Malviya-15, जिसकी बुआई का समय 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होता है और इसकी पकने की अवधि 110 से 115 दिन तक होती है। और उपज जो क्षमता है वो इसकी 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इसके जो दाने होते हैं वो उजले रंग के होते हैं।
1: मैम, अब रोगों के बारे में बात कर लेते हैं। राजमा में प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं और कीट कौन कौन से लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: राजमा में कई रोग और कीट लगते हैं जिसमें समय पर प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट जो कॉमन जो रोग लगते हैं वो हैं जैसे एंथ्रोक्नोज और पत्ती धब्बा रोग। इसके लिए सबसे पहले तो रोग मुक्त बीज बोएं और बीज उपचार ज़रूर करें। और इस रोग के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। और दूसरा जो आता है वो है जड़ सड़न की दिक्कत आती है, उसके लिए खेत में पानी का जमाव कभी ना होने दें, बीजोपचार ज़रूर करें और फसल चक्र का जो है इस्तेमाल उस फसल चक्र को अपनाएं। और फिर आता है पीली मोज़ेक रोग, ये सफ़ेद मक्खी से ही जो है फैलता है, तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना बड़ा ज़रूरी है इसमें। और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं। और अगर पौधा रोगग्रस्त हो चुका है तो उसको तुरंत जो है नष्ट करें उस पौधे को। और जो प्रमुख कीट इसमें लगते हैं वो हैं फली छेदक इल्ली, और इसके लिए जो हम प्रबंधन कर सकते हैं वो हम स्पाइनोसेड से इसका जो है छिड़काव करें। ये स्पाइनोसेड एक जैविक कीटनाशी है और इसका जो है छिड़काव हम इमीमाक्टिन बेंजोएट से भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे जो दूसरे कीट जैसे माहू भी लगते हैं, उसके लिए आप नीम का तेल या इमिडाक्लोप्रिड से जो है इसका प्रयोग करके जो है नियंत्रण कर सकते हैं। और सफ़ेद मक्खी के लिए भी जैसे हमने पहले बताया इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है।
1: मैम, अब एक और सवाल कि राजमा की कटाई कैसे करें, कटाई कब करनी चाहिए और भंडारण कैसे किया जाता है?
0: जी, राजमा की फसल देखिए लगभग 120 से 130 दिन में तैयार होती है। जब फलियां पीली होकर सूख जाएं और बीज जो है खड़खड़ाने लगे तभी कटाई करें। और जो है पौधों को जड़ से काटकर 3 से 4 दिन धूप में सुखाएं, पर अधिक देर तक धूप में ना रखें ताकि फलियां ना फटें। बीज की जो नमी होनी चाहिए वो लगभग 9 से 10% होनी चाहिए और तभी उसको हाथ या मशीन से अलग करें। और ध्यान रखें कि दाने टूटने ना पाए, और यदि नमी अधिक हो तो दानों को फिर से सुखा सकते हैं और सुखा कर उसे ठंडी और नमी रहित जगह पर बंद बोरियों में सुरक्षित रखें।
1: मैम, एक और बहुत ज़रूरी सवाल कि राजमा की खेती से किसानों को कितनी आय प्राप्त हो सकती है?
0: राजमा की खेती से किसानों को अच्छी आय मिलती है। समतल क्षेत्रों में सिंचित अवस्था में इसकी जो उपज है वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें मिल सकती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती में इसकी जो उपज है वो 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे मिल सकती है। और इसके साथ साथ पशुओं को भी जो है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भूसा प्राप्त होता है। सही प्रबंधन अगर किसान करें तो लगभग इसमें 1 से 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक शुद्ध लाभ मिल सकता है।
1: तो मैम, जिस तरीके से राजमा की खेती से किसान भाई बहनों को आय मिल सकती है, तो उम्मीद है कि बिहार में भी और बड़े पैमाने पर राजमा की खेती होगी। आपने बहुत उपयोगी बातें बताई। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसल का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
11: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
2: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचा

0: बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे, या फिर एसीफेट की 75% WP 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धन बाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अर्का निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: इतनी गंभीर बीमारी है, टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी

0: से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर,
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक विषय लेकर आए हैं जो काफ़ी खास है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, अक्टूबर माह की हम बात करें तो इस समय विलंब से लगाए गए धान की फसल में क्या कुछ प्रमुख कार्य आपको करने हैं किसान भाइयों, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद, जो कि वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
12: धन्यवाद मैडम।
11: डॉक्टर साहब, इस माह में धान के फसल के लिए जो महत्वपूर्ण शस्य क्रियाएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे।
12: सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को अपनी तरफ से अभिवादन करना चाहूँगा और उन्हें ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर का जो महीना होता है वो धान की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि पता है, सभी किसान भाई जानते भी होंगे और उनके खेतों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रभेदों के धान लगे होंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होगा। कुछ प्रभेद पकने की अवस्था में होंगे, कुछ में फूल आ रहे होंगे, तो कुछ प्रभेद ऐसे होंगे जिसमें गाभा या गंभर वाली अवस्था होगी और कुछ में दूध वाली अवस्था होगी। तो फसल की आवश्यकता अनुसार किसान भाइयों को उचित उपाय करने होंगे, तभी उन्हें अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त हो सकती है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि धान की जो फसल पकने की अवस्था यानी दूध वाली अवस्था को पार कर चुकी हो, उसके खेत में जो पानी लगा होगा उस पानी को बाहर निकाल देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब पर्याप्त नमी है खेतों में, अच्छी बारिश हुई है, तो उस अवस्था में अब ज़्यादा पानी लगा हुआ रहने के वजह से

0: फिर आगामी जो रबी फसल है उसमें विलम्ब हो सकता है। तो जो दूध बनने की अवस्था में है आ चुकी है फसल, उसके उसमें अब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, वो लगभग 15-20 दिनों तक उसमें पर्याप्त नमी रहेगी और दाना भी अच्छा भर जाएगा और पानी को ड्रेन करने से आने वाली रबी फसल की बुआई भी वो समय से कर पाएंगे। तो ये सावधानी बरतनी है उन भाइयों को जिनके खेत में धान का फसल लगभग दूध बनने की अवस्था को पूरी कर चुका है। और मैं क्रमवार ढंग से बताना चाहूँगा, चूँकि अभी हर तरह के प्रभेद उनके खेतों में हैं और अलग अलग अवस्थाओं वाली हैं। तो जो फसल पक गई हो या पक जाने की अवस्था में है उसकी कटाई भी उनको समय से कर लेनी है, और जो फसल अभी गाभा वाली अवस्था में या गंभर वाली अवस्था में है उसमें यूरिया का अंतिम उपरिवेशन उन्हें करना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं उनको करनी है। और जिस धान फसल में बाली निकल रहा हो, बाली निकलने वाली अवस्था या बाली निकलने वाली है, उसमें थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाली निकलने के समय ही धान का एक रोग जो फॉल से स्मट कहते हैं या ठेठ भाषा में उसको कंडवा रोग भी कहते हैं, उसका प्रकोप होता है। और इसके रोग के कारण दाना के जगह पर फफूंद या फंगस के कणों का काला या हरा पुंज बन जाता है जो पके दानों को नष्ट कर देता है। तो इस बीमारी से भी बचाव हेतु उन्हें आवश्यक उपाय करनी है। तो ये सारी बातें हैं जो किसान भाई को अपनानी चाहिए और इस माह में उन्हें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इस माह में बहुत सारे धान की फसल तैयार हो रहे होंगे, फूल भी लग चुके होंगे बहुत सारे में, तो ऐसे में इस दौरान क्या कुछ सावधानियां हमारे किसान भाइयों को बरतनी चाहिए?
0: अभी जैसा कि हमने बताया कि जब फूल आने की अवस्था होती है तो उसमें कंडवा रोग होता है जिसको फॉल्स स्मट बोलते हैं, और कभी कभी हमारे किसान भाई इसको बोलते हैं लक्ष्मीनिया रोग है। तो इसकी शुरुआत होती है उसी समय जिस समय धान में बाली आना शुरू होता है, ये फंगस है। तो इससे बचाव के करने की ज़रूरत है। और इस बीमारी के अलावे और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो धान को काफ़ी प्रभावित करती हैं, और जैसा कि आपने देखा कि इस महीने में अच्छी बारिश हुई है और उस बारिश के वजह से धान को बहुत राहत मिली है, लेकिन इस बारिश के कारण और ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण और तापमान में भी थोड़ा सा उस तरह का उतार चढ़ाव रहा है, और ख़ास करके 30 डिग्री सेल्सियस से ही लगभग ऊपर तापमान रहा है। तो इस वजह से बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ा है। अभी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं जिसमें आवरण झुलसा जिसको सीथ ब्लाइट भी बोलते हैं, तो इसका प्रकोप भी अब देखने को मिल रहा है और खेतों में धान की फसल में ये बीमारी आती है। तो मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि इसके लक्षण क्या हैं और उसके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप ये जान लें कि धान में जो ये आवरण झुलसा जिसे अंग्रेजी में सीथ ब्लाइट कहते हैं और पर्ण अंगमारी रोग भी कहते हैं हिंदी में, तो इसका जो लक्षण है वो धान फसल में इस प्रकार से दिखता है। और उसके कारण भी कुछ ऐसे हैं जो खास करके हम लोगों की गलतियों से या आपकी गलती से हो जाती है। और जब आप धान को ज़्यादा घना लगाते हैं या धान में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का या यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जब लगभग 96-97% रहता है और साथ में तापमान भी 30 डिग्री या 32 डिग्री सेल्सियस होता है तो पत्तियों पर आयत के समान आयताकार अनियंत्रित भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, और जो पत्र आवरण जिसको सीथ ब्लाइट कहते हैं उसके प्रमुख भागों में धूसर रंग का तथा किनारे किनारे भूरे रंग का मार्जिन नज़र आता है। तो ये सीथ ब्लाइट का लक्षण है। और ये खास करके फसल जब परिपक्व होने लगता है या जब उम्रदराज फसल हो जाता है तो उसमें इसका ज़्यादा प्रकोप हो जाता है और वो सहन नहीं कर पाता है। तो इससे बचाव करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा आपके खेतों में नज़र आ रहा है तो आप तुरंत जो है उसमें

क्विंटाफ नाम की एक दवा है जिसको हेक्साकोनाजोल के नाम से ये प्रचलित है, और इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी इसका आप छिड़काव कर सकते हैं, और ये छिड़काव आपको 3 बार करना है 10 से 12 दिनों के अंतराल पर। दूसरी दवा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, वो सीथमार बोलते हैं, वेलिडोमाइसिन के नाम से ये मिलता है।

0: के दर से। वैसे इस बीमारी से बचाव के लिए आप अपने खेतों में जब अगली बार फसल लगाएंगे तो उसमें सीडोमोनास फ्लोरेसेंस नाम की जो दवा है उसका लगभग 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 50 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर में मिला करके आप रोपाई के 30 दिन बाद अगर प्रयोग करेंगे तो इस बीमारी से बचाव हो सकता है। खरीफ फसल में छिड़काव के लिए आप इसी सीडोमोनास फ्लोरोसेंस का 0.2% का स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे तो आपको बचाव हो जाएगा
1: जी।
0: इसके अलावे और एक बीमारी है जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है जिसको जीवाणु झुलसा रोग कहते हैं। इसके कारण पत्ती के टिप से किनारों या मिड रिब से होकर नीचे की ओर पुआल रंग का धब्बा बनता है जो बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। तो इससे बचाव के लिए आपको सीड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो आप सीड ट्रीटमेंट अगर नहीं किए होंगे तो आपको छिड़काव ही करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको छिड़काव करने की ज़रूरत है। और उस छिड़काव के लिए आपको ब्लाइटॉक्स नाम की एक दवा है, और इस ब्लाइटॉक्स नाम की दवा का प्रयोग आपको करना है। ब्लाइटॉक्स 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल बनाएंगे, और घोल आपको जो इस्तेमाल करना है 1 हेक्टेयर में 1000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए आपको 2.5 किलोग्राम ब्लाइटॉक्स और 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये दोनों दवा को मिला करके आप 1000 लीटर पानी में घोल देंगे, और उससे अगर छिड़काव करते हैं तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से बचाव हो सकता है। इसके अलावे और भी बीमारियां हैं जैसे ब्राउन लीफ स्पॉट है जो पत्तियों पर भूरे रंग के छोटे छोटे गोल अंडाकार धब्बे नज़र आते हैं जो बाद में आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए आप डाइथेन जेंस Z78 या इंडोफिल M45 का प्रयोग कर सकते हैं, और इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो आप लीफ स्पॉट से भी बचाव कर सकते हैं फसल का। और अगर ये दवा नहीं है तो कार्बेंडाजिम का प्रयोग 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से रोग से आप बचाव कर सकते हैं। तो इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खास करके अभी जो धान का फसल है उसमें कीट का भी प्रकोप काफ़ी हो रहा है, और उसमें खास करके तना छेदक कीट और गंधी कीट जहाँ जो दूध बनने वाली अवस्था है तो उसमें गंधी कीट का प्रकोप हो रहा है, और ये मुझे जानकारी किसान भाइयों से ही मिल रही है। तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों के खेत में धान अभी दूध वाली अवस्था में आ गई है तो दूध बन रहे हैं उसमें, तो उसमें आप इकालक्स नाम की दवा है और इसका क्विनल फॉस 5% है, इसका 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सुबह के समय जिसमें पत्तियों पर ओस रहता है उस समय इसका भुड़काव करेंगे या डस्टर के द्वारा पूरे खेत में अगर इसको बिखेर देंगे समान रूप से तो ये गंधी कीट जो है उसके गंध से आपके खेतों से भाग जाएगा, और जो दाने में दूध बन रहे हैं भर रहे हैं तो वो दूध को चूस नहीं पाएगा और आपका फसल गंधी कीट के से बच पाएगा
1: जी। क्या इस माह में और भी कुछ फसल की सुरक्षा के उपाय हमें करने चाहिए डॉक्टर साहब?
0: जी हाँ, ये अक्टूबर का माह भी जो है कीटों को भी काफ़ी निमंत्रण देता है, तो इस समय भी एक और हानिकारक कीट है जिसको ब्राउन प्लांट हॉपर बोलते हैं, भूरा मधुआ, इसका भी काफ़ी प्रकोप होता है, और किसान भाई बहुत खुश होते हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छी है, इस बार अच्छी पैदावार मिलेगी, लेकिन जब एक सप्ताह बाद अपने खेतों में जाते हैं तो उनको लगता है कि जगह जगह पूरा एकदम जल सा गया है। तो एक्चुअली ये भूरा मधुआ क्या है कि नीचे से पूरी चाटते हुए पत्तियों को चाटते हुए ऊपर तक आ जाता है और पूरा जो उसकी हरितिमा है उसको चाट लेता है, और जिसके वजह से पत्तियाँ जो है पीली होने लगती है। तो इससे बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने खेतों में

0: अगर आपके खेतों में इस कीट का प्रकोप नहीं भी है, बगल के खेतों में है, तो आप प्रिवेंटिव मेजर के रूप में इमीडा क्लोप्रीड 17.8 SL दवा का प्रयोग करें, और इसके लिए 125 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें। और दूसरी दवा आप प्रयोग कर सकते हैं एजाडिरेक्टिन, जो बाज़ार में अलग अलग नामों से आता है, इसका 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 400 लीटर पानी में घोल करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो ब्राउन प्लांट हॉपर से भी बचाव हो सकता है। इसके अलावे स्टेम बोरर की भी समस्या किसान भाइयों को देखने को मिल जाती होंगी, अभी होगी समस्या, जिसको तना छेदक कहते हैं, और ये क्या करता है, कीट का लार्वा तने में छेद कर अंदर प्रवेश कर जाता है और बीज के भाग को खा जाता है, जिस वजह से पत्तियां सूख जाती हैं और उसको खींचने से आसानी से वो खींचा जाता है, और बाली की अवस्था संपूर्ण बालियां सफ़ेद हो जाती हैं, जिसे इसको डेड हर्ट भी बोलते हैं, मृत कल्ला भी हेड बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं। तो इस तरह से ये डेड हर्ट जो बनने की समस्या है, वो इंडिकेशन है कि आपके खेतों में स्टेम बोरर का प्रकोप है। तो इससे बचाव के लिए आपको अगर सुरक्षात्मक ढंग से करना चाहते हैं तो फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसके लिए 12 ट्रैप जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कम आपको अपने खेतों में लगाना चाहिए। और अगर आप फेरोमोन ट्रैप आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है और आपके खेतों में पर्याप्त नमी है, तो कारटाप हाइड्रोक्लोराइड नाम की दवा जो है, कीटनाशक दवा, इसका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेतों में आप छींट दें, तो इससे बचाव हो जाएगा। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो फिप्रोनिल 0.3% ग्रेन्यूल जो है, ये 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, ये दानेदार है दवा, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर एजाडिरेक्टिन उपलब्ध है तो 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करेंगे, तो उससे भी धड़छेदक कीट से, तना छेदक कीट से आपका बचाव हो जाएगा। तो इस तरह से किसान भाई अपने फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। और चूंकि ये माह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है धान के लिए और धान की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए, अपने मेहनत को सफल करने के लिए, तो थोड़ी सी सावधानी बरतकर उचित रोग और कीट नियंत्रण के द्वारा किसान भाई अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। और आगामी रबी फसलों के लिए डॉक्टर साहब क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप किसान भाइयों को?
0: मैं अपने किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप रबी की बुआई समय से करना चाहते हैं तो जो फसल अभी पक गया है उसका तुरंत कटाई करें और उसकी झराई अच्छी तरह से कर लें, और खेत में अगर एक्सेस पानी लगा हुआ है तो उसको पानी को बाहर निकाल दें। जिस फसल में बालियां निकल गई हैं और दाने भर रहे हैं, तो उसमें एक्सेस वाटर अगर है, ज़्यादा पानी है, तो उस पानी को भी अब रोक कर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो भोजन का अब भोजन को जो पौधा ले पाएगा उसके लिए जो नमी की आवश्यकता होगी उतनी नमी पर्याप्त खेतों में रहती है। तो दाना बन जाने के बाद या दूध भरते समय जब दाना पुष्ट हो जाए तो उस समय एक्सेस वाटर जो है उसको भी खेत से बाहर निकाल दें, और कोशिश करें कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग, जो पौधा अपना भोजन का आदान प्रदान करने की क्रिया को बंद कर दिया है ज़मीन से, उसमें अब किसी तरह का भोजन पौधे को मिल नहीं रहा है, और जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट का जो एक जगह से दूसरे जगह वितरण है, वो सब पूर्ण हो चुका होता है, तो उस अवस्था में फसल को काट लेने से एक फ़ायदा ये होगा कि फसल समय से पहले कट जाएगा, और जो हरा चारा के रूप में धान के पत्ते जो हरे रहते हैं उसको मवेशियों को भी खिला सकते हैं, और उसके वजह से खेत भी जल्दी खाली हो जाएगा और आगामी रबी फसलों की बुआई भी वो समय से कर पाएंगे। तो ये दो बात किसान भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो धान पक गए हैं या पक रहे हैं तो उसमें अब ज़्यादा पानी की खेत में ज़रूरत नहीं है, उस पानी को अब कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी खेत से बाहर निकल जाए। जो धान पकने वाली अवस्था हो तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में उसकी कटाई कर लें, और

0: जो हरे पत्ते हैं या उसका प्रयोग मवेशियों को चारे के रूप में खिलाएं, और फसल की अच्छी समय से झराई करके सुखा करके फिर उसका स्टोरेज करें और रबी फसल की बुआई वो समय से फिर कर लें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आज के इस वार्ता से आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, और इस प्रकार आप इस माह में विलंब से लगाए गए धान की फसल में प्रमुख कृषि कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपकी उत्पादन अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
1: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
5: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
6: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी गैप फिलिंग एवं

0: पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें। स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा बैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थाई पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थाई पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त

0: प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं, और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और चीज जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। करें, भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति

0: लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धन बाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हेमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में।
1: नमस्कार मित्रों, मैं नरेश कोहली।

एनसीईआरटी के भाषा शिक्षा विभाग से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं, आज हम लोग एनसीईआरटी की 8वीं के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3, उसमें संकलित एक कहानी कामतानाथ की कहानी है, वो लाख की चूड़ियां, जो कि आपका पाठ नंबर 2 है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, कहानी हम सबको अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहानी कहना और कहानी बुनना, कहानी के बारे में समझना जितना आसान लगता है, कई बार वो थोड़ा सा लगता है कि हम उसको ज़्यादा सहज ले लेते हैं, तो चीज़ों को जिस अर्थ में हमें ग्रहण करना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए थोड़ी सी आज हमारी कोशिश होगी कि इस कहानी को बच्चों के साथ हम लोग साझा करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, और शिक्षकों से भी कुछ बिंदु इस बात में उभर के आ सकते हैं, वो भी हमारे ध्यान में है कि क्या क्या बातचीत हो सकती है बच्चों से, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से। ये हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी का जो मूल विषय है और जो कहानी का आनंद है वो दोनों ही आप तक पहुंचे। जैसा कि मैंने बताया कि कामतानाथ की लिखी हुई कहानी है ये लाख की चूड़ियां, तो सबसे पहली जो जिज्ञासा बनती है वो यही बनती है कि चूड़ियां तो हमने बहुत सुनी है कि भाई कांच की चूड़ियां सुनी है, सोने चांदी की भी सुनी है, लेकिन लाख की चूड़ियां खास संदर्भ में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ विशेष क्षेत्रों में, या जैसे कि किसी भी विवाह के, शादी ब्याह के अवसर पर इस तरह की चूड़ियों का विशेष उपयोग होता है, और हम लोग देखते हैं कि लाख की चूड़ियां खास अवसरों पे भी इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लाख की चूड़ियां हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा थी, और उसको बनाने वाले जो कारीगर थे वो भी हमारे दैनिक जीवन में सामान्य रूप में विद्यमान रहते थे, सामान्य रूप में पाए जाते थे। ये कहानी भी हमें लाख की उन चूड़ियों की कहानी बताती है जो कि आजकल पर्सनल में कम हो गई हैं, यद्यपि एक नए रूप में वो फिर से आ रही हैं, लेकिन ये कहानी अगर हम कहें कि 70-80 के दशक के आसपास, आज से लगभग 50 साल पहले या उसके बाद, जब गांव में कारीगर लाख की चूड़ियां बनाते थे, उसके बारे में है कि किस तरह से लाख की चूड़ियां बनती थी, कैसे वो कारीगर बनाते थे, क्या गांव वालों का लगाव होता था, और उसके साथ साथ बच्चों का भी उनसे क्या जुड़ाव होता था, ये सब इस कहानी में हम लोग देखेंगे। इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र हैं, एक तो जो कहानी कह रहा है वो, जो कि अपने आप को कह रहा है कि मैं गांव में गया, या दूसरा जो इसका मुख्य पात्र है जो लाख की चूड़ियां बनाता है, वो बदलू चूड़ी वाला है जो चूड़ियां बनाता है। लेखक इसमें मैं शैली में ये पूरी कहानी कहता है कि जैसे हम भी, आप भी जब भी अपनी कोई कहानी कहना चाहें, अपनी बात कहना चाहें, कि चाहे वो मौखिक रूप में हो चाहे लिखित रूप में, इस कहानी को हम लोग एक कहानी की तरह भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक संस्मरण की तरह भी। जैसे इसमें जो मुख्य पात्र है मैं, जो बार बार कह रहा है, या कहानीकार है, वो अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता है, और उसके मामा का जो है वो गांव है, गांव में वो उस चूड़ी वाले से मिलता है जो कि लाख की चूड़ियां बनाता है, मनिहार है जो, उसका नाम बदलू काका है, और बदलू काका अपने गांव में सबसे सुंदर लाख की चूड़ियां बनाते हैं, और ना केवल गांव में बल्कि आस पड़ोस में भी वो बहुत ही चर्चित और बहुत प्रसिद्ध कहना चाहिए कि कारीगर है जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं। मेरी एक साथियों आपसे ये भी है कि हम लोग लाख की चूड़ियां बार बार कहते हैं, मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे एक सवाल अपने मन में किए आया कि कई बार हम लोग यही नहीं जानते कि लाख होता क्या है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, तब आप इसका और आनंद ले पाएंगे कि लाख एक तरह का कहिए कि प्राकृतिक पदार्थ है, जो कि एक लाख का कीड़ा होता है, जो जैसे रेशम का कीड़ा होता है, और वो पेड़ पौधों पे लग के उसका धीरे धीरे जो लाख उससे उत्पन्न होता है वो उसको फिर प्रोसेसिंग में, या कहिए कि

शोधन करके पेड़ों से उतार के फैक्ट्री में ले जाके या छोटे मोटे उद्योगों में ले जाके उसको बनाया जाता है और वो प्राकृतिक पदार्थ की तरह होता है। लगभग आप जैसे इसको समझिए, जैसे रेशम का कीड़ा रेशम देता है, वैसे ही ये लाख का कीड़ा हमें लाख का पदार्थ देता है। और लगभग मोम, लगभग जो गोंद होता है उसकी तरह की कुछ चीज है और उसको ब्राउनिश भूरे रंग का ये पदार्थ है और इसमें कई चीजों में इस्तेमाल होता है। ये चूड़ियां उससे बनाई जाती है, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, नेल पॉलिश में जो शाइनिंग आप देखते हैं, या और बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि लाख की चूड़ियां अपने क्या अर्थ रखती हैं आज के

0: जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: ये बोरॉन की कमी के कारण होता है। तो बोरॉन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है। तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में दो तीन तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता। तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है
1: जी।
0: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किस्में उगाएं, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर विप टेल।
1: अच्छा,
0: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विप टेल होता है एक मॉलिब्डेनम की कमी से।
1: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विप टेल
0: के? हाँ, विप टेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता है।
1: अच्छा,
0: तो उसको विप टेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज़ करना है।
1: अच्छा,
0: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
1: अच्छा,
0: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूलगोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
1: नुकसान
0: पहुंचा, फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो अच्छा, इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडाक्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडाक्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को, 0.1 नहीं, 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप

लगता था कि बदलू को वैसे तो सब ठीक था, लेकिन उसको जो ये कांच की चूड़ियां थी उनसे बड़ी चिढ़ थी। वैसे बहुत सीधा और बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, लेकिन उसे कांच की चूड़ियों से कहीं ना कहीं चिढ़ थी, और वो अंदर अंदर इस बात को लेकर कुड़ता रहता था, अर्थात थोड़ा परेशान था, गुस्से में था। और जब किसी महिला को वो देखता था कि भाई उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको कुछ दो चार बातें सुना भी देता था। फिर देखिएगा कि कहना दो चार बातें सुना देना, अर्थात कुछ ना कुछ छोटों का टिप्पणी कर देता था। जब लेखक उनको चूड़ी बनाते हुए देखता था तो कहता था कि मैं घंटों वहां बैठा रहता था, और इस दौरान लेखक को देखता ही रहता था उसके बारे में कि कैसे चूड़ी बन रही है, कैसे कार्य कर रहे हैं बदलू काका। लेकिन बदलू काका भी उसके बारे में पूछते थे, और भाई तुम शहर में क्या करते हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारा रहन सहन क्या है, कैसा है। तो वो कहता कि उसी संदर्भ में वो कहते हैं, जब वो कांच की चूड़ियों की बात आती है तो कहते हैं बदलू काका शहर में तो सभी लोग महिलाएं हैं वो कांच की चूड़ियां पहनती हैं, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा मजेदार है, और थोड़ा सा कहानीकार ने उसमें हास्य और व्यंग्य का पुट दिया है, और वो कहता है कि ये भी वाक्य थोड़ा रोचक है, इसको देखना चाहिए कि हाँ बदलू काका कहते हैं शहर की बात है, शहर की बात तो और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। देखिए कि जो बदलू काका का हास्य व्यंग का अंदाज है वो भी थोड़ा मीठा मीठा सा देखिए चुभन वाला, और उसमें आपको देखेंगे कि वो कहता है कि शहर के बारे में उनकी एक राय है कि वहां सब कुछ चलता है और महिलाएं घूमती हैं जैसे भी वो कह रहे हैं, लेकिन ये कि उनकी कलाइयां नाजुक होती है, और अगर वो चूड़ कह रहे हैं कि लाख थोड़ा भारी होता है, और अगर लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो मोच ना आ जाए, तो ये वो व्यंग्य करते हैं हल्का सा। इसी दौरान लेखक ये भी कहता है कि जब मैं बदलू काका के यहाँ बैठा होता था तो वो मुझे बहुत कुछ खाने पीने को, जिसको कहते हैं कि मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते थे, और जब उनके यहाँ एक गाय भी थी, जब गाय के दूध होता था तो वो मुझे अच्छी खासी मलाई खाने को देते थे, और सबसे बड़ा कारण मेरा यही था, बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ ना डेली प्रतिदिन एक या दो गोली, दो चार गोली जरूर मिलती थी लाख की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और वो कहता है कि ये क्रम लगभग हर साल चलता रहता है, मैं हर गर्मी की छुट्टियों में जाता हूँ, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी की बदली दूर किसी शहर में हो गई, और मैं 8-10 साल तक फिर वहां जा नहीं पाया। और 8-10 साल बाद जब वो वापिस गर्मी की छुट्टियों में जाता है तो वहां वो देखता है कि भाई धीरे धीरे उसको वो भूलने लगा, और गांव में जाके भी उसको बदलू काका की याद नहीं आती। लेकिन उसके मामा की एक लड़की है, और ये कह रहे हैं कि कहानीकार का है कि वो बरसात के दिन थे, वो गिर जाती है, और जब गिर जाती है तो वो जो उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई है बच्ची ने, तो वो टूट के उसकी कलाई में लग जाती हैं, और कलाई में लग जाती हैं तो खून आता है, और फिर वो उसकी मरहम पट्टी करते हैं। इसी दौरान जब वो कांच की चूड़ियों की बात करते हैं तो उसे बदलू काका याद आते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि आज शाम में बदलू काका से मिला जाए, और वो शाम में घूमते फिरते बदलू काका के यहाँ पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि बदलू काका नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पे लेटे हुए हैं, और जाके वो कहते हैं कि नमस्ते करते हैं, बदलू काका भी उनको नमस्ते करते हैं, और वो देखते हैं कि बदलू काका शायद उनको पहचान नहीं पा रहे, तभी वो कहते हैं कि अरे काका मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ, मैं कौन भाई, मैं कहते मैं जनार्दन हूँ, आपसे बचपन में जो लाख की गोलियां बना के बनवा कर लेके जाता था मैं, हाँ अच्छा अच्छा, तब उसको याद आता अचानक। एक बड़ा सुंदर वाक्य कहानीकार ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो भी देखना चाहिए कि ये भाषा की खूबसूरती है। जब हम कहानी कहते हैं, सुनते हैं, खास तौर से जब हम पढ़ते हैं, कहने सुनने में तो जो कहानी कहने वाला होता है उसका अंदाज, बातचीत का उतार चढ़ाव, हाव भाव, खास तौर से उसकी आवाज का जो अंदाज है, कहने का अंदाज है, वो कहानी में रंग भरता है। लेकिन जब हम कहानी, लिखी हुई कहानी को पढ़ते हैं तो वो कहानीकार उसमें शब्दावली भी एक देखता है कि वो सुंदर शब्दावली इस्तेमाल होती है, और वो शब्दावली देखिए कह रहे हैं कि जब उनको याद नहीं आ रहा तो कैसा लग रहा है कि मानो वह अपने स्मृति पटल पर

अतीत के चित्र उतार रहा हो। देखिए ये है अपने बदलू काका अपनी यादों के जो पटल पे जो बीत गया है, जो अतीत है उसके उसकी तस्वीर उतार रहा है। उसको ऐसा लगता है वो याद करने की कोशिश कर रहा है और जब याद आ जाता है तो फिर वो कहते हैं हाँ हाँ बैठो। उसके लिए वो एक फिर से मचिया लेके आते हैं और वो बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके आसपास ना तो वो भट्टी है और ना ही वो जो जिसपे बदलू काका बैठ के बनाते थे वो लाख की चूड़िया, ना वो मचिया है। तो पूछते हैं कि क्या काका आपने काम बंद कर दिया? अब थोड़ा सा यहाँ पे पहली बार उसकी चिंताएं हमें दिखाई देती हैं कि हाँ काम तो बदलू काका कहते हैं हाँ काम तो कई साल हो गए अब बंद हो गया है और वैसे भी अब गांव में मेरी चूड़ियों को पूछता ही कौन है, क्योंकि गांव में क्या है कि अब पूरे गांव में कांच का प्रचार हो गया है और सब लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। एक सवाल जो इस कहानी का मेन कहना चाहिए कि केंद्र बिंदु है वो जो है वो यहाँ पे पहली बार उभर के आता है और वो कहते हैं कि पहले हाथ से काम होता था और अब मशीनों से काम होता है, इसीलिए हाथ से काम करने वाले बेरोजगार होते जा रहे हैं और मशीनी युग आने से वो पूरा का पूरा उस कामकाज पे मशीनों का प्रभाव आ गया। कह रहा है कि हाँ मशीनी युग है लल्ला, अब तो सब काम मशीन से होते हैं, चाहे चूड़ी बनाने का हो चाहे खेत जोतने का हो, सब कुछ मशीन से होता है और फिर कांच की चूड़ियां होती भी तो बहुत सुंदर हैं। तो ऐसे में लाख का ये सब कम लाख की चूड़ियों पे काम करना कहाँ संभव रह जाता है। वो मशीनी युग के आने से जो हमारे कुटीर उद्योग, जो लघु उद्योग, जो घरेलू उद्योग जो एक तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उसकी चिंता जाहिर करता है और लेखक कहता भी है कि हाँ काका वैसे कांच होता भी खतरनाक है और जल्दी टूट जाता है। इसी दौरान एक चीज और लेखक रेखांकित करता है, वो देखता है कि उसको काका को बदलू काका को खांसी आ रही है और उसे लगा कि कहीं इतने लंबे समय तक काका ने काम किया कहीं उनको दमा तो नहीं हो गया और शरीर भी उनका लगभग थोड़ा सा ढला हुआ लग रहा है, नशे उबर आई है माथे की हाथों की, वो थोड़ा आयु का उनके ऊपर असर दिखाई दे रहा है। लेकिन बदलू काका देख लेता है कि वो मेरी खांसी को कुछ और समझ रहा है तो वो कहते नहीं नहीं नहीं ये तो मुझे सामान्य फसली खांसी है जो थोड़े 10-15 दिन में ठीक हो जाती है। खैर वो वाक्य यहाँ पे फिर से लेखक सोचता है और ये बड़ा मार्मिक वाक्य है और इस कहानी का कहना चाहिए मुझे तो केंद्रीय बिंदु लगता है। लेखक ये सोचता है उसकी पीड़ा को देख के काका, वो कहता है कि हाँ इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मशीनी युग ने हाथ काट दिए हैं यानी रोजगार का काम बंद हो गया जो हाथ से, हाथ काटना मुहावरा है किसी का रोजगार छीन लेना काम छीन लेना, यहाँ पे वो इस्तेमाल हुआ और यही इसका केंद्र है एक तरह से। वो कहता है खैर धीरे धीरे बात शांत हो जाती है और फिर वो कहते हैं कि गाय भी वहां दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं गाय का क्या हुआ? कहता बेटा वो तो 2 साल हुए पहले वो बेच दी हमने, क्योंकि अब गाय के लिए चारा जुटाना भी एक समस्या है, उसको खिलाते कहां से। फिर ये भी देखते हैं तो जब गाय की बात आती है तो उसको आम भी याद आते हैं। वो कहता और इस साल आम की फसल कैसी हुई है काका? पूछते हैं हालचाल में जैसे हम लोग बातचीत में ये सब पूछते हैं एक दूसरे से। वो कहते हैं हाँ आम तो हुआ है। तभी वो अपनी बेटी को आवाज देता है कि अरे मैं तो वो सोचता है कि इसको खिलाना भूल ही गया। तभी वो कहता है कि अपनी बेटी को पुकारते हैं और उसका नाम रज्जो है इसमें कहानी में, कि रज्जो बेटा जरा कुछ आम लेके आना, देखो लल्ला आए हैं उनको खिलाएंगे। तो तभी उसकी बेटी आती है और वो एक डलिया में आम लेके आती है, काफी आम काफी अच्छे हैं। वो कहते हैं हाँ आम की फसल बहुत हुई है अब की बार। फिर कहता है कि वो पूरी डलिया उसके सामने रख देता तो खाओ, कहते कि वो कहता है कि अरे मैं इतने कहाँ खा पाऊंगा। तो यहाँ पे फिर बदलू काका एक हल्का सा मजाक करते हैं कि हाँ भाई तुम तो शहरी ठहरे ना, इतने कैसे खा पाओगे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो तुमसे चार गुने इससे चार गुने खा जाता था, वो भी एक समय में। ये बातचीत चलती रहती है और हंसी मजाक के साथ साथ वो कुछ आम ले लेता है। लेकिन जब बदलू

काका की बेटी रज्जो हाथ में चार पांच आम, अंजलि में लिखा हुआ है इसमें कि अपनी अंजलि में चार पांच आम रख के बढ़ाती है, तभी लेखक की नजर या जो इसमें मैं है, ये जो पात्र है कहानी का, उसकी नजर उसकी गोरी गोरी कलाइयों में जो लाख की चूड़ियां थी उनके ऊपर जाता है। अर्थात रज्जो ने लाख की चूड़ियां पहनी हुई हैं और वो उसके हाथों पे बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेखक निकले और फब रही हैं वो उसके हाथों पे। यहाँ पे भी एक चीज देखिए कि उस रज्जो के हाथों में चूड़ियां सुंदर लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी बदलू की नजर उस बात की ओर चली जाती है कि जो लेखक है वो कहीं उनकी बेटी के हाथों में जो चूड़ियां हैं लाख की उसको देख रहा है। और उस वाक्य बड़ा जोरदार है, मजेदार है। देखिए कि बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली कि लेखक कहां देख रहा है, कि उसकी नजर को उसने देख लिया कि ये लाख की चूड़ियों को देख रहा, दृष्टि देख ली। मैं बड़ा सुंदर लगा मुझे कि ये दृष्टि देख लेना भी, देखिए कितना सुंदर वाक्य है। और फिर वो कहता कि हाँ बेटा, बस यही एक आखिरी जोड़ा है जो मैंने बनाया था, और ये भी मैंने जो जमींदार थे उसकी बेटी की शादी के लिए बनाया था, लेकिन वो इसका दाम है वो बहुत कम दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि वो कुल मिला के 10 आने मुझे दे रहे थे, और मैं हिसाब लगा रहा था कि 10 आने का मतलब क्या। आज के समय जैसे हम गए, उसकी गिनती लगा, 10 आने, 8 आने, 12 आने और उसके 60 पैसे लगभग, कि अगर इतना कम दाम मिल रहा है तो वो कह रहा है कि मैंने वो जोड़ा दिया नहीं, और जमींदार से कहा कि नहीं आप शहर से ले आओ, और यही वो जोड़ा है वो अब उसकी बेटी ने पहन रखा है, जो कि एक तरह से आखिरी जोड़ा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये आखिरी जोड़ा शब्द भी बड़ा रोचक है, कि पूरी कहानी में ये बता रहा है कि अब काम लगभग बंद हो चुका है और ये आखिरी था। और अंत में फिर लेखक अपने बातचीत करने के बाद सोचता है कि घर की तरफ चला जाए, और वो घर अपने लौट आता है, लेकिन चलते चलते वो ये सोचता है और उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि बदलू काका ने काम बेशक बंद कर दिया हो, लेकिन उसके अंदर एक जिजीवसा है, जीने की इच्छा है, और वो अभी हारा नहीं है। वाक्य ये है कि लेखक कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वाक्य में पढ़ना चाहूंगा कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। ये हार कर भी हार ना मानना देखने वाली चीज है। और फिर उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात मेहनत कश जो मजदूर हैं, जो अपने हाथ से काम करते हैं, बेशक वो कहीं ना कहीं उनमें निराशा है, दुख है, व्यथा है, काम की बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और उनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। वो कांच की चूड़ियों की तरह से नहीं है कि वो इतनी जल्दी टूट जाए। और लेखक इस बात के साथ अपने घर चला जाता और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये तो वो कहानी है जो लेखक ने कही है सीधे सीधे, और मैंने कोशिश की कि आप लोगों से उस बातचीत के माध्यम से साझा किया जाए। लेकिन मित्रों, सवाल यही है कि जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जिनके सहारे खास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़ी जनसंख्या को हाथ का काम मिला हुआ था, रोजगार था, उनकी आजीविका चल रही थी, वो कहीं ना कहीं मशीनी युग आने से, मशीनी पूरी की पूरी कहना चाहिए कि सभ्यता विकसित होने से वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। और यही इस कहानी में कहा गया है कि मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ काट दिए हैं। ये कहानी हमें उस और भी लेके जाती है कि जरा हम अपने मूल उद्योगों के बारे में भी थोड़ा सोचे, ताकि एक संतुलन बना रहे। मित्रों, ये तो थी कहानी, और क्योंकि हम अपने स्कूली शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस कहानी के अंत में जो अभ्यास दिया हुआ है उसको भी देखें। और जब एक बार हम कहानी को ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो हमारे अनुभव का हिस्सा हो जाती है, तो फिर कहानी से जुड़े हुए सवालों पे बातचीत करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कहानी से, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि भाई वो बदलू मामा क्यों कहते हैं, बदलू मामा को बदलू काका क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका कारण मैंने बताया था बातचीत में कि गांव में जो बच्चे बोलते हैं अक्सर छोटे बच्चे, वो उसी तरह से एक दूसरे को बुलाने लगते हैं।
दूसरा सवाल इसमें

वस्तु विनिमय के बारे में है, तीसरा सवाल मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं इसके बारे में है, और हमने इन सारे पहलुओं पे बातचीत की है। इस कहानी को अगर आप खुद से पढ़ेंगे, इस बातचीत को सुनेंगे, तो आपका ये हल भी आसानी से निकल आएगा और आप इससे बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, कह पाएंगे। इसमें एक हमने कोशिश की है कि कहानी से आगे भी कुछ बातचीत की जाए कि आप कोई कारीगरी का सीख सकते हैं, या ये लाख की चूड़ियां कहाँ कहाँ बनती है, लाख कहाँ बनता है, ये भी जानने समझने की चीज है। और फिर एक पाठ का हिस्सा है पाठ के आगे कि अनुमान और कल्पना हम लोग लगाएं कि हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है, जैसे इस कहानी में जब वो लेखक बदलू काका के यहाँ जाता है तो वो उसको मलाई खिलाते हैं, आम देते हैं, इसी तरह से हम कैसे किसी का अतिथि सत्कार करते हैं। साथ ही साथ गर्मी की छुट्टियों में या किसी भी छुट्टियों में हमें कहाँ जाना अच्छा लगता है उसके अनुभव हम लोग लिखें, और हमारे खान पान में, रहन सहन में किस तरह का बदलाव आ गया इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से इतनी सरल भाषा में आप, तो सीधे सीधे मैं कहूं कि आप अपने अनुभवों को लिखिए। आप गांव से शहर आते हैं, शहर से गांव जाते हैं, किसी पिकनिक पे जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं, किसी तीर्थ त्योहार का वर्णन, किसी भी तरह का वर्णन आप अपने अनुभव को लिख सकते हैं, किसी बदलाव को आप लिख सकते हैं। और एक चीज इसमें सारी किताब में भी आप देखेंगे, वो व्याकरण की बात अक्सर हम लोग करते हैं, और व्याकरण की बात को यहाँ कहा गया है कि हम व्याकरण को संदर्भ के साथ पढ़ाएं, संदर्भ जब पाठ में आए किस विषय का उसी से जोड़ के उसको पढ़ाएं। और ये भाषा की बात में ये बातचीत कही गई है, और जैसे इसमें एक उदाहरण दिया कि संज्ञा क्या है, कि संज्ञा पढ़ाने का एक सामान्य तरीका क्या है कि हम लोग विशेषता बताते हैं, उसकी परिभाषा, ये नहीं। देखिए इसमें बदलू है, बदलू कहानी का पात्र है, बदलू एक नाम भी है, जनार्दन पात्र है, एक नाम भी है, इसमें नाम आया।

0: व्यंग में क्या होता है, व्यंग में जो सामान्यतः कहा जाता है वो अर्थ नहीं होता, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ अर्थ होता है। कि जब हम किसी को महान कहते हैं तो जरूरी नहीं महान हो, मजाक भी हो सकता है वो। इस कहानी में भी अरे शहर वालों की तो बात और है। तो ये इस तरह के वाक्य हैं, थोड़े हंसी मजाक के भी हैं। और एक अंतिम बिंदु इसका जरूर इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाषा में बोलने में सबकी क्षेत्रीय विविधता आती है, बोली का असर आता है, जो जिस क्षेत्र में होता है वो उसी के प्रभाव वाली बोली बोलता है। और इसमें भी बहुत सारे उदाहरण आए हैं, कोई वक्त को वक्त बोल रहा है, उम्र को उम्र बोल रहा है। तो ये आप इस पाठ के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको अभ्यास कर सकते हैं। और एक चीज और अंतिम है ये, और वो ये है कि पाठ में जो नए शब्द आते हैं, जो पहली बार जिनसे हम लोग रूबरू होते हैं, उनको भी देखिए आप, उसकी शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं। अन्यथा एक दो बार पढ़ेंगे तो आप उसका भाव धीरे धीरे खुलने लगेगा। इसलिए मित्रों, इस कहानी को पढ़ें, अपने अनुभव लिखें, हम अपनी कहानी बनाएं, हम अपनी संवेदना का विस्तार करें, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। कार्यक्रम निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
6: कब से?
5: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
6: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
5: खांसी?
6: हाँ।
5: इसको तो एक आध महीना हो गया,
6: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
5: डॉक्टर, खांसी तो है।
6: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
5: टीबी?
6: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
5: ठीक है।
6: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम

0: उन्नत कृषि में। दोस्तों आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण का की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्रण किया कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

0: क्योंकि ये छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन पीएच, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस तकनीक इत्यादि का यूज़ करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी ये चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के ज़माने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप ज़मीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में

0: सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की

0: के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा छेद की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों उन्नत कृषि के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तिलहनी फसल के बारे में जो हमारी सेहत के लिए, हमारे खेत के लिए, दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी उपयोगी होता है. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुसुम की वैज्ञानिक खेती के बारे में. और आज इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर खुशबू चंद्रा. आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: नमस्ते उमा, और हमारे सभी प्यारे किसान भाइयों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
0: मैम सबसे पहले तो हमें हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि बिहार जैसे राज्य में इस फसल का क्या महत्व है और इस देश के अलग अलग हिस्सों में इसे किस नाम से जाना जाता है.
1: बिल्कुल उमा, कुसुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रबी फसल है, रबी तिलहनी फसल है. और अगर इसे इसके जैसे तुमने पूछा कि अलग अलग राज्यों में हम किस नाम से बुलाते हैं, तो जैसे हमारे बिहार में कह लो उसे कुसमी कुसुम्बा कहते हैं, महाराष्ट्र में आप देख लो इसे करड़ी के नाम से जानते हैं, तेलुगु में कुसुमा कहते हैं, तो अलग अलग प्रांत में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है. और सबसे गर्व की बात यह है कि इसके अगर हम उत्पादन के संदर्भ में बात करें तो हमारा देश यानी भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है. और मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि हमारे भारत में किन किन राज्यों में ये रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, तो जैसे महाराष्ट्र हो गए, कर्नाटक हो गए, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और हमारा बिहार है. हालांकि अगर हम देखें तो देश में इसकी औसत उत्पादकता लगभग 736 केजी पर हेक्टेयर है. और अगर कई बार आप देखोगे तो किसान भाई बहन क्या करते हैं, कुछ छोटी मोटी त्रुटियां कर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से उनका उत्पादन जो है वो कम हो जाता है. लेकिन अगर आप देखोगे कि अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान योजना और तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद के संयुक्त प्रयासों से अब इसके कई ऐसे वैरायटीज कह लो आप हाइब्रिड किस्में हमारे बीच में हैं जिनसे किसानों को काफी लाभ मिल सकता है.
0: जी मैम, और जैसे कि आपने बताया कि हमारा भारत विश्व में पहले स्थान पर है तो ये जानकर बहुत खुशी हुई. लेकिन मैम अगर हम बिहार की बात करें तो मैम बिहार में उगाने के लिए कुसुम का कोई खास प्रभेद या किस्म है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए.
1: बिल्कुल उमा, उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देने चाहूंगी. जैसे शुरुआत में आपने बताया था कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जैसे आप देखोगे कि इस पौधे के हर एक पार्ट्स को, हर एक अंग को हम उपयोगी मान सकते हैं. जैसे सबसे पहले आप इसकी पंखुड़ियों को बात कर लो, पंखुड़ियों में इतनी बड़ी विशेषता है कि इसे आजकल पंखुड़ियों को सुखा करके हर्बल टी के रूप में लोग पी रहे हैं. जैसे जितने भी आपके डायबिटिक पेशेंट हैं उनके सेहत स्वास्थ्य को मतलब अच्छा रहे, शुगर कंट्रोल में रहे, उसको कंट्रोल में रखने के लिए इसे हर्बल टी के रूप में डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं. और साथ ही साथ अगर इसकी तेल की बात करी जाए तो इसमें जो हमारा जो लो आपका ओलिक एसिड और आपका लिनोलिक एसिड होता है, तो हमारे हृदय के लिए भी ये तेल बहुत अच्छा है. जैसे गुड फॉर हर्ट कहते हैं ना, तो उस तरीके का है. और जैसे इसके बीज की अगर आप बात कर लो तो बीज जो हमारा है वो बहुत मात्रा में इसको बर्ड फीड के, पक्षियों को खिलाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं. बर्ड फीड के नाम से ही जाता है, जाना जाता है कुसुम को.

0: और उसके बाद अगर इसकी तेल निकालने के बाद अगर हमारी इसको खली हुई, तो खली जैसे आप मिला करके जो भी दुधारू पशु हैं उनके खाने में अगर मिला करके आप दे दो तो उससे उनकी दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये पौधा पूरा ए टू जेड हमारा बहुमूल्य पौधा है। और जहाँ तक कि प्रभेदों की बात है, तो जैसे हमारा एक लक्ष्मीप्रिया नाम का वैरायटी है जिसको आप कहते हो लक्ष्मीप्रिया, हमारे बोलचाल के भाषा में बहुत प्रचलित है, ऐसे ISF 764। उसके बाद एक प्रभेद है आपका A1A1, फिर देखो आप PBNS 12। ये सारी कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो हमारे किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। और अगर हम अगर बात करना चाहें जैसे कि क्या क्या खासियत है इस लक्ष्मीप्रिया में, तो आप देखोगे तो ये वर्षा आधारित और सिंचित खेती दोनों के लिए उपयुक्त है। इसके साथ अगर इसकी परिपक्वता अवधि देखी जाए तो 125 से 130 दिन में आपका फसल पक के तैयार हो जाता है। उपज इसकी लगभग 2200 kg पर हेक्टेयर है और तेल की मात्रा भी हमारी 30-31% है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ उच्च ऐसी वैरायटियां भी हैं जिसमें तेल की मात्रा उच्च तेल की मात्रा है, जैसे RVSF 18-1। और एक बात आपको और भी बताऊंगी मैं कि कुसुम में जैसे हमारे दो प्रकार के प्रभेद होते हैं, एक आपके कांटेदार होते हैं, एक बिना कांटेदार। तो अब पहले लोगों को था कि भाई इसको काटना लगाना बहुत मुश्किल है, इसमें बाकी चीज़ें इंटरकल्चर ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है, तो लोगों ने इनको मुश्किल से इसको बॉर्डर क्रॉप के रूप में लोग लगाते हैं। लेकिन अब हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे प्रभेद हैं, कुछ मुख्य प्रभेद देखोगे आप मध्य प्रदेश के और आपके छत्तीसगढ़ के IGKV कुसुम हो गई, उसके बाद JSI 97 99, ये हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन बहुत कम अवधि में पक के तैयार हो जाती हैं और इनमें कांटे भी नहीं होते हैं।
1: जी मैम, मैम किस्मों के बाद अब बात आती है कि खेत किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए, मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो मैम आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि खेत की किस तरह से वो तैयारी करें और खेत की जुताई किस प्रकार से करें और किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम तिलहनी फसलों की बात करें तो इनका जो हमारा खेत तैयार करने का जो हमारा विधि रहता है वो थोड़ा हट कर के होता है। जैसे आप जब खेत की तैयारी कराते हो तो आपको ट्रैक्टर से 2-3-4 चास, कम से कम मिनिमम 2-3 चास तो चलवा करके मिट्टी को बिल्कुल ऐसे भुरभुरा बना देना होगा, जैसे आप हाथ में उठाते हो बलुआई मिट्टी नहीं होता है भुरभुरा, उस तरीके का हमें खेत को तैयार करना है। और उस सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसको एक तो और एक चीज़ और बताऊंगी कि आप लोग जनरली क्या करते हो, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हो, खेतों में छींट देते हो, सर फसल के साथ करते हो, लेकिन अगर आप इसको पंक्ति से पंक्ति में लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी पैदावार होगी और बाकी जैसे आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हो उसमें भी आपको काफ़ी सुविधा मिल सकती है। तो इस तरीके से, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि ये तिलहनी फसल है इसीलिए आपको हमेशा समतल भूमि ही चुनना पड़ेगा खेती के लिए, क्योंकि अगर कहीं गड्ढे की जमीन हुई या कहीं कम ऊंचाई वाली या ढलान वाली जमीन हुई तो उसमें क्या होता है कि कहीं से पानी एकत्रित हो जाएगा, इससे जड़ में फिर तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, सड़ने के परेशानी हो सकती है। तो इन सब बातों का किस तरीके का जमीन हमें समतल करना है, मिट्टी हमारी ऐसी हुई कि नमी कुछ समय तक बरकरार रख सके और उसके बाद अगर हम सिंचाई दे तो मतलब उसके अंदर जमे ना, तो इन सब बातों का किसान भाइयों काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा।
1: जी मैम, मैम एक और बात होती है ध्यान देने वाली, बुआई का समय। तो बुआई का सही समय क्या होना चाहिए और मौसम किस प्रकार का अनुकूल होता है, बीज की सही मात्रा क्या होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, अगर जहाँ तक हम बुआई की बात करें तो जैसे आप जानते हो कि बिहार जो हमारा है वो राइस क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड है, तो खरीफ के बाद हमारा जो रबी में है, तो अभी जैसे अगर हमारे जो धान सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट तक जो हमारे अगर फसल राइस की कट जाती है, धान काट लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है आपका कुसुम को लगाने का। मतलब आप कह लो सितंबर लास्ट हफ्ता से लेकर के आप अक्टूबर के 15 तारीख तक भी लगा देते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अक्टूबर के लास्ट हफ्ते तक भी जाते हो तब भी आप देखोगे कि इसका जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कम से कम 4-5 महीने का क्रॉप है, तो आपका फसल जो है वो उसमें एक तरह का आप कहते हो कि जब दाना बनने लगता है तो तापमान बढ़ जाता है, तो हीट स्ट्रेस हो जाता है, तो

0: उपज घट जाती है। तो इन सब बातों से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप 15 अक्टूबर से लेकर के आप इसको 10 नवंबर तक आप अपनी बुआई कंप्लीट कर लें।
1: जी मैम,
0: और अगर बीज की मात्रा की बात की जाए तो हम अगर देखेंगे तो 3 से 5 केजी पर एकड़ बीज दर है इसका।
1: जी,
0: और बुआई करते समय सबसे ध्यान देंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि छिटाव नहीं करना है बीज का, आप पंक्ति से पंक्ति लगाएंगे तो एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच की दूरी आपकी 45 सेंटीमीटर रहेगी और पौधे से पौधे की बीच की दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर रहेगी।
1: जी मैम, मैम अब बात करते हैं पोषण यानी कि उर्वरक प्रबंधन के बारे में, और अंतर फसल भी क्या कुसुम के साथ की जा सकती है?
0: बिल्कुल, एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगी कि कुछ भाई बहन कहते हैं कि बीज हमारा जैसे पुराना बीज है या उस तरीके का बीज इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस तरीके में बीज का उपचार ज़रूर कर लीजिए। जैसे हम आप कह लो थीरम कैप्टन या कार्बन डजीम से 2 ग्राम प्रति केजी ऑफ बीज से हम बीज उपचार करके ही बीज को हम लगाते हैं। और जहाँ तक की बात आई आपकी उर्वरक की, तो हम इसमें 60N 40P 20K, और ये तिलहनी फसल है तो हमें तेल बनने के लिए सल्फर की भी जरूरत पड़ेगी, तो 20 केजी हम सल्फर प्रति हेक्टेयर की मात्रा में इस्तेमाल करते हैं।
1: जी मैम,
0: और मैंने आपको बताया कि इसमें कांटेदार होने की वजह से किसान इसको जनरली अपने क्रॉपिंग सिस्टम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अगर इसको चाहें तो अन्य फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम इसे चना के साथ लगा सकते हैं 2:4 के अनुपात में, या हम इसे मसूर के साथ लगा सकते हैं, इसे हम तीसी के साथ लगा सकते हैं। तो इसको हम एक सोल क्रॉप लेके, अकेला एक क्रॉप ना लेकर के, या तो आप बॉर्डर क्रॉप लीजिए, और नहीं तो आप इसको इंटरक्रॉपिंग में चना तीसी और मसूर के साथ लगाएं।
1: जी मैम,
0: और कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी हैं उद्यानी बागवानी के हैं, जैसे आप इसको आलू के साथ भी लगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में, बीन्स के साथ भी लगा सकते हैं।
1: जी, यानी कि इंटरक्रॉपिंग करके किसान भाई बहन अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी, और मैम अगर हम खरपतवार के बारे में बात करें तो खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए, साथ ही सिंचाई का ध्यान कैसे रखें?
0: बिल्कुल, जैसे आप अगर देखोगे तो सबसे पहले मैं अगर सिंचाई की बात करूं तो देखो, जनरली आप देखोगे रबी सीजन में उस तरीके का तापमान हमारा होता नहीं है कि हमें बार बार जरूरत पड़े, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फसल हमारा 6 महीने की अवधि की है, तो जब हम शुरुआत में अगर हम लगा रहे हैं नवम्बर में, तो उस समय हमारा तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। कम से कम हमारा 10 से 12 दिन में हमारा अंकुरित हो जाता है, जर्मिनेशन आ जाता है, नई पौधे बनने लगते हैं। तो जैसे हमारा 10-12 दिन के बाद आप देखोगे तो पहला फ्लावरिंग आने के लिए कम से कम हमें आपको 60 दिन लगते हैं, मतलब 2 महीने के बाद। तब तक आप देखोगे कि हमारा जनवरी खत्म होके हम फरवरी में एंटर कर रहे हैं। अब फरवरी मार्च का महीना ऐसा होता है कि आपका फूल बन के अब दाना बनने की समय आ गई है, तो इस समय पे किसान भाई बहनों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आप देखोगे कि मिट्टी हाथ में उठा करके देखोगे, अगर वो आटे की तरह हाथ में नहीं बन रहा है, उसके अंदर नमी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसमें एक सिंचाई जरूर दे दोगे। लेकिन आप सिंचाई देने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहली सिंचाई आपको देना है बुआई करने के बाद 10-15 दिन के बाद दें, तुरंत ना डालें, ठीक है, 10-15 दिन के बाद डालें। उसके बाद दूसरी सिंचाई आप जैसे पुष्पन होने लगता है, फ्लावरिंग होता है, उसके आरंभ में दें, ताकि हमारा फिर अच्छे से बीज की मात्रा बन सके और तेल बन सके। और जहां तक की बात है खरपतवार, हाँ इसमें खरपतवार से कंपटीशन होता है इस पौधे में, स्पेशली जब शुरुआती दौर होता है, तो उस केस में आप देखोगे कि हम फ्लोरा क्लोरीन और एल्कोर, उसके बाद पेंडीमिथेलिन, तो इन सब को हम जैसे पेंडीमिथेलिन आप 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा से 600 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके आप मिट्टी में छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी मैम, मैम खरपतवार के साथ क्या कुसुम की फसलों में रोग और कीटों का भी प्रकोप रहता है?
0: हाँ बिल्कुल, जैसे अगर हम खरपतवार की बात अगर करें हम, तो खरपतवार के साथ साथ किसी भी फसल में आप जानते हो कि कीड़े मकोड़े या बीमारी आती है, तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एफिड माहौल

0: जिसे कहते हैं, तो या फिर आप देखोगे कि कर्नाटक के एरिया में या महाराष्ट्र में आप देखोगे तो एक तरह की झल्लियाँ पत्तों में पाई जाती हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ आपको कीड़े मकोड़े और देखोगे आप बीमारी लगती है। तो आप माहू से जिस प्रकार से अगर आप चाहोगे तो माहू से भी बहुत सारी ऐसी वैरायटी है, जैसे भीमा हो गई, S1 है। तो ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो माहू के प्रतिरोधक किस्में हैं, जो मतलब अगर आप देखोगे तो प्रकोप से बचा सकती, माहू के प्रकोप से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखोगे कि 15, जैसे आप देखते हो कि पौधे में माहू का अटैक हो चुका है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, हर 15 दिन के अंतराल में डाइमिथोएट जो है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके आप डाल सकते हो पौधे में, तो ये माहू से आपको बचा सकता है।
1: जी मैम, अगर हमने अपने फसलों को कीटों से बचा लिया, रोगों से बचा लिया, उसके बाद बात आती है कि जब फसल पककर तैयार हो जाते हैं तो कटाई के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पक्षियों से भी बचाने की जरूरत होती है, और साथ ही भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इससे पहले मैं एक और बात पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि जैसे हमने कीट की तो बात की, कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो आम तौर पे हमारे बिहार में जो हमने नोटिस की है कुसुम में, जैसे उकटा बीमारी है जिसे फार्मर विल्ट कहते हैं, या जड़ सड़ने की, अगर पानी का जल जमाव ज़्यादा हो जाता है, पत्तियों पे चित्तीदार छीटा छीटा जैसी एक बीमारी होती है, दाग धब्बे जैसे होते हैं छोटे छोटे। तो इन सब को रोकने के लिए, जैसे अगर हम बात करें दाग धब्बों को रोकने के लिए, तो इसके लिए हम मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके दे सकते हैं, या हम कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्लस मैंकोजेब 2 ग्राम, इनका कॉम्बिनेशन प्रति लीटर के दर से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, तो ये चित्तीदार जो हमारी बीमारियां हैं उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर हम उकटा को रोकने की बात करें तो ट्राइकोडर्मा हर्जिनेनम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ बीज के दर से उपचार कर सकते हैं। तो ये हमारी उकटा रोग के साथ साथ जड़ के सड़ने गलने इनको भी रोकथाम करेंगे। और मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसको हम पक्षियों का खाना बर्ड फीड के नाम से ही जानते हैं। तो जैसे फसल आपकी पक के तैयार हो जाती है, सबसे ज्यादा परेशानी आपको बीमारियों से तो होती ही होती है, पक्षियों से भी होती है। मतलब पक्षी इस तरीके से अटैक करते हैं कि आपको लास्ट में उसको हार्वेस्ट करके दाना बचा के रखना मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाई कुछ नहीं, अगर जाला हो या उस तरीके से मच्छरदानी डाल सकते हैं ऊपर से, या फिर किसी को सुबह शाम ज़्यादा, अगर हमने जिस तरीके से फील्ड में ऑब्जर्व किया है, सुबह और शाम पक्षियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। और उसके बाद जैसे आप देखोगे कि जैसे फसल आपका हल्का पीला भूरा, पीला पड़ के भूरा होने लगा है, तो आपका जो है फसल आपकी तैयार हो गई है, तो आप उसको काट करके पहले तो थ्रेसिंग फ्लोर पे कम से कम 1-2 दिन फैला दें धूप में। उसके बाद आप देखोगे कि हम अभी भी, अगर आप बड़े पैमाने में लगा रहे हो तो अब तो हमारे पास मशीनें भी हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग के लिए, हम वहीं पे हार्वेस्ट भी करते हैं, थ्रेशिंग भी करते हैं, और सीड हमारा स्टोर भी हो जाता है। लेकिन छोटे पैमाने पे जो किसान भाई कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि एक हमारा लकड़ी का चपटा जैसा, हमारे हमारे भाषा में क्या कहते हैं, पिटना, तो पिटना से हम उसको ठोक ठोक करके जो दाना होता है उसको बाहर निकाल करके, और फिर उसको थोड़ा सा सुखा करके, और फिर हम उसको डालते हैं। अगर पॉलीथीन पैकेज में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें नमी हवा कुछ ना जा सके, क्योंकि अगर आप कॉटन के बैग में भी, थैली में भी रखेंगे, तो कम से कम आप देखोगे 1-1.5 महीने के बाद अंदर से उसमें तरह तरह की जो दाने के अंदर होती हैं वो तरह तरह के कीड़े लगने लगते हैं। तो इसीलिए फसल काटने के उपरांत भंडारण बहुत मुख्य होता है।
1: तो अगर हमारे किसान भाई बहन इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन जो जिन जिन बातों पे मैंने बताया है, और कुछ बिंदुओं पे मैंने ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोला है कि हमारी ज़मीन किस तरीके से होना चाहिए, हमें पंक्ति और कतार में ही बुआई करनी चाहिए, बीमारी लग जाने से किन किन दवाइयों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, भंडारण किस तरीके से करना है, तो इन सब इन इन इन कुछ प्रमुख बातों को अगर ध्यान देंगे तो उनको निश्चित रूप से ही अधिक पैदावार मिलेगी।
1: मैम, कुसुम के लिए बाजार में क्या संभावनाएं हैं और मुनाफा मुनाफा कैसा होगा?

0: बिल्कुल उमा, तो जैसे हम अगर बाजार की संभावनाओं के बारे में बात करें, तो जैसे लोगों को लगता है कि अगर हम दलहनी फसल लगाए, मक्का लगाए, धान लगाए, तो उसमें हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर किसान भाई बहनों, अगर आप कुसुम के बीज का अगर कीमत देखोगे आप मार्केट में, तो 40 से 110 रुपए केजी बिक रहा है हमारा मार्केट में। और अगर हम इसकी तेल से, जहां हम इसकी प्रोसेसिंग कर दी बीज की, उससे हमें तेल मिला, तो तेल जो प्रति लीटर है वो हमारा 350 से लेकर के 600 रुपए तक मार्केट में बिक रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसका हर एक भाग उपयोगी है। तो जब हम उसके पंखुड़ी पेटल्स की अगर बात करते हैं, जो फूल निकलने के बाद जो मुरझाता है, जो पेटल्स की बात आप पंखुड़ियों की करते हैं, वो होलसेल मार्केट में 1000 से लेकर के 1500 रुपये पर केजी बिक रहा है। और अगर आप देखोगे कि छोटे पैमाने पे लोग किस तरीके से छोटे छोटे पैकेजिंग करके जो बेच रहे हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम के पैकेट, वो भी आपका कम से कम 150 से लेके 450 रुपए तक मार्केट में बिक रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना मुनाफा और फायदा है।
1: जी मैम, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक पहलू के बारे में हमारे किसान भाई बहनों को बताया। तो किसान भाई बहनों, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
6: सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
5: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
12: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
11: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
13: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
11: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
14: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
11: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
2: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको

0: मीटर की दूरी पर लगाए।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
3: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हुई उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रोपाई करें, और आगे

के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के

0: चाहिए।
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
0: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे

0: कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के।
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे

उपयोगकर्ताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं, आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है। और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं, इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
2: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
0: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की अगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
2: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं

हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत से ही लाभ गई, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे शुभम गौरव। आज की बात बहुत जरूरी है कि तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की खुशियों को खो देता है। इस साल का संदेश भी बहुत साफ है, अनमास्किंग द अपील, यानी इसे दिखावे को हटाना कि तंबाकू और निकोटीन कोई स्टाइल या आधुनिकता की चीज़ है। असल में ये एक लत है, एक बीमारी है जो खासकर हमारे नौजवानों को अपने तरफ खींच रही है।
1: धन्यवाद आरजे शुभम, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल सही कहा, आज तंबाकू का खतरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ बीड़ी सिगरेट तक सीमित थे, लेकिन आज नए नए रूप आ गए हैं। ई सिगरेट, फ्लेवर निकोटीन पाउच, ये सब ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे सुरक्षित हो, आधुनिक हो, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब एक ही चीज़ है, लत लगाने के तरीके। और सबसे दुखद बात यह है कि ये खासकर बच्चों और किशोरों को निशाना बना रहे हैं।
0: मतलब जो आजकल कूल दिखाने की कोशिश होती है दोस्तों के बीच, सोशल मीडिया पर, फिल्मों में, वो असल में सिर्फ एक दिखावा है, एक ऐसा जाल जिसमें धीरे धीरे इंसान खुद ही फंस जाता है बिना ये समझे कि वो किस तरफ जा रहा है।
1: बिल्कुल यही सच्चाई है। कंपनियां बहुत सोच समझकर ऐसे रंग, फ्लेवर और पैकेजिंग तैयार करती है जो खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित करे। उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि ये बड़ी बात नहीं है, बस एक बार ट्राई करा लो, दोस्तों के साथ मजा आएगा, स्टाइलिश लगेगा, लेकिन असल में वही लत की शुरुआत होती है। धीरे धीरे निकोटीन की आदत हो जाता है, और फिर ये सिर्फ चॉइस नहीं, जरूरत

0: बन जाती है। इंसान चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों इसकी मांग करने लगते हैं।
1: टीकन भाभी, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है? क्या ये सच में इतनी फैल चुकी है जितना हम सुनते हैं?
0: हाँ भैया, भारत की स्थिति काफी चिंताजनक है। करीब हर तीसरा वयस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ खैनी, गुटखा, बीड़ी जैसे स्मोकलेस और सस्ते तंबाकू का उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हर साल लगभग 10 से 12 लोग की मौत सिर्फ तंबाकू के कारण होती है। जरा सोचिए ये संख्या कितनी बड़ी है। और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं है जो तंबाकू लेते हैं, बल्कि वे भी है जो दूसरों के धुएं में के संपर्क में आते हैं।
1: मतलब जो खुद तंबाकू नहीं लेते वो भी इस खतरे से बच नहीं पाते।
0: बिल्कुल, इसे हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर घर में या आसपास कोई भी व्यक्ति तंबाकू लेता है तो उसका असर बाकी सभी लोगों पर पड़ता है। खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों में सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, बार बार खांसी या जुकाम होता है। महिलाओं में कमजोरी और गर्भावस्था के दौरान भारी समस्याएं हो सकती हैं। यानी एक व्यक्ति की आदत पूरे परिवार की सेहत पर भारी पड़ती है।
1: भाभी, लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम तो बस थोड़ा बहुत लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये भी एक गलत फहमी है?
0: नहीं, ये पूरी तरह भ्रम है और बहुत खतरनाक भ्रम है। तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या कोई नया निकोटीन प्रोडक्ट। हर रूप में शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खासकर मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर। इसके अलावा दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों की खराबी, ये सब सीधे तंबाकू से जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, तंबाकू शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर देता है।
1: और आपने अभी कहा कि इसका संबंध टीवी से भी है, क्या वाकई तंबाकू और टीवी का कोई सीधा संबंध है?
0: हाँ बिल्कुल है। भारत में टीवी के कई मामले में तंबाकू एक बड़ा कारण माना जाता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके फेफड़े पहले से ही कमजोर होते हैं, जिससे टीवी के बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। ऐसे लोगों में टीवी होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर हो जाए तो बीमारी ज्यादा गंभीर हो जाती है और ठीक होने में ज्यादा समय लग जाता है।
1: मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसी जड़ है जिससे कई खतरनाक बीमारियां निकलती है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देती है।
0: बिल्कुल भैया, और यही वजह है कि इससे जितनी जल्दी समझा जाए उतना बेहतर है। तंबाकू छोड़ना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, ये पूरे परिवार की खुशियों और सेहत को बचाने का फैसला होता है। इसलिए आज नहीं तो कल ये कदम उठाना होगा।
1: टीकन भाभी, कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वो किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे?
0: हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे इलाके में एक आदमी था, नाम था रमेश। रमेश एक मेहनती मजदूर था, सुबह से शाम तक काम करता, परिवार चलाता, लेकिन उसकी एक आदत थी बीड़ी पीना। पहले अपने दोस्तों के साथ मजाक में शुरू किया था, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है ऐसा कहकर। धीरे धीरे ये आदत दिन में एक दो से बढ़कर 10-12 बीड़ियां तक पहुंच गई। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती, ये मत पियो, बच्चों का ख्याल करो, लेकिन रमेश हंसकर टाल देता, कुछ नहीं होता, बाप दादा भी पीते थे। समय बीतता गया और एक दिन रमेश को खांसी शुरू हो गई। पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे खांसी बढ़ती गई, सांस फूलने लगी और काम करना मुश्किल हो गया। जब हालात ज्यादा खराब हुई तो परिवार उसे अस्पताल लेकर गए। जांच में पता चला उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके हैं और शुरुआती टीबी भी था। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अभी नहीं रुके तो हालत और बिगड़ जाएगी। उस दिन पहली बार रमेश डर गया, अपने छोटे बच्चे को देखा, पत्नी की चिंता देखी और फैसला किया, अब बस। शुरुआत आसान नहीं था, शरीर बार बार निकोटीन मांगता था, चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर की मदद ली, काउंसलिंग ली और धीरे धीरे खुद को उस आदत से दूर किया। कुछ महीने बाद उसकी हालत सुधरने लगी, खांसी कम हुई, सांस ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। आज रमेश खुद गांव में लोगों को समझाता है, मैंने गलती की लेकिन तुम मत करना। वो स्कूल में जाता है, युवाओं को बताता है और कहता है, जो शुरुआत में मजा लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सजा बन जाती है।
1: सच में भाभी ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक छोटी सी आदत कैसे जिंदगी बदल सकती है और सही समय पर लिया गया फैसला कैसे उसे वापिस भी ला सकता है।
0: बिल्कुल, और यही संदेश हमें सब तक पहुंचाना है।
1: तो भाभी अगर कोई व्यक्ति

0: कि सच में ये ठान ले कि उसे तंबाकू छोड़ना है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें तो वो क्या करे, क्योंकि कई लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बार बार वापस उसी आदत में लौट जाते हैं।
1: देखिए, सबसे पहला कदम होता है एक पक्का फैसला लेना, अपने मन में ये ठान लेना कि आज के बाद नहीं। जब तक ये अंदर से नहीं आएगा तब तक बाहर की कोई भी सलाह काम नहीं आएगी। उसके बाद अपने घर और आसपास से तंबाकू की हर चीजें हटा दे, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी हो, क्योंकि जितनी आसानी से वे सामने दिखेंगी उतने ही मन डगमगाएगा। इसके साथ अपने परिवार और दोस्तों को भी बताएं कि आप ये आदत छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आपका साथ दे, आपको रोक सके जब आपका मन डगमगाए। आगे जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर और काउंसलिंग की मदद बिल्कुल सही कदम है। आजकल सरकारी हेल्पलाइन भी उपलब्ध है जहां मुफ्त में सलाह और मार्गदर्शन मिलता है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। ये समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू की लत एक दिन में नहीं लगी तो एक दिन में छूटेगी भी नहीं। बीच बीच में मन करेगा, बेचैनी होगी, लेकिन हर दिन खुद को संभालते रहे तो धीरे धीरे यह आदत कमजोर पड़ेगी और एक दिन पूरी तरह छूट जाएगी।
0: और भाभी, इस पूरे सफर में परिवार क्या कर सकता है, क्योंकि कई बार परिवार या तो बहुत डांटता है या फिर ध्यान नहीं देता।
1: परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है आरजे शुभम। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और सहारे की। डांट या ताना देने से इंसान और कमजोर पड़ता है, इसके बजाय उसे समझाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करें। घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करे। अगर परिवार साथ दे तो ये मुश्किल सफर भी आसान हो जाता है।
0: साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, तंबाकू कोई फैशन नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं, बस एक मजबूत इरादे और सही सहारे की ज़रूरत है। और ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी के लिए उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, लत से आज़ादी ही असली आज़ादी है। जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, आप अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देते हैं। इसलिए आज ही सोचिए और पहला कदम उठाइए, तंबाकू छोड़िए और जीवन जोड़िए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक कहानी साझा करना चाहूँगी जो थोड़ी कठिन है सुनने में, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं को सच्चाई का एहसास करा सके। देखिए, ये कहानी है हमारे पास के गांव में रहने वाले शंभू की। शंभू एक साधारण आदमी था, छोटा सा खेत था, पत्नी और दो बच्चे थे। मेहनती था, जिम्मेदार था, लेकिन एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, गुटखा और बीड़ी की लत। शुरुआत बहुत छोटी थी, खेत में काम करते हुए थकान मिटाने के लिए अपने दोस्तों के साथ थोड़ा गुटखा खा लिया करता था। फिर धीरे धीरे यह आदत रोज की जरूरत बन गई। सुबह उठते ही पहला काम गुटखा और रात को सोने से पहले बीड़ी। उसकी पत्नी कई बार मना करती, बच्चे भी कहते बाबा मत खाओ, लेकिन शंभू हर बार यही कहता कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। समय के साथ उसके मुंह में जलन शुरू हुई, फिर एक छोटा सा घाव बना जो भरता ही नहीं था। पहले उसने नज़रअंदाज किया, फिर देसी इलाज किया, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ती गई। खाने में दर्द, बोलने में तकलीफ और आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया मुंह का कैंसर। यह सुनकर जैसे उसकी दुनिया रुक गई। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा काटना पड़ा, आवाज़ बदल गई और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। सबसे ज़्यादा असर उसके परिवार पर पड़ा। उसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। बच्चे अपने पिता का हालत देखकर डर जाते थे। जो आदमी कभी उनके लिए ताकत का सहारा था, वही अब खुद सहारे पर था। धीरे धीरे शंभू का काम छूट गया, घर की आमदनी खत्म हो गई और इलाज का खर्चा बढ़ता गया। एक छोटी सी आदत जिसने सिर्फ सेहत नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। और आज शुभम, सबसे दर्दनाक बात यह थी कि आखिरी दिनों में शंभू खुद कहता था काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, काश मैंने यह आदत छोड़ दी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का मकसद डराना नहीं बल्कि सच दिखाना है। तंबाकू का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब सामने आता है तब बहुत कुछ छीन लेता है, सेहत, पैसा, परिवार और खुशियां, सब कुछ। इसलिए जो आज सोच सकते हैं, जो आज फैसला ले सकते हैं, वे कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कुछ फैसले अगर देर से लिए जाएं तो उसका असर फिर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलना पड़ता है।
0: सच कहूं टिकन देवी, ऐसी कहानियां सुनकर समझ आता है कि तंबाकू का नुकसान सिर्फ किताबों या पोस्टरों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे असली जिंदगी

0: जिंदगियां हैं, असली परिवार है, और ऐसा दर्द है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीमारी किसी को पहले से बताकर नहीं आती।
1: बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी है कि हम डर कर नहीं, समझदारी से फैसला लें। अगर आप तंबाकू लेते हैं तो छोड़ने की शुरुआत आज से ही कीजिए, और अगर नहीं लेते तो कभी मत शुरू कीजिए। साथ ही अपने बच्चों, युवाओं को समझाइए कि असली ताकत किसी गलत आदत को अपनाने में नहीं, बल्कि उसे दूर रहने में है।
0: और साथियों, याद रखिए, हर नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय आज होता है। हो सकता है शुरुआत मुश्किल लगे, लेकिन आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले बरसों की खुशियां और सेहत बचा सकता है। तो खुद से एक वादा कीजिए, स्वस्थ जीवन चुनेंगे और गलत आदतों को ना कहेंगे। और आज का हमारा संदेश, न स्टाइल में न ट्रेंड में, जिंदगी है अपने कंट्रोल में, तंबाकू से दूरी अपनाओ, स्वस्थ जीवन का रास्ता पाओ। इसी के साथ हम आज अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारी से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार के भी इसी प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही। मैं आपका दोस्त आरजे शुभम आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो सेहत सही लाभ कही में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो? जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर

क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

0: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज झुरखुरिया ग्राम के आंगनवाड़ी में आया हुआ हूं, जो कि हमारे 14 नंबर वार्ड में अवस्थित है। आज मैं यहां की सेविका दीदी सोनी जी से मिलने के लिए आया हुआ हूं और उनसे पोषण संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहा हूं। इसी के अंतर्गत मैं सोनी दीदी से पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि दीदी आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं।
1: पोषण हुआ प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य या जीवन भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं और पोषण तत्व को शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं।
0: जी दीदी, पोषण को हम अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को जीवन में उपयोग करने के लिए आपको संतुलित आहार अपनाना चाहिए। इसका मतलब है सभी पोषण तत्व शामिल करें, अपने भोजन में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे फल, सब्जी, साबुत अनाज, दाल, प्रोटीन की शामिल करें। पानी पीते रहें, शरीर के कार्य के लिए पर्याप्त पानी पिए। जंक फ्रूट से बचे, शक्कर, नमक और अस्थत कर वसा फलों की प्रसंस्कृत और तले हुए खाद्य पदार्थ का सेवन सीमित करें।
0: जी दीदी, अगर कोई व्यक्ति दीदी दवाई से पोषण नहीं लेना चाहता हो तो वो किन किन पदार्थ या चीजों से का उपयोग करके पोषण को प्राप्त कर सकता है?
1: दवाइयों की जगह पर पोषण के लिए आप संतुलित आहार अपनाना सकते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, तले।
0: जी दीदी, अगर आदमी को सही से पोषण ना मिले दीदी तो उनको क्या क्या परेशानियां हो सकती है?
1: अगर मनुष्य संतुलित न ले तो बहुत कुपोषण का शिकार हो सकता है, जिसके शरीर में कमजोरी और थकान हो सकता है, जिसमें रोग प्रतिरोध क्षमता हो जाती है, शारीरिक और मानसिक विकास के रूप में हो जाता है, कई बीमारियों जैसे एनीमिया, मधुमेह, हृदय रोग हो सकती है।
0: जी दीदी, महिलाओं को पोषण संबंधित आप क्या जानकारियां देना चाहते हैं?
1: महिलाओं को पोषण युक्त आहार ग्रहण करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन शामिल है। इसीलिए जरूरी, क्योंकि उन्होंने आयरन अस्तंत बचाव के लिए, कैल्शियम हड्डी के लिए और फोलिक प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जैसे पोषण तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। खासकर गर्भावस्था के मासिक धर्म के दौरान हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की मदद कर सकते हैं।
0: जी दीदी, तो ये तो महिलाओं की बातें हो गई दीदी, तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि बच्चों को पोषण के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं?
1: बच्चों को पोषण देने के लिए उनके आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, दाल और अंडे, दूध शामिल करें और खाने के लिए नियमित समय निर्धारित करें।
0: जी दीदी, तो मैंने अभी सारी बातों में एक चीजों को गौर किया कि बार बार लीन प्रोटीन के बारे में बातें हो रही है, तो आखिर लीन प्रोटीन क्या होता है ये हमारे श्रोतागण को पता नहीं है दीदी, तो आपके द्वारा हमें श्रोताओं को ये बतानी है कि लीन प्रोटीन क्या होती है?
1: लीन प्रोटीन उस खाद्य पदार्थ को कहते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा, खासकर संतुलित वसा और कैलोरी बहुत कम होती है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों को रखरखाव में मदद करता है।

0: है।
1: तो दीदी हमारे यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई है जो कि हमारे 90.8 FM ग्रीन की ओर से भी मुहिम चलाई गई है और हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ से भी मुहिम चलाई गई है, अपनी क्यारी अपनी थाली। अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में आप क्या कह सकते हैं दीदी?
0: जैसे कि साग सब्जी अपने उगाते हैं, उसमें खाद तो नहीं देते हैं, तो वो जो सब्जी हम लोग खाएंगे उसके लिए तो शरीर में अच्छा है, खाद पदार्थ उसमें मिला नहीं है।
1: उनसे आपको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वसा वगैरह
0: उपलब्ध हो जाती है।
1: जी दीदी, तो आज हमें क्या कहते हैं जानकारी सोनी दीदी की तरफ से मिली पोषण के बारे में। पोषण के बारे में जानकारी देने के लिए सोनी दीदी को 90.8 FM ग्रीन तहे दिल से धन्यवाद करती है। धन्यवाद दीदी।

0: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में। और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ तो छोटू भैया, आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
0: जी।
1: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
0: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में
0: जी। अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
1: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
0: जी।
1: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार। और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
0: तो भैया यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
1: उसके लिए गेहूं,

0: उसको भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर कर खाना चाहिए। चना को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए इत्यादि। ये सब है, जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए। दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए। इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
1: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या करना
0: है? महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है। उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक मेथी धनिया की चटनी हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे। इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
1: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी। उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।
2: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से और इनसे हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। और खासकर जब और बात करें किसानों की तो आप सभी को पता है कि किसान जो है आजकल रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और इससे कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा नुकसान भी होता है। फायदा तो होता है लेकिन साथ साथ नुकसान भी होता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे मैं पूछना चाहूंगी, सर कैसे जो किसान हैं वो अपनी उत्पादकता, फसलों की जो उत्पादकता है वो बढ़ाएं और तो इन रासायनिक उर्वरकों से बचकर कैसे अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाएं। आइए जानते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से।
3: देखिए इसमें जो किसान भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट रासायनिक खाद, तो रासायनिक खाद से आजकल क्या हो रहा है कि मृदा प्रदूषित हो रही है और वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसको उत्पाद हम खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, धान हो, गेहूं हो, ज्वार हो, उसका जो अवशेष रासायनिक खादों का अवशेष हमारी बॉडी के अंदर जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करता है। तो प्रश्न आता है कि हम पोषक तत्व किससे दें, यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर। तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक। पहले जानते हैं कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीवियों का प्रायोगिक सम्मिश्रण है जो कि समुचित मात्रा एवं तकनीक से व्यवहार करने पर फसलों की उपज में वृद्धि करता है। जैव उर्वरक कभी भी किसी कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर जाकर के अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन का स्थिरण करते हैं। और मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए अनुपलब्ध होते हैं या बेकार होते हैं। ये बैक्टीरिया या जीवाणु जाकर के मिट्टी में अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अघुलनशील या बेकार पड़े हुए

0: हमें यह क्या बताना चाहेंगे आप इस जैविक उर्वरक के बारे में?
1: इसके बारे में हमको जानना होगा कि जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उनसे क्या लाभ होता है, तो ये हमको जानना बहुत अति आवश्यक है कि जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से क्या लाभ होगा और इनके कितने प्रकार होते हैं और इनको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में।
0: तो सर ने हमें बताया कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये और किस प्रकार ये रासायनिक खादों से अलग ये अपना काम करता है, सर आप हमें बताना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे कि अभी बताया था कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर स्थिर करते हैं या फिक्सेशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78.6% नाइट्रोजन होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि कुछ पौधे की जड़ें होती हैं, जैसे कि दाल वाली फसलें हैं, चना, मसूर, अरहर, उसकी जड़ों के अंदर ये गांठें बनाता है और गांठों के अंदर उस वायुमंडल को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ये अपनी प्रकृति क्रियाओं के द्वारा उस अवस्था में चेंज कर देता है जिस अवस्था में पौधा लेता है, जैसे कि अमोनिकल है या नाइट्रेट है। तो ये इसका बहुत बड़ा काम है और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता जो कि हम DAP से यूरिया से देते हैं, तो इस तरह से ये उससे अलग होता है केमिकल से और इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है खेती पर या मिट्टी पर, इसलिए ये बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दूसरा होता है पौधों को ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि अनुपलब्ध होते हैं, जैसे कि फास्फोरस है। तो फास्फोरस मुख्यतः पौधा आयनिक फॉर्म में लेता है जो कि हम लोग आयन बोलते हैं, और जब हम DAP अप्लाई करते हैं तो DAP या SSP जो फास्फोरस किसान भाई अप्लाई करते हैं तो उसकी उपयोग क्षमता केवल 15-20% होती है। मतलब कहने का यह है कि 80% से 85% भाग मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है या उस अवस्था में हो जाता है जो कि पौधे के लिए बेकार होता है, अनुपलब्ध होता है। तो ये जो बैक्टीरिया या जीवाणु खाद जब मिट्टी में जाता है और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसको अनुपलब्ध फास्फोरस को उपलब्ध कराता है और पौधा उसको यूज करने लगता है अपने कार्य के लिए।
0: तो आज उन्नत कृषि में हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो ये चर्चाएं चलती रहेंगी, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि, उन्नत कृषि। तो सर ने हमें बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, और साथ ही जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है तो इसमें एक जीवाणु का नाम आता है सर, और उसका नाम है एजिटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम। सर इसका क्या काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपयोगी बातें होंगी उनके लिए।
1: देखिए, अभी जो राइजोम के बारे में बताया तो राइजोम का प्रयोग केवल दलहनी फसलों में किया जाता है, और अभी आपने जो पूछा है एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरलम का क्या काम होता है, तो एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम एक ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी के अंदर करते हैं, और ये जीवाणु सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, सब्जी वाली फसल जितनी भी हैं जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी, सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फल वाले वृक्ष जैसे कि लीची, आम, अमरूद, पपीता, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कितना नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, यदि किसान भाई साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करते हैं अपने खेतों के अंदर तो ये जीवाणु प्रति हेक्टेयर एक साल में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि इनका प्रयोग करते हैं तो हम 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि DAP या यूरिया से देते हैं उसको सेव कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो सर हमने अभी बहुत सारी बातें जानी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जाना और जीवाणु के बारे में जाना, और इसके बाद सर ऐसा अक्सर देखा गया है कि खेतों में और मिट्टी में खासकर कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अगतिशील होते हैं, और इन अगतिशील पोषक तत्वों से पौधों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे मतलब किस तरीके से जैव उर्वरक इन अगतिशील पोषक तत्वों को गतिशील बनाकर जो पौधे होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स या फिर यूं कहें कि पोषक तत्व उपलब्ध करा सके।
1: देखिए, आपने जो बात करी है अगतिशील पोषक तत्व, तो मृदा में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि अगतिशील होते हैं, उसको उदाहरण बताना चाहूँगा। नंबर 1 पर आता है फॉस्फोरस, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जिंक है और आयरन है। तो ये न्यूट्रिएंट

0: क्या होते हैं कि मृदा घोल में अगतिशील होते हैं और पौधे की जड़ जहां होती है वहां तक वो आ नहीं पाते। तो पौधे की जड़ के आसपास जो भी पोषक तत्व होता है, फास्फोरस, जिंक या आयरन, वो पौधे के द्वारा यूज कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन उसकी फिर से कमी हो जाती है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो दूर रखा हुआ फास्फोरस है वो उसके पास आ नहीं सकता, क्योंकि उसका लक्षण होता है कि वो अगतिशील है। तो इसके अंदर एक जैव उर्वरक आता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो माइकोराइजा एक फंगस या फफूंद का एसोसिएशन होता है, सहजीवी होता है हायर रूट्स ऑफ द प्लांट्स के साथ में। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ में सहसंबंध स्थापित करता है और ये अपना भोजन उस पौधे से ही लेता है। तो ये क्या करता है कि इसकी जो हाइफी होती है या माइसिलियम होते हैं, ये पौधे की जड़ों के अंदर छेद करके घुस जाते हैं और दूर तक फैल जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो जो दूर तक फैलते हैं, कितना फैल जाते हैं, जो मान लीजिए पौधे की जो जड़ है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसको 8 से 10 सेंटीमीटर तक ये बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, और 8 से 10 सेंटीमीटर तक जो भी अनुपलब्ध फास्फोरस था उसको ये लेकर के आती है, पौधे की जड़ के अंदर दे देती है। तो इसका मुख्य कार्य है कि पौधे की जड़ के सरफेस एरिया को बढ़ा देना और दूर से अगतिशील पोषक तत्वों को मृदा पौधे की जड़ के अंदर लेकर के आना। तो ये इसका मुख्य कार्य है। यदि किसान भाई इसको सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस की मात्रा में 10 से 20 किलोग्राम तक हम कटौती कर सकते हैं, जो कि हम रासायनिक खाद के द्वारा देते हैं। तो इस तरह से रासायनिक खादों के प्रयोग को हम कम कर सकते हैं इसके बायो फर्टिलाइजर के या जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से।
1: या फिर यू कह सकते हैं कि जैव उर्वरक जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पर काम करते हैं अगतिशील पोषक तत्वों को, मतलब गतिशील बनाने में और पौधों तक इसे अच्छे तरीके से पहुँचाने में।
0: हाँ, क्योंकि जो अगतिशील पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए बेकार पड़े होते हैं, क्योंकि पौधे से वो दूर है, पौधे से दूर है, पौधे के जब तक जड़ के पास में नहीं आएगा तो पौधे के लिए तो बेकार है। तो माइक्रोवेव क्या करता है कि जो दूर पड़ा हुआ था अपनी हाइफी के द्वारा उसको पौधे की जड़ के अंदर डाल देता है और पौधे की जब रिक्वायरमेंट होती है उसको वो यूज करने लगता है।
1: तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं डॉक्टर साहब, और आगे कुछ बातें और भी जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि। हमारे आज चर्चा का विषय है कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। और डॉक्टर साहब से हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं जैव उर्वरक के बारे में, यानी कि बायो फर्टिलाइजर के बारे में। और अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कैसे ये इनका जो इम्पोर्टेंस है किसानों के लिए, किस तरीके से वो इन्हें अपने खेत में डालकर रासायनिक जो उर्वरक हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सर, अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जैव उर्वरक होते हैं इनकी प्रयोग विधि है या फिर क्या होती है।
0: देखिए, सबसे अहम पहलू होता है जैव उर्वरकों की मात्रा और उसकी प्रयोग विधि। किसान भाई यदि सही से इसका प्रयोग विधि जानते हैं तभी इसका अच्छी तरह से लाभ मिल पाता है खेत में। तो प्रयोग विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर एक पे आता है बीज उपचार, यानी कि सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो दर होती है वो 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ द बीज होता है, यानी 20 से 25 ग्राम हम बायोफर्टिलाइजर लेते हैं और 1 kg बीज के लिए लेते हैं। जितना हम बायोफर्टिलाइजर या कल्चर लेते हैं उसका दुगनी मात्रा में पानी लेते हैं, और जितना पानी लेते हैं उसका 10% हम गुड़ या जैगरी लेते हैं, लो क्वालिटी का जो गुड़ होता है जैगरी और या गुड़ ले लेते हैं। पानी के अंदर गुड़ को डाल लेते हैं और हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने का मकसद केवल होता है कि गुड़ अच्छी तरह से उसके अंदर घुल जाए। जब ये गुड़ पानी में घुल जाता है तो उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में जो मैंने अभी मात्रा बताई थी जैव उर्वरक की या बायोफर्टिलाइजर की, उसको डाल करके हम एक लकड़ी की सहायता से उसको घोल देते हैं और ये अब ये घोल बन जाता है। घोल बनने के बाद में जो सारे काम जो कर रहे हैं हम, ये छायादार स्थान होना चाहिए या कोई कमरा हो या पेड़ हो, उसके नीचे सारा काम करते हैं। और एक फर्श पर पॉली शीट बिछा लेंगे, प्लास्टिक की शीट बिछा लेते हैं, और जो आपके बीज की मात्रा थी उस बीज को हम उस पर पॉलीथीन की शीट पर डाल देते हैं और ढेर लगा करके छोड़ देते हैं। फिर जो घोल आपने जैव उर्वरक का बनाया उसके ऊपर डाल करके उसको उंगलियों की सहायता से मिक्स करते हैं। हथेली से नहीं करेंगे, हथेली से करते हैं तो क्या होता है कि वो लेप उसका आ नहीं पाता है और लेप छूट जाता है। तो उंगलियों की सहायता से हम उस पर लेप लगाते हैं, और लेप लगाने के बाद में, उस सॉल्यूशन का लेप लगाने के बाद में, उस प्लास्टिक की शीट पर हम बीज को बिछा देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो सूखने में लगभग 45 से 1 घंटा लगता है, 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। यदि हवा चले जल्दी सूख जाता है, आदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो देर में सूखता है। सुखाने के बाद जिस खेत में आपको इसको बोना होता है या छींटना होता है, लाइन में लगाना होता है, उस खेत में ले जाते हैं और इसको

0: बुवाई कर देते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार। दूसरा विधि होती है मृदा उपचार। तो बायोफर्टिलाइजर के द्वारा या जैव उर्वरक के द्वारा हम मृदा का उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए जो दर है उसकी 2 किलोग्राम पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर होता है, चाहे वो एजिटोवेक्टर हो या एजस्पाइलम हो या PSB हो। तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से हम 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेते हैं। 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेकर के उसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको 5 किलोग्राम कल्चर को, और पूरी नाइट या 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद या ओवरनाइट के बाद में सुबह जा करके जिस खेत में बिखेरना होता है उसमें हम इसको बिखेर देते हैं, और हल्का सा भी हल्का कल्टीवेटर या हैरो से इसको मिक्स कर देते हैं मिट्टी के अंदर। ध्यान रखते हैं कि जब हम ब्रॉडकास्ट करें बायोफर्टिलाइजर को खेत के अंदर तो धूप ना हो। तो हम संतुष्ट हम रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो बखेरते हैं इसको सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, और बखेरने के तुरंत बाद इसको मिक्स करना होता है। तीसरी विधि आती है बिचड़ा उपचार या पौध उपचार। तो पौध उपचार के लिए इसकी जो दर है वो 2 kg पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उसको मात्रा को लेकर के 100 लीटर पानी में हम घोल लेते हैं और एक घोल बन जाता है। घोल बनाने के बाद जो बिचड़ा है वो बिचड़ा को उखाड़ेंगे और उसकी जड़ों को कम से कम 45 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, और फिर 45 मिनट के बाद में जिस खेत में रोपाई करनी होती है उसमें हम इसकी रोपाई कर देते हैं। तो ये 3 विधियाँ मैंने बताई हैं। यदि ऐसा किसान भाई करते हैं तो इसका भरपूर और जो जितना हर संभव लाभ है वो मिल पाता है, और पौधों को अधिक से अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और न्यूट्रिएंट की उपलब्धता हो जाती है।
1: तो सर, आपने बताया अभी जो जैव उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं, उनके प्रयोग विधि के बारे में आपने बताया, और अब हम जानना चाहेंगे आपसे और किसान भाइयों, और किसान भाई भी आपसे यही पूछना चाह रहे होंगे कि हम किन किन फसलों के लिए जैव उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो जैव उर्वरक का प्रयोग अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह से किया जाता है, और हर एक फसल के लिए अलग अलग जैव उर्वरक होते हैं। जैसे कि बात करते हैं दलहनी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए मुख्यतः हम राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, और ये रिकमेंड करा जाता है, संशोधित किया जाता है कि जब भी हम राइजोबियम का प्रयोग करें उसके साथ में फॉस्फोबैक्टीरियन या PSB का प्रयोग करना चाहिए। तो दलहनी फसलों के लिए 2 जैव उर्वरक मैंने बताए, एक तो राइजोबियम है और दूसरा है PSB। और एजिटोवेक्टर का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हों या सब्जी वाली फसलें हों, धान्य फसलें हों, फूल वाली सब फसलें हों, फलों वाली सब फसलें हों। और इसके साथ में भी हम संशोधित किया जाता है कि PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि PSB का काम होता है पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराना। जब पौधों को फास्फोरस उपलब्ध ज़्यादा होती है तो पौधों की जड़ों का विकास ज़्यादा होता है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी मिट्टी के अंदर ज़्यादा होता है। तीसरा होता है एजोस्पाइलम जैव उर्वरक। एजोस्पाइलम का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि धान्य फसलें, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों आदि, और जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं, चाहे वो मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, गोभी हो, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फल वाली फसलें और पुष्प वाली सब फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरा हमने बताया था माइकोराइजा। माइकोराइजा का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दाल वाली फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, फल वाली फसलें हैं, या फूलों वाली फसलें हैं, या फिर धान्य फसलें होती हैं। तो ये मैंने बताया आपको किन किन फसलों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बात और है जो कि होती है, क्या ध्यान रखें इनका जब हम प्रयोग करते हैं, तब ध्यान रखने योग्य बात है। तो हमेशा बोला जाता है कि नाइट्रोजन वाले बायोफर्टिलाइजर के साथ में PSB या फास्फोरस वाले बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा होता है, कभी भी रासायनिक खादों के साथ में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइजोबियम भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में हम रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया, DAP भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो डेथ हो जाती है उसकी और वो मर जाता है।
1: तो सर, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसान भाइयों के लिए, और जितने भी बहनें हैं, किसान बहनें हैं मेरी, उन सभी के लिए सवाल है, और वो ये है कि ये जो जैव उर्वरक हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ, यानी कि इनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है।
0: देखिए, जैव उर्वरक आपको किसी भी जो रासायनिक खाद बेचता है या दवाई बेचता है उनकी दुकानों पर मिल जाते हैं। और यदि आपको हमारे विश्वविद्यालय का लेना है तो हम लोगों के यहाँ पर भी, हम लोगों की जो प्रोडक्शन इकाई है, उत्पादन

0: का ही है, उसकी क्षमता 500 मेट्रिक टन है। 500 मेट्रिक टन आप जानते हैं कि बहुत होता है, तो साल भर जितना आपको चाहिए उतना उपलब्ध रहता है। तो हमारे यहाँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बायो लैब है जिसके अंदर जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है, और आपको ये राउंड द ईयर कभी भी आप आएँ, किसी भी टाइम आएँ, किसी भी प्रकार का जैव उर्वरक लेना हो तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा।
1: तो किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इसे ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम उन्नत कृषि में आए और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए दी हैं, और आपसे आगे भी मुलाकात होगी, हमारे किसान भाइयों और बहनों से भी आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से, अलग

0: विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ, तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है, उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों, ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 cm की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आरजे अनु और हर रोज की तरह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम. कृषि अवशेषों से कंपोस्ट आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी हमारे इस कार्यक्रम में. तो इस कार्यक्रम को लेकर और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ए के झा जी. मैं आपको बता दूँ, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है.
1: सरल शब्दों में कृत्रिम विधि द्वारा केचुआ पालने को वर्मी कल्चर और इन्हीं केचुआ द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं. यानी कहने का मतलब यह कि यदि केचुआ की सहायता से जो खाद बनाया जाता है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है.
0: जी, तो केचुआ की सहायता से जो खाद बनाया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं. अब बात यहाँ पर आती है केचुआ. तो केचुआ तो हमारे किसान भाई तो ज़रूर जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि ये केचुआ क्या है सर, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें और इसकी क्या उपयोगिता है इसे भी बताएं.
1: केचुआ मनुष्य के लिए बहु उपयोगी जीव है. इसकी महत्ता को सर्वप्रथम सन 1881 में विश्वविख्यात प्राणी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने बताया था. ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जैसे देशों में केचुआ का प्रयोग मानव आहार में प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है. कैलिफोर्निया में इसका उपयोग आमलेट तथा केक बनाने में किया जाता है. केचुआ से बने सूप विदेशों में स्कूली बच्चे को प्रदान किया जाता है और उच्च ऊर्जा मान लगभग 4100 कैलोरी प्रति ग्राम के कारण केचुओं को सुखाकर उसका चूर्ण बनाया जाता है और इसका उपयोग मानव आहार में किया जाता है. यूं तो केचुआ का प्रयोग औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन निर्माण में भी किया जाता है, परंतु भारतवर्ष में इसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि में उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए किया जाता है, खास करके वर्मी कंपोस्ट बना करके ये काम किया जाता है.
0: जी, तो यहाँ पर आपने केचुआ क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो सबसे पहले ही सर ने आपको बताया था कि इसी की मदद से जो है खाद तैयार किए जाते हैं और ये बहुत उपयोगी होते हैं फसलों के लिए, क्योंकि उनके बढ़वार में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. सर, अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर की, तो इसके मापदंड के बारे में हम जाना चाहेंगे सर.

0: ऐसा है कि देखिए, जैसे कि यूरिया है या डीएपी है, इसके लिए फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ने एक दिशा निर्देश तय किया है कि यदि इस ढंग की गुणवत्ता है तभी जा करके उस यूरिया का या डीएपी का आप बिक्री कर सकते हैं। इसी तरह से अब बर्मी कंपोस्ट को भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत लाया गया हुआ है, यानी कि यदि वह गुणवत्ता है आपके बर्मी कंपोस्ट में तभी आप इसका विपणन कर सकते हैं, आप इसका व्यापार कर सकते हैं या व्यापार करने के लिए आप लाइसेंस ले सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इसमें क्या क्या चीज ऐसा है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बनाते हैं लेकिन इसकी जानकारी नहीं होने के कारण उनका जो उत्पाद है वह बिक नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहली बात, जो बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें 15 से लेकर 25% तक नमी होनी चाहिए। इसका कण का आकार ऐसा होना चाहिए कि 90% बर्मी कंपोस्ट 4 मिलीमीटर की जाली से छन जाए। दूसरी बात कि इसमें कुल जैविक कार्बन 18% होना चाहिए, नाइट्रोजन कम से कम 1% जरूर होना चाहिए, फॉस्फोरस 0.8% होना चाहिए, पोटास यह भी 0.8% इसमें कम से कम होना चाहिए, जो इसका स्थूल घनत्व होता है जिसको बल डेंसिटी कहते हैं ये 0.7 से 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन जो भारी तत्व हैं जो हमारे मिट्टी में प्रदूषण भी पैदा करते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे जो अधिकतम कैडमियम है वह 5 ppm तक ही अलाउड है, उससे ज़्यादा है तो आप उसको नहीं बेच सकते हैं। जो क्रोमियम है, क्रोमियम आपको 50 ppm होना चाहिए, 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें, और निकल यह भी 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लेड यह 100 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में यह चीज़ वर्णन कर दिया गया है कि इस तरह की यदि गुणवत्ता है तभी जाकर के आप बर्मी कंपोस्ट की बिक्री कर सकते हैं, उसी ढंग का बर्मी कंपोस्ट आपको बनाना है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, और अब हम बात करेंगे फसल अवशेषों के बारे में। क्या हमारे देश में इतने फसल अवशेष हैं जिनका इस्तेमाल हम बर्मी कंपोस्ट में कर सकें? अगर है तो सर जानना चाहेंगे कि।
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारी जो आज की निर्भरता है वह रासायनिक उर्वरक के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में जो गोबर या फसल अवशेष हैं वह भी काफ़ी मात्रा में है, और उस गोबर या फसल अवशेष का प्रयोग यदि हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में हम पोषक तत्व की आपूर्ति रासायनिक उर्वरक करने से बच सकते हैं। अब मैं उसको आपको बताऊं, जो वैज्ञानिक आकलन है इससे यह पता चला है कि हमारे देश में उपलब्ध मानव एवं पशु मल से लगभग 110 लाख टन पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास प्रदान करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त जो प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले 3,567 लाख टन फसल अवशेष भी हैं, जिससे लगभग 74 लाख टन पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की आपूर्ति हम कर सकते हैं। इस फसल अवशेषों एवं अवशिष्ट पदार्थों के उचित उपयोग बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है, ताकि रासायनिक उर्वरकों पर हमारी जो निर्भरता है वह कम हो और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य टिकाऊ बन सके। अब मैं एक चीज़ बताऊं कि बर्मी कंपोस्ट की इतनी बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट नामक इस जैविक खाद में सड़ी हुए गोबर के खाद के तुलना में 3 से 4 गुना अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होता है, और हमारा जो विश्वविद्यालय है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर वह आपको बनाता है संवर्धित वर्मी कंपोस्ट, इनरिच वर्मी कंपोस्ट बनाता है, और इसमें फास्फोरस, गंधक इस सब की मात्रा और ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यदि कोई किसान संवर्धित वर्मी कंपोस्ट बनाता है तो उसकी उसका पोषक मान और ज़्यादा होगा, जिससे हमें कम रासायनिक उर्वरक डालने की आवश्यकता होगी, या हमें वर्मी कंपोस्ट ही डालना है तो हमें कम वर्मी कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जैसे अभी सामान्यतया जो सामान्य वर्मी कंपोस्ट है वो 5 टन प्रति हेक्टेयर आपको डालना होगा, लेकिन उसमें यदि नाइट्रोजन ज़्यादा है तो आपको उसकी कम मात्रा आपको डालनी होगी। वास्तव में देखिए, एक तो मोटी सी बात कह दी जाती है कि 5 टन पर हेक्टेयर आप डालें, लेकिन यह बात आप यदि खुद निर्धारित करना चाहते हैं तो यह देखिए कि फसल में कितनी मांग है, नाइट्रोजन की कितनी मांग है। जैसे मान लीजिए सेंटर राइस आप ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर यदि आपको सपोज कीजिए कि 40 kg नाइट्रोजन डालना है, आप 1% वाला बर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो वहां पर आपको 1% वाला आपको ये समझिए कि 1 टन यूज किया तो 10 kg मिला, और 4 टन आपने यूज किया तो 40 kg मिला। लेकिन यदि वहीं पर 2% नाइट्रोजन वाला आप बर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते हैं तो वहां 2 टन ही से

0: काम चलेगा, यानी आधी मात्रा उसकी बच जाएगी। तो अभी चूंकि बहुत ज्यादा बर्मी कंपोस्ट डालने की बात होती है, इसलिए बहुत सारे किसान नहीं इसका प्रयोग करते हैं। यदि हम संवर्धित बर्मी कंपोस्ट करते हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तब किसान ज्यादा प्रयोग करेंगे और कम मात्रा ही डाल करके ही ज्यादा आप रासायनिक उर्वरकों की बचत कर सकते हैं। तो इसीलिए यह जरूरी है कि हम इस ढंग के बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें।
1: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपको बताई गई हैं और डॉक्टर साहब ने कृषि अवशेषों से कंपोस्ट कैसे बनाना है उससे जुड़े जितनी भी बातें यहाँ पर आपको बताए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक खास विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल 0 करने का भी है।
9: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल 0 आया। आप भी लगवा लो।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
4: बिहार

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
2: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा,

0: किसान भाइयों, तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो

0: अरे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित

0: सही जानकारी नहीं मिल रही।
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त।
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव।
0: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर।
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी

0: डूब चुकी है। अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों

0: का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
0: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने।

0: की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना?
3: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो।
6: खांसी खोखो खांसी।
5: टीबी मुक्त भारत बनाए,
7: खुद भी बचे, देश भी बचाए।
8: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
9: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
10: So, see you at the vaccination center soon.
11: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मैलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। करें भूरा तना,

0: मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करे। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है। करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है, और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं, या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है या फिर कोई बात है ही नहीं फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज़्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है,
तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है और कहीं ना कहीं ये

शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना। और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती हैं कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है, और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी, या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है, और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है। तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूलते हैं। किसी चीज़ पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो ज़रूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं, और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं। और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए, खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दे, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है, और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें। जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय ज़रूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फ़ायदा होता है, और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं, और इस वक्त ये ना करें कि आप फ़ोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं, और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी, और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ, या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको

दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीजें डालकर उबाल लेना है, और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा, और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं। तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है, तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए। क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आएँ, रोज़मर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे, तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है, या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें, और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल, और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहें हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त RJ अनु। एक बार फिर आप सभी के बीच एक बहुत ही उपयोगी विषय लेकर हम आ चुके हैं। दोस्तों, हमारे भारत में और हमारे बिहार में बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है, लेकिन एक जो सबसे खास, जो देखने में तो सुंदर लगता ही है और उसकी विशेषताएँ भी बहुत हैं, वो है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही हम उसकी खेती के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करूँ तो बहुत ही कम जगह, ख़ासतौर पर मैंने देखा है इसकी खेती, और इसीलिए लोग इसकी खेती को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इसकी एक विशेषता इस स्ट्रॉबेरी से है, वो है पोषण सुरक्षा। यानी स्ट्रॉबेरी की खेती से पोषण सुरक्षा कैसे हो सकती है और ये एक लाभदायक व्यवसाय हमारे लिए कैसे बन सकता है, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए है डॉक्टर रूबी रानी जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद अनु। मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में क्यों की जानी चाहिए और पोषण सुरक्षा में उसका क्या अनुदान है, उपयोग है, कि स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का हमारा क्या उपयोग है, पोषण सुरक्षा इससे कैसे की जा सकती है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
0: तो मैम, सबसे पहले जब इसकी खेती की बात आती है तो हम ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे इतनी मेहनत करके लोग उगाते हैं, क्योंकि इस खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रॉबेरी को उगाई जानी चाहिए, लोगों ने सोचा?
4: यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है और किसानों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमारे स्ट्रॉबेरी जो है उसमें बहुत ही पोषण से भरपूर, या पोषण का कैप्सूल, न्यूट्रिटिव कैप्सूल आप इसको कह सकते हैं। अच्छा। इसमें हर तरह का न्यूट्रिशन है और जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटास, फोलेट, पोटाशियम, मैगनीज, मैग्नीशियम, फैट का ये अनुपात कम है और इसमें कैलोरी कम मिलती है।
0: अच्छा।
4: लेकिन ये फाइबर रिच फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स में बहुत ज़्यादा है। अब एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स का क्या मतलब है? ये जो तत्व होते हैं ये शरीर में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं।
0: अच्छा।
4: इसलिए स्ट्रॉबेरी के खाने से लोगों में रोग रोधी क्षमता बढ़ती है और बहुत से रोगों से आप इससे बच सकते हैं अगर इसका नियमित सेवन करें।
0: अच्छा।
4: इसमें जो कैलोरी है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो भी फैट कंटेंट थोड़ा फैट कंटेंट है, मिनरल्स विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, फैट कंटेंट काफ़ी कम है और वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसलिए ये लो कैलोरी फूड है। आज सभी जो हमारे किसान भाई हैं, आम नागरिक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
4: होना चाहिए।

0: और वो चाहते हैं कि हमें ऐसा फल मिले जिसमें कि वसा की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य फलों की तुलना में कम हो,
1: एंटीऑक्सीडेंट्स
0: ज्यादा हो, विटामिन मिनरल्स ज्यादा हो, तो इस तरह का फल उन्हें चाहिए या इस तरह का खाद्य पदार्थ उन्हें चाहिए। तो इस स्ट्रॉबेरी में ये सारे गुण मौजूद हैं
1: जी,
0: तो इसलिए इसका पोषण का कैप्सूल बोला गया है इसे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो मतलब इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से लो कैलोरी फूड है, फाइबर रिच फूड है, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल बहुत ज्यादा है, सोडियम फ्री है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी फूड है। लेकिन विटामिन मिनरल्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैगनीज, मैग्नीशियम, ये सफिशियंट मात्रा में है, इसलिए इस फल की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और ये फल जो है बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, बहुत दूर से इसको लाया नहीं जा सकता है।
1: अच्छा।
0: जैसे कि हमारे पोषण तो बहुत है, जैसे कैसू नट है उसमें प्रोटीन बहुत है, अखरोट है, बादाम है, इसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये इन फलों को, इन नट्स को हम बहुत दूर से क्योर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में रहते हैं।
1: अच्छा।
0: स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही कोमल फल है, इसका तुड़ाई के उपरांत इसकी अवधि जो इसको जो अच्छे कंडीशन में जब इसको बहुत कम दिन होता है, 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसलिए ये आवश्यक है कि ये हमारे आसपास उगाए जाए
1: जी,
0: तभी हमें ये मिल पाएगा, वरना हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें।
1: तो दोस्तों, मैम ने बताया कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैट कम है, और बस हमें यही तो चाहिए। आजकल लोग डाइटिंग भी करते हैं तो फल को ज़रूर शामिल करते हैं, और अगर आप उसमें स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अभी फ़िलहाल हम कोरोना काल में जी रहे हैं, जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के साथ कोरोना शामिल हो चुकी है ये महामारी, और इस समय कहा जा रहा है कि हमें ऐसे फल और सब्जियां लेनी चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी को ज़रूर शामिल करें, और आपको हम स्ट्रॉबेरी से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। तो मैम ने जैसे कहा कि इसे बहुत दूर से नहीं लाया जा सकता, ये बहुत कोमल फल है, तो मैम बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है क्या?
0: बेशक बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है, हमने पिछले 10 साल में पर इस पर शोध किया। जब हमने शुरू किया था तो हमें भी विश्वास नहीं था कि यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमने इसका शोध किया तो मैंने पाया कि बिहार में इसका खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हालांकि ये फल जो है वो ठंडे जगहों का फल है, जैसे कि पहले ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में, सिक्किम में, आदि जगहों में उगाया जा सकता था, लेकिन अभी कुछ किस्में आई हैं और कुछ विशेष तकनीक की मदद से इसे हमारे प्रदेश जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जगहों में भी काफ़ी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए हमने शोध के उपरांत मैंने देखा कि बिहार में ये अच्छी तरह से उगाई जा सकती है और इसकी हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं।
1: मतलब पहले लोग ये घबराते थे कि गर्म वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये पहले जम्मू और कश्मीर में ही उगाया जाता था, तो यहाँ पर शोध के बाद पता चला है दोस्तों कि बिहार में इसका उत्पादन किया जा सकता है। मैम साथ ही आप इसके लगाने की विधि भी बता दें, और समय क्या है इसे लगाने की वो भी बता दें।
0: तो सब इसमें एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें पोषण तो भरपूर है ही है, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, जैसे कि इसका उपयोग सौंदर्य सामग्री बनाने में होता है, आइसक्रीम, कैंडी, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मांगते हैं तो उन सब चीज़ों में बनाता है, सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है, केक, आइसक्रीम, बहुत तरह से सॉफ्ट ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी का यूज होता है, और इस तरह से इसमें पोषण के साथ साथ इसके उपयोग
1: व्यावसायिक रूप
0: भी बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही सुवासित सुगंधित फल है, इसका अलग ही एक एरोमा है, और जो कि इसका आकर्षित रंग के साथ साथ इसका एरोमा भी लोगों को अट्रैक्टिव करता है, साथ ही पोषण और बहुआयामी इसके उपयोग हैं, इसके कारण इसकी खेती बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि किसान इसके प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं इसको उगाने के लिए, क्योंकि ये 7 से 8 महीने में पूरा फसल तैयार हो जाता है, और इसका डिमांड ज़्यादा होने के कारण इसके प्राइस ज़्यादा हैं, और किसानों को ज़्यादा मुनाफा 7 से 8 महीने में प्राप्त हो जाता है
1: जी।
0: और अब आती है कि इसको लगाने की विधि
1: जी।
0: और इसका समय क्या है। तो हमने शोध के उपरांत पाया कि बिहार में इसको लगाने का समय अक्टूबर माह जो है इसको लगाने का सबसे उत्तम समय

0: है, प्रथम सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अंत तक आप लगा सकते हैं, हालांकि इसको 15 नवंबर तक लगा सकते हैं, लेकिन आप अक्टूबर तक लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 15 नवंबर के बाद आप लगाएंगे तो इसके उत्पादन में तेजी से वृद्धि कमी आ जाती है, क्योंकि उसको सही समय नहीं मिल पाता है उसको समुचित ग्रोथ का, और फूल खिलने लगते हैं इसके कारण कि छोटे पौधे में फूल खिलने से उत्पादन में कमी हो जाती है, गुणवत्ता भी सही नहीं रहती है। तो लगाने का उचित समय इसका अक्टूबर है,
1: अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से।
0: प्रथम सप्ताह से आप 15 नवंबर तक लगा सकें, नवंबर तक बिल्कुल लगा दें, और 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी उत्पादकता में आपको कमी मिलेगी।
1: जी,
0: अब मैं इसको पूछा जैसे कि अपने लगाने की विधि क्या है, तो इसको लगाते हम लोग रनर से, पौध से हम इसे लगाते हैं।
1: जी जी,
0: इसके लिए जो है छोटे छोटे पौध आते हैं और इसके हम बीज से नहीं लगाते हैं, और ये पौध जो है हमारे रनर से एक पौधे से कई कई पौधे निकलते हैं उससे तैयार होते हैं। परंतु हमारे राज्य में अप्रैल महीने के बाद से इतनी गर्मी होती है कि ये पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें पौधों के लिए दूसरे राज्यों जहाँ ठंड प्रदेश हैं वहाँ से हमको उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये पौधे 4 से 6 पत्तियाँ हों उस पौध में, उसको हमको लगाना चाहिए। और लगाने के पहले पौधे को हम कार्बेंडाजीम के 0.2% के घोल में 5 मिनट तक डुबाते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके पौधे को लगाते हैं। तो ये भी लगाने की विधि और इसका लगाने का समय।
1: तो मैम, इसके बाद उत्पादन तकनीक को भी हम जानना चाहेंगे। जब विधि की बात हो गई है और इसके बाद उत्पादन तकनीक को ना जाने तो थोड़ा अधूरापन रहता है, तो इसके उत्पादन तकनीक के बारे में भी बताएं थोड़ा।
0: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी इसका भूमि की तैयारी कैसे करें, इसका बेड कैसे बनाएं, इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालें, और इसमें सिंचाई कैसे करें, और इसमें कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इनके बारे में मैं एक एक करके सबको आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी करने के लिए आप जैसे अक्टूबर में लगाना चाहते हैं तो उसके 10 से 15 दिन पहले एक गहरी जुताई कर दें खेत की। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी वैसे भूमि का चुनाव करें जहाँ जल जमाव नहीं होता हो।
1: अच्छा।
0: और मिट्टी जो है वो बलवाही दोमट मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, और वो क्षारीय मिट्टी ना हो, जैसे कि उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का चुनाव करें और वैसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल का जमाव नहीं हो और मिट्टी हल्की हो। इसका जिसका पीएच मान मिट्टी का 6.5 से 7 के बीच या 6 से 7 के बीच हो, 7 से ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का हम चुनाव करें।
1: जी।
0: और चुनाव करने के बाद लगाने के समय के, यानी कि अक्टूबर में आप लगा रहे हैं या 15 अक्टूबर को लगा रहे हैं, तो उसके 10 दिन पहले आप उसकी ज़मीन की गहरी जुताई करें, उसके बाद एक हल्की जुताई करें। हल्की जुताई के समय उसमें आप कुछ खाद डालें, तो खाद की मात्रा जो है प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट, 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 25 से 30 किलो पोटास प्रति एकड़ आप हल्की जुताई के समय में डाल करके इसको जुताई कर दें। उसके बाद इसकी खेती, व्यावसायिक खेती जो होती है वो उठी हुई क्यारियों पे होती है।
1: अच्छा।
0: तो उस क्यारी को बनाने के लिए आप उसकी ऊंचाई जो है 30 से 35 सेंटीमीटर रखें और उसकी चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर तक आप रख सकते हैं, और लंबाई आप अपने सुविधा अनुसार जितना चाहे रख सकते हैं।
1: जी।
0: दो क्यारी के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से आपकी उठी हुई क्यारी तैयार हो जाएगी जो कि 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 1 से 1.25 मीटर चौड़ा हो और दो क्यारियों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर हो। एक क्यारी पे अगर आप 1 मीटर रखे हैं या 90 सेंटीमीटर तक चौड़ा रखे हैं तो आप 2 पंक्तियां लगाएं, अगर उससे ज़्यादा रखे हैं तो 3 और 4 पंक्तियां भी आप लगा सकते हैं। 4 पंक्तियां में थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए 3 पंक्तियां आप एक क्यारी पे लगा सकते हैं। पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 35 से।

0: 40 सेंटीमीटर रखें जी। तो इस तरह से आप बेड पे 2 से 3 क्यारी तैयार कर सकते हैं और प्रति एकड़ लगभग 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी।
1: अच्छा,
0: उसके बाद आता है कि हम इसको लगाने की विधि मैंने पहले बता दी, लेकिन अगर आप इसमें सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था कर सकें तो ये आपके लिए वरदान होगा
1: जी।
0: और ड्रिप सिंचाई पे आज जो है सरकार 90% तक अनुदान भी दे रही है, तो आप सरकारी सहायता प्राप्त कर आप ड्रिप सिंचाई का अपने खेत में लगा सकते हैं। और ये जो कि काफ़ी वरदान होता है, इसके लिए बड़ी अच्छी खेती, उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है फलों की। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि किसान भाइयों आप ड्रिप सिंचाई का इसमें उपयोग जरूर करें
1: जी।
0: इसके अलावा पौधे लगाने के बाद ये इसकी जो खेती होती है, इसके जो फल होते हैं वो मूलतः जमीन पे सटे हुए होते हैं। जब निकलते हैं तो जैसे ही फल बड़ा होता है तो अपने भार से वो जमीन सतह पे सट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप, इसलिए मल्च या पलवार का उपयोग बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी और फल का संपर्क ना बने। ये फल चूंकि बहुत ही कोमल मुलायम होता है, लगातार अगर मिट्टी के संसर्ग में रहेगा तो ये खराब हो जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते हैं, बाजार में ले जाने के लायक नहीं रहेंगे
1: जी।
0: इसलिए मल्च बहुत ही आवश्यक है। मल्च आप पुआल का भी दे सकते हैं और प्लास्टिक का भी दे सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो प्लास्टिक का मल्च बहुत ही अच्छा देखा गया है इसमें। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की मल्च नहीं है तो आप धान या गेहूं के का जो भूसा होता है या पुआल होता है उसका भी उपयोग मल्च के रूप में कर सकते हैं। वो 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंचा मल्च होना चाहिए ताकि फल का संपर्क डायरेक्ट मिट्टी से ना हो और आपकी फल जो है परिपक्वता तक अच्छे कंडीशन में रहे और बाजार में ले जाने लग रहे। तो इस तरह से दो तकनीक, जो मल्च और सूक्ष्म सिंचाई, ये दोनों इसके लिए वरदान है। और जब आप बेड तैयार करते हैं तब उसमें जो है आप सूक्ष्म सिंचाई पहले बिछा दें, पौधे लगा दें, उसमें सूक्ष्म सिंचाई कर दें। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं आपने वहाँ वहाँ उतनी दूरी पर आप मल्च में छेद करके उस तरह से पौधे को व्यवस्थित कर दें
1: जी।
0: आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले बेड तैयार करके मल्च को फिक्स कर दें, फिर जितनी दूरी पर आपको बेड को तैयार करके पहले ड्रिप इरिगेशन लगा दें, फिर आपको मल्च डाल दें, मल्च फिक्स कर दें और जितनी दूरी पर आपको पौधे लगाने हैं वहाँ पर छेद करके थोड़ा सा होल करके वहाँ पर पौधे को आप फिक्स कर दें और ड्रिप से आपका पानी और पोषण सारा चीज ड्रिप के माध्यम से पौधे को मिलता रहेगा। तो ये हुई विशेष तकनीक।
1: अच्छा,
0: कि इसके उत्पादन में विशेष तकनीक है। इसके अलावा हमारे राज्य में दिसंबर के अंत में और जनवरी तक पाले का प्रकोप रहता है, उसमें बहुत धुंध रहती है, पाले का प्रकोप रहता है और पाले से बचाने के लिए आप छोटा पॉलीटनेल का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि पौधे जो है पाले से बच सकें। और पॉलीटनेल जो है उसकी ऊंचाई 65 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये पॉलीटनेल क्या है, एक छोटा पॉलीहाउस है, मिनिएचर है पॉलीहाउस का, इसकी ऊंचाई 60 से सेंटीमीटर होता है। इसको बेड कवर या रो कवर भी बोलते हैं और इसकी ऊंचाई जो है 65 से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये अगर आपको टनल बनाने के लिए जीआई पाइप का ना मिले तो आप बांस की करची पे भी पतली पॉलीथीन की सीट बिछा करके पॉली टनल बना सकते हैं। और जो कि आपके पास बहुत आयत में बांस तो हर गांव में उपलब्ध रहता है तो उस कमाची का उपयोग करके, बांस का उपयोग करके आप पॉलीटनल बना लें और पॉलीटनल पर पतली सी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उजले कलर की पॉलीथीन आप डाल दें। और ये जो है जब आपका पाला पड़ना शुरू हो जाए तब और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसको डाले रहें। इससे क्या होता है कि पौधा जो है पाले से बचा रहेगा और धूप उसके अंदर आती रही, ग्रोथ बढ़वार बढ़िया रहता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा पॉलीहाउस का इफेक्ट रहता है, पॉली जैसा पॉलीहाउस में उसका इफेक्ट रहता है पौधों का, उसी तरह से पॉलीटनेल का भी उपयोग है। साथ साथ ये पाले से भी बचाता है और ढके रहने के कारण कीट व्याधि का भी प्रकोप कम रहता है।

0: चाहे एक रोल ले सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी जाती है। खासकर ये स्ट्रॉबेरी सब्जियों आदि के लिए ही बनाया जाता है। तो इस तरह से मल्च आप का उपयोग करें। सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, अगर अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, बिना उसकी भी खेती कर सकते हैं। टनल का भी उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, करना करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको मल्च का उपयोग तो करना ही होगा। तो ये है उत्पादन तकनीक। और लगाने के बाद जो है आप जो भी उसमें पोषण देंगे वो फर्टिगेशन के थ्रू देंगे, क्योंकि आप ड्रिप सिंचाई लगा चुके हैं और पौधा जो है मल्च के नीचे है, तो आपको बाहर से आप नहीं दे सकते हैं, आप जो है इसको फर्टिगेशन के थ्रू दे सकते हैं। और फर्टिगेशन के लिए भी हमने शोध किया है, पौधे लगाने के 30 से 45 दिन बाद जो घुलनशील हमारा एनपीके है 20-20-20 का, उसका 25 ग्राम की मात्रा को 4 भागों में बांट दें और प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम 4 भागों में बांट करके और 15 दिन के अंतराल पे उसको 4 बार दें। तो इस तरह से आपका जो है वो फलों की गुणवत्ता बनी रहेगी और आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा।
1: जी श्रोताओं, मैम ने आपको बताया कि उत्पादन की 3 विशेष तकनीक हैं, वो है मल्च, पॉलीटनल और साथ ही मैम ने बताया सूक्ष्म सिंचाई। मल्च जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये अपनाएं और सूक्ष्म सिंचाई आप चाहे तो अपना सकते हैं, नहीं तो नहीं, और पॉलीटनल भी आप चाहे तो अपना सकते हैं, नहीं तो आपकी जो सुविधा है आप उसके अनुसार उत्पादन तकनीक को अपना सकते हैं। मैम, उत्पादन तकनीक के दौरान भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और अगर किसान भाइयों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं तो पहले से सावधान हो जाएंगे, उन सावधानियों के साथ वो उत्पादन तकनीक को अपनाएंगे ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए उन समस्याओं को ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारे किसान, हमारे राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत लोग किसान लोग कर रहे हैं और हमारे पास उनकी समस्याओं के बारे में भी फ़ोन आते हैं और बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के दौरान किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कुछ इसमें फफूंद जनित रोग ज़्यादा लगते हैं, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा है उकठा रोग। कभी कभी देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो बीच बीच में पौधे गलने शुरू हो गए, पौधे अचानक सूखने शुरू हो जाते हैं और उसको चाह करके भी आप नहीं बचा सकते हैं। तो इसके लिए ये समस्या फरवरी मार्च के बाद आनी शुरू होती है, जब पौधे जो थोड़ी सी गर्मी आती है उसके बाद ये आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अच्छी गुणवत्ता की आपको पौध होनी चाहिए, उस पौधे में कहीं किसी तरह का स्पॉट या कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप पौधे को लगाएं तो मैंने बताया कि कार्बन डाइजीम में उसको 0.2% के घोल में, आप कार्बन डाइजीम के घोल में उसको 5 मिनट तक दुबाएं, उसके बाद लगाएं। और जब आप बेड तैयार करते हैं, ऊँची उठी हुई बेड आप तैयार करते हैं, तो 0.01% का मेटल एक्सिल का घोल से एक बार उस पर स्प्रे कर दें
1: जी।
0: तो ये आपको उकठा रोग से बहुत बचाव करेगा। साथ ही साथ मैंने देखा है कि अगर आप ट्राइकोडर्मा को जो कंपोस्ट डालते इसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, कंपोस्ट को डालने के पूर्व ट्राइकोडर्मा आधा केजी लेकर के ट्राइकोडर्मा उसको 15-20 केजी कंपोस्ट में मिक्स कर दें, उसको एक सप्ताह के लिए छोड़ दें, मॉइस्ट रखें और उस कंपोस्ट को अगर यूज़ करते हैं तो इसका प्रकोप कम होता है। तो इस तरह से जो मैंने बताया कि आप कार्बन डाइजीम का यूज करें, ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें और मेटल एक्सिल के 0.01% के घोल से आप बेड को जो नर्सरी का अपनी जो उठी हुई क्यारी तैयार की उसको उपचारित करें। इस तरह से करने से आपको जो है फफूंद जनित रोग जो है वो आप से आप इसको बचा सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा और इसका रोग है लीफ स्पॉट आता है, पर्णचित्ती आता है। कभी कभी देखेंगे कि गोल गोल गोल गोल स्पॉट आ गया है लीफ पे, जैसे ही आप स्पॉट देखें उसको आप कैंची से हटा दें, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1% का घोल से उसका छिड़काव करें, इससे आप जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये कभी कभी आप देखेंगे कि फल में फल जो है उस पर फफूंद रोग गया है, तो वैसे फल जो मिट्टी के संसर्ग में आएंगे, या ज़्यादा पानी भी आप अगर आपने दे

0: दिया है तो ग्रे मोल्ड का, वो ग्रे मोल्ड होता है, ग्रे मोल्ड का प्रकोप हो जाता है, और ग्रे मोल्ड का प्रकोप होने से आपका फल खराब हो जाएंगे, इसलिए आप मल्च का उपयोग करें। बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं दें, जड़ों को आप नमी बरकरार रखें जड़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी वातावरण में नहीं रहने दें। और अगर सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करते हैं तो आपको जड़ में पानी जाएगा, पत्तियों पे बाकी वातावरण में पानी कम रहेगा और वहाँ पर ग्रे मोल्ड की समस्या कम होगी। इसलिए ग्रे मोल्ड से बचाने के लिए आप मल्च का उपयोग करें। अगर ये कुछ आ गया है तो तुड़ाई के उपरांत डायथन M45 का 2 ग्राम का प्रति लीटर का घोल बना करके आप एक बार स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आप ग्रे मोल्ड से, उकठा रोग से यानी कि विल्ट से और लिप स्पॉट से इसका निजात पा सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं आपने जाना कि जो भी परेशानियां हैं उनके समाधान के बारे में भी आपने जाना, और मैम इसके बाद उत्पादन से लाभ तो मिलेंगे ही, क्योंकि पहले ही भी हम जान चुके हैं इसमें पोषण बहुत ज़्यादा है। तो व्यावसायिक तौर पर, आम तौर पर क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं इसके उत्पादन से?
0: इसके पहले हम बताना चाहेंगे इसकी तुड़ाई कैसे की जानी चाहिए।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो अगर आप इसको अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो दिसंबर माह में इसका फल टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ये लगातार मार्च तक या कभी कभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फल देगा। जैसे ही गर्मी आएगी इसमें फूल आना बंद हो जाता है, और फूल आना बंद हो जाएगा तो फल आपको नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अगर अक्टूबर में लगाते हैं तो आपको मार्च तक आपको अच्छा फलन देगा। और इसका तोड़ने के लिए जब ये फलना शुरू हो जाता है तो कुछ कुछ अंतराल पे ये फल आपको तोड़ने होंगे, और फल की तुड़ाई आप सुबह में करें। तुड़ाई के बाद आप फल को जो है आप ठंडे जगह में रखें और जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें, क्योंकि तुड़ाई के उपरांत इसकी जो है संधारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट फ्रूट है और बहुत जल्दी ख़राब होता है।
1: जी,
0: तो जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें। अगर दूर के मार्केट में आपको भेजना है तो फल को पूरा लाल होने के पूर्व यानी 75% जब पक जाए तभी आप इसको हार्वेस्ट करें। थोड़ा उसमें टफ रहता है और 1-2 दिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये थोड़ा सा और पकता है, फिर जा करके आप उसको मार्केट में भेजें। तो नज़दीक के लिए मार्केट के लिए पूरा फल पकने के बाद इसको तोड़ें, और अगर दूर का मार्केट में भेजना है तो आप 75% पकने पर ही उसको तोड़ दें। इसकी पैकिंग के लिए पुनेट आता है, पुनेट का उपयोग करें और सही ढंग से इसकी पैकिंग करें। एक फल दूसरे फल पे बहुत ज़्यादा कसा हुआ ना हो, एक फल पर दूसरा फल ना हो, इस तरह से इसकी पैकिंग करें और तभी आपका ये ज़्यादा दिन तक थोड़ा मार्केट में रह सकता है।
1: जी,
0: और जहाँ तक इसके लाभ की बात है, कितने लाभ हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि इसकी लागत जो है आपको अगर ड्रिप सिंचाई क्या लगाएंगे, मल्च डालेंगे, पॉलिटिनेल डालेंगे, तो पहले साल इसकी लागत कुछ ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर लगातार इसकी खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इसकी व्यवस्था ज़रूर करें, और 3 साल के बाद उपरांत पाएंगे कि आपने अगर 1 रुपया लगाया है तो कम से कम 4 रुपया आपको मिलेंगे।
1: अच्छा,
0: तो पौधों का कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो पौधे आपको 10 से 12 रुपये के बीच में मिलेंगे या 15 रुपये तक भी मिल सकते हैं। तो अगर आप 20,000 पौधे लेते हैं तो आपको लगभग 3.5 लाख रुपये आपको पौधे में लग जाएंगे, लेकिन उसमें उत्पादकता जो है अगर अच्छे से आप मैनेज करें तो प्रति एकड़ उत्पादकता आपको 15 टन से कम नहीं होगी। तो इस तरह से अगर उसको 200 रुपये के जी भी बेचेंगे तब भी आपको 3 से 4 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा 1 एकड़ में। इसलिए 8 से 9 महीने के बीच में इतना शुद्ध मुनाफा किसी भी क्रॉप में नहीं है, इसका डिमांड भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभकारी व्यवसाय है, पोषण से भरपूर फल है, कम अवधि में इसके उगाए जा सकते हैं, और अगर आपके शहर के किनारे छोटा सा भी ज़मीन है तो आप छोटी सी भूभाग में इसकी खेती करके आप इसको बहुत मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की खेती करें और अच्छी आमदनी पाएं, अच्छा लाभ पाएं। व्यावसायिक तौर पे पोषण सुरक्षा की दृष्टि से ये इसका स्ट्रॉबेरी का फल उत्पादन काफी अच्छा है। और मैं अपनी वार्ता के दौरान एक चीज बताना भूल गई कि हमारे राज्य में किस्में कौन कौन सी अच्छी उत्पादकता के साथ कर रही हैं।
1: जी।
0: तो मैं बता दूं कि इसके लिए आप स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, कामा रोजा, विंटर डाउन।

0: नबीला, सेंसेशन, ये 6-7 किस्में जो हैं वो अच्छा उत्पादन कर रही हैं, अच्छी उत्पादकता और गुणवत्ता के साथ हमारे राज्य में इसका उत्पादन हो रहा है। तो ये हमने शोध के उपरांत पाया, हमने लगभग 21 किस्में शोध किया है, किस किस्मों का उत्पादन किया अपने रिसर्च प्लॉट पे, और हमने पाया कि ये 6-7 किस्में जो हैं हमारे राज्य में बहुत अच्छा उत्पादन कर रही है, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादकता के साथ। तो मेरा ये, मैंने अपने बताया आपको कि स्ट्रॉबेरी की खेती के कैसे उत्पादन करें और कैसे इससे लाभ कमाएं और क्या इसके लाभ हैं, ये हमारी बात। धन्यवाद किसान भाई, उम्मीद है कि आपको उचित जानकारी मिली होगी, जो जानना चाहेंगे, जानना चाह रहे होंगे आपकी वो जानकारी आपको मैं दे पाई होंगी इतने कम समय में। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना स्ट्रॉबेरी एक लाभदायक व्यवसाय कैसे बन सकता है, पोषण सुरक्षा हेतु स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जा सकती है, हर एक छोटी से बड़ी बात मैम ने आपको बताया यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको इन जानकारियों से बहुत लाभ होगा। अगर आप अभी भी इसे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, समय है। और साथ ही जो भी समस्याओं की बात यहाँ पर हुई है, मैम ने उसके समाधान के बारे में भी बताया, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही लगाएं। और उत्पादन तकनीक के बारे में भी मैम ने बताया कि आप उस तकनीक को ज़रूर अपनाएं, और मल्च जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसे तो आपको अपनाना ही चाहिए, जो कि आपकी जो फल हैं वो मिट्टी संपर्क में ना आए। तो इस तरीके से बहुत लाभ होगा आपको अगर आप इन जानकारियों को ध्यान से सुनते हैं। तो आज के लिए श्रोताओं इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
1: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेली पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें भाग 5।
1: साथियों क्यों ना एक पहेली

0: पत्ती से राजा, फल मिठाई को कहते आजा। एक महल में 32 राजा, फल मिठाई को कहते आजा। जो भी महल के अंदर जाए, राजा मिलकर उसको खाए। बोलो क्या, बोलो क्या?
1: दांत।
0: शाबाश, दांत। मुंह, महल और दांत है राजा, फल मिठाई को कहते आजा। मुंह, महल और दांत है राजा, फल मिठाई को कहते आज। जो भी मुंह के अंदर जाए, दांत चबाकर उसको खाए। समझे?
2: मजा आया ना? तो साथियों अब हम चलते हैं। नमस्ते।
3: आओ क्विज करें। आज की पहेली दांत पर आधारित थी। संगीतकार नरेंद्र टोनी, गायन स्वर इमरान खान और बच्चे, ध्वनि अंकन बटी लैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
10: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
9: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
10: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति D96, पंत

0: शुभ्रा इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा छेद की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन।

पराग टेरर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक हैं। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा। और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियां। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। या जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हो और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओं, 19वीं शताब्दी में फास्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी। और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे।

तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं। तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना। खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
2: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
3: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो

0: हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हथगोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको।
4: फेंका जनाब।
5: अरे अरे, ये क्या हुआ?
6: ये क्या हुआ?
5: अरे
6: बचो,
5: फट जाएगा।
0: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
7: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
6: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
6: बहादुर सैनिक हो तुम।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: May I come in, sir?
7: Yes, come in.
9: Sir.
7: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर।
7: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
9: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
7: हाँ हाँ, कहो।
9: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
7: ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
9: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
7: गो अहेड यंग मैन।
9: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के

0: सियालकोट सेक्टर के चौबिंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
1: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
2: जी सर,
3: हम पूरा ध्यान रखेंगे।
1: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
2: जी जनाब।
4: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
5: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
1: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
1: फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
6: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
6: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया।

0: तारा पोर को आंख की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: अपनाए खुशियाँ, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।

0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
0: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर

पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की अगात बुआई के लिए पूसा छेद की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी

देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित

0: धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा बैंक चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पर ऊँचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार

0: हम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: अरे यार फिर पिट गया, बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सभी एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
5: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 cm की दूरी पर करें।
3: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्कार, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के सौजन्य से, और इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है। अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है, अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो AI है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है। एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती है। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती

0: जरूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। चैट GPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
1: मतलब अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
0: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो AI जब कदम रख रहा था, तो या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
1: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना ले, उसे दुश्मन ना समझे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
0: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें AI से हम पूछें, तो AI के पास अगर इस तरह का डाटा है, तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है। लेकिन जो AI की जो अपनी जो AI भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में AI से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो AI पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एलनीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, AI आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही AI आपको बता देगा। और हम लोग भी AI आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं, वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AI आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए, जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है, वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज को AI बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप AI के जरिए अनुमान लगा करके, इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के

0: जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
1: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप के आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए, कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ या 10% ही मुनाफा हुआ या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो एआई है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो एआई सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनी हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके, नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल संस्मरण लग गया है, इसमें

0: मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है ये जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि AI की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब AI की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें AI की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और AI और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि AI से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी AI आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है। जो

0: सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में AI इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टीलेज से की बुआई कर रहे हो तो क्या होता है कि जीरो टीलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो AI कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है और AI जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल, मतलब AI मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी AI कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए AI अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये AI आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में AI को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने AI के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो AI के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। AI यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है क्योंकि बाजार में मांग आने वाली है। AI चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, AI आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियाँ जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब AI बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा और कब पैदावार अच्छी हुई है ये AI अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या AI से होने वाली कुछ चुनौतियाँ भी होती है या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए AI एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। AI के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं,

0: इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है। तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पे लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में AI को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई, इस तरह के जो खेती है उसमें अगर AI के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए, आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से AI का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप AI का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास AI का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी AI के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न है, तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप AI वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए, AI से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहां पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा, बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहां 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था। तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया, वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया। तो क्या हुआ, वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही AI का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से AI के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। AI आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर AI ही AI का बोलबाला रहेगा। अगर आप AI से डरेंगे तो AI वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, AI से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस AI से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस AI के मास्टर बन जाएंगे, AI आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि AI से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब AI से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से AI के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, AI से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप AI का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने AI से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से AI की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
9: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
9: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
10: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
4: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि

0: अधिक होती है। यह पोषण और समृद्ध स्रोत होता है और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर ये विशेष रूप से लोकप्रिय दलहनी फसल है। इसके सूखे दाने दाल के रूप में तथा हरी फलियाँ सब्जियों के रूप में बहुत उपयोगी होती हैं और आजकल तो मतलब ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है।
1: तो मैम, राजमा के कुछ पोषण मूल्य भी हैं और इनकी उपयोगिता के बारे में भी बता दीजिए।
0: राजमा केवल स्वादिष्ट भोजन ही नहीं बल्कि पोषण से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक फसल है। इसमें लगभग 23% प्रोटीन और 60% कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन का स्रोत होता है। और अगर बात करें इसके 100 ग्राम दानों की तो इसके 100 ग्राम दानों में लगभग आपको 260 मिलीग्राम कैल्शियम, 410 मिलीग्राम फॉस्फोरस और लगभग 6 मिलीग्राम आयरन भी प्राप्त होता है जो शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में बड़ा उपयोगी है। और स्वास्थ्य की दृष्टि में जैसे राजमा हृदय रोग, कब्ज, ब्लड शुगर, एनीमिया जैसी समस्याओं में बहुत लाभकारी है। और भारतीय खान पान में तो खासकर उत्तर भारत में राजमा चावल बड़ा लोकप्रिय व्यंजन माना जाता है और साथ ही साथ इसे दालों, सब्जियों और अन्य जो है अनाजों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है।
1: मैम, राजमा के कृषि और आर्थिक महत्व के बारे में भी कुछ बता दीजिए।
0: जी, अब कृषि की महत्ता की बात करें तो राजमा कम लागत में अच्छी कीमत देने वाला एक लाभकारी फसल है। इसे फसल चक्र में शामिल करने में भूमि की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इसे पहाड़ी, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि इसे मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसे मक्का के साथ जो है अंतर फसल के रूप में लगाया जाता है जिसमें कि एक पंक्ति मक्का और दो पंक्ति राजमा की तरह बुआई की जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में इसे आलू और सरसों की कटाई के बाद वसंत ऋतु में बोया जाता है। और अगर आर्थिक महत्ता की बात करें तो राजमा किसानों को कम निवेश में अधिक लाभ देती है और पोषण, कृषि तथा सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा भी है राजमा। और अगेती आलू के साथ इसे 2:2 या 2:3 के रूप में अंतर फसल के रूप में ये लगाया जाता है।
1: तो अब ये भी हम जानना चाहेंगे कि राजमा की खेती कैसे होती है और उसके लिए कौन कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है, कौन कौन सी मृदा उपयुक्त होती है।
0: जी, राजमा ठंडे और शुष्क मौसम में अच्छी तरह उगती है। इसके लिए आदर्श जो तापमान होना चाहिए वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि इसके अंकुरण के लिए जो तापमान होना चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये इसके लिए जो है फसल पाला या जल जमाव या अत्यधिक गर्मी में जो ये फसल है बहुत संवेदनशील है, तो इसका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी की बात करें तो राजमा बलुई, दोमट से लेकर के चिकनी मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली अगर दोमट मिट्टी है तो इसका जो है बहुत अच्छी इसकी खेती होती है उस तरह की मिट्टी में।
1: मैम, हमने जलवायु के बारे में जान लिया, मिट्टी के बारे में जान लिया, अब ये जानना चाहेंगे कि बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है और इसके लिए बीज दर कितना रखना चाहिए।
0: देखिए, राजमा को जैसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि राजमा को मोस्टली इसको पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसे खरीफ के मौसम में लगाते हैं और उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे रबी के मौसम में लगाया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई जो करते हैं वो जून के अंत से जुलाई के पहले सप्ताह तक होती है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी जो बुआई का समय है वो है अक्टूबर के अंत से नवंबर के पहले सप्ताह तक, इसका जो सही समय है। और बुआई के लिए आदर्श जो तापमान है वो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो बीज दर है वो लगभग 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। और बुआई से पहले

0: जैसे हम जानते हैं बीजोपचार जरूर करें, और बीजोपचार के लिए हम कार्बेंडाजिम थेरम जैसे फफूंदनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अंकुरण बहुत बेहतर होता है और बीज की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता भी है वो बढ़ जाती है। और बीज को मतलब राजमा के बीज को हल्की नमी देकर ही बोने से उपज बहुत अच्छी मिलती है, तो हल्की नमी होनी चाहिए बीज में।
1: तो मैम, राजमा की बुआई किस विधि से की जाती है?
0: जी, राजमा के बीज देखिए कठोर होते हैं, इसलिए खेत की जो है अच्छी जो तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और खरीफ की फसल की कटाई के बाद खेत की जुताई 2 से 3 बार कर पाटा चलाकर भूमि को समतल करें। और रबी में जो है इसमें जो पंक्ति से पंक्ति दूरी होती है वो होना चाहिए 40 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी रबी मौसम में वो होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जैसे मैंने पहले ही कहा, इसकी जो खेती है हमारे यहाँ रबी में होती है, या उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसकी खेती रबी में होती है, तो वहाँ पर आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। और बीज की जो गहराई होनी चाहिए वो 6 से 8 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं।
1: मैम, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजमा में उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: राजमा एक दलहनी फसल है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं उमा कि दलहनी फसल में एक प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, लेकिन राजमा उस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें उसमें उर्वरक देने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो प्रति हेक्टेयर उसके लिए हम 15 से 20 टन सड़ी गोबर की खाद डालें, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता बढ़ती है। और इसके साथ साथ 100 से 125 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश दें। और नाइट्रोजन को जो है वो आधी मात्रा उसको बुआई के समय दें, और बाकी जो है उसकी मात्रा सिंचाई के बाद देनी चाहिए। और अगर मिट्टी में जो है जिंक की कमी है, तो फिर जिंक या सल्फर की कमी है, तो बुआई के समय 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम सल्फर डालना बहुत लाभकारी होता है।
1: मैम, अब सिंचाई की बात करते हैं, तो मैम राजमा में सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: जी, राजमा अर्ध शुष्क फसल है, इसलिए अधिक पानी की ज़रूरत तो नहीं होती है इसमें। अच्छी उपज के लिए 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त है, और पहली सिंचाई बुआई से पहले करें ताकि कठोर जो बीज है वो अंकुरण उनका अच्छा हो सके। और इसके बाद इसकी जो सिंचाई है यानी बुआई से 25वें दिन पे करें, फिर दूसरी जो इसकी सिंचाई है वो बुआई के 50वें दिन पे, और आखिर में बुआई के 60वें दिन पर इसकी सिंचाई करें। और ये ध्यान ज़रूर रखें कि अधिक सिंचाई से जड़ सड़ भी सकती है, तो उसके लिए जो पानी का जमाव है वो ना होने दें, खेत जो है समतल रखें और पानी का जमाव जो है ना होने दें।
1: मैम, राजमा में निकाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है?
0: जी, राजमा में जो है खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। इसमें जो प्रमुखतः जो खरपतवार जो होते हैं वो होते हैं मोथा, बथुआ, दूब घास और कनकवा होता है मोस्टली। और इसके लिए जो है रासायनिक प्रबंधन, हम रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए जो है बुआई के बाद और अंकुरण से पहले आप पेंडीमेथिलिन का छिड़काव कर सकते हैं, और कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली जो निराई गुड़ाई होती है वो होती है 25 से 30 दिन पर, और दूसरी जो निराई गुड़ाई होती है वो 45 से 50वें दिन पे होती है। और इसमें जो है जो पौधा है उसको जो है हल्की मिट्टी से चढ़ा दे ताकि फलियों को सहारा मिल सके।
1: मैम, अब एक और ज़रूरी बात जो किसान भाई बहनों के मन में आ रही होगी कि राजमा की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं?
0: जी राजमा की जो उन्नत किस्में जो

0: भारत में जो प्रचलित हैं, भारत में जो प्रचलित हैं वो हैं PDR-14, जिसे हम उदय के नाम से भी जानते हैं, मालवीय 137 या VL-63 या VL राजमा 125, अंबर, उत्कर्ष, वरुण, मालवीय 15 और स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल आदि के नाम से। लेकिन राजमा में जो प्रचलित किस्में हैं वो जैसे हैं अंबर, जिसकी जो बुआई है वो 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होती है और इसकी जो पकने की अवधि होती है वो 120 से 125 दिन तक, और औसत जो इसमें उपज मिलती है अंबर में वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और इसके जो दाने होते हैं वो लाल चित्तीदार होते हैं। और इसके बाद जो प्रभेद आता है वो है, प्रचलित प्रभेद आता है वो है उत्कर्ष, उसकी जो बुआई का समय है वो है 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, और पकने की जो इसकी अवधि होती है वो है 130 से 135 दिन तक, और इसकी जो उपज क्षमता है वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और दाने इसके गहरे चित्तीदार होते हैं। और इसी क्रम में जो है तीसरी जो प्रभेद आता है वो है PDR-14, उदय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो बुआई का सही समय है वो 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, और पकने की अवधि इसकी 115 से 125 दिन और तक होती है, और इसकी जो उपज क्षमता है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, और इसके भी दाने जो है लाल चित्तीदार होते हैं। और आखिर में जो सबसे प्रचलित किस्म है वो है मालवीय 15, जिसकी बुआई का समय 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होता है, और इसकी पकने की अवधि 110 से 115 दिन तक होती है, और उपज जो क्षमता है वो इसकी 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, और इसके जो दाने होते हैं वो उजले रंग के होते हैं।
1: मैम, अब रोगों के बारे में बात कर लेते हैं। राजमा में प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं और कीट कौन कौन से लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: राजमा में कई रोग और कीट लगते हैं जिसमें समय पर प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट जो कॉमन जो रोग लगते हैं वो हैं जैसे एंथ्रोक्नोज और पत्ती धब्बा रोग। इसके लिए सबसे पहले तो रोग मुक्त बीज बोएं और बीज उपचार ज़रूर करें, और इस रोग के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। और दूसरा जो आता है वो है जड़ सड़न की दिक्कत आती है, उसके लिए खेत में पानी का जमाव कभी ना होने दें, बीजोपचार ज़रूर करें और फसल चक्र का जो है इस्तेमाल, उस फसल चक्र को अपनाएं। और फिर आता है पीली मोज़ेक रोग, ये सफ़ेद मक्खी से ही जो है फैलता है, तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना बड़ा ज़रूरी है इसमें, और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं, और अगर पौधा रोगग्रस्त हो चुका है तो उसको तुरंत जो है नष्ट करें उस पौधे को। और जो प्रमुख कीट इसमें लगते हैं वो हैं फली छेदक इल्ली, और इसके लिए जो हम प्रबंधन कर सकते हैं वो हम स्पाइनोसेड से इसका जो है छिड़काव करें। ये स्पाइनोसेड एक जैविक कीटनाशी है, और इसका जो है छिड़काव हम इमीमाक्टिन बेंजोएट से भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे जो दूसरे कीट जैसे माहू भी लगते हैं, उसके लिए आप नीम का तेल या इमिडाक्लोप्रिड से जो है इसका प्रयोग करके जो है नियंत्रण कर सकते हैं। और सफ़ेद मक्खी के लिए भी जैसा हमने पहले बताया, इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है।
1: मैम, अब एक और सवाल कि राजमा की कटाई कैसे करें, कटाई कब करनी चाहिए और भंडारण कैसे किया जाता है?
0: जी, राजमा की फसल देखिए लगभग 120 से 130 दिन में तैयार होती है। जब फलियां पीली होकर सूख जाएं और बीज जो है खड़खड़ाने लगे तभी कटाई करें, और जो है पौधों को जड़ से काटकर 3 से 4 दिन धूप में सुखाएं, पर अधिक देर तक धूप में ना रखें ताकि फलियां ना फटें। बीज की जो नमी होनी चाहिए वो लगभग 9 से 10% होनी चाहिए, और तभी उसको हाथ या मशीन से अलग करें, और ध्यान रखें कि दाने टूटने ना पाए। और यदि नमी अधिक हो तो दानों को फिर से सुखा सकते हैं और सुखाकर उसे ठंडी और नमी रहित

0: जगह पर बंद बोरियों में सुरक्षित रखें।
1: मैम, एक और बहुत जरूरी सवाल कि राजमा की खेती से किसानों को कितनी आय प्राप्त हो सकती है?
0: राजमा की खेती से किसानों को अच्छी आय मिलती है। समतल क्षेत्रों में सिंचित अवस्था में इसकी जो उपज है वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें मिल सकती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती में इसकी जो उपज है वो 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे मिल सकती है। और इसके साथ साथ पशुओं को भी जो है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भूसा प्राप्त होता है। सही प्रबंधन अगर किसान करें तो लगभग इसमें 1 से 1.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक शुद्ध लाभ मिल सकता है।
1: तो मैम, जिस तरीके से राजमा की खेती से किसान भाई बहनों को आय मिल सकती है, तो उम्मीद है कि बिहार में भी और बड़े पैमाने पर राजमा की खेती होगी। आपने बहुत उपयोगी बातें बताई मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात कि अपना और अपनी फसल का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी

आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

ناس هاني زياني ناس كا انزيني غرتن يا إلهي چشم بدن شرچتن.

વાલીએ લાગે શુમાર પાછે લગનેસ ગાઈઝ રન લાછે.

0: इतनी गंभीर बीमारी है, टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर,
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक विषय लेकर आए हैं जो काफ़ी खास है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, अक्टूबर माह की हम बात करें तो इस समय विलंब से लगाए गए धान की फसल में क्या कुछ प्रमुख कार्य आपको करने हैं किसान भाइयों, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभु प्रसाद, जो कि वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
12: धन्यवाद मैडम।
11: डॉक्टर साहब, इस माह में धान के फसल के लिए जो महत्वपूर्ण शस्य क्रियाएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे।
12: सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को अपनी तरफ से अभिवादन करना चाहूँगा और उन्हें ये बताना चाहूँगा कि

0: अक्टूबर का जो महीना होता है वो धान की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि पता है, सभी किसान भाई जानते भी होंगे और उनके खेतों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रभेदों के धान लगे होंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होगा। कुछ प्रभेद पकने की अवस्था में होंगे, कुछ में फूल आ रहे होंगे, तो कुछ प्रभेद ऐसे होंगे जिसमें गाभा या गंभर वाली अवस्था होगी और कुछ में दूध वाली अवस्था होगी। तो फसल की आवश्यकता अनुसार किसान भाइयों को उचित उपाय करने होंगे, तभी उन्हें अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त हो सकती है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि धान की जो फसल पकने की अवस्था यानी दूध वाली अवस्था को पार कर चुकी हो, उसके खेत में जो पानी लगा होगा उस पानी को अब बाहर निकाल देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब पर्याप्त नमी है खेतों में, अच्छी बारिश हुई है, तो उस अवस्था में अब ज़्यादा पानी लगा हुआ रहने के वजह से फिर आगामी जो रबी फसल है उसमें विलम्ब हो सकता है। तो जो दूध बनने की अवस्था में है आ चुकी है फसल, उसमें अब ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, वो लगभग 15-20 दिनों तक उसमें पर्याप्त नमी रहेगी और दाना भी अच्छा भर जाएगा और पानी को ड्रेन करने से आने वाली रबी फसल की बुआई भी वो समय से कर पाएंगे। तो ये सावधानी बरतनी है उन भाइयों को जिनके खेत में धान का फसल लगभग दूध बनने की अवस्था को पूरी कर चुका है। और मैं क्रमवार ढंग से बताना चाहूँगा, चूँकि अभी हर तरह के प्रभेद उनके खेतों में हैं और अलग अलग अवस्थाओं वाली हैं, तो जो फसल पक गई हो या पक जाने की अवस्था में है उसकी कटाई भी उनको समय से कर लेनी है। और जो फसल अभी गाभा वाली अवस्था में या गंभर वाली अवस्था में है उसमें यूरिया का अंतिम उपरिवेशन उन्हें करना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं उनको करनी है। और जिस धान फसल में बाली निकल रहा हो, बाली निकलने वाली अवस्था या बाली निकलने वाली है, उसमें थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाली निकलने के समय ही धान का एक रोग जो फॉल्स स्मट कहते हैं या ठेठ भाषा में उसको कंडवा रोग भी कहते हैं, उसका प्रकोप होता है। और इसके रोग के कारण दाना के जगह पर फफूंद या फंगस के कणों का काला या हरा पुंज बन जाता है जो पके दानों को नष्ट कर देता है। तो इस बीमारी से भी बचाव हेतु उन्हें आवश्यक उपाय करनी है। तो ये सारी बातें हैं जो किसान भाई को अपनानी चाहिए और इस माह में उन्हें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इस माह में बहुत सारे धान की फसल तैयार हो रहे होंगे, फूल भी लग चुके होंगे बहुत सारे में, तो ऐसे में इस दौरान क्या कुछ सावधानियां हमारे किसान भाइयों को बरतनी चाहिए?
0: अभी जैसा कि हमने बताया कि जो फूल आने की अवस्था होती है तो उसमें कंडवा रोग होता है जिसको फॉल्स स्मट बोलते हैं और कभी कभी हमारे किसान भाई इसको बोलते हैं लक्ष्मीनिया रोग है। तो इसकी शुरुआत होती है उसी समय जिस समय धान में बाली आना शुरू होता है, ये फंगस है। तो इससे बचाव के करने की ज़रूरत है। और इस बीमारी के अलावे और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो धान को काफ़ी प्रभावित करती हैं। और जैसा कि आपने देखा कि इस महीने में अच्छी बारिश हुई है और उस बारिश के वजह से धान को बहुत राहत मिली है, लेकिन इस बारिश के कारण और ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण और तापमान में भी थोड़ा सा उस तरह का उतार चढ़ाव रहा है और ख़ास करके 30 डिग्री सेल्सियस से ही लगभग ऊपर तापमान रहा है, तो इस वजह से बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ा है। अभी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं जिसमें आवरण झुलसा जिसको सीथ ब्लाइट भी बोलते हैं, तो इसका प्रकोप भी अब देखने को मिल रहा है और खेतों में धान की फसल में ये बीमारी आती है। तो मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि इसके लक्षण क्या हैं और उसके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप ये जान लें कि धान में जो ये आवरण झुलसा जिसे अंग्रेजी में सीथ ब्लाइट कहते हैं और पर्ण अंगमारी रोग भी कहते हैं हिंदी में,

0: तो इसका जो लक्षण है वो धान फसल में इस प्रकार से दिखता है, और उसके कारण भी कुछ ऐसे हैं जो खास करके हम लोगों की गलतियों से या आपकी गलती से हो जाती है। और जब आप धान को ज़्यादा घना लगाते हैं या धान में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का या यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जब लगभग 96-97% रहता है और साथ में तापमान भी 30 डिग्री या 32 डिग्री सेल्सियस होता है तो पत्तियों पर आयत के समान आयताकार अनियंत्रित भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, और जो पत्र आवरण जिसको शीथ ब्लाइट कहते हैं उसके प्रमुख भागों में धूसर रंग का तथा किनारे किनारे भूरे रंग का मार्जिन नज़र आता है। तो ये शीथ ब्लाइट का लक्षण है, और ये खास करके फसल जब परिपक्व होने लगता है या जब उम्रदराज फसल हो जाता है तो उसमें इसका ज़्यादा प्रकोप हो जाता है और वो सहन नहीं कर पाता है, तो इससे बचाव करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा आपके खेतों में नज़र आ रहा है तो आप तुरंत जो है उसमें कॉन्टाफ नाम की एक दवा है जिसको हेक्साकोनाजोल के नाम से ये प्रचलित है, और इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी इसका आप छिड़काव कर सकते हैं, और ये छिड़काव आपको 3 बार करना है 10-12 दिनों के अंतराल पर। दूसरी दवा का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, वो सीथमार बोलते हैं, वेलिडोमाइसिन के नाम से ये मिलता है, इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसको डाल करके आप इसी तरह से कॉन्टाप की तरह इसका छिड़काव करेंगे। अगर इन दोनों में से अगर कोई दवा आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो डाइथेन M45 जो बहुत पुरानी दवा है उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से। वैसे इस बीमारी से बचाव के लिए आप अपने खेतों में जब अगली बार फसल लगाएंगे तो उसमें सीडोमोनास फ्लोरोसेंस नाम की जो दवा है उसका लगभग 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 50 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर में मिला करके आप रोपाई के 30 दिन बाद अगर प्रयोग करेंगे तो इस बीमारी से बचाव हो सकता है। खरी फसल में छिड़काव के लिए आप इसी सीरोमोनास फ्लोरोसेंस का 0.2% का स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे तो आपको बचाव हो जाएगा
1: जी।
0: इसके अलावे और एक बीमारी है जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है जिसको जीवाणु झुलसा रोग कहते हैं। इसके कारण पत्ती के टिप से किनारों या मिड रिब से होकर नीचे की ओर पुआल रंग का धब्बा बनता है जो बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। तो इससे बचाव के लिए आपको सीड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो आप सीड ट्रीटमेंट अगर नहीं किए होंगे तो आपको छिड़काव ही करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको छिड़काव करने की ज़रूरत है, और उस छिड़काव के लिए आपको ब्लाइटॉक्स नाम की एक दवा है, और इस ब्लाइटॉक्स नाम की दवा का प्रयोग आपको करना है। ब्लाइटॉक्स 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल बनाएंगे, और घोल आपको जो इस्तेमाल करना है 1 हेक्टेयर में 1000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए आपको 2.5 किलोग्राम ब्लाइटॉक्स और 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये दोनों दवा को मिला करके आप 1000 लीटर पानी में घोल देंगे, और उससे अगर छिड़काव करते हैं तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से बचाव हो सकता है। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, जैसे ब्राउन लीफ स्पॉट है जो पत्तियों पर भूरे रंग के छोटे छोटे गोल अंडाकार धब्बे नज़र आते हैं जो बाद में आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए आप डाइथेन Z78 या इंडोफिल M45 का प्रयोग कर सकते हैं, और इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 10-12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो आप लीफ स्पॉट से भी बचाव कर सकते हैं फसल का। और अगर ये दवा नहीं है तो कार्बेंडाजिम का प्रयोग 1-2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से रोग से आप बचाव कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खास करके अभी जो धान का फसल है उसमें कीट का भी प्रकोप काफ़ी हो रहा है, और उसमें खास करके तना

छेदक कीट और गंधी कीट, जहाँ जो दूध बनने वाली अवस्था है तो उसमें गंधी कीट का प्रकोप हो रहा है, और ये मुझे जानकारी किसान भाइयों से ही मिल रही है। तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों के खेत में धान अभी दूध वाली अवस्था में आ गई है, तो दूध बन रहे हैं उस

0: इकालक्स, इकालक्स नाम की दवा है और इसका क्विनल फॉस 5% है। इसका 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर यानी 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सुबह के समय जिसमें पत्तियों पर ओस रहता है उस समय इसका भुड़काव करेंगे या डस्टर के द्वारा पूरे खेत में अगर इसको बिखेर देंगे समान रूप से, तो ये गंधी कीट जो है उसके गंध से आपके खेतों से भाग जाएगा और जो दाने में दूध बन रहे हैं भर रहे हैं तो वो दूध को चूस नहीं पाएगा और आपके आपका फसल गंदी कीट के से बच पाएगा।
1: जी, क्या इस माह में और भी कुछ फसल की सुरक्षा के उपाय हमें करने चाहिए डॉक्टर साहब?
0: जी हाँ, ये अक्टूबर का माह भी जो है कीटों को भी काफ़ी निमंत्रण देता है, तो इस समय भी एक और हानिकारक कीट है जिसको ब्राउन प्लांट हॉपर बोलते हैं, भूरा मधुआ, इसका भी काफ़ी प्रकोप होता है और किसान भाई बहुत खुश होते हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छी है, इस बार अच्छी पैदावार मिलेगी, लेकिन जब एक सप्ताह बाद अपने खेतों में जाते हैं तो उनको लगता है कि जगह जगह पूरा एकदम जल सा गया है। तो एक्चुअली ये भूरा मधुआ क्या है कि नीचे से पूरी चाटते हुए पत्तियों को चाटते हुए ऊपर तक आ जाता है और पूरा जो उसकी हरितिमा है उसको चाट लेता है और जिसके वजह से पत्तियां जो है पीली होने लगती है। तो इससे बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने खेतों में, अगर आपके खेतों में इस कीट का प्रकोप नहीं भी है, बगल के खेतों में है, तो आप प्रिवेंटिव मेजर के रूप में इमीडा क्लोप्रीड 17.8 एसएल दवा का प्रयोग करें और इसके लिए 125 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें। और दूसरी दवा आप प्रयोग कर सकते हैं एजाडिरेक्टिन, जो बाज़ार में अलग अलग नामों से आता है, इसका 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 400 लीटर पानी में घोल करके अगर आप छिड़काव करते हैं तो ब्राउन प्लांट हॉपर से भी बचाव हो सकता है। इसके अलावा स्टेम बोरर की भी समस्या किसान भाइयों को देखने को मिल जाती होंगी, अभी होगी समस्या, जिसको तना छेदक कहते हैं, और ये क्या करता है, कीट का लार्वा तने में छेद कर अंदर प्रवेश कर जाता है और बीज के भाग को खा जाता है, जिस वजह से पत्तियां सूख जाती हैं और उसको खींचने से आसानी से वो खींचा जाता है और बाली की अवस्था संपूर्ण बालियां सफ़ेद हो जाती हैं, जिसे इसको डेड हर्ट भी बोलते हैं, मृत कल्ला भी हेड बोलते हैं, हर्ट बोलते हैं। तो इस तरह से ये डेड हर्ट जो बनने की समस्या है वो इंडिकेशन है कि आपके खेतों में स्टेम बोरर का प्रकोप है। तो इससे बचाव के लिए आपको अगर सुरक्षात्मक ढंग से करना चाहते हैं तो फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसके लिए 12 ट्रैप जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कम आपको अपने खेतों में लगाना चाहिए। और अगर आप फेरोमोन ट्रैप आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है और आपके खेतों में पर्याप्त नमी है तो कारटाप हाइड्रोक्लोराइड नाम की दवा जो है कीटनाशक दवा, इसका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेतों में आप छींट दें तो इससे बचाव हो जाएगा। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो फिप्रोनिल 0.3 ग्रेन्यूल जो है ये 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, ये दानेदार है दवा, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर एजाडिरेक्टिन उपलब्ध है तो 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करेंगे तो उससे भी धड़ छेदक कीट से, तना छेदक कीट से आपका बचाव हो जाएगा। तो इस तरह से किसान भाई अपने फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। और चूंकि ये माह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है धान के लिए और धान की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए, अपने मेहनत को सफल करने के लिए, तो थोड़ी सी सावधानी बरतकर उचित रोग और कीट नियंत्रण के द्वारा किसान भाई अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, और आगामी रबी फसलों के लिए डॉक्टर साहब क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप किसान भाइयों को?
0: मैं अपने किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप रबी की बुआई समय से करना चाहते हैं तो जो फसल अभी पक गया है उसका तुरंत कटाई करें और उसकी झराई अच्छी तरह से कर लें, और खेत में अगर एक्सेस पानी लगा हुआ है तो उसको पानी को बाहर निकाल दें। जिस फसल में बालियां निकल गई हैं और दाने भर रहे हैं, तो उसमें एक्सेस वाटर अगर है, ज़्यादा पानी

0: हैं तो उस पानी को भी अब रोक कर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो भोजन का अब भोजन को जो पौधा ले पाएगा उसके लिए जो नमी की आवश्यकता होगी उतनी नमी पर्याप्त खेतों में रहती है। तो दाना बन जाने के बाद या दूध भरते समय जब दाना पुष्ट हो जाए तो उस समय एक्सेस वाटर जो है उसको भी खेत से बाहर निकाल दें, और कोशिश करें कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, जो पौधा अपना भोजन का आदान प्रदान करने की क्रिया को बंद कर दिया है ज़मीन से, उसमें अब किसी तरह का भोजन पौधे को मिल नहीं रहा है, और जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट का जो एक जगह से दूसरे जगह वितरण है वो सब पूर्ण हो चुका होता है, तो उस अवस्था में फसल को काट लेने से एक फ़ायदा ये होगा कि फसल समय से पहले कट जाएगा, और जो हरा चारा के रूप में धान के पत्ते जो हरे रहते हैं उसको मवेशियों को भी खिला सकते हैं, और उसके वजह से खेत भी जल्दी खाली हो जाएगा और आगामी रबी फसलों की बुआई भी वो समय से कर पाएंगे। तो ये दो बात किसान भाइयों को ध्यान में रखने चाहिए कि जो धान पक गए हैं या पक रहे हैं तो उसमें अब ज़्यादा पानी की खेत में ज़रूरत नहीं है, उस पानी को अब कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी खेत से बाहर निकल जाए। जो धान पकने वाली अवस्था हो तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में उसकी कटाई कर लें, और जो हरे पत्ते हैं या उसका प्रयोग मवेशियों को चारे के रूप में खिलाएं, और फसल की अच्छी समय से झराई करके सुखा करके फिर उसका स्टोरेज करें और रबी फसल की बुआई वो समय से फिर कर लें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आज के इस वार्ता से आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, और इस प्रकार आप इस माह में विलंब से लगाए गए धान की फसल में प्रमुख कृषि कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपकी उत्पादन अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
1: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें।
5: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफी प्रभावित हो रही है।

0: और फसलें हमारी काफी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा।

0: का। तीसरा हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ बंधों की तत्काल मरम्मत करें ताकि जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर वो नहीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से।

0: खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलन

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में।
1: नमस्कार मित्रों, मैं नरेश कोहली NCERT के भाषा शिक्षा विभाग से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं, आज हम लोग NCERT की 8वीं के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3, उसमें संकलित एक कहानी कामतानाथ की कहानी है, वो लाख की चूड़ियां, जो कि आपका पाठ नंबर 2 है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, कहानी हम सबको अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहानी कहना और कहानी बुनना, कहानी के बारे में समझना जितना आसान लगता है, कई बार वो थोड़ा सा लगता है कि हम उसको ज़्यादा सहज ले लेते हैं, तो चीज़ों को जिस अर्थ में हमें ग्रहण करना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए थोड़ी सी आज हमारी कोशिश होगी कि इस कहानी को बच्चों के साथ हम लोग साझा करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, और शिक्षकों से भी कुछ बिंदु इस बात में उभर के आ सकते हैं, वो भी हमारे ध्यान में है कि क्या क्या बातचीत हो सकती है बच्चों से, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से। ये हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी का जो मूल विषय है और जो कहानी का आनंद है वो दोनों ही आप तक पहुंचे। जैसा कि मैंने बताया कि कामतानाथ की लिखी हुई कहानी है ये लाख की चूड़ियां, तो सबसे पहली जो जिज्ञासा बनती है वो यही बनती है कि चूड़ियां तो हमने बहुत सुनी है कि भाई कांच की चूड़ियां सुनी है, सोने चांदी की भी सुनी है, लेकिन लाख की चूड़ियां खास संदर्भ में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ विशेष क्षेत्रों में, या जैसे कि किसी भी विवाह के, शादी ब्याह के अवसर पर इस तरह की चूड़ियों का विशेष उपयोग होता है, और हम लोग देखते हैं कि लाख की चूड़ियां खास अवसरों पे भी इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लाख की चूड़ियां हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा थी, और उसको बनाने वाले जो कारीगर थे वो भी हमारे दैनिक जीवन में सामान्य रूप में विद्यमान रहते थे, सामान्य रूप में पाए जाते थे। ये कहानी भी हमें लाख की उन चूड़ियों की कहानी बताती है जो कि आजकल प्रचलन में कम हो गई हैं, यद्यपि एक नए रूप में वो फिर से आ रही हैं, लेकिन ये कहानी अगर हम कहें कि 70-80 के दशक के आसपास, आज से लगभग 50 साल पहले या उसके बाद, जब गांव में कारीगर लाख की चूड़ियां बनाते थे, उसके बारे में है कि किस तरह से लाख की चूड़ियां बनती थी, कैसे वो कारीगर बनाते थे, क्या गांव वालों का लगाव होता था, और उसके साथ साथ बच्चों का भी उनसे क्या जुड़ाव होता था, ये सब इस कहानी में हम लोग देखेंगे। इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र हैं, एक तो जो कहानी कह रहा है वो, जो कि अपने आप को कह रहा है कि मैं गांव में गया, या दूसरा जो इसका मुख्य पात्र है जो लाख की चूड़ियां बनाता है, वो बदलू चूड़ी वाला है,

जो चूड़ियां बनाता है। लेखक इसमें मैं शैली में ये पूरी कहानी कहता है कि जैसे हम भी आप भी जब भी अपनी कोई कहानी कहना चाहें, अपनी बात कहना चाहें, कि चाहे वो मौखिक रूप में हो चाहे लिखित रूप में, इस कहानी को हम लोग एक कहानी की तरह भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक संस्मरण की तरह भी। जैसे इसमें जो मुख्य पात्र है, मैं जो बार बार कह रहा है या कहानीकार है, वो अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता है और उसके मामा का जो है वो गांव है, गांव में वो उस चूड़ी वाले से मिलता है जो कि लाख की चूड़ियां बनाता है, मनिहार है, जो उसका नाम बदलू काका है। और बदलू काका अपने गांव में सबसे सुंदर लाख की चूड़ियां बनाते हैं, और ना केवल गांव में बल्कि आस पड़ोस में भी वो बहुत ही चर्चित और बहुत प्रसिद्ध कहना चाहिए कि कारीगर है जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं। मेरी एक साथियों आपसे ये भी है कि हम लोग लाख की चूड़ियां बार बार कहते हैं। मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे एक सवाल अपने मन में किए आया कि कई बार हम लोग यही नहीं जानते कि लाख होता क्या है। तो आप लोगों को थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, तब आप इसका और आनंद ले पाएंगे कि लाख एक तरह का कहिए कि प्राकृतिक पदार्थ है जो कि एक लाख का कीड़ा होता है, जो जैसे रेशम का कीड़ा होता है, और वो पेड़ पौधों पे लग के उसका धीरे धीरे जो लाख उससे उत्पन्न होता है वो उसको फिर प्रोसेसिंग में या कहिए कि संशोधन करके पेड़ों से उतार के फैक्ट्री में ले जाके या छोटे मोटे उद्योगों में ले जाके उसको बनाया जाता है, और वो प्राकृतिक पदार्थ की तरह होता है। लगभग आप जैसे इसको समझिए जैसे रेशम का कीड़ा रेशम देता है, वैसे ही ये लाख का कीड़ा हमें लाख का पदार्थ देता है, और लगभग जो गोंद होता है उसकी तरह की कुछ चीज है, और उसको ब्राउनिश भूरे रंग का ये पदार्थ है, और इसमें कई चीजों में इस्तेमाल होता है। ये चूड़ियां उससे बनाई जाती है, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, नेल पॉलिश में जो शाइनिंग आप देखते हैं, या और बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि लाख की चूड़ियां अपने क्या अर्थ रखती हैं आज के समय में। मैं कह रहा था चूड़ियों से ही, जब हम चूड़ियों की बात करते तो विद्यार्थी जीवन में या बाद में भी आपको एक कहानी और कविता कहना चाहिए, कहानी नहीं, कि नागार्जुन की एक कविता है गुलाबी चूड़ियां, कि नन्हे हाथों की गुलाबी चूड़ियां जो हैं वो मुझे अक्सर याद आती है, और ये कहानी पढ़ते भी वो मुझे याद आई कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों की जो गुलाबी चूड़ियां हैं वो भी याद आई। चूड़ियां लाख की हैं और उसको बनाता कौन है, वो बदलू काका बनाते हैं। ये कहते हैं कि जब भी मैं, लेखक कहता है कि मैं जब भी गांव में जाता था गर्मी की छुट्टियों में, वो उसके मामा का गांव है, और उस गांव में जो सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगता था वो बदलू काका थे। बदलू काका क्या करते थे, वो लाख की चूड़ियां बनाते थे, और मेरा उनसे विशेष लगाव का एक कारण ये था कि लाख की चूड़ियां बनाने के साथ साथ वो मुझे लाख की छोटी छोटी गोलियां देते थे, रंग बिरंगी गोलियां बना के देते थे, जो लाख बच जाता था उससे वो छोटी छोटी गोलियां देते हैं, और हम सब जानते हैं बच्चों को जो रंग बिरंगी गोलियां होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। लेखक को भी लगभग वैसा ही है, उसको वो रंग बिरंगी गोलियां बहुत प्यारी लगती हैं। यहाँ पे एक बात और लेखक कहता है कि मैं जो बदलू काका वो कहते हैं उसको, मूलतः तो वो उनके एक तरह कहना चाहिए कि बदलू मामा कहना चाहिए उनका, क्योंकि उनके मामा के गांव का है, लेकिन वो उनको बदलू काका कहते हैं। और इसका कारण क्या है कि ये बच्चों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, आदत होती है कि हम सब जो बच्चे होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को जब देखते हैं आस पड़ोस में जो जिस नाम से बुलाते हैं, बच्चे भी उसी नाम से बुलाने लगते हैं। जैसे कई बार हम लोग दादी को माँ कहने लगते हैं, माँ को देख के, या बड़ी अम्मा कहने लगते हैं। तो ये गांव के बच्चे, क्योंकि ये तो मामा कहता है लेकिन क्योंकि गांव के बच्चे उसको बदलू काका कहते हैं, तो ये भी बदलू काका कहने लगता है और लगातार उनके यहां जाता है। फिर कहानी में लेखक कहता है कि बदलू काका जहां पे काम करते थे वो थोड़ा सा गांव का जो एक थोड़ा ऊंचा हिस्सा था उस पे उनका मकान था, और मकान में बहुत बड़ा एक आंगन था, आंगन में एक नीम का पेड़ था, और उस नीम के पेड़ के पास एक भट्टी थी जिसमें वो लाख को पिघलाया करते थे, और उस भट्टी के पास

एक कहना चाहिए कि तिपाई या चौखट के सॉरी कि लकड़ी की एक सूतलियों से बनी हुई चौकी कहिए आप उसको, मचिया जिसको कहा गया है, मचिया पे बैठ के वो अपने काम को करते थे और चूड़ियां बनाते थे। चूड़ियां बनाने का प्रोसेस क्या था, उसकी प्रक्रिया क्या थी कि वो उसको पिघलाते थे और फिर उसको आकार देते थे और उस आकार को एक पतले जब वो चूड़ी के साइज का बन जाता था तो उसको बेलन नुमा जो मुंगेरियां कहा गया है उसको, कि मुंगेरियां एक लकड़ी का वो एक बेलन नुमा छड़ जैसा होता है और उसपे वो चूड़ियों को चढ़ाते हैं और फिर धीरे धीरे जब वो गोल और एकदम चिकनी बन जाती है तो उस पर रंग करते हैं। जब बदलू काका चूड़ियां बना रहे होते थे तो लेखक भी वहां पहुंच जाता था, ये अपन जो कहानी कह रहा है, और कहते हैं कि मेरा अधिकतर समय दोपहर का वहीं बीतता था और मैं वहीं पे दूसरी मछिया पे बैठ के ये सब देखता रहता था। एक यहाँ पे जरूर हमें बड़ा रोचक वाक्य है वो जरूर जानना चाहिए कि इस कहानी में जो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा कि जब वो एक जोड़ा दो जोड़ा बन जाते थे, चार छह जोड़े बन जाते थे, तो वो बदलू काका उनको एक उस बेलन पे चढ़ा के जब देखते थे, वो देखने वाली वो लाइन हमारे लिए बड़ी रोचक है। और वो लाइन क्या है कि जब पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधु की कलाई हो। देखिए लेखक बीच बीच में बड़े सुंदर वाक्यों का इस्तेमाल करता है कि कहानी में ये भी कह सकता है भाई चूड़ी बन गई, लेकिन उन चूड़ियों को बेलन नुमा उस पे चढ़ा के वो बेलन नहीं लगता मानो किसी नए शादीशुदा जो महिला है उनकी नव वधु है उसके हाथों में वो चूड़ियां हो मानो उसकी वो कलाइयां, अर्थात वो अपनी कला पे अपने उस पे एक कहना चाहिए उसको नाज है कि उसने इतनी सुंदर चूड़ियां बनाई है। अब कहानी में आगे थोड़ा सा लेखक और बताता है कि बदलू मनियार क्या थे और वो क्योंकि उनका पैतृक व्यवसाय था, पैतृक पेशा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो ये काम करते आते हैं। और एक खास बात और वो बताते हैं कि बदलू काका इन चूड़ियां बनाने के बदले में किसी के लिए भी जब वो चूड़ियां बनाते थे तो वो उसके बदले में पैसा नहीं लेते थे बल्कि वो वस्तु विनिमय के तरीके से अपना कार्य व्यापार करते थे। ये जानना जरूरी है कि वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय का आशय यहाँ पे ये है कि गांव में थोड़ा पुराने समय में सामान्यतः होता यही था कि हम एक चीज देते थे, मान लीजिए आपने अनाज दिया बदले में आपने चूड़ियां ले ली, आपने अनाज दिया बदले में आपने मटके ले लिए। तो ये जो आदान प्रदान होता था उसमें पैसे का नगद मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था, चीजें आपस में अदला बदली की जाती थी। और बदलू वैसे किसी से कभी पैसे नहीं मांगता था, जिसने जो दे दिया वो रख लिया। लेकिन एक बड़ी रोचक बात कहानीकार ये कहता था कि बदलू वैसे कुछ नहीं कहता था लेकिन जब किसी के यहाँ शादी ब्याह का कोई अवसर होता था, विवाह का कोई अवसर होता था, तो वो मानो एक तरह से जिद पकड़ लेता था और फिर जैसा वो चाहता था अच्छा खासा उसको कहना चाहिए कि सामग्री मिलती थी, कपड़े मिलते थे और थोड़ा बहुत जो अनाज था रुपए भी मिलते थे वो सब मिलता था। और शादी के अवसर पर कोई भी उसको नाराज नहीं करना चाहता था। लेखक बताता है कि एक बार जब वो गांव में गया हुआ था तो थोड़ा सा किसी बात पे वो नाराज हो गया तो उसको मनाने में कहता है कि मानो लोहे लग गए। ये देखिए कहानीकार कामतानाथ की भी ये खूबी है और आप ये प्रेमचंद की कहानियों में भी देखेंगे या कोई भी अच्छा रचनाकार धीरे धीरे अपनी जब भाषा में खूबसूरती पैदा करने के लिए कहीं पे वो मुहावरों का इस्तेमाल करता है, कहीं पे वो तुलना करता है, जैसे मैंने बताया था अभी कि वो नव वधु की मानो कलाइयां हो। और यहाँ पे वो कह रहा है कि जैसे उसको मनाने में लोहे लग गए, यानी लोहे चबाने वाला एक मुहावरा एक तरह से है कि बहुत कठिनाई से वो मानता था और सब कुछ उसको मिलता था, ये उसका काम करने का तरीका था। लेकिन असली सवाल अब थोड़ा सा धीरे धीरे कहानीकार उस बात की ओर इशारा करता है मित्रों, जो वो कहता था कि बदलू को वैसे तो सब ठीक था लेकिन उसको जो ये कांच की चूड़ियां थी उनसे बड़ी चिढ़ थी। वैसे बहुत सीधा और

अच्छा व्यक्ति है वो, लेकिन उसे कांच की चूड़ियों से कहीं ना कहीं चिढ़ थी और वो अंदर अंदर इस बात को लेकर कुड़ता रहता था, अर्थात थोड़ा परेशान था, गुस्से में था। और जब किसी महिला को वो देखता था कि भाई उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको कुछ दो चार बातें सुना भी देता था। फिर देखिएगा कि कहना दो चार बातें सुना देना, अर्थात कुछ ना कुछ छोटों का टिप्पणी कर देता था। जब लेखक उनको चूड़ी बनाते हुए देखता था तो कहता था कि मैं घंटों वहां बैठा रहता था और इस दौरान लेखक को देखता ही रहता था उसके बारे में कि कैसे चूड़ी बन रही है, कैसे कार्य कर रहे हैं बदलू काका। लेकिन बदलू काका भी उसके बारे में पूछते थे, और भाई तुम शहर में क्या करते हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारा रहन सहन क्या है, कैसा है। तो वो कहता कि उसी संदर्भ में वो कहते हैं, जब वो कांच की चूड़ियों की बात आती है तो कहते हैं बदलू काका शहर में तो सभी लोग महिलाएं हैं वो कांच की चूड़ियां पहनती हैं, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा मजेदार है और थोड़ा सा कहानीकार ने उसमें हास्य और व्यंग्य का पुट दिया है, और वो कहता है कि ये भी वाक्य थोड़ा रोचक है, इसको देखना चाहिए कि हाँ बदलू काका कहते हैं शहर की बात है, शहर की बात तो और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। देखिए कि जो बदलू काका का हास्य व्यंग का अंदाज है वो भी थोड़ा मीठा मीठा सा देखिए चुभन वाला, और उसमें आपको देखेंगे कि वो कहता है कि शहर के बारे में उनकी एक राय है कि वहां सब कुछ चलता है और महिलाएं घूमती हैं जैसे भी वो कह रहे हैं, लेकिन ये कि उनकी कलाइयां नाजुक होती है और अगर वो चूड़ कह रहे हैं कि लाख थोड़ा भारी होता है और अगर लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो मोच ना आ जाए, तो ये वो व्यंग्य करते हैं हल्का सा। इसी दौरान लेखक ये भी कहता है कि जब मैं बदलू काका के यहाँ बैठा होता था तो वो मुझे बहुत कुछ खाने पीने को, जिसको कहते हैं कि मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते थे, और जब उनके यहाँ एक गाय भी थी, जब गाय के दूध होता था तो वो मुझे अच्छी खासी मलाई खाने को देते थे, और सबसे बड़ा कारण मेरा यही था, बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ ना डेली प्रतिदिन एक या दो गोली, दो चार गोली जरूर मिलती थी लाख की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और वो कहता है कि ये क्रम लगभग हर साल चलता रहता है, मैं हर गर्मी की छुट्टियों में जाता हूँ, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी की बदली दूर किसी शहर में हो गई और मैं 8-10 साल तक फिर वहां जा नहीं पाया, और 8-10 साल बाद जब वो वापिस गर्मी की छुट्टियों में जाता है तो वहां वो देखता है कि भाई धीरे धीरे उसको वो भूलने लगा और गांव में जाके भी उसको बदलू काका की याद नहीं आती, लेकिन उसके मामा की एक लड़की है और ये कह रहे हैं कि कहानीकार का कि वो बरसात के दिन थे, वो गिर जाती है और जब गिर जाती है तो वो जो उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई है बच्ची ने, तो वो टूट के उसकी कलाई में लग जाती है, और कलाई में लग जाती है तो खून आता है और फिर वो उसकी मरहम पट्टी करते हैं। इसी दौरान जब वो कांच की चूड़ियों की बात करते हैं तो उसे बदलू काका याद आते हैं और फिर वो सोचते हैं कि आज शाम में बदलू काका से मिला जाए, और वो शाम में घूमते फिरते बदलू काका के यहाँ पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि बदलू काका नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पे लेटे हुए हैं, और जाके वो कहते हैं कि नमस्ते करते हैं, बदलू काका भी उनको नमस्ते करते हैं, और वो देखते हैं कि बदलू काका शायद उनको पहचान नहीं पा रहे, तभी वो कहते हैं कि अरे काका मुझे पहचाना नहीं, मैं हूं, मैं कौन भाई मैं, कहते मैं जनार्दन हूं, आपसे बचपन में जो लाख की गोलियां बनवाकर लेके जाता था मैं। हाँ अच्छा अच्छा, तब उसको याद आता अचानक। एक बड़ा सुंदर वाक्य कहानीकार ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो भी देखना चाहिए कि ये भाषा की खूबसूरती है, जब हम कहानी कहते हैं सुनते हैं, खास तौर से जब हम पढ़ते हैं, कहने सुनने में तो जो कहानी कहने वाला होता है उसका अंदाज, बातचीत का उतार चढ़ाव, हाव भाव, खास तौर से उसकी आवाज का जो अंदाज है, कहने का अंदाज है, वो कहानी में रंग भरता है, लेकिन जब हम कहानी, लिखी हुई कहानी को पढ़ते हैं तो वो कहानीकार उसमें शब्दावली भी एक देखता है कि वो सुंदर शब्दावली इस्तेमाल होती है, और वो शब्दावली देखिए कह रहे हैं कि जब उनको याद नहीं आ रहा तो कैसा लग रहा है कि मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। देखिए ये है अपने बदलू काका अपनी यादों के जो पटल पे

जो बीत गया है, जो अतीत है, उसके उसकी तस्वीर उतार रहा है, उसको ऐसा लगता है वो याद करने की कोशिश कर रहा है, और जब याद आ जाता है तो फिर वो कहते हैं हाँ हाँ बैठो, उसके लिए वो एक फिर से मचिया लेके आते हैं और वो बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके आसपास ना तो वो भट्टी है और ना ही वो जो जिसपे बदलू काका बैठ के बनाते थे वो लाख की चूड़िया, ना वो मचिया है। तो पूछते हैं कि क्या काका आपने काम बंद कर दिया? अब थोड़ा सा यहाँ पे पहली बार उसकी चिंताएं हमें दिखाई देती हैं कि हाँ काम तो बदलू काका कहते हैं हाँ काम तो कई साल हो गया बंद हो गया है, और वैसे भी अब गांव में मेरी चूड़ियों को पूछता ही कौन है, क्योंकि गांव में क्या है कि अब पूरे गांव में कांच का प्रचार हो गया है और सब लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। एक सवाल जो इस कहानी का मेन कहना चाहिए कि केंद्र बिंदु है, वो जो है वो यहाँ पे पहली बार उभर के आता है, और वो कहते हैं कि पहले हाथ से काम होता था और अब मशीनों से काम होता है, इसीलिए हाथ से काम करने वाले बेरोजगार होते जा रहे हैं और मशीनी युग आने से वो पूरा का पूरा उस काम काज पे मशीनों का प्रभाव आ गया। कह रहा है कि हाँ मशीनी युग है लल्ला, अब तो सब काम मशीन से होते हैं, चाहे चूड़ी बनाने का हो, चाहे खेत जोतने का हो, सब कुछ मशीन से होता है, और फिर कांच की चूड़ियां होती भी तो बहुत सुंदर हैं। तो ऐसे में लाख का ये सब कम, लाख की चूड़ियों पे काम करना कहाँ संभव रह जाता है। वो मशीनी युग के आने से जो हमारे कुटीर उद्योग, जो लघु उद्योग, जो घरेलू उद्योग, जो एक तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उसकी चिंता जाहिर करता है। और लेखक कहता भी है कि हाँ काका वैसे कांच होता भी खतरनाक है और जल्दी टूट जाता है। इसी दौरान एक चीज और लेखक रेखांकित करता है, वो देखता है कि उसको काका को, बदलू काका को खांसी आ रही है, और उसे लगा कि कहीं इतने लंबे समय तक काका ने काम किया कहीं उनको दमा तो नहीं हो गया, और शरीर भी उनका लगभग थोड़ा सा ढला हुआ लग रहा है, नशे उबर आई है माथे की हाथों की, वो थोड़ा आयु का उनके ऊपर असर दिखाई दे रहा है। लेकिन बदलू काका देख लेता है कि वो मेरी खांसी को कुछ और समझ रहा है, तो वो कहते नहीं नहीं नहीं ये तो मुझे सामान्य फसली खांसी है जो थोड़े 10-15 दिन में ठीक हो जाती है। खैर वो वाक्य यहाँ पे फिर से लेखक सोचता है, और ये बड़ा मार्मिक वाक्य है, और इस कहानी का कहना चाहिए मुझे तो केंद्रीय बिंदु लगता है। लेखक ये सोचता है उसकी पीड़ा को देख के काका, वो कहता है कि हाँ इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मशीनी युग ने हाथ काट दिए हैं, यानी रोजगार का काम बंद हो गया जो हाथ से, हाथ काटना मुहावरा है, किसी का रोजगार छीन लेना, काम छीन लेना, यहाँ पे वो इस्तेमाल हुआ और यही इसका केंद्र है एक तरह से। वो कहता है खैर धीरे धीरे बात शांत हो जाती है, और फिर वो कहते हैं कि गाय भी वहां दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं गाय का क्या हुआ? कहता बेटा वो तो 2 साल हुए पहले वो बेच दी हमने, क्योंकि अब गाय के लिए चारा जुटाना भी एक समस्या है, उसको खिलाते कहां से। फिर ये भी देखते हैं तो जब गाय की बात आती है तो उसको आम भी याद आते हैं। वो कहता और इस साल आम की फसल कैसी हुई है काका? पूछते हैं हालचाल में, जैसे हम लोग बातचीत में ये सब पूछते हैं एक दूसरे से। वो कहते हैं हाँ आम तो हुआ है। तभी वो अपनी बेटी को आवाज देता है कि अरे मैं तो वो सोचता है कि इसको खिलाना भूल ही गया। तभी वो कहता है कि अपनी बेटी को पुकारते हैं, और उसका नाम रज्जो है इसमें कहानी में, कि रज्जो बेटा जरा कुछ आम लेके आना, देखो लल्ला आए हैं उनको खिलाएंगे। तो तभी उसकी बेटी आती है और वो एक डलिया में आम लेके आती है, काफी आम काफी अच्छे हैं। वो कहते हैं हाँ आम की फसल बहुत हुई है अब की बार। फिर कहता है कि वो पूरी डलिया उसके सामने रख देता तो खाओ, कहते कि वो कहता कि अरे मैं इतने कहाँ खा पाऊंगा। तो यहाँ पे फिर बदलू काका एक हल्का सा मजाक करते हैं कि हाँ भाई तुम तो शहरी ठहरे ना, इतने कैसे खा पाओगे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो तुमसे 4 गुने, इससे 4 गुने खा जाता था, वो भी एक समय में। ये बातचीत चलती रहती है और हंसी मजाक के साथ साथ वो कुछ आम ले लेता है। लेकिन जब बदलू काका की बेटी रज्जो हाथ में 4-5 आम, अंजलि में लिखा हुआ है इसमें कि अपनी अंजलि में 4-5 आम रख के बढ़ाती

है, तभी लेखक की नजर या जो इसमें मैं है, जो पात्र है कहानी का, उसकी नजर उसकी गोरी गोरी कलाइयों में जो लाख की चूड़ियां थी उनके ऊपर जाता है। अर्थात रज्जो ने लाख की चूड़ियां पहनी हुई हैं और वो उसके हाथों पे बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेखक ने कहा फब रही हैं वो उसके हाथों पे। यहां पे भी एक चीज देखिए कि उस रज्जो के हाथों में चूड़ियां सुंदर लग रही हैं, लेकिन यहां पे भी बदलू की नजर उस बात की ओर चली जाती है कि जो लेखक है वो कहीं उनकी बेटी के हाथों में जो चूड़ियां हैं लाख की उसको देख रहा है। और उस वाक्य बड़ा जोरदार है, मजेदार है। देखिए कि बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली कि लेखक कहां देख रहा है, कि उसकी नजर को उसने देख लिया कि ये लाख की चूड़ियों को देख रहा, दृष्टि देख ली। मैं बड़ा सुंदर लगा मुझे कि ये दृष्टि देख लेना भी, देखिए कितना सुंदर वाक्य है। और फिर वो कहता कि हाँ बेटा, बस यही एक आखिरी जोड़ा है जो मैंने बनाया था, और ये भी मैंने जो जमींदार थे उसकी बेटी की शादी के लिए बनाया था, लेकिन वो इसका दाम है वो बहुत कम दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि वो कुल मिला के 10 आने मुझे दे रहे थे, और मैं हिसाब लगा रहा था कि 10 आने का मतलब क्या। आज के समय जैसे हम उसकी गिनती लगा, 10 आने, 8 आने, 12 आने और उसके 60 पैसे लगभग, कि अगर इतना कम दाम मिल रहा है तो वो कह रहा है कि मैंने वो जोड़ा दिया नहीं, और जमींदार से कहा कि नहीं आप शहर से ले आओ, और यही वो जोड़ा है वो अब उसकी बेटी ने पहन रखा है, जो कि एक तरह से आखिरी जोड़ा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये आखिरी जोड़ा शब्द भी बड़ा रोचक है कि पूरी कहानी में ये बता रहा है कि अब काम लगभग बंद हो चुका है और ये आखिरी था। और अंत में फिर लेखक अपने बातचीत करने के बाद सोचता है कि घर की तरफ चला जाए, और वो घर अपने लौट आता है। लेकिन चलते चलते वो ये सोचता है और उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि बदलू काका ने काम बेशक बंद कर दिया हो, लेकिन उसके अंदर एक जिजीवसा है, जीने की इच्छा है, और वो अभी हारा नहीं है। वाक्य ये है कि लेखक कहता है कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वाक्य में पढ़ना चाहूंगा कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। ये हार कर भी हार ना मानना देखने वाली चीज है। और फिर उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात मेहनत कश जो मजदूर हैं, जो अपने हाथ से काम करते हैं, बेशक वो कहीं ना कहीं उनमें निराशा है, दुख है, व्यथा है, काम की बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और उनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है। वो कांच की चूड़ियों की तरह से नहीं है कि वो इतनी जल्दी टूट जाए। और लेखक इस बात के साथ अपने घर चला जाता और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये तो वो कहानी है जो लेखक ने कही है सीधे सीधे, और मैंने कोशिश की कि आप लोगों से उस बातचीत के माध्यम से साझा किया जाए। लेकिन मित्रों, सवाल यही है कि जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जिनके सहारे खास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़ी जनसंख्या को हाथ का काम मिला हुआ था, रोजगार था, उनकी आजीविका चल रही थी, वो कहीं ना कहीं मशीनी युग आने से, मशीनी पूरी की पूरी कहना चाहिए कि सभ्यता विकसित होने से वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। और यही इस कहानी में कहा गया है कि मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ काट दिए हैं। ये कहानी हमें उस और भी लेके जाती है कि जरा हम अपने मूल उद्योगों के बारे में भी थोड़ा सोचे, ताकि एक संतुलन बना रहे। मित्रों, ये तो थी कहानी, और क्योंकि हम अपने स्कूली शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस कहानी के अंत में जो अभ्यास दिया हुआ है उसको भी देखें। और जब एक बार हम कहानी को ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो हमारे अनुभव का हिस्सा हो जाती है, तो फिर कहानी से जुड़े हुए सवालों पे बातचीत करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कहानी से, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि भाई वो बदलू मामा क्यों कहते हैं, बदलू मामा को बदलू काका क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका कारण मैंने बताया था बातचीत में कि गांव में जो बच्चे बोलते हैं अक्सर छोटे बच्चे, वो उसी तरह से एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। दूसरा सवाल इसमें वस्तु विनिमय के बारे में है,
तीसरा सवाल मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं इसके बारे में है, और हमने इन

0: पहलुओं पे बातचीत की है। इस कहानी को अगर आप खुद से पढ़ेंगे, इस बातचीत को सुनेंगे, तो आपका ये हल भी आसानी से निकल आएगा और आप इससे बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, कह पाएंगे। इसमें एक हमने कोशिश की है कि कहानी से आगे भी कुछ बातचीत की जाए कि आप कोई कारीगरी का सीख सकते हैं, या ये लाख की चूड़ियां कहाँ कहाँ बनती है, लाख कहाँ बनता है, ये भी जानने समझने की चीज है। और फिर एक पाठ का हिस्सा है पाठ के आगे कि अनुमान और कल्पना हम लोग लगाएं कि हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है, जैसे इस कहानी में जब वो लेखक बदलू काका के यहाँ जाता है तो वो उसको मलाई खिलाते हैं, आम देते हैं, इसी तरह से हम कैसे किसी का अतिथि सत्कार करते हैं। साथ ही साथ गर्मी की छुट्टियों में या किसी भी छुट्टियों में हमें कहाँ जाना अच्छा लगता है उसके अनुभव हम लोग लिखें, और हमारे खान पान में, रहन सहन में किस तरह का बदलाव आ गया इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से इतनी सरल भाषा में आप, तो सीधे सीधे मैं कहूं कि आप अपने अनुभवों को लिखिए। आप गांव से शहर आते हैं, शहर से गांव जाते हैं, किसी पिकनिक पे जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं, किसी तीज त्योहार का वर्णन, किसी भी तरह का वर्णन आप अपने अनुभव को लिख सकते हैं, किस बदलाव को आप लिख सकते हैं। और एक चीज इसमें सारी किताब में भी आप देखेंगे, वो व्याकरण की बात अक्सर हम लोग करते हैं, और व्याकरण की बात को यहाँ कहा गया है कि हम व्याकरण को संदर्भ के साथ पढ़ाएं, संदर्भ जब पाठ में आए किस विषय का उसी से जोड़ के उसको पढ़ाएं। और ये भाषा की बात में ये बातचीत कही गई है, और जैसे इसमें एक उदाहरण दिया कि संज्ञा क्या है, कि संज्ञा पढ़ाने का एक सामान्य तरीका क्या है कि हम लोग विशेषता बताते हैं, उसकी परिभाषा, ये नहीं। देखिए इसमें बदलू है, बदलू कहानी का पात्र है, बदलू एक नाम भी है, जनार्दन पात्र है, एक नाम भी है, इसमें नाम आया है और किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, ये नाम ही संज्ञा होता है। ये हमने अभ्यास में इसको जोड़ के बताया है। और हास्य व्यंग की बात भी मैंने की थी, व्यंग में क्या होता है, व्यंग में जो सामान्यतः कहा जाता है वो अर्थ नहीं होता, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ अर्थ होता है। कि जब हम किसी को महान कहते हैं तो जरूरी नहीं महान हो, मजाक भी हो सकता है वो, इस कहानी में भी, अरे शहर वालों की तो बात और है। तो ये इस तरह के वाक्य हैं, थोड़े हंसी मजाक के भी हैं। और एक अंतिम बिंदु इसका जरूर इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाषा में, बोलने में सबकी क्षेत्रीय विविधता आती है, बोली का असर आता है, जो जिस क्षेत्र में होता है वो उसी के प्रभाव वाली बोली बोलता है। और इसमें भी बहुत सारे उदाहरण आए हैं, कोई वक्त को वक्त बोल रहा है, उम्र को उम्र बोल रहा है। तो ये आप इस पाठ के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको अभ्यास कर सकते हैं। और एक चीज और अंतिम है ये, और वो ये है कि पाठ में जो नए शब्द आते हैं, जो पहली बार जिनसे हम लोग रूबरू होते हैं, उनको भी देखिए, आप उसकी शब्द को उसकी सहायता ले सकते हैं, अन्यथा एक दो बार पढ़ेंगे तो आप उसका भाव धीरे धीरे खुलने लगेगा। इसलिए मित्रों, इस कहानी को पढ़ें, अपने अनुभव लिखें, हम अपनी कहानी बनाएं, हम अपनी संवेदना का विस्तार करें, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। कार्यक्रम निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना।

0: इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का

0: हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम एक वार्ता सुनने वाले हैं। वार्ता का विषय है मृदा मानचित्रण। वार्ताकार हैं डॉक्टर अंशुमान कोहली सर। आप हैं प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वयं मेरी तरफ से और बिहार कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग की तरफ से एक सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सरल प्रश्न पूछकर अपनी वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे क्या है? हम हर दिन मिट्टी पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे अस्तित्व की नींव है। आज मैं मृदा मानचित्रण अर्थात सॉयल मैपिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एक शक्तिशाली साधन है जिससे कि हम इस मृदा रूपी छिपे हुए संसाधन को समझने में बहुत मदद ले सकते हैं। अब आखिर मृदा मानचित्रण क्या है? मृदा मानचित्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की पहचान, विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, और फिर हम इस जानकारी को एक मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, और यह मानचित्र हमें बताता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है, उसकी उर्वरता कितनी है, वह कितना जल धारण कर सकती है, क्या वह खेती, निर्माण या संरक्षण कार्यों के लिए उपयुक्त है, और उपयुक्त है तो उसकी उपयुक्तता विभिन्न कार्यों के लिए कितनी है। सरल शब्दों में मृदा मानचित्रण हमें बिना हर जगह खुदाई किए मिट्टी को देखने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि मृदा मानचित्रण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मृदा मानचित्रण कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मसलन कृषि। किसान भाई मृदा मानचित्रों का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है, उर्वरक व सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है, और ऐसी जानकारी होने से उनका उत्पादन बढ़ता है और अपव्यय कम होता है। साथ ही साथ मृदा मानचित्रण की एक भूमिका पर्यावरण संरक्षण में भी है। मृदा मानचित्रण उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां कटाव, प्रदूषण या भूमि क्षरण का खतरा होता है, जिससे बेहतर संरक्षण योजना बनाई जा सकती है। साथ ही साथ शहरी योजना बनाने में भी मृदा मानचित्रण का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इंजीनियर और योजनाकार भवन, सड़क और अन्य संरचनाएं बनाने से पहले मृदा मानचित्रों का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जलवायु अध्ययन में भी मृदा मानचित्रण का की अहम भूमिका है। मिट्टी में कार्बन संग्रहित होता है, इसका मानचित्रण वैज्ञानिकों को कार्बन चक्र और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अब प्रश्न यह आता है कि यह मृदा मानचित्र

0: मानचित्रण किया कैसे जाता है? ऐसा नहीं कि मृदा मानचित्रण बिल्कुल एक नई तकनीक है, यह तकनीक पिछले कई दशकों से एक प्रभावी माध्यम है प्लानिंग का, योजना बनाने का। परंपरागत रूप से मृदा मानचित्रण में फील्ड सर्वे शामिल होते थे। मृदा वैज्ञानिक मृदा के नमूने एकत्रित करते थे, उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित करते थे और फिर हाथ से मानचित्र बनाते थे। परंतु आज आधुनिक तकनीकों ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। अब उपग्रहों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग की जाती है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाता है, GPS तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इन सब के साथ डिजिटल मृदा मानचित्रण मॉडल तैयार किया जाता है। यह सब तकनीकें मृदा मानचित्रण को अधिक तेज, सटीक और विस्तृत बनाते हैं। मृदा के मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं। अपने उद्देश्य के आधार पर हम मृदा मानचित्र तैयार करते हैं। मसलन सामान्य मृदा मानचित्र, यह एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन देते हैं, जैसे कि एक प्रदेश, पूरा देश या फिर एक जिला। और विस्तृत मृदा मानचित्र, यह छोटे खेतों या छोटे क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह छोटी से छोटी जो विविधता है खेत में उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमें विषयगत मानचित्र भी देखने को मिलते हैं, मसलन pH, नमी या जैविक तत्व इत्यादि जैसे विशेष गुणों पर केंद्रित करते हुए अगर मानचित्र बनाए जाते हैं तो वह एक विषयगत मानचित्र की श्रृंखला में आते हैं। अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और कई दशकों से इस पर वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, परंतु मृदा का मानचित्रण करने में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। इसके लाभों के बावजूद जो विभिन्न चुनौतियां मृदा वैज्ञानिक देखते हैं उनमें से मुख्य हैं कि छोटे क्षेत्रों में भी मिट्टी में काफ़ी विविधता होती है। तो जब हम छोटे क्षेत्रों का मानचित्रण करते हैं तो यह विविधता दर्शाने में हमें कई उन्नत तकनीकों का सामना करना पड़ता है, कई उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो मृदा में मानचित्रण करना है उसकी कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली जाती है। डेटा संग्रहण समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। तो आजकल विभिन्न तकनीकों से डेटा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी एक प्राइस के साथ आती हैं। तो कोई भी मृदा मानचित्रण की प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है जो कि सब जगह सुलभ नहीं होती। हालांकि नई तकनीकें जैसा मैंने ऊपर बताया, उपग्रहों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, GPS तकनीक इत्यादि का यूज़ करके इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, परंतु फिर भी ये चुनौतियां हमेशा हमारे सामने रहती हैं। इन चुनौतियों के चलते हम मृदा मानचित्रण के भविष्य को कैसे देखते हैं? भविष्य, इस तकनीक का भविष्य बहुत आशाजनक है। आज के ज़माने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उपग्रह इमेजिंग में प्रगति के साथ मृदा मानचित्रण अधिक सटीक और सुलभ तकनीक बन गई है। मृदा मानचित्र अधिक से अधिक सटीक और सुलभ होते जा रहे हैं। भविष्य में किसान अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय में मृदा डेटा का उपयोग करके तुरंत निर्णय ले सकेंगे और हम यह कह सकते हैं अंत में कि मृदा मानचित्रण केवल एक वैज्ञानिक गतिविधि नहीं है, यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को बेहतर समझकर हम अधिक भोजन उगा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप ज़मीन पर चलें, याद रखें आपके पैरों के नीचे एक पूरी दुनिया है जिसे समझा जाना बाकी है। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मृदा मानचित्रण के बारे में इतनी सारी बातें आपने विस्तार से बताई। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को आज की वार्ता से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, जानने को मिली होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।

0: आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी ब कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी ब कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ಕೃಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों, उन्नत कृषि के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तिलहनी फसल के बारे में जो हमारी सेहत के लिए, हमारे खेत के लिए, दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी उपयोगी होता है. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुसुम की वैज्ञानिक खेती के बारे में. और आज इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर खुशबू चंद्रा. आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: नमस्ते उमा, और हमारे सभी प्यारे किसान भाइयों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
0: मैम, सबसे पहले तो हमें हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि बिहार जैसे राज्य में इस फसल का क्या महत्व है और इस देश के अलग अलग हिस्सों में इसे किस नाम से जाना जाता है.
1: बिल्कुल उमा, कुसुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रबी फसल है, रबी तिलहनी फसल है. और अगर इसे इसके जैसे तुमने पूछा कि अलग अलग राज्यों में हम किस नाम से बुलाते हैं, तो जैसे हमारे बिहार में कह लो उसे कुसमी कुसुम्बा कहते हैं, महाराष्ट्र में आप देख लो इसे करड़ी के नाम से जानते हैं, तेलुगु में कुसुमा कहते हैं, तो अलग अलग प्रांत में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है. और सबसे गर्व की बात यह है कि इसके अगर हम उत्पादन के संदर्भ में बात करें तो हमारा देश यानी भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है. और मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि हमारे भारत में किन किन राज्यों में ये रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, तो जैसे महाराष्ट्र हो गए, कर्नाटक हो गए, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और हमारा बिहार है. हालांकि अगर हम देखें तो देश में इसकी औसत उत्पादकता लगभग 736 केजी पर हेक्टेयर है. और अगर कई बार आप देखोगे तो किसान भाई बहन क्या करते हैं, कुछ छोटी मोटी त्रुटियां कर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से उनका उत्पादन जो है वो कम हो जाता है. लेकिन अगर आप देखोगे कि अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान योजना और तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद के संयुक्त प्रयासों से अब इसके कई ऐसे वैरायटीज कह लो आप हाइब्रिड किस्में हमारे बीच में हैं जिनसे किसानों को काफी लाभ मिल सकता है.
0: जी मैम, और जैसे कि आपने बताया कि हमारा भारत विश्व में पहले स्थान पर है, तो ये जानकर बहुत खुशी हुई. लेकिन मैम, अगर हम बिहार की बात करें तो मैम, बिहार में उगाने के लिए कुसुम का कोई खास प्रभेद या किस्म है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए.
1: बिल्कुल उमा, उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देनी चाहूंगी. जैसे शुरुआत में आपने बताया था कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जैसे आप देखोगे कि इस पौधे के हर एक पार्ट्स को, हर एक अंग को हम उपयोगी मान सकते हैं. जैसे सबसे पहले आप इसकी पंखुड़ियों को बात कर लो. पंखुड़ियों में इतनी बड़ी विशेषता है कि इसे आजकल पंखुड़ियों को सुखा करके हर्बल टी के रूप में लोग पी रहे हैं. जैसे जितने भी आपके डायबिटिक पेशेंट हैं उनके सेहत स्वास्थ्य को मतलब अच्छा रहे, शुगर कंट्रोल में रहे, उसको कंट्रोल में रखने के लिए इसे हर्बल टी के रूप में डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं. और साथ ही साथ अगर इसकी तेल की बात करी जाए तो इसमें जो हमारा जो लो आपका ओलिक एसिड और आपका लिनोलिक एसिड होता है, तो हमारे हृदय के लिए भी ये तेल बहुत अच्छा है. जैसे गुड फॉर हर्ट कहते हैं ना, तो उस तरीके का है. और जैसे इसके बीज की अगर आप बात कर लो तो बीज जो हमारा है वो बहुत मात्रा में इसको बर्ड फीड के, पक्षियों को खिलाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं. बर्ड फीड के नाम से ही जाना जाता है कुसुम को. और उसके बाद अगर इसकी तेल निकालने के बाद अगर हमारी इसको खली हुई, तो खली जैसे आप मिला करके जो भी दुधारू पशु हैं उनके खाने में अगर मिला करके आप दे दो तो उससे उनके दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है. तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये पौधा पूरा A to Z हमारा बहुमूल्य पौधा है. और जहाँ तक कि प्रभेदों की बात है, तो जैसे हमारा एक

0: लक्ष्मी प्रिया नाम का वैरायटी है जिसको आप कहते हो लक्ष्मी प्रिया, हमारे बोलचाल के भाषा में बहुत प्रचलित है ऐसे ISF 764। उसके बाद एक प्रभेद है आपका A1A1, फिर देखो आप PBNS 12। ये सारी कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो हमारे किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। और अगर हम अगर बात करना चाहें जैसे कि क्या क्या खासियत है इस लक्ष्मी प्रिया में, तो आप देखोगे तो ये वर्षा आधारित और सिंचित खेती दोनों के लिए उपयुक्त है। इसके साथ अगर इसकी परिपक्वता अवधि देखी जाए तो 125 से 130 दिन में आपका फसल पक के तैयार हो जाता है। उपज इसकी लगभग 2200 केजी पर हेक्टेयर है और तेल की मात्रा भी हमारी 30-31% है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ उच्च ऐसी वैरायटियां भी हैं जिसमें तेल की मात्रा उच्च तेल की मात्रा है, जैसे RVSF 18-1। और एक बात आपको और भी बताऊंगी मैं कि कुसुम में जैसे हमारे दो प्रकार के प्रभेद होते हैं, एक आपके कांटेदार होते हैं, एक बिना कांटेदार। तो अब पहले लोगों को था कि भाई इसको काटना लगाना बहुत मुश्किल है, इसमें बाकी चीज़ें इंटरकल्चर ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल है, तो लोगों ने इनको मुश्किल से इसको बॉर्डर क्रॉप के रूप में लोग लगाते हैं। लेकिन अब हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे प्रभेद हैं, कुछ मुख्य प्रभेद देखोगे आप मध्य प्रदेश के और आपके छत्तीसगढ़ के IGKV कुसुम हो गई, उसके बाद JSI 97-99। ये हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन बहुत कम अवधि में पक के तैयार हो जाती हैं और इनमें कांटे भी नहीं होते हैं।
1: जी मैम, किस्मों के बाद अब बात आती है कि खेत किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए, मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो मैम आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि खेत की किस तरह से वो तैयारी करें और खेत की जुताई किस प्रकार से करें और किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम तिलहनी फसलों की बात करें तो इनका जो हमारा खेत तैयार करने का जो हमारा विधि रहता है वो थोड़ा हट कर के होता है। जैसे आप जब खेत की तैयारी कराते हो तो आपको ट्रैक्टर से 2-3-4 चास, कम से कम मिनिमम 2-3 चास तो चलवा करके मिट्टी को बिल्कुल ऐसे भुरभुरा बना देना होगा, जैसे आप हाथ में उठाते हो बलुआई मिट्टी नहीं होता है भुरभुरा, उस तरीके का हमें खेत को तैयार करना है। और उस सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसको एक तो और एक चीज़ और बताऊंगी कि आप लोग जनरली क्या करते हो, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हो, खेतों में छींट देते हो, सर फसल के साथ करते हो, लेकिन अगर आप इसको पंक्ति से पंक्ति में लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी पैदावार होगी और बाकी जैसे आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हो उसमें भी आपको काफ़ी सुविधा मिल सकती है। तो इस तरीके से, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि ये तिलहनी फसल है इसीलिए आपको हमेशा समतल भूमि ही चुनना पड़ेगा खेती के लिए, क्योंकि अगर कहीं गड्ढे की जमीन हुई या कहीं कम ऊंचाई वाली या ढलान वाली जमीन हुई तो उसमें क्या होता है कि कहीं से पानी एकत्रित आकर के एकत्रित हो जाएगा, इससे जड़ में फिर तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, सड़ने के परेशानी हो सकती है। तो इन सब बातों का किस तरीके का जमीन हमें समतल करना है, मिट्टी हमारी ऐसी हो कि नमी कुछ समय तक बरकरार रख सके और उसके बाद अगर हम सिंचाई दे तो मतलब उसके अंदर जमे ना, तो इन सब बातों का किसान भाइयों काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा।
1: जी मैम, एक और बात होती है ध्यान देने वाली, बुआई का समय। तो बुआई का सही समय क्या होना चाहिए और मौसम किस प्रकार का अनुकूल होता है, बीज की सही मात्रा क्या होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, अगर जहाँ तक हम बुआई की बात करें तो जैसे आप जानते हो कि बिहार जो हमारा है वो राइस क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड है, तो खरीफ के बाद हमारा जो रबी में है, तो अभी जैसे अगर हमारे जो धान सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट तक जो हमारे अगर फसल राइस की कट जाती है, धान काट लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है आपका कुसुम को लगाने का। मतलब आप कह लो सितंबर लास्ट हफ्ता से लेकर के आप अक्टूबर के 15 तारीख तक भी लगा देते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अक्टूबर के लास्ट हफ्ते तक भी जाते हो तब भी आप देखोगे कि इसका जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कम से कम 4-5 महीने का क्रॉप है, तो आपका फसल जो है वो उसमें एक तरह का आप कहते हो कि जब दाना बनने लगता है तो तापमान बढ़ जाता है, तो हीट स्ट्रेस हो जाता है, तो उपज घट जाती है। तो इन सब बातों से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप 15 अक्टूबर से लेकर के आप इसको 10 नवंबर तक आप अपनी बुआई कंप्लीट कर लें।
1: जी मैम,
0: और अगर बीज की मात्रा की बात की जाए तो हम अगर देखेंगे तो 3 से 5 केजी पर एकड़

0: बीज दर है इसका
1: जी।
0: और बुआई करते समय सबसे ध्यान देंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि छिटाव नहीं करना है बीज का, आप पंक्ति से पंक्ति लगाएंगे तो एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच की दूरी आपकी 45 सेंटीमीटर रहेगी और पौधे से पौधे की बीच की दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर रहेगी।
1: जी मैम। मैम अब बात करते हैं पोषण यानी कि उर्वरक प्रबंधन के बारे में, और अंतर फसल भी क्या कुसुम के साथ की जा सकती है?
0: बिल्कुल, एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगी कि कुछ भाई बहन कहते हैं कि बीज हमारा जैसे पुराना बीज है या उस तरीके का बीज इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस तरीके से बीज का उपचार ज़रूर कर लीजिए। जैसे हम आप कह लो थीरम कैप्टन या कार्बन डजीम से 2 ग्राम प्रति केजी ऑफ बीज से हम बीज उपचार करके ही बीज को हम लगाते हैं। और जहाँ तक की बात आई आपकी उर्वरक की, तो हम इसमें 60N, 40P, 20K और ये तिलहनी फसल है तो हमें तेल बनने के लिए सल्फर की भी जरूरत पड़ेगी, तो 20 kg हम सल्फर प्रति हेक्टेयर की मात्रा में इस्तेमाल करते हैं।
1: जी मैम।
0: और मैंने आपको बताया कि इसमें कांटेदार होने की वजह से किसान इसको जनरली अपने क्रॉपिंग सिस्टम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अगर इसको चाहें तो अन्य फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम इसे चना के साथ लगा सकते हैं 2:4 के अनुपात में, या हम इसे मसूर के साथ लगा सकते हैं, इसे हम तीसी के साथ लगा सकते हैं। तो इसको हम एक सोल क्रॉप लेके, अकेला एक क्रॉप ना लेकर के, या तो आप बॉर्डर क्रॉप लीजिए और नहीं तो आप इसको इंटरक्रॉपिंग में चना तीसी और मसूर के साथ लगाएं।
1: जी मैम।
0: और कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी हैं उद्यानी बागवानी के हैं, जैसे आप इसको आलू के साथ भी लगा सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में, बीन्स के साथ भी लगा सकते हैं।
1: जी, यानी कि इंटरक्रॉपिंग करके किसान भाई बहन अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी। और मैम अगर हम खरपतवार के बारे में बात करें तो खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए, साथ ही सिंचाई का ध्यान कैसे रखें?
0: बिल्कुल, जैसे आप अगर देखोगे तो सबसे पहले मैं अगर सिंचाई की बात करूं तो देखो, जनरली आप देखोगे रबी सीजन में उस तरीके का तापमान हमारा होता नहीं है कि हमें बार बार जरूरत पड़े, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फसल हमारा 6 महीने की अवधि की है, तो जब हम शुरुआत में अगर हम लगा रहे हैं नवम्बर में, तो उस समय हमारा तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। कम से कम हमारा 10 से 12 दिन में हमारा अंकुरित हो जाता है, जर्मिनेशन आ जाता है, नए पौधे बनने लगते हैं। तो जैसे हमारा 10-12 दिन के बाद आप देखोगे तो पहला फ्लावरिंग आने के लिए कम से कम हमें आपको 60 दिन लगते हैं, मतलब 2 महीने के बाद। तब तक आप देखोगे कि हमारा जनवरी ख़त्म होके हम फरवरी में एंटर कर रहे हैं। अब फरवरी मार्च का महीना ऐसा होता है कि आपका फूल बन के अब दाना बनने की समय आ गई है, तो इस समय पे किसान भाई बहनों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आप देखोगे कि मिट्टी हाथ में उठा करके देखोगे, अगर वो आटे की तरह हाथ में नहीं बन रहा है, उसके अंदर नमी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसमें एक सिंचाई जरूर दे दोगे। लेकिन आप सिंचाई देने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहली सिंचाई आपको देना है बुआई करने के बाद 10-15 दिन के बाद दें, तुरंत ना डालें, ठीक है, 10-15 दिन के बाद डालें। उसके बाद दूसरी सिंचाई आप जैसे पुष्पन होने लगता है, फ्लावरिंग होता है, उसके आरंभ में दें, ताकि हमारा फिर अच्छे से बीज की मात्रा बन सके और तेल बन सके। और जहाँ तक की बात है खरपतवार, हाँ, इसमें खरपतवार से कंपटीशन होता है इस पौधे में, स्पेशली जब शुरुआती दौर होता है, तो उस केस में आप देखोगे कि हम फ्लोरा क्लोरीन और एल्कोर, उसके बाद पेंडीमिथेलिन, तो इन सब को हम जैसे पेंडीमिथेलिन आप 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा से 600 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके आप मिट्टी में छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी मैम। मैम खरपतवार के साथ क्या कुसुम की फसलों में रोग और कीटों का भी प्रकोप रहता है?
0: हाँ बिल्कुल, जैसे अगर हम खरपतवार की बात अगर करें हम, तो खरपतवार के साथ साथ किसी भी फसल में आप जानते हो कि कीड़े मकोड़े या बीमारी आती है, तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एफिड माहू जिसे कहते हैं, तो या फिर आप देखोगे कि कर्नाटक के एरिया में या महाराष्ट्र में आप देखोगे तो एक तरह की झल्लियाँ पत्तों में पाई जाती हैं। तो इस तरह के कुछ कुछ आपको कीड़े मकोड़े और देखोगे आप बीमारी लगती है। तो आप माहू से जिस प्रकार से अगर आप चाहोगे तो माहू

0: उसे भी बहुत सारी ऐसी वैरायटी है, जैसे भीमा हो गई, S1 है। तो ये कुछ ऐसी किस्में हैं जो माहू के प्रतिरोधक किस्में हैं, जो मतलब अगर आप देखोगे तो प्रकोप से बचा सकती, माहू के प्रकोप से। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखोगे कि 15, जैसे आप देखते हो कि पौधे में माहू का अटैक हो चुका है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, हर 15 दिन के अंतराल में डाइमिथोएट जो है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके आप डाल सकते हो पौधे में, तो ये माहू से आपको बचा सकता है।
1: जी मैम, मैम अगर हमने अपने फसलों को कीटों से बचा लिया, रोगों से बचा लिया, उसके बाद बात आती है कि जब फसल पककर तैयार हो जाते हैं तो कटाई के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पक्षियों से भी बचाने की ज़रूरत होती है, और साथ ही भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इससे पहले मैं एक और बात पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि जैसे हमने कीट की तो बात की, कुछ ऐसे बीमारियाँ हैं जो आम तौर पे हमारे बिहार में जो हमने नोटिस की है कुसुम में, जैसे उकटा बीमारी है जिसे फार्मर विल्ट कहते हैं, या जड़ सड़ने की, अगर पानी का जल जमाव ज़्यादा हो जाता है, पत्तियों पे चित्तीदार छीटा छीटा जैसी एक बीमारी होती है, दाग धब्बे जैसे होते हैं छोटे छोटे, तो इन सब को रोकने के लिए, जैसे अगर हम बात करें दाग धब्बों को रोकने के लिए, तो इसके लिए हम मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके दे सकते हैं, या हम कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्लस मैंकोजेब 2 ग्राम, इनका कॉम्बिनेशन प्रति लीटर के दर से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, तो ये चित्तीदार जो हमारी बीमारियां हैं उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर हम उकटा को रोकने की बात करें तो ट्राइकोडर्मा हर्जिनेनम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ बीज के दर से उपचार कर सकते हैं, तो ये हमारी उकटा रोग के साथ साथ जड़ के सड़ने गलने इनको भी रोकथाम करेंगी। और मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसको हम पक्षियों का खाना बर्ड फीड के नाम से ही जानते हैं, तो जैसे फसल आपकी पक के तैयार हो जाती है, सबसे ज़्यादा परेशानी आपको बीमारियों से तो होती ही होती है, पक्षियों से भी होती है। मतलब पक्षी इस तरीके से अटैक करते हैं कि आपको लास्ट में उसको हार्वेस्ट करके दाना बचा के रखना मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाई कुछ नहीं, अगर जाला हो या उस तरीके से मच्छरदानी डाल सकते हैं ऊपर से, या फिर किसी को सुबह शाम, ज़्यादा अगर हमने जिस तरीके से फील्ड में ऑब्जर्व किया है, सुबह और शाम पक्षियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। और उसके बाद जैसे आप देखोगे कि जैसे फसल आपका हल्का पीला भूरा, पीला पड़ के भूरा होने लगा है, तो आपका जो है फसल आपकी तैयार हो गई है, तो आप उसको काट करके पहले तो थ्रेसिंग फ्लोर पे कम से कम 1-2 दिन फैला दें धूप में। उसके बाद आप देखोगे कि हम अभी भी, अगर आप बड़े पैमाने में लगा रहे हो, तो अब तो हमारे पास मशीनें भी हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग के लिए, हम वहीं पे हार्वेस्ट भी करते हैं, थ्रेशिंग भी करते हैं, और सीड हमारा स्टोर भी हो जाता है। लेकिन छोटे पैमाने पे जो किसान भाई कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि एक हमारा लकड़ी का चपटा जैसा, हमारे हमारे भाषा में क्या कहते हैं, पिटना, तो पिटना से हम उसको ठोक ठोक करके जो दाना होता है उसको बाहर निकाल करके, और फिर उसको थोड़ा सा सुखा करके, और फिर हम उसको डालते हैं। अगर पॉलीथीन पैकेज में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें नमी हवा कुछ ना जा सके, क्योंकि अगर आप कॉटन के बैग में भी, थैली में भी रखेंगे, तो कम से कम आप देखोगे 1-1.5 महीने के बाद अंदर से उसमें तरह तरह की जो दाने के अंदर होती हैं, वो तरह तरह के कीड़े लगने लगते हैं। तो इसीलिए फसल काटने के उपरांत भंडारण बहुत मुख्य होता है।
1: तो अगर हमारे किसान भाई बहन इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन जो जिन जिन बातों पे मैंने बताया है, और कुछ बिंदुओं पे मैंने ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोला है कि हमारी ज़मीन किस तरीके से होना चाहिए, हमें पंक्ति और कतार में ही बुआई करनी चाहिए, बीमारी लग जाने से किन किन दवाइयों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, भंडारण किस तरीके से करना है, तो इन सब इन इन इन कुछ प्रमुख बातों को अगर ध्यान देंगे तो उनको निश्चित रूप से ही अधिक पैदावार मिलेगी।
1: मैम कुसुम के लिए बाजार में क्या संभावनाएं हैं और मुनाफा कैसा होगा?
0: बिल्कुल उमा। तो जैसे हम अगर बाजार की संभावनाओं के बारे में बात करें, तो जैसे लोगों को लगता है कि अगर हम दलहनी फसल लगाए, मक्का लगाए, धान लगाए, तो उसमें हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर किसान भाई बहनों, अगर आप

0: कुसुम के बीज का अगर कीमत देखोगे आप मार्केट में तो 40 से 110 रुपए केजी बिक रहा है हमारा मार्केट में। और अगर हम इसकी तेल से, जहां हम इसकी प्रोसेसिंग कर दी बीज की, उससे हमें तेल मिला, तो तेल जो प्रति लीटर है वो हमारा 350 से लेकर 600 रुपए तक मार्केट में बिक रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसका हर एक भाग उपयोगी है, तो जब हम उसके पंखुड़ी पेटल्स की अगर बात करते हैं, जो फूल निकलने के बाद जो मुरझाता है, जो पेटल्स की बात आप पंखुड़ियों की करते हैं, वो होलसेल मार्केट में 1000 से लेकर 1500 रुपए पर केजी बिक रहा है। और अगर आप देखोगे कि छोटे पैमाने पे लोग किस तरीके से छोटे छोटे पैकेजिंग करके जो बेच रहे हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम के पैकेट, वो भी आपका कम से कम 150 से लेकर 450 रुपए तक मार्केट में बिक रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना मुनाफा और फायदा है।
1: जी मैम, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक पहलू के बारे में हमारे किसान भाई बहनों को बताया। तो किसान भाई बहनों, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे, अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बक
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले।

0: 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग

0: रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है, उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय, लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादक उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बता

चाहता हूं कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते

0: नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के।
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर

0: चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हाँ, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली।

0: योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
2: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डाले। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है, उन्हें बता दें,
0: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
2: जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत से ही लाभ गई और मैं हूं आपका दोस्त आरजे शुभम गौरव। आज की बात बहुत ज़रूरी है कि तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की खुशियों को खो देता है। इस साल का संदेश भी बहुत साफ है, अनमास्किंग द अपील, यानी इसे दिखावे को हटाना कि तंबाकू और निकोटीन कोई स्टाइल या आधुनिकता की चीज़ है। असल में ये एक लत है, एक बीमारी है जो खासकर हमारे नौजवानों को अपने तरफ खींच रही है।
1: धन्यवाद आरजे शुभम और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल सही कहा, आज तंबाकू का खतरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ बीड़ी सिगरेट तक सीमित थे, लेकिन आज नए नए रूप आ गए हैं। ई सिगरेट, फ्लेवर निकोटीन पाउच, ये सब ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे सुरक्षित हो, आधुनिक हो, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब एक ही चीज़ है, लत लगाने के तरीके। और सबसे दुखद बात यह है कि ये खासकर बच्चों और किशोरों को निशाना बना रहे हैं।
0: मतलब जो आजकल कूल दिखाने की कोशिश होती है दोस्तों के बीच, सोशल मीडिया पर, फिल्मों में, वो असल में सिर्फ एक दिखावा है, एक ऐसा जाल जिसमें धीरे धीरे इंसान खुद ही फंस जाता है बिना ये समझे कि वो किस तरफ जा रहा है।
1: बिल्कुल यही सच्चाई है। कंपनियां बहुत सोच समझकर ऐसे रंग, फ्लेवर और पैकेजिंग तैयार करती है जो खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित करे। उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि ये बड़ी बात नहीं है, बस एक बार ट्राई करा लो, दोस्तों के साथ मजा आएगा, स्टाइलिश लगेगा। लेकिन असल में वही लत की शुरुआत होती है। धीरे धीरे निकोटीन की आदत हो जाता है और फिर ये सिर्फ चॉइस नहीं, जरूरत बन जाती है। इंसान चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों इसकी मांग करने लगते हैं।
0: टीकन भाभी, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है? क्या ये सच में इतनी फैल चुकी है जितना हम सुनते हैं?
1: हाँ भैया, भारत की स्थिति काफी चिंताजनक है। करीब हर तीसरा वयस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल

0: इस्तेमाल करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां खैनी, गुटखा, बीड़ी जैसे स्मोकलेस और सस्ते तंबाकू का उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हर साल लगभग 10 से 12 लोग की मौत सिर्फ तंबाकू के कारण होती है। जरा सोचिए यह संख्या कितनी बड़ी है। और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं है जो तंबाकू लेते हैं, बल्कि वे भी शामिल है जो दूसरों के धुएं में के संपर्क में आते हैं।
1: मतलब जो खुद तंबाकू नहीं लेते वो भी इस खतरे से बच नहीं पाते।
0: बिल्कुल, इसे हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर घर में या आसपास कोई भी व्यक्ति तंबाकू लेता है तो उसका असर बाकी सभी लोगों पर पड़ता है। खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों में सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, बार बार खांसी या जुकाम होता है। महिलाओं में कमजोरी और गर्भावस्था के दौरान भारी समस्याएं हो सकती हैं। यानी एक व्यक्ति की आदत पूरे परिवार की सेहत पर भारी पड़ती है।
1: भाभी, लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम तो बस थोड़ा बहुत लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये भी एक गलत फहमी है?
0: नहीं, ये पूरी तरह भ्रम है और बहुत खतरनाक भ्रम है। तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या कोई नया निकोटीन प्रोडक्ट। हर रूप में शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खासकर मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर। इसके अलावा दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों की खराबी, ये सब सीधे तंबाकू से जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, तंबाकू शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर देता है।
1: और आपने अभी कहा कि इसका संबंध टीवी से भी है, क्या वाकई तंबाकू और टीवी का कोई सीधा संबंध है?
0: हाँ बिल्कुल है। भारत में टीवी के कई मामले में तंबाकू एक बड़ा कारण माना जाता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके फेफड़े पहले से ही कमजोर होते हैं, जिससे टीवी के बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। ऐसे लोगों में टीवी होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर हो जाए तो बीमारी ज्यादा गंभीर हो जाती है और ठीक होने में ज्यादा समय लग जाता है।
1: मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसी जड़ है जिससे कई खतरनाक बीमारियां निकलती है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देती है।
0: बिल्कुल भैया, और यही वजह है कि इससे जितनी जल्दी समझा जाए उतना बेहतर है। तंबाकू छोड़ना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, ये पूरे परिवार की खुशियों और सेहत को बचाने का फैसला होता है। इसलिए आज नहीं तो कल ये कदम उठाना होगा।
1: टिकन भाभी, कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वो किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे?
0: हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे इलाके में एक आदमी था, नाम था रमेश। रमेश एक मेहनती मजदूर था, सुबह से शाम तक काम करता, परिवार चलाता, लेकिन उसकी एक आदत थी बीड़ी पीना। पहले अपने दोस्तों के साथ मजाक में शुरू किया था, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है ऐसा कहकर। धीरे धीरे ये आदत दिन में एक दो से बढ़कर 10-12 बीड़ियां तक पहुंच गई। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती, ये मत पियो, बच्चों का ख्याल करो, लेकिन रमेश हंसकर टाल देता, कुछ नहीं होता, बाप दादा भी पीते थे। समय बीतता गया और एक दिन रमेश को खांसी शुरू हो गई। पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे खांसी बढ़ती गई, सांस फूलने लगी और काम करना मुश्किल हो गया। जब हालात ज्यादा खराब हुई तो परिवार उसे अस्पताल लेकर गए। जांच में पता चला उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके हैं और शुरुआती टीबी भी था। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अभी नहीं रुके तो हालत और बिगड़ जाएगी। उस दिन पहली बार रमेश डर गया, अपने छोटे बच्चे को देखा, पत्नी की चिंता देखी और फैसला किया, अब बस। शुरुआत आसान नहीं था, शरीर बार बार निकोटीन मांगता था, चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर की मदद ली, काउंसलिंग ली और धीरे धीरे खुद को उस आदत से दूर किया। कुछ महीने बाद उसकी हालत सुधरने लगी, खांसी कम हुई, सांस ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। आज रमेश खुद गांव में लोगों को समझाता है, मैंने गलती की लेकिन तुम मत करना। वो स्कूल में जाता है, युवाओं को बताता है और कहता है, जो शुरुआत में मजा लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सजा बन जाती है।
1: सच में भाभी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक छोटी सी आदत कैसे जिंदगी बदल सकती है और सही समय पर लिया गया फैसला कैसे उसे वापस भी ला सकता है।
0: बिल्कुल, और यही संदेश हमें सब तक पहुंचाना है।
1: तो भाभी, अगर कोई व्यक्ति सच में ये ठान ले कि उसे तंबाकू छोड़ना है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, तो वो क्या करे? क्योंकि कई लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बार बार वापस उसी आदत में लौट जाते हैं।
0: देखिए, सबसे पहला कदम होता है एक पक्का फैसला लेना। अपने मन में ये ठान लेना कि आज के बाद नहीं, जब तक ये अंदर से नहीं आएगा तब तक बाहर की कोई भी सलाह काम नहीं।

0: नहीं आएगी। उसके बाद अपने घर और आसपास से तंबाकू की हर चीजें हटा दे, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी हो, क्योंकि जितनी आसानी से वे सामने दिखेंगी उतने ही मन डगमगाएगा। इसके साथ अपने परिवार और दोस्तों को भी बताएं कि आप ये आदत छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आपका साथ दे, आपको रोक सके जब आपका मन डगमगाए। आगे जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर और काउंसलिंग की मदद बिल्कुल सही कदम है। आजकल सरकारी हेल्पलाइन भी उपलब्ध है, जहां मुफ्त में सलाह और मार्गदर्शन मिलता है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। ये समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू की लत एक दिन में नहीं लगी तो एक दिन में छूटेगी भी नहीं। बीच बीच में मन करेगा, बेचैनी होगी, लेकिन हर दिन खुद को संभालते रहे तो धीरे धीरे यह आदत कमजोर पड़ेगी और एक दिन पूरी तरह छूट जाएगी।
1: और भाभी, इस पूरे सफर में परिवार क्या कर सकता है, क्योंकि कई बार परिवार या तो बहुत डांटता है या फिर ध्यान नहीं देता।
0: परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है आरजे शुभम। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और सहारे की। डांट या ताना देने से इंसान और कमजोर पड़ता है, इसके बजाय उसे समझाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करें। घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करे। अगर परिवार साथ दे तो ये मुश्किल सफर भी आसान हो जाता है।
1: साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, तंबाकू कोई फैशन नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं, बस एक मजबूत इरादे और सही सहारे की ज़रूरत है। और ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी के लिए उठाना जरूरी है।
0: याद रखिए, लत से आज़ादी ही असली आज़ादी है। जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, आप अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देते हैं। इसलिए आज ही सोचिए और पहला कदम उठाइए, तंबाकू छोड़िए और जीवन जोड़िए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक कहानी साझा करना चाहूँगी, जो थोड़ी कठिन है सुनने में, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं को सच्चाई का एहसास करा सके। देखिए, ये कहानी है हमारे पास के गांव में रहने वाले शंभू की। शंभू एक साधारण आदमी था, छोटा सा खेत था, पत्नी और दो बच्चे थे। मेहनती था, जिम्मेदार था, लेकिन एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, गुटखा और बीड़ी की लत। शुरुआत बहुत छोटी थी, खेत में काम करते हुए थकान मिटाने के लिए अपने दोस्तों के साथ थोड़ा गुटखा खा लिया करता था। फिर धीरे धीरे यह आदत रोज की जरूरत बन गई। सुबह उठते ही पहला काम गुटखा और रात को सोने से पहले बीड़ी। उसकी पत्नी कई बार मना करती, बच्चे भी कहते बाबा मत खाओ, लेकिन शंभू हर बार यही कहता कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। समय के साथ उसके मुंह में जलन शुरू हुई, फिर एक छोटा सा घाव बना जो भरता ही नहीं था। पहले उसने नज़रअंदाज किया, फिर देसी इलाज किया, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ती गई। खाने में दर्द, बोलने में तकलीफ, और आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया मुंह का कैंसर। यह सुनकर जैसे उसकी दुनिया रुक गई। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा काटना पड़ा, आवाज़ बदल गई और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। सबसे ज़्यादा असर उसके परिवार पर पड़ा। उसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। बच्चे अपने पिता का हालत देखकर डर जाते थे। जो आदमी कभी उनके लिए ताकत का सहारा था, वही अब खुद सहारे पर था। धीरे धीरे शंभू का काम छूट गया, घर की आमदनी खत्म हो गई और इलाज का खर्चा बढ़ता गया। एक छोटी सी आदत जिसने सिर्फ सेहत नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियाँ छीन ली। और आरजे शुभम, सबसे दर्दनाक बात यह थी कि आखिरी दिनों में शंभू खुद कहता था काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, काश मैंने यह आदत छोड़ दी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का मकसद डराना नहीं बल्कि सच दिखाना है। तंबाकू का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब सामने आता है तब बहुत कुछ छीन लेता है, सेहत, पैसा, परिवार और खुशियाँ, सब कुछ। इसलिए जो आज सोच सकते हैं, जो आज फैसला ले सकते हैं, वे कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कुछ फैसले अगर देर से लिए जाएं तो उसका असर फिर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलना पड़ता है।
1: सच कहूं टिकन देवी, ऐसी कहानियां सुनकर समझ आता है कि तंबाकू का नुकसान सिर्फ किताबों या पोस्टरों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे असली जिंदगियां हैं, असली परिवार हैं, और ऐसा दर्द है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीमारी किसी को पहले से बता कर नहीं आती।
0: बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी है कि हम डर कर नहीं समझदारी से फैसला लें। अगर आप तंबाकू लेते हैं तो छोड़ने की शुरुआत आज से ही कीजिए, और अगर नहीं लेते

0: तो कभी मत शुरू कीजिए। साथ ही अपने बच्चों युवाओं को समझाइए कि असली ताकत किसी गलत आदत को अपनाने में नहीं बल्कि उसे दूर रहने में है।
1: और साथियों याद रखिए, हर नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय आज होता है। हो सकता है शुरुआत मुश्किल लगे, लेकिन आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले बरसों की खुशियां और सेहत बचा सकता है। तो खुद से एक वादा कीजिए, स्वस्थ जीवन चुनेंगे और गलत आदतों को ना कहेंगे। और आज का हमारा संदेश, न स्टाइल में न ट्रेंड में, जिंदगी है अपने कंट्रोल में, तंबाकू से दूरी अपनाओ, स्वस्थ जीवन का रास्ता पाओ। इसी के साथ हम आज अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारी से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार के भी इसी प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही। मैं आपका दोस्त आरजे शुभम आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो सेहत सही लाभ कही में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।

0: पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।

0: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 एफएम ग्रीन से। मैं आज झुरखुरिया ग्राम के आंगनवाड़ी में आया हुआ हूं, जो कि हमारे 14 नंबर वार्ड में अवस्थित है। आज मैं यहां की सेविका दीदी सोनी जी से मिलने के लिए आया हुआ हूं और उनसे पोषण संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहा हूं। इसी के अंतर्गत मैं सोनी दीदी से पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि दीदी आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं।
1: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य या जीवन भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं और पोषण तत्व को शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं।
0: जी दीदी, पोषण को हम अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को जीवन में उपयोग करने के लिए आपको संतुलित आहार अपनाना चाहिए। इसका मतलब है सभी पोषण तत्व शामिल करें, अपने भोजन में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे फल, सब्जी, साबुत अनाज, दाल, प्रोटीन की शामिल करें। पानी पीते रहें, शरीर के कार्य के लिए पर्याप्त पानी पिए। जंक फ्रूट से बचें, शक्कर, नमक और अस्वस्थ कर वसा फलों की प्रसंस्कृत और तले हुए खाद्य पदार्थ का सेवन सीमित करें।
0: जी दीदी, अगर कोई व्यक्ति दीदी दवाई से पोषण नहीं लेना चाहता हो तो वो किन किन पदार्थ या चीजों से का उपयोग करके पोषण को प्राप्त कर सकता है?
1: दवाइयों की जगह पर पोषण के लिए आप संतुलित आहार अपनाना सकते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, तले।
0: जी दीदी, अगर आदमी को सही से पोषण ना मिले दीदी तो उनको क्या क्या परेशानियां हो सकती है?
1: अगर मनुष्य संतुलित न ले तो बहुत कुपोषण का शिकार हो सकता है, जिसके शरीर में कमजोरी और थकान हो सकता है, जिसमें रोग प्रतिरोध क्षमता हो जाती है, शारीरिक और मानसिक विकास के रूप में हो जाता है, कई बीमारियां जैसे एनीमिया, मधुमेह, हृदय रोग हो सकती है।
0: जी दीदी, महिलाओं को पोषण संबंधित आप क्या जानकारियां देना चाहते हैं?
1: महिलाओं को पोषण युक्त आहार ग्रहण करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन शामिल है। इसीलिए जरूरी, क्योंकि उन्होंने आयरन अस्तंत बचाव के लिए, कैल्शियम हड्डी के लिए और फोलिक प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जैसे पोषण तत्व की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, खासकर गर्भावस्था के मासिक धर्म के दौरान हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की मदद कर सकते हैं।
0: जी दीदी, तो ये तो महिलाओं की बातें हो गई दीदी, तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि बच्चों को पोषण के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं?
1: बच्चों को पोषण देने के लिए उनके आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, दाल और अंडे, दूध शामिल करें और खाने के लिए नियमित समय निर्धारित करें।
0: जी दीदी, तो मैंने अभी सारी बातों में

0: तो आपके द्वारा हमें श्रोताओं को ये बतानी है कि लीन प्रोटीन क्या होती है।
1: लीन प्रोटीन उस खाद्य पदार्थ को कहते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा, खासकर संतुलित वसा और कैलोरी बहुत कम होती है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों को रखरखाव में मदद करता है।
0: तो दीदी, हमारे यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई है जो कि हमारे 90.8 एफएम ग्रीन की ओर से भी मुहिम चलाई गई है और हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ से भी मुहिम चलाई गई है, अपनी क्यारी अपनी थाली। अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में आप क्या कह सकते हैं दीदी?
1: जैसे कि साग सब्जी अपने उपजाते हैं, उसमें

0: साग तो नहीं देते हैं, तो वो जो सब्जी हम लोग खाएंगे उसके लिए तो शरीर में अच्छा है, खाद पदार्थ उसमें मिला नहीं है।
1: उनसे आपको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वसा वगैरह उपलब्ध हो जाती
0: है।
2: जी दीदी, तो आज हमें क्या कहता है जानकारी सोनी दीदी की तरफ से मिली पोषण के बारे में। पोषण के बारे में जानकारी देने के लिए सोनी दीदी को 90.8 FM ग्रीन तहे दिल से धन्यवाद करती है। धन्यवाद दीदी।

0: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में। और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ तो छोटू भैया, आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
0: जी।
1: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
0: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में
0: जी। अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
1: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
0: जी,
1: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
0: तो भैया यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में, पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से, हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
1: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए इत्यादि, ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ

0: मांग रहे सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए। इस सबसे ज्यादा संतुलित आहार बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
1: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत पाया गया, बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज्यादा मात्रा में होती है। तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या करना?
0: महिलाओं में पोषण इसलिए ज्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है। उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक मेथी धनिया की चटनी हरी मिर्च इत्यादि को उसमें जरूरत सही समय पे जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ जरूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
1: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी, उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।
2: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु और स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से और इनसे हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। और खासकर जब और बात करें किसानों की तो आप सभी को पता है कि किसान जो है आजकल रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और इससे कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो होता है लेकिन साथ साथ नुकसान भी होता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे मैं पूछना चाहूंगी, सर कैसे जो किसान हैं वो अपनी उत्पादकता, फसलों की जो उत्पादकता है वो बढ़ाएं और तो इन रासायनिक उर्वरकों से बचकर कैसे अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाएं। आइए जानते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से।
3: देखिए इसमें जो किसान भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट रासायनिक खाद, तो रासायनिक खाद से आजकल क्या हो रहा है कि मृदा प्रदूषित हो रही है और वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसको उत्पाद हम खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, धान हो, गेहूं हो, ज्वार हो, उसका जो अवशेष रासायनिक खादों का अवशेष हमारी बॉडी के अंदर जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करता है। तो प्रश्न आता है कि हम पोषक तत्व किससे दें, यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर, तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक। पहले जानते हैं कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीवियों का प्रायोगिक सम्मिश्रण है जो कि समुचित मात्रा एवं तकनीक से व्यवहार करने पर फसलों की उपज में वृद्धि करता है। जैव उर्वरक कभी भी किसी कोई पोषक तत्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर जाकर के अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए अनुपलब्ध होते हैं या बेकार होते हैं। ये बैक्टीरिया या जीवाणु जाकर के मिट्टी में अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उस अघुलनशील या बेकार पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं और उस अवस्था में उपलब्ध कराते हैं जिस अवस्था में पौधा लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सही तरह से करते हैं, तो रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर सकते हैं और पौधों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
2: तो सर ने बताया यहाँ पर कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं आप उनसे हटकर जैव उर्वरकों

0: का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों, और उनके महत्व पर और भी ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और इनसे हम और भी बातें जानेंगे। और आगे सर हमें क्या बताना चाहेंगे आप इस जैविक उर्वरक के बारे में?
1: इसके बारे में हमको जानना होगा कि जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उनसे क्या लाभ होता है, तो ये हमको जानना बहुत अत्यावश्यक है कि जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से क्या लाभ होगा और इनके कितने प्रकार होते हैं और इनको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं अपने खेतों में।
0: तो सर ने हमें बताया कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये और किस प्रकार ये रासायनिक खादों से अलग ये अपना काम करता है, सर आप हमें बताना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे कि अभी बताया था कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो वायुमंडल में आच्छादित नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर स्थिर करते हैं या फिक्सेशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में 78.6% नाइट्रोजन होता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है कि कुछ पौधे की जड़ें होती हैं, जैसे कि दाल वाली फसलें हैं, चना, मसूर, अरहर, उसकी जड़ों के अंदर ये गांठें बनाता है और गांठों के अंदर उस वायुमंडल को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ये अपनी प्रकृति क्रियाओं के द्वारा उस अवस्था में चेंज कर देता है जिस अवस्था में पौधा लेता है, जैसे कि अमोनिकल है या नाइट्रेट है। तो ये इसका बहुत बड़ा काम है और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता जो कि हम DAP से यूरिया से देते हैं, तो इस तरह से ये उससे अलग होता है केमिकल से, और इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है खेती पर या मिट्टी पर, इसलिए ये बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दूसरा होता है पौधों को ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि अनुपलब्ध होते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, तो फास्फोरस मुख्यतः पौधा आयनिक फॉर्म में लेता है जो कि हम लोग आयन बोलते हैं, और जब हम DAP अप्लाई करते हैं तो DAP या SSP जो फास्फोरस किसान भाई अप्लाई करते हैं तो उसकी उपयोग क्षमता केवल 15-20% होती है, मतलब कहने का यह है कि 80-85% भाग मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है या उस अवस्था में हो जाता है जो कि पौधे के लिए बेकार होता है, अनुपलब्ध होता है। तो ये जो बैक्टीरिया या जीवाणु खाद है जब मिट्टी में जाता है और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसको अनुपलब्ध फास्फोरस को उपलब्ध कराता है और पौधा उसको यूज करने लगता है अपने कार्य के लिए।
0: तो आज उन्नत कृषि में हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो ये चर्चाएं चलती रहेंगी, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि, उन्नत कृषि। तो सर ने हमें बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, और साथ ही जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है तो इसमें एक जीवाणु का नाम आता है सर, और उसका नाम है एजिटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम। सर इसका क्या काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपयोगी बातें होंगी उनके लिए।
1: देखिए, अभी जो राइजोम के बारे में बताया तो राइजोम का प्रयोग केवल दलहनी फसलों में किया जाता है, और अभी आपने जो पूछा है एजिटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरलम का क्या काम होता है, तो एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम एक ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी के अंदर करते हैं, और ये जीवाणु सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, सब्जी वाली फसल जितनी भी हैं जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी, सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फल वाले वृक्ष जैसे कि लीची, आम, अमरूद, पपीता, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कितना नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, यदि किसान भाई साइंटिफिक तरीके से अप्लाई करते हैं अपने खेतों के अंदर तो ये जीवाणु प्रति हेक्टेयर एक साल में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। कहने का मतलब है कि यदि इनका प्रयोग करते हैं तो हम 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि DAP या यूरिया से देते हैं उसको सेव कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। तो सर हमने अभी बहुत सारी बातें जानी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जाना और जीवाणु के बारे में जाना, और इसके बाद सर ऐसा अक्सर देखा गया है कि खेतों में और मिट्टी में खासकर कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अगतिशील होते हैं, और इन अगतिशील पोषक तत्वों से पौधों को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जैव उर्वरक इन अगतिशील पोषक तत्वों को गतिशील बनाकर जो पौधे होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स या फिर यूं कहें कि पोषक तत्व उपलब्ध करा सके।

0: अंदर एक जैव उर्वरक आता है माइकोराइजा। सो माइकोराइजा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो माइकोराइजा एक फंगस या फफूंद का एसोसिएशन होता है, सहजीवी होता है हायर रूट्स ऑफ द प्लांट्स के साथ में। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ में सहसंबंध स्थापित करता है और ये अपना भोजन उस पौधे से ही लेता है। तो ये क्या करता है कि इसकी जो हाइफी होती है या माइसिलियम होते हैं ये पौधे की जड़ों के अंदर छेद करके घुस जाते हैं और दूर तक फैल जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो जो दूर तक फैलते हैं, कितना फैल जाते हैं, जो मान लीजिए पौधे की जो जड़ है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो उसको 8 से 10 सेंटीमीटर तक ये बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, और 8 से 10 सेंटीमीटर तक जो भी अनुपलब्ध फास्फोरस था उसको ये लेकर के आती है पौधे की जड़ के अंदर दे देती है। तो इसका मुख्य कार्य है कि पौधे की जड़ के सरफेस एरिया को बढ़ा देना और दूर से आगतिशील पोषक तत्वों को मृदा पौधे की जड़ के अंदर लेकर के आना। तो ये इसका मुख्य कार्य है। यदि किसान भाई इसको सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस की मात्रा में 10 से 20 किलोग्राम तक हम कटौती कर सकते हैं जो कि हम रासायनिक खाद के द्वारा देते हैं। तो इस तरह से रासायनिक खादों के प्रयोग को हम कम कर सकते हैं इसके बायोफर्टिलाइजर के या जैव उर्वरकों के प्रयोग करने से,
1: या फिर यूं कह सकते हैं कि जैव उर्वरक जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पर काम करते हैं अगतिशील पोषक तत्वों को मतलब गतिशील बनाने में और पौधों तक इसे अच्छे तरीके से पहुँचाने में।
0: हाँ, क्योंकि जो अगतिशील पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए बेकार पड़े होते हैं क्योंकि पौधे से वो दूर है, पौधे से दूर है, पौधे के जब तक जड़ के पास में नहीं आएगा तो पौधे के लिए तो बेकार है। तो माइक्रोवेव क्या करता है कि जो दूर पड़ा हुआ था अपनी हाइफी के द्वारा उसको पौधे की जड़ के अंदर डाल देता है और पौधे की जब रिक्वायरमेंट होती है उसको वो यूज करने लगता है।
1: तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं डॉक्टर साहब, और आगे कुछ बातें और भी जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दूं हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जो है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि। हमारे आज चर्चा का विषय है कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व एवं प्रयोग। और डॉक्टर साहब से हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं जैव उर्वरक के बारे में यानी कि फर्टिलाइजर के बारे में, और अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कैसे ये इनका जो इम्पोर्टेंस है किसानों के लिए, किस तरीके से वो इन्हें अपने खेत में डालकर रासायनिक जो उर्वरक हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सर अब आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जैव उर्वरक होते हैं इनकी प्रयोग विधि है या फिर क्या होती है।
0: देखिए सबसे अहम पहलू होता है जैव उर्वरकों की मात्रा और उसकी प्रयोग विधि। किसान भाई यदि सही से इसका प्रयोग विधि जानते हैं तभी इसका अच्छी तरह से लाभ मिल पाता है खेत में। तो प्रयोग विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर एक पे आता है बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो दर होती है वो 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ द बीज होता है, यानी 20 से 25 ग्राम हम बायोफर्टिलाइजर लेते हैं और 1 kg बीज के लिए लेते हैं। जितना हम बायोफर्टिलाइजर या कल्चर लेते हैं उसका दुगनी मात्रा में पानी लेते हैं, और जितना पानी लेते हैं उसका 10% हम गुड़ या जैगरी लेते हैं, लो क्वालिटी का जो गुड़ होता है जैगरी और या गुड़ ले लेते हैं। पानी के अंदर गुड़ को डाल लेते हैं और हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने का मकसद केवल होता है कि गुड़ अच्छी तरह से उसके अंदर घुल जाए। जब ये गुड़ पानी में घुल जाता है तो उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में जो मैंने अभी मात्रा बताई थी जैव उर्वरक की या बायोफर्टिलाइजर की उसको डाल करके हम एक लकड़ी की सहायता से उसको घोल देते हैं और ये अब ये घोल बन जाता है। घोल बनने के बाद में जो सारे काम जो कर रहे हैं हम, ये छायादार स्थान होना चाहिए या कोई कमरा हो या पेड़ हो उसके नीचे सारा काम करते हैं, और एक फर्श पर पॉली शीट बिछा लेंगे, प्लास्टिक की शीट बिछा लेते हैं, और जो आपके बीज की मात्रा थी उस बीज को हम उस पर पॉलीथीन की शीट पर डाल देते हैं और ढेर लगा करके छोड़ देते हैं। फिर जो घोल आपने जैव उर्वरक का बनाया उसके ऊपर डाल करके उसको उंगलियों की सहायता से मिक्स करते हैं। हथेली से नहीं करेंगे, हथेली से करते हैं तो क्या होता है कि वो लेप उसका आ नहीं पाता है और लेप छूट जाता है। तो उंगलियों की सहायता से हम उस पर लेप लगाते हैं, और लेप लगाने के बाद में उस सॉल्यूशन का लेप लगाने के बाद में उस प्लास्टिक की शीट पे हम बीज को बिछा देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो सूखने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। यदि हवा चले जल्दी सूख जाता है, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो देर में सूखता है। सुखाने के बाद जिस खेत में आपको इसको बोना होता है या छींटना होता है, लाइन में लगाना होता है, उस खेत में ले जाते हैं और इसको बुवाई कर देते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार। दूसरा विधि होती है मृदा उपचार। तो बायोफर्टिलाइजर के द्वारा या जैव उर्वरक के द्वारा हम मृदा का उपचार भी कर सकते हैं। उसके लिए जो दर है उसकी 2 किलोग्राम पर एकड़ या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, चाहे वो एजिटोवेक्टर हो या जस्पाइलम हो या PSB हो। तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम

0: 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेकर के उसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको 5 किलोग्राम कल्चर को, और पूरी नाइट या 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद या ओवरनाइट के बाद में सुबह जा करके जिस खेत में बिखेरना होता है उसमें हम इसको बिखेर देते हैं, और हल्का सा फिर हल्का कल्टीवेटर या हैरो से इसको मिक्स कर देते हैं मिट्टी के अंदर। ध्यान रखते हैं कि जब हम ब्रॉडकास्ट करें बायोफर्टिलाइजर को खेत के अंदर तो धूप ना हो, तो हम संतुष्ट हम रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो बखेरते हैं इसको सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, और बखेरने के तुरंत बाद इसको मिक्स करना होता है। तीसरी विधि आती है बिचड़ा उपचार या पौध उपचार। तो पौध उपचार के लिए इसकी जो दर है वो 2 kg पर एकड़ या 5 kg प्रति हेक्टेयर है। उसको मात्रा को लेकर के 100 लीटर पानी में हम घोल लेते हैं और एक घोल बन जाता है। घोल बनाने के बाद जो बिछड़ा है वो बिछड़ा को उखाड़ेंगे और उसकी जड़ों को कम से कम 45 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, और फिर 45 मिनट के बाद में जिस खेत में रोपाई करनी होती है उसमें हम इसकी रोपाई कर देते हैं। तो ये 3 विधियाँ मैंने बताई हैं। यदि ऐसा किसान भाई करते हैं तो इसका भरपूर और जो जितना हर संभव लाभ है वो मिल पाता है, और पौधों को अधिक से अधिक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और न्यूट्रिएंट की उपलब्धता हो जाती है।
1: तो सर, आपने बताया अभी जो जैव उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइज़र हैं, उनके प्रयोग विधि के बारे में आपने बताया, और अब हम जानना चाहेंगे आपसे और किसान भाई भी आपसे यही पूछना चाह रहे होंगे कि हम किन किन फसलों के लिए जैव उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो जैव उर्वरक का प्रयोग अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह से किया जाता है, और हर एक फसल के लिए अलग अलग जैव उर्वरक होते हैं। जैसे कि बात करते हैं दलहनी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए मुख्यतः हम राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, और ये रिकमेंड करा जाता है, संशोधित किया जाता है कि जब भी हम राइजोबियम का प्रयोग करें उसके साथ में फॉस्फोबैक्टीरियन या PSB का प्रयोग करना चाहिए। तो दलहनी फसलों के लिए 2 जैव उर्वरक मैंने बताए, एक तो राइजोबियम है और दूसरा है PSB। और एजोटोबैक्टर का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हों या सब्जी वाली फसलें हों, धान्य फसलें हों, फूल वाली सब फसलें हों, फलों वाली सब फसलें हों। और इसके साथ में भी हम संशोधित किया जाता है कि PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि PSB का काम होता है पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराना। जब पौधों को फास्फोरस उपलब्ध ज़्यादा होती है तो पौधों की जड़ों का विकास ज़्यादा होता है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी मिट्टी के अंदर ज़्यादा होता है। तीसरा होता है एजोस्पर्म जैव उर्वरक। एजोस्पर्म का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे कि धान्य फसलें, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों आदि, और जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं, चाहे वो मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, गोभी हो, सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फल वाली फसलें और पुष्प वाली सब फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो PSB का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरा हमने बताया था माइकोराइजा। माइकोराइजा का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दाल वाली फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, फल वाली फसलें हैं, या फूलों वाली फसलें हैं, या फिर धान्य फसलें होती हैं। तो ये मैंने बताया आपको किन किन फसलों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बात और है जो कि होती है, क्या ध्यान रखें इनका जब हम प्रयोग करते हैं, तब ध्यान रखने योग्य बात है। तो हमेशा बोला जाता है कि नाइट्रोजन वाले बायोफर्टिलाइजर के साथ में PSB या फॉस्फोरस वाले बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा होता है, कभी भी रासायनिक खादों के साथ में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइजोबियम भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में हम रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया, DAP भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो डेथ हो जाती है उसकी और वो मर जाता है।
1: तो सर, आपने बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसान भाइयों के लिए, और जितने भी किसान बहनें हैं मेरी, उन सभी के लिए सवाल है, और वो ये है कि ये जो जैव उर्वरक हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ, यानी कि इनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है।
0: देखिए, जैव उर्वरक आपको किसी भी जो रासायनिक खाद बेचता है या दवाई बेचता है उनकी दुकानों पर मिल जाते हैं, और यदि आपको हमारे विश्वविद्यालय का लेना है तो हम लोगों के यहाँ पर भी, हम लोगों की जो प्रोडक्शन इकाई है, उत्पादन इकाई है, उसकी क्षमता 500 मेट्रिक टन है। 500 मेट्रिक टन आप जानते हैं कि बहुत होता है, तो साल भर जितना आपको चाहिए उतना उपलब्ध रहता है। तो हमारे यहाँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बायोलैब है जिसके अंदर जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है, और आपको ये राउंड द ईयर कभी भी आप आए, किसी भी टाइम आए, किसी भी प्रकार का जैव उर्वरक लेना हो तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा।
1: तो किसान भाइयों और

हूँ, आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप इसे ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम उन्नत कृषि में आए और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए दी है और आपसे आगे भी मुलाकात होगी, हमारे किसान भाइयों और बहनों से भी आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
12: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आप

0: को स्वस्थ, तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
2: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
0: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अर्का निशांत, इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 cm की दूरी पर करें।
2: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ಭಾರತ್ ಕೃಷಿ. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आरजे अनु और हर रोज़ की तरह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम. कृषि अवशेषों से कंपोस्ट आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी हमारे इस कार्यक्रम में. तो इस कार्यक्रम को लेकर और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ए के झा जी. मैं आपको बता दूँ, ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग से, और हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. और सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है.
1: सरल शब्दों में, कृत्रिम विधि द्वारा केचुआ पालने को वर्मी कल्चर और इन्हीं केचुआ द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं. यानी कहने का मतलब यह कि यदि केचुआ की सहायता से जो खाद बनाया जाता है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है.
0: जी, तो केचुआ की सहायता से जो खाद बनाया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं. अब बात यहाँ पर आती है केचुआ. तो केचुआ तो हमारे किसान भाई तो जरूर जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि ये केचुआ क्या है सर, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें और इसकी क्या उपयोगिता है इसे भी बताएं.
1: केचुआ मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी जीव है. इसकी महत्ता को सर्वप्रथम सन 1881 में विश्वविख्यात प्राणी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने बताया था. ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जैसे देशों में केचुआ का प्रयोग मानव आहार में प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है. कैलिफोर्निया में इसका उपयोग आमलेट तथा केक बनाने में किया जाता है. केचुआ से बने सूप विदेशों में स्कूली बच्चे को प्रदान किया जाता है और उच्च ऊर्जा मान लगभग 4100 कैलोरी प्रति ग्राम के कारण केचुओ को सुखाकर उसका चूर्ण बनाया जाता है और इसका उपयोग मानव आहार में किया जाता है. यूं तो केचुआ का प्रयोग औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन निर्माण में भी किया जाता है, परंतु भारतवर्ष में इसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि में उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए किया जाता है, खास करके वर्मी कंपोस्ट बना करके ये काम किया जाता है.
0: जी, तो यहाँ पर आपने केचुआ क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो सबसे पहले ही सर ने आपको बताया था कि इसी की मदद से जो है खाद तैयार किए जाते हैं और ये बहुत उपयोगी होते हैं फसलों के लिए, क्योंकि उनके बढ़वार में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. सर, अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर की, तो इसके मापदंड के बारे में हम जानना चाहेंगे सर.
1: ऐसा है कि देखिए, जैसे कि यूरिया है या DAP है, इसके लिए फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर ने एक दिशा निर्देश तय किया है कि यदि इस ढंग की गुणवत्ता है तभी जा करके उस यूरिया का या DAP का आप बिक्री कर सकते हैं. इसी तरह से अब वर्मी कंपोस्ट को भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत लाया गया हुआ है, यानी कि यदि वह गुणवत्ता

0: पत्ता है आपके बर्मी कंपोस्ट में, तभी आप इसका विपणन कर सकते हैं, आप इसका व्यापार कर सकते हैं, या व्यापार करने के लिए आप लाइसेंस ले सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इसमें क्या क्या चीज ऐसा है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बनाते हैं लेकिन इसकी जानकारी नहीं होने के कारण उनका जो उत्पाद है वह बिक नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहली बात, जो बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें 15 से लेकर 25% तक नमी होनी चाहिए। इसका कण का आकार ऐसा होना चाहिए कि 90% बर्मी कंपोस्ट 4 मिलीमीटर की जाली से छन जाए। दूसरी बात कि इसमें कुल जैविक कार्बन 18% होना चाहिए, नाइट्रोजन कम से कम 1% जरूर होना चाहिए, फॉस्फोरस 0.8% होना चाहिए, पोटास यह भी 0.8% इसमें कम से कम होना चाहिए। जो इसका स्थूल घनत्व होता है जिसको बल डेंसिटी कहते हैं, ये 0.7 से 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन जो भारी तत्व हैं जो हमारे मिट्टी में प्रदूषण भी पैदा करते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे जो अधिकतम कैडमियम है वह 5 ppm तक ही अलाउड है, उससे ज़्यादा है तो आप उसको नहीं बेच सकते हैं। जो क्रोमियम है, क्रोमियम आपको 50 ppm होना चाहिए, 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। और निकल यह भी 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लेड ये 100 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में ये चीज़ वर्णन कर दिया गया है कि इस तरह की यदि गुणवत्ता है तभी जाकर के आप बर्मी कंपोस्ट की बिक्री कर सकते हैं, उसी ढंग का बर्मी कंपोस्ट आपको बनाना है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, और अब हम बात करेंगे फसल अवशेषों के बारे में। क्या हमारे देश में इतने फसल अवशेष हैं जिनका इस्तेमाल हम वर्मी कंपोस्ट में कर सकें? अगर है तो सर जानना चाहेंगे कि।
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारी जो आज की निर्भरता है वह रासायनिक उर्वरक के ऊपर ज्यादा है, लेकिन हमारे देश में जो गोबर या फसल अवशेष हैं वह भी काफी मात्रा में है। और उस गोबर या फसल अवशेष का प्रयोग यदि हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में हम पोषक तत्व की आपूर्ति रासायनिक उर्वरक करने से बच सकते हैं। अब मैं उसको आपको बताऊं, जो वैज्ञानिक आकलन है इससे यह पता चला है कि हमारे देश में उपलब्ध मानव एवं पशु मल से लगभग 110 लाख टन पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्रदान करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त जो प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले 3,567 लाख टन फसल अवशेष भी हैं, जिससे लगभग 74 लाख टन पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आपूर्ति हम कर सकते हैं। इस फसल अवशेषों एवं अवशिष्ट पदार्थों के उचित उपयोग बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है, ताकि रासायनिक उर्वरकों पर हमारी जो निर्भरता है वह कम हो और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य टिकाऊ बन सके। अब मैं एक चीज़ बताऊं कि बर्मी कंपोस्ट की इतनी बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट नामक इस जैविक खाद में सड़ी हुए गोबर के खाद की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक पोषक तत्व तो उपलब्ध होता है। और हमारा जो विश्वविद्यालय है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, वह आपको बनाता है संवर्धित वर्मी कंपोस्ट, इनरिच वर्मी कंपोस्ट बनाता है, और इसमें फास्फोरस, गंधक इस सब की मात्रा और ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यदि कोई किसान संवर्धित वर्मी कंपोस्ट बनाता है तो उसकी उसका पोषक मान और ज़्यादा होगा, जिससे हमें कम रासायनिक उर्वरक डालने की आवश्यकता होगी, या हमें वर्मी कंपोस्ट ही डालना है तो हमें कम वर्मी कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जैसे अभी सामान्यतया जो सामान्य वर्मी कंपोस्ट है वो 5 टन प्रति हेक्टेयर आपको डालना होगा, लेकिन उसमें यदि नाइट्रोजन ज़्यादा है तो आपको उसकी कम मात्रा आपको डालनी होगी। वास्तव में देखिए, एक तो मोटी सी बात कह दी जाती है कि 5 टन पर हेक्टेयर आप डालें, लेकिन यह बात आप यदि खुद निर्धारित करना चाहते हैं तो यह देखिए कि फसल में कितनी मांग है, नाइट्रोजन की कितनी मांग है। जैसे मान लीजिए सेंटर राइस आप ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पर यदि आपको सपोज कीजिए कि 40 kg नाइट्रोजन डालना है, आप 1% वाला बर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं तो वहां पर आपको 1% वाला आपको ये समझिए कि 1 टन यूज किया तो 10 kg मिला, और 4 टन आपने यूज किया तो 40 kg मिला। लेकिन यदि वहीं पर 2% नाइट्रोजन वाला आप बर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते हैं तो वहां 2 टन ही से ही काम चलेगा, यानी आधी मात्रा उसकी बच जाएगी। तो अभी चूंकि बहुत ज़्यादा बर्मी कंपोस्ट डालने की बात होती है, इसलिए बहुत सारे किसान नहीं इसका प्रयोग करते हैं। यदि हम संवर्धित बर्मी कंपोस्ट करते हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तब किसान ज़्यादा प्रयोग करेंगे और कम मात्रा ही डाल करके ही ज़्यादा आप रासायनिक उर्वरकों की बचत कर सकते हैं। तो इसीलिए यह जरूरी है

0: कि हम इस ढंग के वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें
1: जी। तो यहाँ पर पूरी बातें आपको बताई गई हैं और डॉक्टर साहब ने कृषि अवशेषों से कंपोस्ट कैसे बनाना है उससे जुड़े जितनी भी बातें यहाँ पर आपको बताए हैं, तो आशा करते हैं कि आपको जो है इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक खास विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
6: कब से?
5: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
6: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
5: खांसी?
6: हाँ।
5: इसको तो एक आध महीना हो गया।
6: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
5: डॉक्टर खांसी तो है।
6: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
5: टीबी?
6: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
5: ठीक है।
6: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
1: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: अरे रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
14: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
14: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
14: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
14: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
14: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों

0: ये जो आकस्मिक बाढ़ आई जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें।
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों, तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त

0: की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थित में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं।

0: 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर?

0: उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैस

सैपलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी

0: नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा बैंक चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं, वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, ताकता जाल और बांस की घेराबंदी

0: मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: देखो नाटक, देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
4: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त

0: भी ना छोड़े साथ।
1: 11 दोस्त
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
7: So, see you at the vaccination center soon.
8: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल।
11: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी।
9: आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं, उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन

0: प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
1: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।
0: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं

कामकाजी हो या फिर घरेलू हो, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है, करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा, करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है, और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंजाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है, और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं, या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है या फिर कोई बात है ही नहीं फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज़्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं, और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे

परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज़्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी, या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है। तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूलते हैं, किसी चीज़ पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो ज़रूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं, और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं। और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दें, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय ज़रूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फ़ायदा होता है, और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं, और इस वक्त ये ना करें कि आप फ़ोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं, और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी, और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ, या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है, और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा,

और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं। तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है, तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए। क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे, तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है, या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें, और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहें हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?

0: तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
1: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त RJ अनु। एक बार फिर आप सभी के बीच एक बहुत ही उपयोगी विषय लेकर हम आ चुके हैं। दोस्तों, हमारे भारत में और हमारे बिहार में बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है, लेकिन एक जो सबसे खास, जो देखने में तो सुंदर लगता ही है और उसकी विशेषताएँ भी बहुत हैं, वो है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही हम उसकी खेती के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करूँ तो बहुत ही कम जगह ख़ासतौर पर मैंने देखा है इसकी खेती, और इसीलिए लोग इसकी खेती को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इसकी एक विशेषता इस स्ट्रॉबेरी से है, वो है पोषण सुरक्षा। यानी स्ट्रॉबेरी की खेती से पोषण सुरक्षा कैसे हो सकती है और ये एक लाभदायक व्यवसाय हमारे लिए कैसे बन सकता है, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए है डॉक्टर रूबी रानी जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद अनु। मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में क्यों की जानी चाहिए और पोषण सुरक्षा में उसका क्या अनुदान है, योग उपयोग है, कि स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का हमारा क्या उपयोग है, पोषण सुरक्षा इससे कैसे की जा सकती है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
1: तो मैम, सबसे पहले जब इसकी खेती की बात आती है तो हम ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे इतनी मेहनत करके लोग उगाते हैं, क्योंकि इस खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रॉबेरी को उगाई जानी चाहिए, लोगों ने सोचा?
4: यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है और किसानों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमारे स्ट्रॉबेरी जो है उसमें बहुत ही पोषण से भरपूर, या पोषण का कैप्सूल, न्यूट्रिटिव कैप्सूल आप इसको कह सकते हैं। अच्छा। हर तरह का न्यूट्रिशन है और जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटास, फोलेट, पोटाशियम, मैगनीज, मैग्नीशियम, फैट का ये अनुपात कम है और इसमें कैलोरी कम मिलती है।
1: अच्छा।
4: लेकिन ये फाइबर रिच फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स में बहुत ज़्यादा है। अब एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स का क्या मतलब है? ये जो तत्व होते हैं ये शरीर में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं।
1: अच्छा।
4: इसलिए स्ट्रॉबेरी के खाने से लोगों में रोग रोधी क्षमता बढ़ती है और बहुत से रोगों से आप इससे बच सकते हैं अगर इसका नियमित सेवन करें।
1: अच्छा।
4: इसमें जो कैलोरी है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो भी फैट कंटेंट थोड़ा फैट कंटेंट है, मिनरल्स विटामिन बहुत ज़्यादा है, फैट कंटेंट काफ़ी कम है और वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसलिए ये लो कैलोरी फूड है। आज सभी जो हमारे किसान भाई हैं, आम नागरिक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल,
4: होना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हमें ऐसा फल मिले जिसमें कि वसा की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य फलों की तुलना में कम हो,
1: एंटीऑक्सीडेंट्स
4: ज़्यादा हो, विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा हो, तो इस तरह का फल उन्हें चाहिए या इस तरह का खाद्य पदार्थ उन्हें चाहिए, तो इस स्ट्रॉबेरी में ये सारे गुण मौजूद।

0: जी,
1: तो इसलिए इसका पोषण का कैप्सूल बोला गया है इसे।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मतलब इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से लो कैलोरी फूड है, फाइबर रिच फूड है, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल बहुत ज़्यादा है, सोडियम फ्री है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी फूड है, फ्रूट है, लेकिन विटामिन्स मिनरल्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैगनीज, मैग्नीशियम, ये सफिशियंट मात्रा में है, इसलिए इस फल की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और ये फल जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत दूर से इसको लाया नहीं जा सकता है। अच्छा। जैसे कि हमारे पोषण तो बहुत है, जैसे कैसू नट है, उसमें प्रोटीन बहुत है, अखरोट है, बादाम है, इसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इन फलों को, इन नट्स को हम बहुत दूर से क्योर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में रहते हैं। अच्छा। स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही कोमल फल है, इसका तुड़ाई के उपरांत इसकी अवधि जो उसको जो अच्छे कंडीशन में जब इसको बहुत कम दिन होता है, 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं।
0: अच्छा,
1: इसलिए ये आवश्यक है कि ये हमारे आसपास उगाए जाए
0: जी,
1: तभी हमें ये मिल पाएगा, वरना हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें।
0: तो दोस्तों, मैम ने बताया कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैट कम है, और बस हमें यही तो चाहिए। आजकल लोग डाइटिंग भी करते हैं तो फल को ज़रूर शामिल करते हैं, और अगर आप उसमें स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अभी फ़िलहाल हम कोरोना काल में जी रहे हैं। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के साथ कोरोना शामिल हो चुकी है ये महामारी, और इस समय कहा जा रहा है कि हमें ऐसे फल और सब्जियां लेनी चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी को ज़रूर शामिल करें, और आपको हम स्ट्रॉबेरी से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। तो मैम ने जैसे कहा कि इसे बहुत दूर से नहीं लाया जा सकता, ये बहुत कोमल फल है, तो मैम बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है क्या?
1: बेशक बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है। हमने पिछले 10 साल में पर इस पर शोध किया। जब हमने शुरू किया था तो हमें भी विश्वास नहीं था कि यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमने इसका शोध किया तो मैंने पाया कि बिहार में इसका खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हालांकि ये फल जो है वो ठंडे जगहों का फल है, जैसे कि पहले ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में, सिक्किम में, आदि जगहों में उगाया जा सकता था, लेकिन अभी कुछ किस्में आई हैं और कुछ विशेष तकनीक की मदद से इसे हमारे प्रदेश जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जगहों में भी काफ़ी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए हमने शोध के उपरांत मैंने देखा कि बिहार में ये अच्छी तरह से उगाई जा सकती है और इसकी हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं।
0: मतलब पहले लोग ये घबराते थे कि गर्म वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये पहले जम्मू और कश्मीर में ही उगाया जाता था। तो यहाँ पर शोध के बाद पता चला है दोस्तों कि बिहार में इसका उत्पादन किया जा सकता है। मैम साथ ही आप इसके लगाने की विधि भी बता दें, और समय क्या है इसे लगाने की वो भी बता दें।
1: तो सब इसमें एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें पोषण तो भरपूर है ही है, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, जैसे कि इसका उपयोग सौंदर्य सामग्री बनाने में होता है, आइसक्रीम, कैंडी, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मांगते हैं तो उन सब चीज़ों में बनाता है, सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है, केक, आइसक्रीम, बहुत तरह से सॉफ्ट ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी का यूज होता है, और इस तरह से इसमें पोषण के साथ साथ इसके उपयोग
0: व्यावसायिक रूप में
1: बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही सुवासित सुगंधित फल है, इसका अलग ही एक एरोमा है, और जो कि इसका आकर्षित रंग के साथ साथ इसका एरोमा भी लोगों को अट्रैक्टिव करता है, साथ ही पोषण और बहुआयामी इसके उपयोग हैं, इसके कारण इसकी खेती बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि किसान इसके प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं इसको उगाने के लिए, क्योंकि ये 7 से 8 महीने में पूरा फसल तैयार हो जाता है, और इसका डिमांड ज़्यादा होने के कारण इसके प्राइस ज़्यादा हैं, और किसानों को ज़्यादा मुनाफा 7 से 8 महीने में प्राप्त हो जाता है
0: जी।
1: और अब आती है कि इसको लगाने की विधि
0: जी,
1: और इसका समय क्या है। तो हमने शोध के उपरांत पाया कि बिहार में इसको लगाने का समय अक्टूबर माह जो है, इसको लगाने का सबसे उत्तम समय है, प्रथम सप्ताह, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अंत तक आप लगा सकते हैं। हालांकि इसको 15 नवंबर तक लगा सकते हैं, लेकिन आप अक्टूबर तक लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 15 नवंबर के बाद आप लगाएंगे तो इसके उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि, कमी आ जाती है। अच्छा। क्योंकि उसको सही समय नहीं मिल पाता है, उसको

0: समुचित ग्रोथ का और फूल खिलने लगते हैं, इसके कारण कि छोटे पौधे में फूल खिलने से उत्पादन में कमी हो जाती है, गुणवत्ता भी सही नहीं रहती है। तो लगाने का उचित समय इसका अक्टूबर है,
1: अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से।
0: प्रथम सप्ताह से आप 15 नवंबर तक लगा सकें, नवंबर तक बिल्कुल लगा दें, और 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी उत्पादकता में आपको
1: कमी मिलेगी जी।
0: अब मैं इसको पूछा जैसे कि अपने लगाने की विधि क्या है, तो इसको लगाते हम लोग रनर से, पौध से हम इसे लगाते हैं
1: जी जी।
0: इसके लिए जो है छोटे छोटे पौध आते हैं और इसके हम बीज से नहीं लगाते हैं, और ये पौध जो है हमारे रनर से एक पौधे से कई कई पौधे निकलते हैं उससे तैयार होते हैं। परंतु हमारे राज्य में अप्रैल महीने के बाद से इतनी गर्मी होती है
1: जी
0: कि ये पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें पौधों के लिए दूसरे राज्यों जहाँ ठंड प्रदेश हैं वहाँ से हमको उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये पौधे 4 से 6 पत्तियाँ हों उस पौध में, उसको हमको लगाना चाहिए। और लगाने के पहले पौधे को हम कार्बनडाइजीम के 0.2% के घोल में 5 मिनट तक डुबाते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके पौधे को लगाते हैं। तो ये भी लगाने की विधि और इसका लगाने का समय।
1: तो मैम इसके बाद उत्पादन तकनीक को भी हम जानना चाहेंगे, जब विधि की बात हो गई है और इसके बाद उत्पादन तकनीक को ना जाने तो थोड़ा अधूरापन रहता है, तो इसके उत्पादन तकनीक के बारे में भी बताएं थोड़ा।
0: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी इसका भूमि की तैयारी कैसे करें, इसका बेड कैसे बनाएं, इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालें और इसमें सिंचाई कैसे करें, और इसमें कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इनके बारे में मैं एक एक करके सबको आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी करने के लिए आप जैसे अक्टूबर में लगाना चाहते हैं तो उसके 10 से 15 दिन पहले एक गहरी जुताई कर दें खेत की। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी वैसे भूमि का चुनाव करें जहाँ जल जमाव नहीं होता हो।
1: अच्छा।
0: और मिट्टी जो है वो बलवाही दोमट मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, और वो क्षारीय मिट्टी ना हो, जैसे कि उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का चुनाव करें और वैसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल का जमाव नहीं हो और मिट्टी हल्की हो। इसका जिसका पीएच मान मिट्टी का 6.5 से 7 के बीच या 6 से 7 के बीच हो, 7 से ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का हम चुनाव करें
1: जी।
0: और चुनाव करने के बाद लगाने के समय के, यानी कि अक्टूबर में आप लगा रहे हैं या 15 अक्टूबर को लगा रहे हैं, तो उसके 10 दिन पहले आप उसकी ज़मीन की गहरी जुताई करें, उसके बाद एक हल्की जुताई करें। हल्की जुताई के समय उसमें आप कुछ खाद डालें, तो खाद की मात्रा जो है प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट, 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 25 से 30 किलो पोटास प्रति एकड़ आप हल्की जुताई के समय में डाल करके इसको जुताई कर दें। उसके बाद इसकी खेती, व्यावसायिक खेती जो होती है वो उठी हुई क्यारियों पे होती है।
1: अच्छा।
0: तो उस क्यारी को बनाने के लिए आप उसकी ऊंचाई जो है 30 से 35 सेंटीमीटर रखें और उसकी चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर तक आप रख सकते हैं, और लंबाई आप अपने सुविधा अनुसार जितना चाहे रख सकते हैं
1: जी।
0: दो क्यारी के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से आपकी उठी हुई क्यारी तैयार हो जाएगी जो कि 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 1 से 1.25 मीटर चौड़ा हो और दो क्यारियों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर हो। एक क्यारी पे अगर आप 1 मीटर रखे हैं या 90 सेंटीमीटर तक चौड़ा रखे हैं तो आप 2 पंक्तियां लगाएं, अगर उससे ज़्यादा रखे हैं तो 3 पंक्तियां भी आप लगा सकते हैं। 4 पंक्तियां में थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए 3 पंक्तियां आप एक क्यारी पे लगा सकते हैं। पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखें
1: जी।
0: तो इस तरह से आप बेड पे 2 से 3 क्यारी
1: तैयार
0: कर सकते हैं, और प्रति एकड़ लगभग 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी।
1: अच्छा।
0: उसके बाद आता है

0: हम इसको लगाने की विधि मैंने पहले बता दी, लेकिन अगर आप इसमें सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था कर सकें तो ये आपके लिए वरदान होगा
1: जी।
0: और ड्रिप सिंचाई पे आज जो है सरकार 90% तक अनुदान भी दे रही है, तो आप सरकारी सहायता प्राप्त कर आप ड्रिप सिंचाई का अपने खेत में लगा सकते हैं। और ये जो कि काफ़ी वरदान होता है इसके लिए, बड़ी अच्छी खेती, उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है फलों की। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि किसान भाइयों आप ड्रिप सिंचाई का इसमें उपयोग जरूर करें
1: जी।
0: इसके अलावा पौधे लगाने के बाद इसकी जो खेती होती है, इसके जो फल होते हैं वो मूलतः जमीन पे सटे हुए होते हैं। जब निकलते हैं तो जैसे ही फल बड़ा होता है तो अपने भार से वो जमीन सतह पे सट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप, इसलिए मल्च या पलवार का उपयोग बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी और फल का संपर्क ना बने। ये फल चूंकि बहुत ही कोमल मुलायम होता है, लगातार अगर मिट्टी के संसर्ग में रहेगा तो ये खराब हो जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते हैं, बाजार में ले जाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मल्च बहुत ही आवश्यक है। मल्च आप पुआल का भी दे सकते हैं और प्लास्टिक का भी दे सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो प्लास्टिक का मल्च बहुत ही अच्छा देखा गया है इसमें। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की मल्च नहीं है तो आप धान या गेहूं के का जो भूसा होता है या पुआल होता है उसका भी उपयोग मल्च के रूप में कर सकते हैं। वो 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंचा मल्च होना चाहिए ताकि फल का संपर्क डायरेक्ट मिट्टी से ना हो और आपकी फल जो है परिपक्वता तक अच्छे कंडीशन में रहे और बाजार में ले जाने लग रहे। तो इस तरह से दो तकनीक, जो मल्च और सूक्ष्म सिंचाई, ये दोनों इसके लिए वरदान है। और जब आप बेड तैयार करते हैं तब उसमें जो है आप सूक्ष्म सिंचाई पहले बिछा दें, पौधे लगा दें, उसमें सूक्ष्म सिंचाई कर दें। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं आपने वहाँ वहाँ उतनी दूरी पर आप मल्च में छेद करके उस तरह से पौधे को व्यवस्थित कर दें
1: जी।
0: आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले बेड तैयार करके मल्च को फिक्स कर दें, फिर जितनी दूरी पर आपको बेड को तैयार करके पहले ड्रिप इरिगेशन लगा दें, फिर आपको मल्च डाल दें, मल्च फिक्स कर दें और जितनी दूरी पर आपको पौधे लगाने हैं वहाँ पर छेद करके थोड़ा सा होल करके वहाँ पर पौधे को आप फिक्स कर दें और ड्रिप से आपका पानी और पोषण सारा चीज ड्रिप के माध्यम से पौधे को मिलता रहेगा। तो ये हुई विशेष तकनीक।
1: अच्छा,
0: कि इसके उत्पादन में विशेष तकनीक है। इसके अलावा हमारे राज्य में दिसंबर के अंत में और जनवरी तक पाले का प्रकोप रहता है, उसमें बहुत धुंध रहती है, पाले का प्रकोप रहता है। और पाले से बचाने के लिए आप छोटा पॉलीटनेल का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि पौधे जो है पाले से बच सकें। और पॉलीटनेल जो है उसकी ऊंचाई 65 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये पॉलीटनेल क्या है, एक छोटा पॉलीहाउस है, मिनिएचर है पॉलीहाउस का, इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर होती है। इसको बेड कवर या रो कवर भी बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है 65 से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये अगर आपको टनल बनाने के लिए जीआई पाइप का ना मिले तो आप बांस की करची पे भी पतली पॉलीथीन की सीट बिछा करके पॉली टनल बना सकते हैं। और जो कि आपके पास बहुत आयत में बांस तो हर गांव में उपलब्ध रहता है, तो उस कमाची का उपयोग करके, बांस का उपयोग करके आप पॉलीटनल बना लें और पॉलीटनल पर पतली सी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उजले कलर की पॉलीथीन आप डाल दें। और ये जो है जब आपका पाला पड़ना शुरू हो जाए तब और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसको डाले रहें। इससे क्या होता है कि पौधा जो है पाले से बचा रहेगा और धूप उसके अंदर आती रही, ग्रोथ बढ़वार बढ़िया रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा पॉलीहाउस का इफेक्ट रहता है। पॉली जैसा पॉलीहाउस में उसका इफेक्ट रहता है पौधों का, उसी तरह से पॉलीटनेल का भी उपयोग है। साथ साथ ये पाले से भी बचाता है और ढके रहने के कारण कीट व्याधि का भी प्रकोप कम रहता है, इसी कारण की फल की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये विशेष 3 तकनीक जो है स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सूक्ष्म सिंचाई, पॉलीटनेल और मल्च। किसान भाइयों अगर आप सूक्ष्म सिंचाई नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन मल्च तो मस्ट है। चाहे आप

0: बॉल का मल्च दें चाहे आप प्लास्टिक का मल्च दें, मल्च के लिए हमेशा काले पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन आती है, मल्च सीटू कहलाता है, और वो 1 मीटर 1.25 मीटर की चौड़ाई में आता है और लंबा आप जितना चाहे एक रोल ले सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी जाती है। खासकर ये स्ट्रॉबेरी सब्जियों आदि के लिए ही बनाया जाता है। तो इस तरह से मल्च आप का उपयोग करें। सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, अगर अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, बिना उसकी भी खेती कर सकते हैं। टनल का भी उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, करना करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको मल्च का उपयोग तो करना ही होगा। तो ये है उत्पादन तकनीक। और लगाने के बाद जो है आप जो भी उसमें पोषण देंगे वो फर्टिगेशन के थ्रू देंगे, क्योंकि आप ड्रिप सिंचाई लगा चुके हैं और पौधा जो है मल्च के नीचे है, तो आपको बाहर से आप नहीं दे सकते हैं, आप जो है इसको फर्टिगेशन के थ्रू दे सकते हैं। और फर्टिगेशन के लिए भी हमने शोध किया है, पौधे लगाने के 30 से 45 दिन बाद जो घुलनशील हमारा NPK है 20-20-20 का, उसका 25 ग्राम की मात्रा को 4 भागों में बांट दें और प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम 4 भागों में बांट करके और 15 दिन के अंतराल पे उसको 4 बार दें। तो इस तरह से आपका जो है वो फलों की गुणवत्ता बनी रहेगी और आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा।
1: जी श्रोताओं, मैम ने आपको बताया कि उत्पादन की 3 विशेष तकनीक हैं, वो है मल्च, पॉलीटनल और साथ ही मैम ने बताया सूक्ष्म सिंचाई। मल्च जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये अपनाएं और सूक्ष्म सिंचाई आप चाहे तो अपना सकते हैं, नहीं तो नहीं, और पॉलीटनल भी आप चाहे तो अपना सकते हैं, नहीं तो आपकी जो सुविधा है आप उसके अनुसार उत्पादन तकनीक को अपना सकते हैं। मैम, उत्पादन तकनीक के दौरान भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और अगर किसान भाइयों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं तो पहले से सावधान हो जाएंगे, उन सावधानियों के साथ वो उत्पादन तकनीक को अपनाएंगे ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए उन समस्याओं को ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारे किसान, हमारे राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत लोग किसान लोग कर रहे हैं और हमारे पास उनकी समस्याओं के बारे में भी फ़ोन आते हैं और बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के दौरान किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कुछ इसमें फफूंद जनित रोग ज़्यादा लगते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा है उकठा रोग। कभी कभी देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो बीच बीच में पौधे गलने शुरू हो गए, पौधे अचानक सूखने शुरू हो जाते हैं और उसको चाह करके भी आप नहीं बचा सकते हैं। तो इसके लिए ये समस्या फरवरी मार्च के बाद आनी शुरू होती है, जब पौधे जो थोड़ी सी गर्मी आती है उसके बाद ये आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अच्छी गुणवत्ता की आपको पौध होनी चाहिए, उस पौधे में कहीं किसी तरह का स्पॉट या कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप पौधे को लगाएं, तो मैंने बताया कि कार्बन डाइजीम में उसको 0.2% के घोल में, आप कार्बन डाइजीम के घोल में उसको 5 मिनट तक दुबाएं, उसके बाद लगाएं। और जब आप बेड तैयार करते हैं, ऊँची उठी हुई बेड आप तैयार करते हैं, तो 0.01% का मेटल एक्सिल का घोल से एक बार उस पर स्प्रे कर दें
1: जी।
0: तो ये आपको उकठा रोग से बहुत बचाव करेगा। साथ ही साथ मैंने देखा है कि अगर आप ट्राइकोडर्मा को जो कंपोस्ट डालते इसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, ट्राइको कंपोस्ट को डालने के पूर्व ट्राइकोडर्मा आधा केजी लेकर के ट्राइकोडर्मा उसको 15-20 केजी कंपोस्ट में मिक्स कर दें, उसको 1 सप्ताह के लिए छोड़ दें, मॉइस्ट रखें, और उस कंपोस्ट को अगर यूज़ करते हैं तो इसका प्रकोप कम होता है। तो इस तरह से जो मैंने बताया कि आप कार्बन डाइजीम का उपयोग करें, ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें और मेटल एक्सिल के 0.01% के घोल से आप बेड को जो नर्सरी का अपनी जो उठी हुई क्यारी तैयार की उसको उपचारित करें। इस तरह से करने से आपको जो है फफूंद जनित रोग जो है वो आप से आप इसको बचा सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा और इसका रोग है लीप स्पॉट आता है, पर्णचित्ती आता है। कभी कभी देखेंगे कि गोल गोल गोल गोल स्पॉट आ गया है लीप पे, जैसे ही आप स्पॉट देखें उसको आप कैंची से हटा दें, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1% का घोल से उसका छिड़काव करें। इससे आप

0: करें, अगर ये कुछ आ गया है तो तुड़ाई के उपरांत डायथन M45 का 2 ग्राम का प्रति लीटर का घोल बना करके आप एक बार स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आप ग्रे मोल्ड से, उकठा रोग से यानी कि विल्ट से और लिप स्पॉट से इसका निजात पा सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं आपने जाना कि जो भी परेशानियां हैं उनके समाधान के बारे में भी आपने जाना, और मैम इसके बाद उत्पादन से लाभ तो मिलेंगे ही, क्योंकि पहले ही भी हम जान चुके हैं इसमें पोषण बहुत ज़्यादा है। तो व्यावसायिक तौर पर, आम तौर पर क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं इसके उत्पादन से?
0: इसके पहले बताना चाहेंगे इसकी तुड़ाई कैसे की जानी चाहिए।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो अगर आप इसको अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो दिसंबर माह में इसका फल टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ये लगातार मार्च तक या कभी कभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फल देगा। जैसे ही गर्मी आएगी इसमें फूल आना बंद हो जाता है, और फूल आना बंद हो जाएगा तो फल आपको नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अगर अक्टूबर में लगाते हैं तो आपको मार्च तक आपको अच्छा फलन देगा। और इसका तोड़ने के लिए जब ये फलना शुरू हो जाता है तो कुछ कुछ अंतराल पे ये फल आपको तोड़ने होंगे, और फल की तुड़ाई आप सुबह में करें। तुड़ाई के बाद आप फल को जो है आप ठंडे जगह में रखें और जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें, क्योंकि तुड़ाई के उपरांत इसकी जो है संधारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट फ्रूट है और बहुत जल्दी खराब होता है।
1: जी,
0: तो जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें। अगर दूर के मार्केट में आपको भेजना है तो फल को पूरा लाल होने के पूर्व यानी 75% जब पक जाए तभी आप इसको हार्वेस्ट करें। थोड़ा उसमें टफ रहता है और 1-2 दिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये थोड़ा सा और पकता है, फिर जा करके आप उसको मार्केट में भेजें। तो नज़दीक के लिए मार्केट के लिए पूरा फल पकने के बाद इसको तोड़ें, और अगर दूर का मार्केट में भेजना है तो आप 75% पकने पर ही उसको तोड़ दें। इसकी पैकिंग के लिए पुनेट आता है, पुनेट का उपयोग करें और सही ढंग से इसकी पैकिंग करें। एक फल दूसरे फल पे बहुत ज़्यादा कसा हुआ ना हो, एक फल पर दूसरा फल ना हो, इस तरह से इसकी पैकिंग करें और तभी आपका ये ज़्यादा दिन तक थोड़ा मार्केट में रह सकता है।
1: जी,
0: और जहाँ तक इसके लाभ की बात है, कितने लाभ हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि इसकी लागत जो है आपको अगर ड्रिप सिंचाई क्या लगाएंगे, मल्च डालेंगे, पॉलिटिनल डालेंगे, तो पहले साल इसकी लागत कुछ ज़्यादा आएगी क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर लगातार इसकी खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इसकी व्यवस्था ज़रूर करें, और 3 साल के बाद उपरांत पाएंगे कि आपने अगर 1 रुपया लगाया है तो कम से कम 4 रुपया आपको मिलेंगे।
1: अच्छा,
0: तो पौधों का कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो पौधे आपको 10 से 12 रुपये के बीच में मिलेंगे या 15 रुपये तक भी मिल सकते हैं। तो अगर आप 20,000 पौधे लेते हैं तो आपको लगभग 3.5 लाख रुपये आपको पौधे में लग जाएंगे, लेकिन उसमें उत्पादकता जो है अगर अच्छे से आप मैनेज करें तो प्रति एकड़ उत्पादकता आपको 15 टन से कम नहीं होगी। तो इस तरह से अगर उसको 200 रुपये के जी भी बेचेंगे तब भी आपको 3 से 4 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा 1 एकड़ में। इसलिए 8 से 9 महीने के बीच में इतना शुद्ध मुनाफा किसी भी क्रॉप में नहीं है, इसका डिमांड भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभकारी व्यवसाय है, पोषण से भरपूर फल है, कम अवधि में इसके उगाए जा सकते हैं, और अगर आपके शहर के किनारे छोटा सा भी ज़मीन है तो आप छोटी सी भूभाग में इसकी खेती करके आप इसको बहुत मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की खेती करें और अच्छी आमदनी पाएं, अच्छा लाभ पाएं। व्यावसायिक तौर पे पोषण सुरक्षा की दृष्टि से ये इसका स्ट्रॉबेरी का फल उत्पादन काफी अच्छा है। और मैं अपनी वार्ता के दौरान एक चीज बताना भूल गई कि हमारे राज्य में किस्में कौन कौन सी अच्छी उत्पादकता के साथ कर रही हैं।
1: जी,
0: तो मैं बता दूं कि इसके लिए आप स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, कामा रोजा, विंटर डाउन, नबीला, सेंसेशन, ये 6-7 किस्में जो हैं वो अच्छा उत्पादन कर रही हैं, अच्छी उत्पादकता और गुणवत्ता के साथ हमारे राज्य में इसका उत्पादन हो रहा है। तो ये हमने शोध के उपरांत पाया, हमने लगभग 21 किस्में शोध किया है, किस किस्मों का उत्पादन किया अपने रिसर्च प्लॉट पे, और हमने पाया कि ये 6-7 किस्में जो हैं हमारे राज्य में बहुत अच्छा उत्पादन कर रही है, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादकता के साथ। तो मैंने अपने बताया आपको कि स्ट्रॉबेरी

0: की खेती के कैसे उत्पादन करें और कैसे इससे लाभ कमाएं और क्या इसके लाभ हैं, ये हमारी बात। धन्यवाद किसान भाई, उम्मीद है कि आपको उचित जानकारी मिली होगी। जो जानना चाहेंगे, जानना चाह रहे होंगे आपकी, वो जानकारी आपको मैं दे पाई होंगी इतने कम समय में। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना स्ट्रॉबेरी एक लाभदायक व्यवसाय कैसे बन सकता है, पोषण सुरक्षा हेतु स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जा सकती है, हर एक छोटी से बड़ी बात मैम ने आपको बताया यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको इन जानकारियों से बहुत लाभ होगा। अगर आप अभी भी इसे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, समय है। और साथ ही जो भी समस्याओं की बात यहाँ पर हुई है, मैम ने उसके समाधान के बारे में भी बताया, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही लगाएं। और उत्पादन तकनीक के बारे में भी मैम ने बताया कि आप उस तकनीक को ज़रूर अपनाएं, और मल्च जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसे तो आपको अपनाना ही चाहिए, जो कि आपकी जो फल हैं वो मिट्टी संपर्क में ना आए। तो इस तरीके से बहुत लाभ होगा आपको अगर आप इन जानकारियों को ध्यान से सुनते हैं। तो आज के लिए श्रोताओं इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सभी एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेली पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें, भाग 5।
8: साथियों क्यों न एक पहेली

0: महल में 32 राजा फल मिठाई को कहते आजा। जो भी महल के अंदर जाए राजा मिलकर उसको खाए। बोलो क्या, बोलो क्या?
1: दांत।
0: शाबाश, दांत। मुंह महल और दांत है राजा, फल मिठाई को कहते आजा। मुंह महल और दांत है राजा, फल मिठाई को कहते आज। जो भी मुंह के अंदर जाए दांत चबाकर उसको खाए। समझे?
2: मजा आया ना? तो साथियों अब हम चलते हैं। नमस्ते।
3: आओ क्विज करें। आज की पहेली दांत पर आधारित थी। संगीतकार नरेंद्र टोनी, गायन स्वर इमरान खान और बच्चे, ध्वनि अंकन बटीलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 10 से 14 अक्टूबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 70 से 75% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें,
9: इस समय फूल गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में जैसे पूसा हिमज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की रोपाई कर ले और पछेती किस्मों की बुआई की जा सकती है। पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हाइब्रिड 2 जैसी पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है। पत्ता गोभी की बुआई के लिए पूसा ड्रम हेड और पूसा अगेती इन किस्मों का चयन करें। प्रति हेक्टेयर जमीन में लगभग 500 ग्राम बीज की बुआई करना जरूरी होता है। कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई बहनों ध्यान दें कि अच्छी वृद्धि और अच्छी उत्पादन

0: उत्पादन के लिए 20 से 25 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाबी सफेद, अरका निशांत इन प्रभेदों की बुआई कर ले। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखे और बुआई 25x10 सेंटीमीटर की दूरी पर करे।
1: जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाए, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेरर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव

गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक हैं। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियाँ। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकरा कर, लकड़ी रगड़ कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। ये जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हो और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओ 19वीं शताब्दी में फास्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं लेकिन श्रोताओं उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है।
आइए श्रोताओं जानते हैं अब एक बड़ी

वो चेक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई, तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया। और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना। खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें, तो याद रखिएगा उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं, तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं, इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा।
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
2: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
3: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
2: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।

0: जवानों,
1: जी सर,
0: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
1: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
0: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
2: जी सर।
0: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
2: जी जनाब।
0: हाथ गोला हाथ में लो।
2: ले लिया जनाब।
0: अब पिन रिलीज करो।
3: फेंको।
2: फेंका जनाब।
4: अरे अरे, ये क्या हुआ?
5: ये क्या हुआ?
4: अरे
5: बचो बचो बचो,
4: फट जाओ।
6: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा
7: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
2: ये आदि क्या कर रहा है?
7: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
8: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
9: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
10: सही में
9: बहादुर सैनिक हो तुम।
6: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
11: May I come in, sir?
8: Yes, come in.
11: Sir.
8: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
11: सर।
8: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
11: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
8: हाँ हाँ, कहो।
11: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
8: ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
11: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
8: गो अहेड यंग मैन।
11: सर।
6: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
7: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
6: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
7: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौबिंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
9: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
2: जी सर,
0: हम पूरा ध्यान रखेंगे।
9: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने

0: का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
1: जी जनाब।
2: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
0: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
4: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
5: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
4: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी

0: उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए, किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
7: ये राशन के 15,000,